सुप्रभात, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज दिन गुरुवार है। शक संवत 1947 के वैशाख मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 7 मई 2026। इस वक्त सुबह के 7 बजे है। अब हमारी सुबह की सभा आरंभ होती है। आप सभी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो।

0: जीवन सौरभ।
1: अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वह मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। अहंकार से सही और गलत की पहचान नहीं हो पाती। एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी अपने प्रवास के दौरान एक गांव में ठहरे। अपने उपदेश अमृत से उन्होंने सभी गांव वालों को समानता और भाईचारे का संदेश दिया। सभी गांव वाले गुरु नानक देव जी के उपदेशों से तृप्त हो गए। वो दिन रात गुरु जी की सेवा करते थे। उसी गांव में एक धनी जमींदार रहता था। जमींदार ने गुरु नानक देव जी को अपने यहाँ भोजन का निमंत्रण भेजा, लेकिन उससे पूर्व ही गुरु जी एक निर्धन किसान के घर का खाना खाने की स्वीकृति दे चुके थे। जमींदार के यहाँ से जो व्यक्ति निमंत्रण लेकर आया, उससे गुरु जी ने कहा, भाई मैं किसी के घर जाकर भोजन नहीं ये होता है, और आज के भोजन की स्वीकृति मैं एक भक्त को दे चुका हूँ। जमींदार के व्यक्ति ने जाकर ये सारी बात जमींदार को बताई। वो क्रोध से तिलमिला उठा। अहंकार से भरे स्वर में उसने कहा, मैं इस गांव का जमींदार हूँ, मेरा निमंत्रण ठुकराकर गुरुजी किसी अन्य का भोजन स्वीकार कैसे कर सकते हैं। उसने अपनी पत्नी को आज्ञा दी कि वो तुरंत स्वादिष्ट पूड़ी पकवान तैयार करे। जब भोजन तैयार हो गया, वो स्वयं भोजन के थाल लेकर गुरुजी के पास गया। संयोग से उसी वक्त वो निर्धन व्यक्ति भी पहुंच गया, जिसे गुरुजी ने भोजन खाने की स्वीकृति दी थी। जमींदार की थाली में स्वादिष्ट पकवान थे और निर्धन व्यक्ति मोटी मोटी रोटियां और नमकीन चटनी लेकर आया था। गुरु नानक देव जी ने निर्धन व्यक्ति से रोटी और चटनी लेकर खाना शुरू कर दी। जमींदार खुद को अपमानित महसूस करने लगा और उसने क्रोध भरे स्वर में गुरुजी से कहा, गुरुजी आप उस निर्धन के घर खाना खाकर मुझे अपमानित कर रहे हैं। गुरुजी आप मेरे स्वादिष्ट भोजन को स्वीकार कीजिए, इसकी रूखी सूखी रोटियों में क्या स्वाद है। गुरुजी ने जमींदार को समझाते हुए कहा, जमींदार साहब तुम इस बेचारे की निंदा क्यों करते हो। ये सूखी रोटियां प्रेम और श्रद्धा स्नेह से सराबोर है, इनकी निंदा क्यों करते हो। इस पर जमींदार और भी क्रोधित हुआ और गुरुजी से कहा,
2: मैं भी आपको प्रेम पूर्वक भोजन कराने आया हूँ,
1: आप मेरा भोजन स्वीकार कीजिए। गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाई, तुम्हारे भोजन में क्रोध और दम भरा हुआ है, जिसका विषैला प्रभाव मुझे दिख रहा है। बस गुरुजी के इतना कहने पर जमींदार गुस्से से तिलमिला उठा और गुरु नानक जी को दुर्वचन कहने लगा, तुम साधु नहीं ढोंगी हो, यदि तुम्हारी बात में सच्चाई है तो उसे प्रमाणित करो। गुरुजी ने प्रेम पूर्वक उससे कहा, मेरे प्यारे भाई, क्रोध बुरी चीज है, इससे बचो। हम साधु लोग आदमी के चेहरे से ही उसके मनोभावों को तोड़ देते हैं। जमींदार ने गरज कर कहा, यह असत्य है, सरासर पाखंड। जब उस जमींदार ने विवश किया तो गुरुजी ने एक हाथ में उसकी पूड़ियां ली और दूसरे हाथ में गरीब की सूखी रोटियां ली। दोनों को मुट्ठियों में दबाया तो एक अद्भुत आश्चर्य देखने को मिला। सुना जाता है कि गरीब की सूखी रोटियों से दूध की धारा बहने लगी, जबकि जमींदार की पूड़ियों से खून की बूंदें टपकने लगी। ये देखकर जमींदार शर्मिंदा हो गया, गुरुजी के पैरों में गिरकर कहा, मुझे क्षमा कीजिए, अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया था। सही क्या है और क्या गलत, क्रोध में मैं समझ ही नहीं पाया। गुरुजी ने उसे उठाया और कहा, अरे पगले, अपने इस गरीब भाई को गले लगाओ, तुम्हारी तरह ये भी उसी परमेश्वर की संतान है जिसकी तुम हो। ये बिल्कुल तुम्हारे सगे भाई जैसा है। ईश्वर ने तुम सबको एक जैसा बनाया है, फिर तुम क्यों ऊंच नीच, छोटे बड़े और धनी निर्धन में भेदभाव करते हो। मन में भावना सच्ची रखो, अहंकार और क्रोध को त्याग दो, क्योंकि अहंकार मनुष्य के सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है।

अभी आपने सुना जीवन सौरभ। वंदे मातरम, वंदे मातरम के बाद आज की तारीख और मंगल ध्वनि, उसके ठीक बाद जीवन सौरभ। ये क्रम है रेडियो आजाद हिंद का। संभवतः कह सकते हैं कि हमारा प्रयास होता है कि आपको वो खुशबू मिले रेडियो आजाद हिंद की। इस क्रम को बिना तोड़ के प्रयास होता है हमारा कि आप तक ये इस ध्वनियां हैं, यही पहचान होती है किसी चैनल की जो रेडियो आजाद हिंद की है। वंदे मातरम आप सुनते हैं, दिन की तारीख, मंगल ध्वनि और फिर जीवन सौरभ। और इसके उपरांत अब मैं आपको बताता हूं आज की सभा में प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रमों के बारे में। अब से ठीक बात सुनिएगा कार्यक्रम अक्षर निधि सूक्त 104, और उसके बाद आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का।

सुबह 8 बजे सुनेगा कार्यक्रम वतन का राग, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर आधारित। कार्यक्रम में स्वर होगा सुनीता सिंह का। मन की गुल्लक, इस विषय पर सुनिए आज हमारी बाल सभा सुबह 8:30 पर। कार्यक्रम में स्वर होगा परिकल्पक मनीषा चतुर्वेदी और उनके साथ होंगी बाल कलाकार परिजा। सुबह 9 बजे सुनिए कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 पर। आज की ये चर्चा होगी सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भाभा से पूर्वा खली जी की। हमारा विशेष कार्यक्रम सुनिए वर्ल्ड एथलेटिक्स डे पर सुबह 9:30 पर। विषय विशेषज्ञ एस के प्रसाद से भगवती सक्सेना का साक्षात्कार सुनिए। सुबह 10 बजे सुनिए देश के संस्थान भारतीय थल सेना सरहदों की ढाल, कार्यक्रम में स्वर होगा दीपक नेमा और भगवती सक्सेना का। सुबह 10:30 पर सुनिए आजाद हिंद अल्लूरी सीता राम राजू की जयंती पर आधारित। ग्यारह बजे सुनिएगा रेडियो रिपोर्ट और उसके बाद आनंद लीजिएगा परिक्रमा का। युग प्रवर्तक विवेकानंद, ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 11:30 पर। तो अब से लेकर दोपहर 12 बजे तक बने रहिए मेरे यानी रत्नेश के साथ और आनंद लीजिए इन विभिन्न कार्यक्रमों का। और आइए अब सुनते हैं अक्षय निधि एक अंतराल के बाद।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 104 से वाचन। ऋषि हैं कुत्स आंगिरस, देवता हैं इंद्र और छंद है त्रिष्टुप।
3: यो निष्ट इंद्र निषदे अकारी तमा निशीदस्वानो नार्वा विमुच्या वयो वसाया श्वान दोषा वस्तोर वही यसह प्रपित्वे। हे इंद्रदेव, हमने आपके लिए श्रेष्ठ स्थान निर्धारित किया है। रथवाहक अश्वों को उनके बंधनों से मुक्त करके हिनहिनाते हुए घोड़ों के साथ रात दिन चलकर यज्ञ स्थल में निर्धारित आसन पर विराजमान हों। ओ त्ये नर इंद्रमूतये गुर्नु चित्तान सद्यो अध्वनो जगम्यात देवासो मन्युम दासस्य श्चम्नन्ते न आ वक्षन्तु सुविताय वर्णम। सुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर अपने समीप आए हुए मनुष्यों को इंद्रदेव ने शीघ्र ही श्रेष्ठ मार्गदर्शन दिया। देव शक्तियां दुष्कर्मियों की क्रोध भावना को समाप्त करें। वे यज्ञीय कार्य के निमित्त वर्ण करने योग्य इंद्रदेव को हमारे यज्ञ स्थल में आने की प्रेरणा दें। अवत्मना भरते केतवेदा अवत्मना भरते फेनमुदन क्षीरेण स्नातः कुयवस्य योषे हते ते स्याताम प्रवणे शिफायाः। कुयव राक्षस कुधान्य हीन संस्कार युक्त अन्न खाने से उत्पन्न बल धन का मर्म समझकर आपके लिए ही उसका अपहरण करता है। फेन युक्त जल प्रवाहमान रसों को भी अपने हीन उद्देश्यों के लिए रोकता है। ऐसे कुयव राक्षस की दोनों पत्नियां विचार शक्ति और कार्य शक्ति शिफा नाम की नदी की धार अथवा कोड़ों की मार से मर जाएं। तात्पर्य यह है कि जो खराब अन्न है वह दो पत्नियों से युक्त है। खराब अन्न का फल उनकी ये दो पत्नियां हैं जो विचार शक्ति और कार्य शक्ति के रूप में जानी जाती हैं। युयोप नाभि रूपरस्यायोह पर पूर्वाभिस्तिरते राष्ट्रशूरः अंजसी कुलिशी वीरपत्नी पयो हिन्वाना उदभिर भरन्ते। इस कुयव राक्षस अर्थात कुधान्य से उत्पन्न प्रवृत्ति की शक्ति जल की नाभि अर्थात रसानुभूति में छिपी है। अपहरित जल माने शोषण से मिलने वाला सुख से यह वीर तेजस्वी बनता है। अज्जसी गुणवती तथा कुलसी शस्त्र संपन्न इसकी दोनों वीर पत्नियां विचार और कार्यशक्ति जलों सुखकर प्रवाहों से भरती तृप्त करती रहती हैं। प्रति यत्स्या नीथादर्शी दस्यो रोको नाच्छा सदनम जानति गात अधस्मा नो मघवंचर्क कृतादिन्मा नो मघेव निष्पी परादाह। हे इंद्रदेव, जैसे गायें अपने मार्ग से परिचित रहती हुई अपने गोष्ठ जहां उन्हें बांधा जाता है वे वहां स्वयमेव पहुंच जाती हैं, वैसे ही दुष्ट लोगों ने और दुष्ट प्रवृत्तियों वालों ने हमारे आवास को जान लिया है। अतएव हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, राक्षसी उपद्रवों से हमारी सुरक्षा करें। जिस प्रकार व्यभिचारी पुरुष धन का अपव्यय करता है, उसी प्रकार आप हमें त्याग न दें। सत्वम न इंद्र सूर्येसो अपस्व नागास्त्व आभज जीवशंसे मांतराम भुजमा रीरिशो नह श्रद्धितम ते महत इंद्रियाय। हे इंद्रदेव, आप हमारे लिए सूर्य प्रकाश और जल उपलब्ध कराएं, हम इन दोनों पदार्थों से कभी पृथक न रहें। संपूर्ण प्राणियों के लिए कल्याणकारी पाप रहित मार्ग का हम सदैव अनुसरण करें। आप हमारी गर्भस्थ संतान को पीड़ित न करें। हमें आपकी सामर्थ्य शक्ति पर पूर्ण विश्वास है। अधा मन्ये श्रत्ते अस्मा आधाई वृषा चोदस्व महते धनाय मा नो अकृते पुरुहूत योनाविंद्र क्षुद्ध्यद्भ्यो वय आसुतिम दाह। हे शक्ति संपन्न अति स्तुत्य इंद्रदेव, हम आपके प्रति सम्मानास्पद भावना रखते हैं। आपके इस बल के प्रति हम श्रद्धावान हैं। हमें आप वैभव प्राप्ति हेतु प्रेरणा प्रदान करें। हमें कभी ऐसे स्थानों पर न रखें जो धनों से रहित हों। अतः ऐश्वर्य संपन्न होकर भूख प्यास से पीड़ित लोगों को खाद्य और पेय प्रदान करें। मानो वधीरिंद्र मा परा दा मानह प्रिया भोजनानि प्रमोशी ही आंडा मानो मघवच्छक्र निर्भेन्मा नह पात्रा भेद सहजानुषाणी। हे ऐश्वर्य संपन्न सर्व समर्थ इंद्रदेव, आप हमारी हिंसा न करें और न हमारा त्याग करें। हमारे आहार के लिए उपयुक्त एवं प्रिय पदार्थों को विनष्ट न करें। हमारी गर्भस्थ संततियों को विनष्ट न करें तथा छोटे शिशुओं को भी अकाल मृत्यु से बचाएं। अर्वांगे ही सोमकामं त्वाहुरयं सुतस्तस्य पिबा मदाय उरुव्यचा जठर आ वृषस्व पितेव नह शृणुहि हूयमानः। हे सोमाभिलाषी इंद्रदेव, आप हमारे सम्मुख प्रस्तुत हों। यह निष्पादित सोम आपके निमित्त है। इसे आनंद पूर्वक सेवन करके स्वयं को तृप्त करें तथा आवाहन किए जाने पर हमारी प्रार्थनाओं को पिता के समान ही सुनने की कृपा करें।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 104 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलम त्रिपाठी।
4: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई एक ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सबके मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं।

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही है।

मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए। मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन करा के श्रोताओं को नमस्कार। मनुष्यता के इतिहास में शायद ही कभी इतने सशक्त और प्रभावशाली तथा संगीतमय शब्द लिखे गए हों जो कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे। इनकी तुलना चिरस्थायी गंगा से की जा सकती है, जो कभी सौम्य तो कभी सफेद छींटे उड़ाती हुई और कभी किनारों को तोड़ती हुई समूचे देश तथा संस्कृति का पोषण करती है। चाहे सरल चतुष्पदी हो या प्रेम की दिव्य भावना का गुणगान करती हुई कविता, अथवा इस विश्व के लिए जोशीली दलील हो, कवि की कल्पना और विचारधारा सुनहरे तार की तरह झिलमिलाती है। कवि भीतरी और बाह्य जीवन को मूर्त रूप देता है। टैगोर के अतिरिक्त और किसी ने इस पहचान का वर्णन इतनी बारीकी से नहीं किया। फल चुनने के लिए वे कहते हैं कि यद्यपि समय की धूल मेरे पथ को गड़बड़ा देती है, लेकिन एक न एक दिन मैं अपने प्राणों का, मेरे जीवन में जो आनंद छिपा है, उसका साक्षात्कार अवश्य करूंगा। मैंने इसकी झलक से ही इसे पहचान लिया है और इसके मनमौजी झोंकों ने मुझसे टकराकर क्षण भर के लिए मेरे विचारों को सुरभित कर दिया है। एक दिन मैं अपने भीतर के आनंद से, जो प्रकाश के पर्दे के पीछे है, अवश्य साक्षात्कार करूंगा और उस व्यापक एकाकीपन में खड़ा हो जाऊंगा जहां वो सृष्टिकर्ता अपनी हर चीज को देखता है।

टैगोर को विश्व कवि ठीक ही कहा गया है। टैगोर की विभिन्न रचनाओं को पढ़ने से व्यक्ति रचना के भाव के अनुसार प्रभावित होता है, या सम्मोहित होता है, या गंभीर चिंतन में डूब जाता है। ये प्रतिक्रियाएं जीवन भर अपनी छाप लगाए रखती हैं। टैगोर बेहतर विश्व और बेहतरीन मानवीय स्थिति के लिए लालायित थे और उन्होंने मार्मिक ढंग से अपने भाव व्यक्त किए। गीतांजलि की बहुप्रशंसित कविता में कवि का सपना है, जहां मन इन चिरव्यापी विचारों और कार्यों से स्वतंत्रता के स्वर्ग की ओर बढ़ता है, मेरे पिता मेरे देश को जगा। भारत के सपने के बारे में एक लेख में गुरुदेव कहते हैं कि मैं भारत से प्रेम करता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं इस देश की पूजा करता हूँ, इसलिए भी नहीं कि मुझे यहाँ पैदा होने का अवसर मिला, बल्कि इसलिए कि इसने अशांतिपूर्ण समय में भी उन जीवंत शब्दों को सुरक्षित रखा है जो इसके सपूतों की प्रबुद्ध चेतना से निकले हैं। हम सब जानते हैं कि उन्होंने सपने को साकार करने के लिए ही विश्व भारती की स्थापना की थी। इसका श्री गणेश एक छोटे से स्कूल के रूप में हुआ, जहां वे बच्चों को अपने विचारों और विश्वासों के अनुसार शिक्षा देना चाहते थे। उनकी सतत देखभाल और साज सवार से यह स्कूल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। आज ये शिक्षा का अद्वितीय केंद्र है और संसार में अपनी तरह का अकेला केंद्र है।

चिंतक टैगोर के साथ कलाकार टैगोर के काव्य संगीत और चित्रकारी का संदर्भ दिए बिना उनके विचारों का उचित मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। हम सब जानते हैं कि टैगोर पांडित्य प्रदर्शन और नीरस बुद्धिवाद को पसंद नहीं करते थे। गीतांजलि में टैगोर कहते हैं कि आत्मत्याग में उसकी मुक्ति नहीं है। वे आनंद के हजारों बंधनों में स्वतंत्रता के आलिंगन का अनुभव करते हैं। उनकी मान्यता है कि कवि अपने आप को संसार से और मनुष्यों से अलग नहीं रख सकता। कवि के लिए मनुष्य का संतरास, कुरूपता और पीड़ा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की अन्य चीजें होती हैं। उन्होंने चित्रा की भूमिका में 1915 में कहा था कि लोग उन्हें आदर्शवादी समझते हैं जो केवल लोगों की आशाओं आकांक्षाओं की चर्चा करता है और जीवन का गुलाबी आशावादी चित्र खींचता है। वे आगे कहते हैं कि ये गलत है। ये एक सतत विचारधारा है जिसने उन्हें एक भयानक, अनोखा और विकृत संसार रचने के लिए उकसाया। पश्चिम द्वारा अफ्रीका की लूट खसोट के बारे में उन्होंने अपनी कविता में लिखा है कि मनुष्यों को फंसाने के फंदे के लिए वे चुपचाप तुम्हारे पास चले आए। ये शिकारी जिनका खूंखारपन तुम्हारे सघन जंगलों से भी गहन था, जिनका घमंड तुम्हारे अंधेरे जंगलों से भी अंधा था। सभ्य लोगों के बर्बर लालच ने अपनी निर्लज्ज मानवता को निर्वसन कर दिया। तुम्हारे जंगल की पगडंडी आंसुओं और रक्त से कीचड़ भरी हो गई। वे पीड़ा और मृत्यु की अवश्यम भाविता का वर्णन करते हैं, लेकिन साथ साथ उन्हें सहन करने की शक्ति की बात भी करते हैं, जो मनुष्य को नए गौरव के साथ प्रस्तुत करती है। टैगोर एक तरह से सत्य के अन्वेषक सिद्ध होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो एक स्थान पर टिक नहीं सकता, क्योंकि इससे वो निष्क्रिय हो जाता है। पथिक बनने के लिए उसे प्रशांत मार्ग का यात्री होना चाहिए। यदि व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता तो वो सत्य को नहीं पा सकता। लेकिन सत्य है कहाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। यदि हमें उत्तर ना भी मिले तो इसका ये मतलब नहीं कि हमें प्रयत्न नहीं करना चाहिए। टैगोर का सपना इस संघर्षपूर्ण संसार में रहने वाले कोटि कोटि लोगों को नई आशाएं और आकांक्षाएं प्रदान करता है। आइए विश्व कवि टैगोर को शत शत नमन करें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: भयानक महीना जब शराब का बिल मुनाफे से ज्यादा हो गया। क्या आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक अकेली फैक्ट्री ने एक बार शराब का इतना भयानक बिल बना दिया था कि वह उसके पूरे साल के निर्यात मूल्यों से भी अधिक हो गया। कंपनी के अभिलेखागार में अत्यधिक फिजूल खर्ची के इस दौर को द मॉन्स्टर्स मंथ यानी भयानक महीने के रूप में दर्ज किया गया है। इस राजकोषीय और शारीरिक अय्याशी का दृश्य सुमात्रा के अलग थलग पश्चिमी तट पर स्थित बैनकुलन, जिसे यार्क फोर्ट या फोर्ट मालबोरो के नाम से भी जाना जाता था। 18वीं सदी की शुरुआत में बैनकुलन अपनी जहरीली जलवायु और नगण्य व्यापार के लिए बदनाम था, जहां केवल अपमानित, दिवालिया या वास्तव में हताश लोगों को ही भेजा जाता था। इस मलेरिया वाले क्षेत्र से जीवित बचने वालों में जोसेफ कॉलेट भी शामिल थे, जो एक दिवालिया थे लेकिन अपने कार्यकाल के बाद अंततः मद्रास की काउंसिल के प्रेसिडेंट बने। हालांकि हर कोई कॉलेट की तरह इस उष्णकटिबंधीय कष्ट को सहन नहीं कर पाया। जुलाई 1716 में कॉलेट के कार्यकाल के अंतिम महीने में केवल 19 अनुबंधित कर्मचारियों, अर्थात वह व्यापारी जिन्हें कंपनी के खर्च पर भोजन करने का अधिकार था, कि एक छोटे से समूह ने सुमात्रा की कथित उदासी और तकलीफों को मिटाने के लिए भारी मात्रा में शराब का सहारा लिया। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने वास्तव में क्या पिया था? लंदन के डरे हुए निदेशकों के अनुसार, जिन्होंने बाद में खातों की बारीकी से जांच की, उनके अनुसार इन 19 पुरुषों ने 75 दर्जन महंगी वाइन बोतलें, जिनमें ज्यादातर महंगी क्लैरेट थी, बियर की 24 दर्जन बोतलें जिनमें खासकर बर्टन एलिस और पेल बियर, 164 गैलन गोवा ताड़ी, लगभग विशाल बैरल बटाविया अराक के साथ ही साथ मदिरा और शिराज वाइन की अतिरिक्त मात्रा शामिल थी। जब लिडेन हॉल स्ट्रीट के ऑडिटर्स ने आंकड़ों की गणना की तो वे दंग रह गए। केवल उस एक महीने में पी गई शराब की लागत पूरी फैक्ट्री द्वारा साल भर में निर्यात की गई काली मिर्च के कुल मूल्य से भी अधिक थी। निदेशकों ने एक तीखा पत्र भेजा, यह आश्चर्य जताते हुए कि इनमें से कोई भी कर्मचारी अब तक जीवित कैसे है। उन्होंने लिखा, हमें आश्चर्य है कि आप में से कोई भी 6 महीने भी जीवित रहता है और आप लोगों के बीच और अधिक झगड़े और द्वंद नहीं होते, यदि शराब का आधा हिस्सा भी आपने कटक लिया हो। उन्होंने सख्ती से आदेश दिया कि भविष्य में कर्मचारी अपनी मौज मस्ती का भुगतान स्वयं करें और कंपनी अब उनके स्वाद के लिए सब्सिडी नहीं देगी। लेकिन यहां एक अंतिम और विडंबनापूर्ण मोड़ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन कर्मचारियों को यह फटकार कभी मिली ही नहीं। जब तक पत्र सुमात्रा के तट पर पहुंचा, फोर्ट मालबोरो जलकर खाक हो चुका था। कर्मचारियों द्वारा वर्षों के उकसावे वाले व्यवहार और उत्पीड़न के कारण एक विशाल स्थानीय विद्रोह भड़क उठा था, जिसने जीवित बचे लोगों को अपनी जान बचाने के लिए समुद्र की लहरों के पार भागने पर मजबूर कर दिया। मॉन्स्टर्स मंथ इस बात की याद दिलाता है कि भले ही कंपनी व्यापारियों की एक संस्था थी, लेकिन इसके दुरुस्त ठिकाने अक्सर अय्याशी के विक्षुब्ध अड्डे थे, जहां पुरुष अपने निर्वासन की सड़ांद भरी वास्तविकता से बचने के लिए शाब्दिक रूप से कंपनी के मुनाफे को पी जाते थे।

0: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। आज बाल सभा का विषय है मन की गुल्लक।
1: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
0: बच्चों नमस्ते।
2: नमस्ते दीदी।
0: ओहो स्वागत है। आज स्टूडियो में तो एक बहुत प्यारी सी बच्ची भी है और इसका नाम है परीजा। और बच्चों मैं हूँ आपकी मनीषा दीदी। आज का ये समय मैं चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करें, क्योंकि बच्चों आज हम जिस विषय पर आपसे बात करने जा रहे हैं ना, वो सिर्फ एक आदत नहीं है बल्कि एक सोच है, एक तरीका है जीवन को देखने का। और आज की बाल सभा में मैं बचत की बातें करने वाली हूँ। अरे अरे अरे ठहरिए ठहरिए, जैसे ही मैंने बचत कहा आपके मन में क्या आया? एक गुल्लक आई ना जिसमें आप पैसे डालते हैं धीरे धीरे और अंदर जाकर सिक्का बोलता है टन, है ना। हर दिन आपको आदत पड़ जाती है थोड़े थोड़े से पैसे सिक्के मम्मी पापा से लेकर गुल्लक में डालने की। हम सब ने भी बचपन में कभी ना कभी गुल्लक रखी ही है और उसकी आवाज़ें भी सुनी हैं और उसमें सिक्के डालने का आनंद भी महसूस किया है और मिट्टी की गुल्लक को फोड़ने का भी अपना एक अलग ही मज़ा था। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी गुल्लक के बारे में बताने जा रही हूँ जो टूटती नहीं है, जो खोती नहीं है, जो दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा कीमती है, और वो है मन की गुल्लक। इस गुल्लक में आप पैसे नहीं रख सकते हैं लेकिन आप उसमें वो सब कुछ रख सकते हैं जो आपके जीवन को सुंदर बनाता है। आप उसमें रख सकते हैं अपने रिश्ते, अपनी यादें, अपनी आदतें, अपनी अच्छाइयाँ। और आज हम इसी मन की गुल्लक को भरने की बातचीत करेंगे। और इस बातचीत में मेरा साथ देने के लिए, पता है, बता ही दिया मैंने आपको कि परीजा आई है। परीजा एक बार फिर से नमस्ते।
2: नमस्ते दीदी।
0: परीजा अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे पास एक मन की गुल्लक है और तुम्हें उसमें कुछ कीमती चीजें संभाल कर रखनी है, तो उसमें तुम सबसे पहले क्या रखना चाहोगी?
2: दीदी मैं उसमें अपने दोस्त रखना चाहूंगी।
0: दोस्त? ये शब्द छोटा तो है लेकिन इसके पीछे कितनी सारी यादें छुपी होती हैं। स्कूल के दिन, एक साथ बैठना, एक ही टिफिन बांटना, बिना वजह हंसना। परीजा वैसे तुमने दोस्तों को ही क्यों चुना?
2: दीदी क्योंकि जब मैंने स्कूल बदला तो मेरे कुछ दोस्त मुझसे दूर हो गए। हम पहले रोज मिलते थे, अब कभी कभी ही बात होती है। अगर मेरे पास मन की गुल्लक होती तो मैं उन्हें उसमें संभाल कर रखती।
0: ओ, कितनी अच्छी और सच्ची बात है। हम सबके जीवन में ऐसा होता है परीजा, कभी हम आगे बढ़ जाते हैं और पीछे कुछ लोग छूट जाते हैं। लेकिन क्या सच में वो लोग जो छूट जाते हैं या हम उन्हें संभाल कर नहीं रख पाते, रिश्ते की गुल्लक की तरह ही होते हैं ना ऐसे लोग? अगर हम उसमें से रोज थोड़ा थोड़ा समय, थोड़ा थोड़ा प्यार, थोड़ी थोड़ी समझदारी डालते रहें तो वो हमेशा भरे रहते हैं, है ना। रिश्तों की गुल्लक ऐसी ही होती है, और अगर हम उन्हें नजरअंदाज कर देंगे तो वो रिश्तों की गुल्लक खाली होने लगेगी।
2: दीदी मैं अब अपने दोस्तों को फोन करूंगी।
0: हाँ परीजा, यही तो रिश्तों की बचत है बेटा। चीजों की बचत के बारे में अब हम बात करेंगे, लेकिन तुमने इतनी अच्छी बात कही है ना कि जब दोस्त दूर हो जाए, जैसे तुमने स्कूल बदला, तुम्हारे दोस्त दूर हो गए, लेकिन अब तुम्हें समझ में आया ना कि उन्हें रोज रोज नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक दो बार फोन करना चाहिए, तो बस रिश्ते बचे रहेंगे। यही है रिश्तों की सेविंग। अब हम जरा चीजों की बचत के बारे में बात करेंगे, क्यों परीजा?
2: जी दीदी।
0: अब परीजा अगर हम आसपास देखें तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, है ना, किताबें, कॉपियां, पेंसिल, रंग, लेकिन क्या हम सच में उनका पूरा उपयोग करते हैं?
2: नहीं दीदी, कभी कभी नहीं।
0: जैसे हमारी कॉपी अगर हम देखें तो एक कॉपी खत्म होने के बाद भी उसमें कई पन्ने खाली रह जाते हैं, हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम उन पेजेस को इकट्ठा करें तो क्या हो सकता है परीजा?
2: एक नई छोटी कॉपी बन सकती है।
0: जी बिल्कुल, और ये छोटी छोटी बातें हमारे अंदर बड़ी समझ पैदा करती हैं।
2: दीदी मैं अब कोई पन्ना बेकार नहीं जाने दूंगी।
0: और यही सोच धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। और अब पता है क्या बात बताने वाली हूँ मैं परीजा आपको?
2: क्या दीदी?
0: वो ये कि तुम आज मुझे कौन सी कहानी सुनाओगी?
2: दीदी मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है गोल।
0: अच्छा, ये गोल कहानी मेजर ध्यानचंद जी की कहानी है ना?
2: जी दीदी।
0: तो चलिए शुरू कीजिए, आज तो दो दो लोगों की कहानी आएगी, पहले मेजर ध्यानचंद की और फिर जो बच्चे बाल सभा सुन रहे हैं उन्हें पता है कि मैं भी उन्हें बहुत अच्छी कहानी पिछले कई दिनों से सुना रही हूँ, वो भी सुनाऊंगी, लेकिन पहले परीजा से सुनते हैं। शुरू कीजिए परीजा।
2: जी दीदी। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों में हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। सन 1933 की बात है, उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और माइनस टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनस टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में ही एक खिलाड़ी ने गुस्से से आकर हॉकी स्टिक से मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान के बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी के पीठ पर रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरे इतने कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता था कि मैं कब उसे सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी के पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरे बदला लेने का ढंग। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। मैं हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता का सबसे बड़े मंत्र हैं।
0: परीजा, तुम्हारी ये गोल कहानी तो मुझे बड़ी ही जबरदस्त लगी। और एक बात और है जो इस कहानी से निकल कर आया, हम बात कर रहे थे बचत की। आपको समझ में आया कि यहाँ मेजर ध्यानचंद जी ने भी एक चीज की बचत की?
2: जी दीदी।
0: किस चीज की बचत की? सोचो सोचो, मैं बताऊं?
2: जी दीदी।
0: उन्होंने बचत की अपने गुस्से की। चाहते तो वो भी हॉकी स्टिक से दूसरे खिलाड़ी को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को बचाया, व्यर्थ नहीं किया और उस गुस्से को कहाँ निकाला? गोल करके। क्या लिखा उन्होंने कि चाहता तो मैं इसे सिर्फ 2 गोल से हराता, लेकिन एक के बाद एक उन्होंने कितने गोल किए?
2: 6 गोल दीदी।
0: तो 6 गोल में उनका वो गुस्सा भी हो सकता है जो उन्होंने बचा कर रखा था। तो सिर्फ पैसे नहीं बचाए जाते बच्चों, बचाया जाता है दूसरों पर व्यर्थ किया जाने वाला समय भी। और यही चीजें जो छोटे छोटे से गुरु मंत्र बन जाते हैं वो क्या होते हैं? लगन, मेहनत, साधना, ये सब आपके लिए गुरु मंत्र बनते हैं। और आप हमेशा याद रखिए कि बदला हमेशा वो नहीं होता जो आप किसी के कर्म का तुरंत रिप्लाई करते हैं। जैसे मैंने सचिन तेंदुलकर जी के लिए भी हमेशा सुना है कि उनके लिए अगर कोई कुछ कहता था तो वो अपने बल्ले से जवाब देते थे, मैदान पर वो अपने बल्ले से ताकत दिखाते थे, है ना?
2: जी दीदी।
0: तो अब अपनी चीजों को भी बचाना है, वापस अपनी बात पर लौटाएं?
2: जी दीदी।
0: तो हमारी सोच को बदलने के लिए तुमने ये जो कहानी सुनाई है, ये छोटी सी बात थी, लेकिन सच तो ये है कि जीवन की इसमें बहुत बड़ी बड़ी सीख छुपी हुई थी। अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ। हम अपनी आदतों की भी बचत कर सकते हैं, अपने समय की भी बचत कर सकते हैं, अपने ऊर्जा की भी बचत कर सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, हम अपने शब्दों की भी बचत कर सकते हैं। परीजा
2: दीदी, शब्द कैसे बचते हैं?
0: जब हम बिना सोचे बोल देते हैं तो शब्द वापस नहीं आते। कहते हैं ना कि तीर कम घाव करता है, शब्दों के तीर ज्यादा घाव करते हैं। इसलिए हमें शब्दों को बहुत बचा कर रखना चाहिए, है ना? जब हम कुछ भी बोल रहे हैं तो थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा सोच लें, एक एक बार और सोच लें कि कहीं गलती से भी हम किसी को गलत तो नहीं बोल रहे हैं। और ये एक छोटी सी आदत कोई भी रिश्ता टूटने से बचा सकती है ना परीजा?
2: तो गुस्सा कम करना चाहिए?
0: हाँ बिल्कुल, गुस्सा बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि परीजा गुस्सा आना गलत नहीं है, लेकिन उसे संभालना बहुत जरूरी है। जैसे मेजर ध्यानचंद ने अपना गुस्सा व्यर्थ नहीं जाने दिया, उसे संभाल कर रखा, और जब वक्त आया तो क्या जवाब दिया उन्होंने, है ना? अब चलो हम आगे बढ़ें।
2: जी दीदी।
0: आज मैं बच्चों आपको फिर से ले चलती हूँ उसी किताब की तरफ। छोटी सी ये मेरे हाथ में किताब है, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, और आज हम आपको इसका जो अंश सुना रहे हैं वो है मैंने पर्वतारोहण सीखा। मैं नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में प्रवेश पाकर एक अच्छी पर्वतारोही बनने की इच्छुक थी। हालांकि मेरी माँ का विचार था कि ये काम लड़कियों के लिए बहुत ही जोखिम से भरा हुआ है, लेकिन मुझे अच्छी शिक्षा देने के लिए मेरे पिता द्वारा किए गए त्यागों को मैं कभी नहीं भूली थी। अब परिवार के लिए कुछ करने की बारी मेरी थी। मैंने अनेक कॉलेज में अध्यापिका की नौकरी के लिए आवेदन पत्र भेजे, लेकिन मुझे केवल कम वेतन वाले अस्थाई पदों के लिए ही उत्तर मिले, और वो भी केवल प्राइमरी स्तर के। मैं इतने परिश्रम से प्राप्त की गई अपनी शैक्षणिक योग्यता का अवमूल्यन करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए इन सब नौकरियों को मैंने स्वीकार नहीं किया। घर में खाली बैठने की बजाय मैंने नेहरू संस्थान के प्रारंभिक पर्वतारोही कोर्स में प्रवेश पाने के लिए आवेदन किया, लेकिन वहां पर उस वर्ष के सभी स्थान भरे जा चुके थे। मुझे अगले वर्ष प्रवेश मिल गया और मैंने वहां पर बर्फ और चट्टानों पर चढ़ने के तरीकों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। रैपलिंग के रोमांच का अनुभव किया। रैपलिंग का अर्थ है ऊंची खड़ी चट्टान अथवा हिमखंड से एक नायलॉन की रस्सी के सहारे कुछ ही क्षणों में नीचे आना। हमें शिविर लगाने के तरीके भी सिखाए गए और पर्वतीय शिखरों को सुरक्षित ढंग से पार करने के तरीके भी सिखाए गए। नेहरू संस्थान के उप प्रधानाचार्य मेजर प्रेम चंद प्रशिक्षण अधिकारी थे। वो बड़े कठोर प्रशिक्षक थे जो बहुत उच्च स्तर के प्रदर्शन की अपेक्षा करते थे। मैंने सोचा था कि शायद मैंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है कि मुझे रजत हिम पदक और एक प्रमाण पत्र तो मिलेगा ही, परंतु वास्तव में मुझे एक ग्रेड मिला था और मुझे उस कोर्स की सर्वोत्तम छात्रा घोषित किया गया था। उप प्रधानाचार्य ने अपनी रिपोर्ट में मुझे एवरेस्ट सामग्री के रूप में लिखा था। समय के उस दौर में मैंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब मैंने सुना कि इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन IMF 1984 में एवरेस्ट पर जाने के लिए एक मिले जुले अभियान की योजना बना रहा है और उनको पर्वतारोहण में प्रतिभावान और अनुभवी महिलाओं की तलाश है, तो मैंने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस स्तर में मैं दोनों में से कुछ भी होने का दावा नहीं कर सकती थी। इसलिए मैं IMF का पत्र पाकर आश्चर्यचकित रह गई। इसमें सूचित किया गया कि मुझे एवरेस्ट अभियान के लिए आयोजित जांच शिविर के लिए चुना गया है। मुझे इस बात की पुष्टि करने के लिए कहा गया था कि मैं शिविर में उपस्थित हूँ। उन्होंने किस तरह से एवरेस्ट पर मेरे जाने का विचार किया, क्योंकि मैंने तो बहुत कम पर्वतारोहण किया था। एवरेस्ट वास्तव में एक पहुंच से बाहर की चीज थी। इतने अधिक महत्वपूर्ण साहसिक कार्य के लिए अपनी योग्यता पर संदेह होने के कारण मैंने IMF के पत्र का उत्तर ही नहीं दिया। मैंने केवल आगामी प्रशिक्षण कोर्स के बारे में ही सोचा। अक्टूबर 1982 में मुझे एडवांस कोर्स के लिए खाली हुए एक स्थान में प्रवेश मिल गया। उस कोर्स में हमने चट्टान, बर्फ और हिम पर चढ़ने की और अधिक उच्च तकनीकें सीखी। हमें अभियान को आयोजित करने का भी प्रशिक्षण दिया गया। अधिक ऊंचाई के अनुभव के रूप में मैंने ब्लैक पीक अथवा काला नाग की चढ़ाई की। बच्चों, काला नाग 6,387 मीटर की ऊंचाई पर है। इस कोर्स में भी मुझे ए ग्रेड मिला और अभियानों में भाग लेने के लिए मेरी संस्तुति की गई। लगभग इसी समय मुझे एवरेस्ट के जांच कैंप में भाग लेने के लिए IMF की तरफ से दूसरा पत्र प्राप्त हुआ। जब मेरे प्रशिक्षकों को इस बात का पता चला कि मैंने IMF के पहले पत्र की उपेक्षा की और अब दूसरा पत्र मिला है, उन्होंने कहा, बच्छेंद्री, क्या तुम नहीं समझती कि ये एक सुनहरा अवसर खो रही हो? उनके कहने पर मैंने अपनी सहमति प्रदान कर दी। इसके बाद मैं एक बदली हुई इंसान थी। यदि IMF ने मुझे एवरेस्ट दल के लिए संभावित प्रत्याशी समझा था, मैं उसकी बात कैसे गिरा सकती थी? उत्साहपूर्वक मैंने आरोहण के लिए आवश्यक घरेलू अभ्यासों के लिए अपना नाम लिखवा कर दिया। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए मैं घास, चारे और सूखी लकड़ी के भारी से भारी गट्ठर उठाने लगी। मैं रोज आने जाने का रास्ता भी बदल देती थी। मैं और अधिक दुर्गम रास्ते और घाटियों से होकर निकलने लगी। जानबूझकर पत्थरों के ऊपर चलती अथवा सीधी खड़ी ढलाऊ चट्टानों से उतरती, जिससे कि मैं बेहतर संतुलन प्राप्त कर सकूं, ऊंचाई से डर निकाल सकूं और चक्कर आने से निजात पा सकूं। मेरी सभी क्रियाकलापों का उद्देश्य एक सच्चा दक्ष पर्वतारोही बनना था। 1982 के उत्तरार्ध में मैंने गंगोत्री के जांच कैंप में भाग लिया। मेरे प्रशिक्षक मेरे प्रदर्शन से बहुत प्रसन्न थे और इस प्रशिक्षण के दौरान मैंने गंगोत्री और रूड़गेरा की चढ़ाई की। मुझे अपनी आरोहण योग्यता में आत्मविश्वास मिला। इसके तुरंत बाद मुझे सूचना मिली कि सितंबर अक्टूबर 1983 में होने वाली अंतिम चयन शिविर के लिए मेरा नाम चयनित हुआ है। अगली बार, बच्चों, जब मैं आपको मिलूंगी तो इसका अगला भाग सुनाऊंगी। लेकिन इस भाग में जो खास बात थी ना बच्चों, वो ये थी कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उन्हें अपने ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था। अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने कितने कठिन कठिन रास्ते चुने, उन्होंने कितनी मेहनत की कि कैसे भी करके वो जहाँ भी जाएं उन्हें हर बार ए ग्रेड मिले, भले ही उन्हें उम्मीद हो या ना। आप देखिए, पहले कैंप से लेकर लास्ट कैंप तक जिसकी वो बात लिख रही हैं, उसमें हर जगह उन्हें ए ग्रेड मिला और एक बेहतर पर्वतारोही के लिए उन्हें चयनित किया गया। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत को बचा कर रखा, है ना, अपने गोल पर फोकस किया और उसमें जुट गई। मतलब वही बात है, मेहनत, लगन और अपने काम से सच्ची ईमानदारी। क्यों परीजा?
2: जी दीदी।
0: अच्छा लगा ना ये सुन के?
2: जी दीदी, बहुत अच्छा लगा।
0: तो चलिए फिर अब वापस लौटते हैं। हमने इस अंश में ये सुन लिया परीजा कि कैसे धैर्य, साहस और निरंतर प्रयास हमें ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, और यही बात हमारी फिर उसी बात पर लागू होती है, बचत पर। बचत हर दिन छोटे छोटे प्रयासों से बनती है ना। तो बच्चों, आज जब हम अपने दिन की शुरुआत करें तो एक बार अपने मन में जरूर झांक कर देखिएगा, क्या आपके मन की गुल्लक खाली है या उसमें कुछ रखा हुआ है? अगर खाली है तो आज से उसे भरना शुरू कीजिए। थोड़ा सा प्यार रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ी समझदारी रखिए और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके मन की गुल्लक हर कीमती चीज से भरती जा रही है।
2: दीदी, मेरी गुल्लक अब अच्छी चीजों से भर रही है।
0: ओ, तो तुम्हें बधाई हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है परीजा। तो परीजा की गुल्लक तो अब अच्छी चीजों से भर गई है। अब जरा, आपको याद ही है कि जब मनीषा दीदी पूरी बाल सभा कर लेती है तो आखिर में आपके साथ कुछ संकल्प लेती है, थोड़ा सा ध्यान, ठीक है? और ध्यान करने से क्या होता है, हमारा फोकस बहुत अच्छा होता है। तो चलिए आंखें बंद कर लीजिए, एक धीमे से

0: अब धीरे से अपने मन की गुल्लक में ये भी देखिए कि आप अपने दोस्तों को उसमें संभाल कर रख पा रहे हैं। कहीं आपके दोस्त आपसे बात बात पर नाराज तो नहीं हो रहे हैं। अब जरा अपने मन की गुल्लक में धीमे से ये देखिए कि बड़ों के प्रति आदर आपने उसमें संजो के रखा है या नहीं। हाँ, एक चीज और ध्यान से देखिए उस गुल्लक में। आपने वो जो नानी और दादी को चिट्ठी लिखी थी वो संभाली है कि नहीं, जो पिछली बार बाल सभा में मैंने लिखने को कहा था। अब ये भी देख लीजिए कि आप किसी चीज को व्यर्थ तो नहीं कर रहे हैं, भले ही वो एक छोटा सा कागज ही क्यों ना हो। अब थोड़ा सा उस गुल्लक में ये भी ध्यान दीजिए कि आप समय का भी सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं। अगर आपकी मन की गुल्लक अच्छी चीजों से भरी रहेगी तो आप एक बहुत अच्छे, प्यारे से, आत्मविश्वासी, बेहतरीन नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो बस आज संकल्प भी पूरे हो चुके हैं और अब चलने का वक्त आ गया है। तो आज से आपको बचत का अर्थ सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि अपनी छोटी छोटी चीजों से, अपनी छोटी छोटी आदतों का भी ध्यान रखना है ना? क्यों परीजा?
1: जी दीदी।
0: तो अब चलें परीजा?
1: जी दीदी।
0: तो बच्चों, अगले सप्ताह कुछ नई बातें, नए विषयों के साथ लौटेंगे, लेकिन अभी अनुमति दीजिए मनीषा को और मेरे साथ
1: परीजा को।
0: बच्चों नमस्ते।
1: नमस्ते दीदी।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय था मन की गुल्लक। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम और मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
2: बाल सभा।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: बेरेनिका, वह रेगिस्तानी एम्पोरियम जहां रोमन सिक्कों का मिलन भारतीय रेशम से हुआ, मिस्र के तपते पूर्वी रेगिस्तान में जहां लाल रेत और लाल सागर का गहरा नीला पानी मिलते हैं। कभी एक ऐसा शहर बसा था जिसने अपने उजाड़ परिवेश को चुनौती दी थी। यह था बेरेनिका, एक ऐसी जगह जहां रोम का वैभव पूर्व के रहस्यों से मिलता था। 275 ईसा पूर्व में टॉलेमी द्वितीय द्वारा स्थापित और उनकी मां के नाम पर रखा गया यह शहर विलासिता के केंद्र के रूप में नहीं बल्कि एक सैन्य चौकी के रूप में शुरू हुआ था, जिसे अफ्रीकी युद्ध हाथियों को मिस्र लाने के लिए बनाया गया था। 30 ईसा पूर्व में मिस्र पर रोमन विजय के बाद यह दूरस्थ बंदरगाह प्राचीन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और सक्रिय एम्पोरियम में से एक में बदल गया। इस शहर के अविश्वसनीय उत्थान की कुंजी यूनानी हिप्पुल्स जैसे नाविकों द्वारा मानसून की हवाओं की खोज में छिपी थी, जिसने जहाजों को तट के किनारे रेंगने के बजाय सीधे खुले अरब सागर के पार जाने की अनुमति दी। पहली शताब्दी ईस्वी के दौरान बंदरगाह के दृश्य की कल्पना कीजिए। घाट उन विशाल जहाजों के आगमन से हलचल में रहे होंगे जो भारत के मसालों से समृद्ध बंदरगाहों से दक्षिण पश्चिमी मानसून की सवारी करके अभी अभी पहुंचे थे। रोमन व्यापारी जिनकी जेबें सोने और चांदी के सिक्कों से भरी थीं, लोबान और लोहबान की महक

से भरी हवाओं के बीच घूमते थे। यहां रोमन अभिजात वर्ग की सबसे प्रतिष्ठित विलासिता, चीन से आने वाला चमकता रेशम, उस शाही मुद्रा के बदले खरीदा जाता था जिसने साम्राज्य की वैश्विक पहुंच को ईंधन दिया था। बेरिनिका के अब छोड़े जा चुके स्थल पर मिले खजानों की विविधता अभूतपूर्व जुड़ाव की कहानी बयान करती है। पुरातत्वविदों ने भारत से बड़ी मात्रा में आई सागौन की लकड़ी बरामद की है, जिसे संभवतः समुद्र पार करने वाले जहाजों से दोबारा उपयोग के लिए निकाला गया था। इसके साथ ही सुदूर पूर्वी जावा के कांच के मनके भी मिले हैं। उन्हें ऐसे एम्फोरा यानी मिट्टी के पात्र मिले जिनमें कभी भूमध्य सागरीय शराब और जैतून का तेल लाया गया था, जो विदेशी व्यापारियों और बस्तियों की मेजों के लिए नियत थे। शायद सबसे जीवंत खोज 16 पाउंड भारतीय काली मिर्च से भरा एक जार था, एक ऐसा पुरातात्विक खजाना जो प्राचीन मसाला व्यापार के पैमाने को रेखांकित करता है। लेकिन बेरिनिका केवल माल ढोने की जगह से कहीं अधिक थी। यह एक जीवंत बहुजातीय संस्कृतियों का संगम था। इसकी रेगिस्तानी सड़कों पर चलते हुए कोई भी विभिन्न भाषाओं का एक संगीत सुन सकता था। स्थानीय पत्थरों पर खुदे हुए भित्ति लेख आम आदमी के साहित्य को दर्शाते हैं, जिसमें दक्षिण अरबियों, सीरियाई रेगिस्तान के पलमायरेन, इथियोपिया के ऊंचे इलाकों के एक्सुमाइटस और भारत के दक्षिणी छोर के तमिल भाषी लोगों की उपस्थिति का पता चलता है। इस विविधता के बीच देवी एफ्रोडाइट की मूर्तियां एक परिचित ग्रीको रोमन सुकून के रूप में खड़ी थीं, एक ऐसे शहर में जहां दुनिया की संस्कृतियों का मिलन होता था। इस रेगिस्तानी एम्पोरियम ने साबित कर दिया कि प्राचीन दुनिया इतिहास की किताबों के सुझावों की तुलना में कहीं अधिक वैश्विक थी। बेरिनिका वह अनिवार्य प्रवेश द्वार था जहां लाल सागर एक विशाल बहुकेंद्रित ऐतिहासिक इकाई में खुलता था, जो पूर्व में हजारों मील तक फैली हुई थी। यह उस समय का प्रमाण है जब मिस्र की रेत का एक सुदूर टुकड़ा एक परस्पर जुड़ी दुनिया की धड़कन के रूप में कार्य करता था, जो मौसमी हवाओं और विनिमय की साझा मानवीय इच्छा से एकजुट था।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। और जैसा कि कार्यक्रम के नाम से ही जाहिर है कि हम आपसे इस कार्यक्रम में भारतीय सशस्त्र सेनाओं से जुड़े हर उस पहलू को छूकर देखना चाहते हैं, जिससे कि हम हमारी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को, उसकी कार्यशैली को, उसकी क्षमताओं को और उसके इतिहास को जानकर उस पर गर्व कर सकें और उससे प्रेरित हो सकें। और जैसा कि आप ये जानते हैं कि कार्यक्रम में सिलसिला चल रहा है भारतीय सेना के इतिहास को जानने का और उसे समझने का, तो आज इसी सिलसिले में हम बात करेंगे सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की। श्रोताओ, ये युद्ध भारतीय सेना ही नहीं वरन आजादी के बाद भारत के इतिहास में भी स्वर्णिम महत्व रखता है। पूरी दुनिया के समक्ष भारत को एक मजबूत और सशक्त राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करने में इस युद्ध ने अपनी महती भूमिका निभाई और इसका श्रेय जाता है भारतीय सेना के तीनों अंगों, यानी हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स और हमारी नेवी, तीनों के बेहतरीन समन्वय को, जिसने सन 1971 के इस युद्ध में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और देश को गर्व और अद्भुत आत्मविश्वास से भर दिया। श्रोताओं, ज्यादा समय न लेते हुए आइए जानते हैं 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की कहानी लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा की जुबानी, जिन्होंने लगभग 2 दशकों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व में।
2: जय हिंद पूर्वा जी, जय हिंद श्रोताओं। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से जो है इसका इंट्रोडक्शन दिया है।
1: धन्यवाद सर।
2: एंड इन अ वे यू हैड एक्चुअली समराइज द होल थिंग।
1: अच्छा,
2: वेरी नाइसली
1: जी, धन्यवाद।
2: यू आर वेरी करेक्ट जब आपने बोला कि ये जो युद्ध था
1: जी,
2: ये एक निर्णायक युद्ध था जिसमें कि भारतीय सेना बिना संदेह के मतलब विजयी रही थी। और इसका कारण, जैसे कि आपने अभी बोला, इट वाज अ यूनिक एग्जांपल ऑफ कॉमरेडशिप, जॉइंट मैनशिप, लीडरशिप एंड करेज ऑफ ऑल द 3 आर्म्स, दैट इज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड द लीडरशिप ऑफ कोर्स, जिसके कारण कि हमें इसमें विजय प्राप्त हुई थी। और इस वॉर ने जो है एक नए नेशन को जन्म दिया, क्योंकि हम सब जानते हैं जिसका नाम बांग्लादेश है। ये है तो ये जो वॉर था, एक्चुअली इट कंटिन्यूड फॉर 14 डेज, 14 दिन का वॉर था ये। 3 दिसंबर को शुरू हुआ था और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान ने हमारे वेस्टर्न सेक्टर के एयरफील्ड्स के ऊपर। और 14 दिन के बाद, यानी कि 17 दिसंबर को जो है 71 को, विद द डिफीट ऑफ पाकिस्तान, सीज फायर डिक्लेयर होने के बाद ये युद्ध खत्म हुआ था।
1: तो सर, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि सन 1971 में ये भारत पाकिस्तान युद्ध की ऐसी क्या परिस्थितियाँ बनी कि मतलब 2 बार हम पहले भी भिड़ चुके थे, उसके बाद ये तीसरी बार ऐसा क्या रहा कि हम फिर से आमने सामने आ गए?
2: बिल्कुल, इसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। जैसे कि मैं बता रहा था कि इट वाज अ डेफिनेट विक्ट्री और इसमें पाकिस्तान के मतलब जो है ऑलमोस्ट 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था एंड उनको प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया गया था ईस्टर्न पाकिस्तान में। वेस्ट पाकिस्तान, मतलब ये जो वेस्टर्न सेक्टर है हमारा, वेस्ट पाकिस्तान का एरिया है, इसमें भी एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की टेरिटरी जो है जिसके ऊपर इंडियन आर्मी ने कब्जा किया था। एंड इस युद्ध में देखिए, था तो 14 दिन का, लेकिन कितना इंटेंस था वो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें ऑलमोस्ट 3,000 सोल्जर्स आर्मी नेवी एयरफोर्स में ऑफिसर्स जेसीएस वार ने अपने प्राणों का बलिदान दिया।
1: मतलब इतने कम दिनों में,
2: इतने कम दिनों
1: में इतना ज्यादा हमने जो हानि है उसको देखा युद्ध
2: और इवन 12,000 के करीब जो है जो सोल्जर्स थे सेम अगेन ऑफिसर जैसे सुवार जो थे वो वाउंडेड हुए जो है घायल हुए इसमें. और इट अगेन आई विल एम्फसाइज ऑन द सेम थिंग कि इतना इंटेंस था कि 600 से ज्यादा ऑफिसर्स जैसे सुवास को जो है गैलेंट्री अवार्ड्स मिले थे इसमें, जिसमें कि 4 परमवीर चक्र थे, 76 महावीर चक्र थे और 513 जो है वीर चक्र थे. इसके अलावा और भी काफी जो है अवार्ड्स मिले थे. तो ये दर्शाता है कि कितना इंटेंस वॉर था और ये पहला वॉर था जिसको कि हमने दोनों फ्रंट पे लड़ा, वेस्टर्न फ्रंट पे भी लड़ा, ईस्टर्न फ्रंट पे भी लड़ा. और अगेन इट वाज़ द फर्स्ट वॉर जिसमें कि तीनों जो हमारी सेनाओं की अंग है उन्होंने पार्टिसिपेट किया और एक साथ मिलकर जो है इसको युद्ध को लड़ा था. तो वॉर तो 17 दिसंबर को जैसे मैंने बोला सीज फायर के बाद खत्म हो गया था, लेकिन फाइनली मतलब वी कैन से कि द चैप्टर क्लोज्ड आफ्टर द साइनिंग ऑफ शिमला एग्रीमेंट ऑन 2 जुलाई इन 1972. ठीक है, इसके लिए जैसे आपने अभी खुद ही पूछा कि ऐसा क्या कारण था कि हमें तीसरी बार जो हमारी लड़ाई हुई तो इसके लिए हमको थोड़े से ना हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखने पड़ेंगे. अच्छा। हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में विचरना पड़ेगा कि जो पीछे जाना पड़ेगा. तो हम शुरुआत करते हैं जब हमारे देश को आजादी मिली थी. तो आप हम सभी को विदित है कि जब आजादी मिली थी तो पाकिस्तान का जन्म हुआ था. अब पाकिस्तान का जन्म इस तरह से हुआ था कि वेस्ट पाकिस्तान था, एक ईस्ट पाकिस्तान था. तो वेस्ट पाकिस्तान जो था वो वेस्ट पंजाब यानी कि हमारे पंजाब के आधे हिस्से पंजाब को डिवाइड कर दिया था. वेस्ट पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान को मिला के जो है वेस्ट पाकिस्तान बना. और ईस्ट पाकिस्तान है जो बंगाल प्रोविंस था उसको दो टुकड़े करे हुए थे और सिलेट डिस्ट्रिक्ट जो था असम का उसको मिला के जो है ये ईस्ट बंगाल बना. अब ये दो विंग तो इन्होंने बना दिया. अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो थे तकरीबन 1600 किलोमीटर थी.
1: अच्छा।
2: और लैंड कम्युनिकेशन तो था नहीं क्योंकि बीच में भारत था. तो इनके पास जो जाने का रास्ता या तो बाय एयर था या बाय सी होता था. ठीक है, तो अब इतनी दूरी जो ये दूरी थी फिजिकल जो ये दूरी थी ये इसने इनके कारण इनके दिलों में भी दूरी थी.
1: जी बिल्कुल.
2: और उसका एक और कारण और भी कई कारण तो कई थे लेकिन एक मेजर था देखें अगर हम तो सिर्फ एक रिलीजन था जो उनके बीच में कॉमन लिंक था यानी कि दोनों जो हिस्से थे वो दोनों मुस्लिम थे.
1: धर्म
2: के आधार पर जुड़े हुए थे. अदरवाइज अगर आप देखें तो उनका कल्चर, उनकी हिस्ट्री, उनकी लैंग्वेज, लिटरेचर, इकोनॉमिकल कंडीशंस, हर एक कुछ अलग था. भी देखते हैं हम जैसे बांग्लादेश जो है उसका इंक्लिनेशन अगर कल्चर वाइज देखे तो हमारे वेस्ट बंगाल से मिलता है पूरा का पूरा. और वैसे ही अगर आप वेस्ट पाकिस्तान देखे तो उनका कल्चर जो है पंजाब और इवन मिडिल ईस्ट उस तरफ से मिलता है. ठीक है, तो इट वाज अ वास्ट डिफरेंस, बहुत ही मेजर डिफरेंस था दोनों के बीच में. अगर आप ज्योग्राफिकली भी अगर आप देखते हैं तो वेस्ट पाकिस्तान यानी कि जिसको अभी हम पाकिस्तान बोलते हैं पाकिस्तान है वो अगर देखे तो आप इट इज मोर अकिन टू लाइक मिडिल ईस्ट कंट्रीज, ईरान, इराक, अफगानिस्तान उस तरह है. और अगर हम ईस्ट मतलब बांग्लादेश को देखेंगे जिसको कि उस समय ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे उसका इंक्लिनेशन देखे ज्यादा साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज की तरफ ज्यादा है. तो किसी उस समय मतलब इसको डिस्क्राइब किया जाता था किसी ने कहा था कि वेयर वेस्ट पाकिस्तान एंड्स मिडिल ईस्ट बिगिंस एंड वेयर ईस्ट पाकिस्तान एंड्स साउथ ईस्ट एशिया बिगिंस. दैट्स वेरी करेक्ट ज्योग्राफिकली इफ यू सी, बिल्कुल सही बोला गया है. तो ये जैसे मैंने अभी बताया कि इन दोनों हिस्सों में कंट्री के काफी डिस्पैरिटीज थी और ये सिर्फ लिटरेचर और अदर फील्ड में नहीं थी, इवन इकोनॉमिकल कंडीशंस इनकी दोनों के अलग अलग थी. वेस्ट पाकिस्तान जो है यानी कि पाकिस्तान वो काफी समृद्ध था एंड मैक्सिमम जो उनकी इकोनॉमिकल जो कंडीशन थी काफी अच्छी थी एज कम्पेयर टू ईस्ट पाकिस्तान. एजुकेशन वाइज ऑल्सो दे वर मच बेटर एंड वेस्ट पाकिस्तान इनफैक्ट डोमिनेटेड इन एवरीथिंग. वो हर तरह से ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेट करता था और उन्होंने एक तरह से एक्चुअली ईस्ट पाकिस्तान को कभी अपना हिस्सा नहीं माना और ना ही उन्होंने कभी इस बात पे ध्यान दिया कि इनके इनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा करना चाहिए,
1: इनका विकास होना चाहिए.
2: ठीक है, और ऐसा नहीं था जबकि अगर आप देखें बांग्लादेश और उस समय कहीं ईस्ट पाकिस्तान इट वाज अ वेरी फर्टाइल लैंड. आज भी है इंडस्ट्रियल वाइज ऑल्सो पोर्ट्स थे उसके पास. तो व्यापार के लिए मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए काफी अच्छा हुआ था, बट समहाउ दे नेवर पेड अटेंशन तो है। इनफैक्ट इसमें जो वेस्ट पाकिस्तान की एंटायर ब्यूरोक्रेसी थी, उनके टॉप मिलिट्री ब्रास थे, पॉलिटिकल लीडरशिप थी, यहाँ तक कि जो एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी भी थी वो भी एक तरह से मतलब सब मिलकर यूनानिमस थे कि भाई इनको जो है ईस्ट पाकिस्तान को हम कोई रीजनल ऑटोनॉमी नहीं दे सकते हैं, ना ही हम देंगे। अच्छा। मतलब उनका एक्सेप्टेंस नहीं था पार्लियामेंट में भी, यहाँ तक कि आप ये देखिए कि ईस्ट पाकिस्तान को भी जो ब्यूरोक्रेट्स जो आर्मी अफसोस कमांड कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, वो भी मतलब वेस्ट पाकिस्तान के थे, उन्होंने वहाँ के लोकल्स को कभी भी इन्वॉल्व नहीं किया। तो इसके कारण क्या था कि काफी बिटरनेस थी,
1: एक असंतोष तो पैदा होगा,
2: एक असंतोष तो पैदा होता ही है ना, जैसे कि और ये कहीं पे भी हो सकता है।
1: जी बिल्कुल।
2: तो अगर एक और चीज जो थी जो हमने देखी है हिस्ट्री में, देखा है कि जब से पाकिस्तान अस्तित्व में आया है ज्यादातर टाइम वो मिलिट्री रूल में रहा है।
1: जी बिल्कुल।
2: तो इन 69 में जो जनरल याहिया खान थे मिलिट्री रूलर थे, उन्होंने कहा कि डिक्लेयर किया कि इलेक्शंस कराएंगे कंट्री में और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है मतलब बनाएंगे, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को बनाएंगे। तो ये इलेक्शन जो थे दिसंबर में करने थे। अब इसमें जो दिसंबर में जब इलेक्शंस हुए तो वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो साहब की जो पार्टी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो विजयी हुई, और ईस्ट पाकिस्तान में जो है अवामी लीग कि मुजब्बिर रहमान साहब की जो पार्टी थी वो बिल्कुल क्लीन स्वीप के साथ आई थी। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि नंबर वाइज जो सीट वाइज देखा जाए तो जो अवामी लीग थी उनके पास पीपीपी से ज्यादा सीट्स थी,
1: ज्यादा थी।
2: तो अच्छा। हक उनका बना कि वो गवर्नमेंट बनाए।
1: ओके, अच्छा अच्छा।
2: अब ये बात जो है वेस्ट पाकिस्तान को स्वीकार ही नहीं थी कि भाई ईस्ट पाकिस्तान वालों को हमारे ऊपर रूल करने के लिए गवर्नमेंट बनाने का हक दिया जाए। तो अब एक डलाइमा आ गया। अब जब जैसे मैंने अभी अभी जिक्र किया ना, तो मिलिट्री ब्रास ना वहाँ की इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी ना जो है पॉलिटिकल लीडर्स कोई भी तैयार नहीं हो रहा था,
1: स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे।
2: तो अब वो क्या किया, उन्होंने टालना शुरू कर दिया।
1: अच्छा।
2: कि जो है उसको पोस्टपोन करना शुरू किया, गवर्नमेंट नहीं बनाई। तो ये जब होने लगा तो नेचुरल है कि मुजब्बिर रहमान साहब जो थे अवामी लीग जो थी उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने कहा जब हमें एक पूर्ण बहुमत मिला है तो हमें गवर्नमेंट बनाने का हक दिया जाए। इसके लिए फिर जो है उन्होंने क्या किया, एक मिलिट्री क्रैकडाउन किया, मतलब इन द सेंस इनको विद्रोह बोल के इनको दबाना शुरू कर दिया। एंड 25 मार्च 1971 में उस समय जनरल टिक्का खान जो थे तो ही वॉज इन बांग्लादेश कंट्रोल कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो उन्होंने जो है पूरी तरह से मिलिट्री जो है क्रैकडाउन लॉन्च किया, जिसमें कि जितनी पॉपुलेटेड सिटीज थी, ढाका हो गया, चित्तगांव हो गया और इम्पोर्टेंट टाउन थे, उसमें उन्होंने ब्रूटली जो है लोगों को मारा।
1: अच्छा।
2: तो ये अवामी लीग के जितने सपोर्टर्स वगैरह थे सबको उन्होंने जो है मतलब शॉट डाउन किया, मतलब दे किल्ड देम, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय करी आर्मी ने। फिर उसके बाद जो है जैसा कि होता है, इवन उसके बाद मतलब जो ये किलिंग्स थी इट फॉलोड बाय लूट, ठीक है, रेप, आर्सन, मतलब काफी उन्होंने जो है इनको नुकसान पहुंचाया। इवन पाकिस्तान एयरफोर्स से जो उनके ठिकाने थे इनके अवामी लीग के रेजिस्टेंस के, तो इनके ऊपर बम्बार्डिंग भी कराई है। तो आप समझ सकते हैं कि एक अपना ही देश है, अपने देश के ऊपर जो है हाँ इस तरह से जो है करना शुरू किया। और ये चलता रहा तो अप्रैल तक जो है पाकिस्तान रूलर्स ने बोला कि भाई अभी जो है हमने सिचुएशन कंट्रोल कर ली है इस पाकिस्तान में, और जो अपराइजिंग थी जिसको अपराइजिंग बोल रहे थे और रिवोल्ट था उसको हमने खत्म कर दिया है। बट एक तरह से देखा जाए तो तक जो ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे वो ये मन बना चुके थे कि हम अब वेस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे। और ये जो है एक तरह से उनके रिवोल्ट की जो अपराइजिंग थी एक तरह से शुरुआत कहलाई वहां से, क्योंकि जब आपने उनको इतना दबा दिया, इतनी एट्रोसिटीज कर दी हैं, तो वो जो है किसी भी तरह से अब पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तो ये जो इलेक्टेड मेंबर्स है अवामी लीग के, इन्होंने शरण ली इंडिया में।
1: अच्छा।
2: जी, ये सारे के सारे जो है इंडिया में आए, और अप्रैल में इन्होंने क्या किया, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट डिक्लेयर करी।
1: अच्छा।
2: जिसमें कि बांग्लादेश, उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश डिक्लेयर किया,
1: यहाँ भारत से
2: जो है डिक्लेयर किया। इस बीच में जो था कि जनरल टिक्का खान से जनरल लेफ्टिनेंट जनरल ए के न्यायजी थे
1: जी,
2: उन्होंने टेक ओवर कर लिया था। अब उनको ये टास्क दिया गया कि आप कुछ भी हो जाए इसको खत्म करना है, ये रेबल्स जो हैं ये खत्म करना है, किसी भी हालत में जो है इस पाकिस्तान को नहीं अलग होने
1: दिया, विद्रोह को दबा दिया,
2: विद्रोह को दबाया जाए। तो मेजर क्रैकडाउन बिगिन अगेन, जिसमें कि बहुत ज्यादा उन्होंने कैजुअल्टीज करने शुरू करी सिविलियंस पे। अब ऐसे में क्या होता है, सिविलियंस सारे के सारे जो है भागने शुरू हुए। अब इन्होंने सबने क्या किया, उनके लिए ठिकाना क्या था, कहाँ आना, शरण लेने के लिए इंडिया में। एक वक्त ऐसा आ गया कि इंडिया में ऑलमोस्ट 1 करोड़ बांग्लादेशी हो गए। अब उस समय हमारी भी इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम 1 करोड़ लोगों को या 93 लाख लोगों को खिला सके, तो इट क्रिएटेड है डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर इवन इंडिया ऑल्सो। तो फिर इंडिया ने जो है, कंट्री ने जो है पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन पास किया, जिसमें कि उन्होंने ये पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, पाकिस्तान आर्मी ने जो बांग्लादेशी पे एट्रोसिटीज करी हैं उसके अगेंस्ट जो है आवाज उठाई। ठीक है, फिर इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम जो है इस पाकिस्तान को पॉलिटिकली, मिलिट्रीली, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स में सपोर्ट करेंगे।
1: अच्छा,
2: जो है एक तरह से मतलब जो है ये डिसाइड किया गया। तो अब इस बीच में क्या हुआ कि इस पाकिस्तान में कंडीशंस और भी ज्यादा खराब होनी शुरू हो गई। एंड जब इतना ज्यादा मतलब होने लगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी
1: जी,
2: जिसको कि अप्रैल में एस्टैब्लिश हुई, जिसको मुक्ति वाहिनी बोलते हैं।
1: अच्छा,
2: आप लोगों ने भी काफी उसका नाम सुना होगा, मुक्ति वाहिनी। तो इसका जन्म जो हुआ वो ये क्रैकडाउन के बाद हुआ
1: जो है, जो सशस्त्र जो उनका विंग था
2: जी,
1: वो मुक्ति वाहिनी कहलाए शायद, मेरे ख्याल से सर,
2: अवामी लीग का
1: जी,
2: एक तरह से, although it was an independent organization,
1: जी,
2: लेकिन ये पूरी तरह से आप जैसे आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, एक तरह से वो इनका सशस्त्र विंग ही था
1: जी।
2: अब इसमें क्या है, काफी ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया क्योंकि इसमें जितने भी आर्म फोर्सेस के लोग थे जो आए थे, पुलिस के लोग थे, तो वो सारे के सारे ट्रेन जो लोग थे वो इसमें शामिल थे,
1: ईस्ट बंगाल के जो थे,
2: ईस्ट बंगाल के जो थे वो इसमें शामिल थे। आप ये समझ सकते हैं कि जब नवंबर के टाइम पे जब लड़ाई का वक्त आ रहा था, दिसंबर जो शुरू हुई थी, उस समय इनके पास तकरीबन जो है 83,000 to 85,000 मतलब सोल्जर्स थे मुक्ति वाहिनी में। तो इसको ट्रेनिंग दी थी इंडियन आर्मी ने, ट्रेनिंग दी थी, इनको हथियार दिए थे।
1: अच्छा।
2: और इन्होंने काफी अच्छा रोल प्ले किया जब हमने जो है इस मतलब पाकिस्तान में बांग्लादेश के लिए जब हमने वॉर लड़ा है।
1: अच्छा।
2: उस समय इनका काफी सपोर्ट रहा जी, क्योंकि इनको डेफिनेटली इनको टेरेन के बारे में मालूम था, इनको जो है बाकी पाकिस्तान आर्मी के बारे में मालूम था, इन्फॉर्मेशन जो है काफी मतलब जो है गाइड के लिए कहाँ से जाना है, किधर से जाना है। यू नो बांग्लादेश इज अ वेरी यूनिक कंट्री इन द सेंस, वहाँ पे बहुत मेजर रिवर्स जाती हैं, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, तो अगर आप देखें सब उधर जाती हैं, तो ये एक मेजर लैंडमार्क्स होते हैं इन द सेंस कि नदी को कैसे पार करना है, कहाँ पार करना है, और बहुत सारे वो बहुत बड़े ऑब्स्टिकल्स बनते थे, इसमें उनका गाइडेंस बहुत काम आया। तो ये जो चल रहा था
1: जी,
2: अब मुक्ति वाहिनी जो थी वो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक करती थी, उनको वो एक तरह से जो है जहाँ जहाँ उनकी पोस्ट होती थी उस पे मतलब जो है हिट एंड रन रहता था, अटैक्स करते थे
1: जी।
2: और उसके बाद वो क्या करते थे, जो गरिलास और फिर कितना था।
1: अच्छा।
2: तो वो इंडिया में आते थे तो उसका पीछा करते हुए कई बार जो है पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडियन टेरिटरी में आने लग गए। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर के ऊपर काफी ज्यादा स्कर्मिशेस, तनाव होना शुरू हो गया, क्योंकि तो भाई वो आ रहे हैं तो हम जा रहे हैं। उसके बाद जब ऐसा हुआ कि उन्होंने हमारी पोस्ट पे फायर करना शुरू कर दिया, जब पोस्ट पे फायरिंग शुरू हुई तो फिर इंडियन आर्मी भी जो है जाके जो है अंदर जाके उनसे लड़ने जवाब देने लगी। अच्छा, इस बीच में अगर आप देखें पॉलिटिकल लेवल पे भी, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी काफी ज्यादा एक्टिविटीज चल रही थी, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान वाज नॉट एबल टू कंट्रोल ईस्ट पाकिस्तान एट ऑल, वो तो मतलब एक तरह से बिल्कुल साफ दिख रहा था। लेकिन जो पाकिस्तान को ये था कि जब ऐसा कुछ अगर इंडिया अटैक करता है तो एक तो चाइना उसको सपोर्ट करेगा और अमेरिका सपोर्ट करेगा। समाउ इन बिटवीन लाइक वी हैड वेरी गुड रिलेशनशिप विद रशिया, तो ये जो एस्पेक्ट था अमेरिका वाला ये तो मतलब नहीं आया
1: जी,
2: और चाइना ऑल्सो नेवर प्लेड एनी एक्टिव रोल। चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया लेकिन उसने अपना फ्रंट नहीं खोला था, जो हमारे लिए अच्छी बात रही थी क्योंकि हम दोनों फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय हम देखिए ऑलमोस्ट पूरी कंट्री में अभी तक जितने हमने वॉर देखे हैं वो एक मतलब एक लिमिटेड जगह पे हमको लगता था कि जैसे पंजाब में हो रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है ऊपर कश्मीर में हो रहा है, ये थोड़ा यहाँ तो मतलब नेवी भी फाइट में कर रही है, और पूरा का पूरा राजस्थान पंजाब ऊपर जो है के बॉर्डर जो है ऐसे मतलब एवरीथिंग वाज एक्टिव। तो उस समय कम से कम अगर अरुणाचल और ये नहीं थे
1: जी,
2: तो बाकी अदरवाइज इंडिया वाज फाइटिंग वॉर ऑन
1: बोथ द पूरी सीमा पर ही लड़ाई चल रही थी,
2: सीमा पे लड़ाई चल रही थी। तो ये जो है छोटे छोटे जो रिटेलिएटरी एक्शंस हो रहे थे और बॉर्डर्स के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो उसमें फिर जो मई मंथ में जो है आर्मी टुक ओवर द बॉर्डर इन ईस्ट पाकिस्तान, बीएसएफ के पास होता है, तो उसे उन्होंने टेक ओवर कर लिया था ताकि उनको, क्योंकि लग रहा था कि हालात काफी बिगड़ चुके हैं। एंड फाइनली मतलब जो है ये जो लड़ाई थी आपस में, इट लेड टू वॉर ऑफ 1971। तो पूरी तरह से अगर हम देखें तो ये एक डिसकंटेंटमेंट था ईस्ट पाकिस्तान का, बांग्लादेशी का अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है, जिसके कारण जो है ये लड़ाई हुई।
1: एक तरह से दोनों ही देशों के बीच में भारत आ गया,
2: भारत की है, भारत था ज्योग्राफिकली भी था, ठीक है, पॉलिटिकली भी आ गया एंड जो है फिर लड़ाई में भी आया। तो ये एक मतलब दीज आर द सम ऑफ द रीजंस जिसके कारण ये युद्ध हुआ था जो है। अब इस युद्ध में जो है क्या हो रहा, किस तरह से चला हुआ, इसमें हम आर्मी का कैसे रोल रहा, नेवी का कैसे किया, एयरफोर्स का क्या रोल रहा, एंड आई सजेस्ट हम इसको हम आगे एपिसोड में कवर करेंगे, और हमारे जो बहादुर जवान हैं उन्होंने किस तरह से वो लड़े देश के लिए और हाउ दे रियली मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस, ठीक है, तो हम उनके बारे में जानेंगे जो है।
1: बिल्कुल सर। तो श्रोताओं, आज हमने बात की कि क्या थी वो पृष्ठभूमि जिसके कारण सन 1971 में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान दोनों देश युद्ध के लिए आमने सामने थे। जानेंगे इस युद्ध के बारे में हर बात तफसील से, और ये भी जानेंगे कि भारतीय सेना के तीनों अंगों ने इस महत्वपूर्ण युद्ध में क्या भूमिका अदा की, हमारे कार्यक्रम के अगले कुछ एपिसोड्स में, जिसका नाम है हमारी सेना हमारा गर्व। जुड़े रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस आशा के साथ कि हम हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम को आपसे यूं ही जानते रहेंगे।
2: या श्योर पूर्वाजी, डेफिनेटली वी विल डिस्कस एंड थैंक यू वेरी मच, एंड जय हिंद श्रोताओं एंड जय हिंद पूर्वाजी।
1: जय हिंद सर। तो ये था कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और मैं थी आपके साथ आपके अपनी पूर्वा खले। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद को, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: लश्कर और सीधी स्टीमशिप युग का मानवीय ईंधन। 1880 के दशक में एक P&O स्टीमशिप भाप के जहाज के डेक पर खड़े होने की कल्पना कीजिए। डेक के ऊपर का दृश्य अविनाशी आकर्षण और गहरी संतुष्टि से भरा है। अमीर यात्री शामियाने के नीचे आराम कर रहे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, जबकि जहाज हिंद महासागर के शांत पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे जहाज उन मानसूनी हवाओं से बेपरवाह है जो कभी यहाँ के जीवन को नियंत्रित करती थी। लेकिन पॉलिश किए हुए टी की लकड़ी के नीचे जहाज के दम घोटने वाले भीतरी हिस्सों में एक अलग ही दुनिया मौजूद है। ये लश्करों और सीधियों की दुनिया है। वे गुमनाम समुद्री मजदूर जिन्होंने हिंद महासागर को ब्रिटिश झील बनाना संभव बनाया। जैसे जैसे 19वीं शताब्दी आगे बढ़ी, औद्योगिक क्रांति ने हिंद महासागर को बदल दिया। 1869 में स्वेज नहर के खुलने और भाप तकनीक के उदय का मतलब था कि जहाज अब हवाओं के गुलाम नहीं रहे। हालांकि इन नए यांत्रिकी दिग्गजों को चलाने के लिए भारी मात्रा में मानवीय श्रम की आवश्यकता थी। 1914 तक ब्रिटिश व्यापारिक बेड़े में 51,600 से अधिक लश्कर कार्यरत थे। लश्कर मुख्य रूप से भारतीय नाविक थे, हालांकि वे बेड़े के संचालन के लिए अनिवार्य थे, लेकिन वे एक सख्त नौसैनिक पदानुक्रम में सबसे निचले पायदान पर थे। उनका जीवन एशियाटिक आर्टिकल्स द्वारा शासित था, एक कानूनी ढांचा जो बंधुआ मजदूरी के रूप में कार्य करता था। इसे विशेष रूप से यूरोपीय नाविकों को दिए जाने वाले अनुबंधों से अलग और कम सुरक्षात्मक बनाया गया था। ये वे टेक हैंड और विशेषज्ञ थे जिन्होंने पारंपरिक डाउ और जंग जहाजों से निकलकर भाप युग के जटिल रखरखाव और संचालन को संभाला था। जहाज के निचले हिस्से में और भी गहराई पर सीधी काम करते थे। ये अफ्रीकी मजदूर थे जिनमें से कई गुलाम मूल के थे या वे स्वतंत्र लोग थे जिन्होंने बॉम्बे या जंजीबार जैसे बंदरगाहों में नए जीवन की तलाश की थी। उनका काम शायद समुद्र के इतिहास में सबसे कठिन था। वे फायरमैन थे। उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर की तीव्र गर्मी में सीधी अपनी शिफ्ट कोयले को उन दहकती भट्टियों में झोंकने में बिताते थे जो बॉयलरों को चालू रखती थी। ये कमर तोड़ देने वाला और खतरनाक काम था जो ऐसी अंधेरी जगहों पर किया जाता था जहां रोशनी के नाम पर केवल आग की लपटों की चमक होती थी। लश्कर और सीधी की कहानी औद्योगिकरण और विस्थापन की कहानी है, जबकि स्टीमशिप को अक्सर प्रगति के प्रतीक के रूप में सराहा जाता है। जिसने मानसून के अत्याचार पर विजय प्राप्त की वो प्रगति एक विविध बहुजातीय कार्यबल के कंधों पर बनी थी। ये लोग एक नई प्रकार की अफ्रो एशियाई पहचान का प्रतिनिधित्व करते थे, एक ऐसी पहचान जो सुहाली तट के बाजारों या गुजरात के संघों में नहीं बल्कि वैश्विक पूंजीवाद के इंजन के रूप में गढ़ी गई थी। वे पाल वाली प्राचीन दुनिया और कंटेनर जहाजों वाली आधुनिक दुनिया के बीच के सेतु थे। लश्करों और सीधियों के बिना ब्रिटिश झील सूख जाती और 19वीं सदी के हिंद महासागर का आपस में जुड़ा जाल रुक जाता। वे शांत और कालिक से सने हुए नायक थे जिन्होंने उस वैश्वीकृत दुनिया को ऊर्जा दी जिसे हम आज पहचानते हैं।
2: प्रारंभिक आधुनिक समुद्रों की भयावहता, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वीओसी का क्रूर अनुशासन, प्रारंभिक आधुनिक समुद्रों की यात्रा अकल्पनीय आतंक की दुनिया में उतरने जैसी थी, जहां मृत्यु अपने सबसे विभत्स और भयानक रूपों में आती थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों में जैसे कि एंक्यूजेन या फॉर्च्यून जो जापान के मार्गों पर चलते थे, वहां का वातावरण पेचिश, अत्यधिक भीड़ और उल्टी की निरंतर दुर्गंध का एक अस्थिर मिश्रण था। इन तैरते हुए नरक तुल्य जहाजों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कंपनी अनुशासन की एक ऐसी प्रणाली पर निर्भर थी जो औसत नाविक को पूर्ण समर्पण के लिए डराने के लिए डिजाइन की गई थी। वीओसी के लिए एक नाविक आज्ञाकारी दास से अधिक कुछ नहीं था। किसी श्रेष्ठ के आदेश के प्रति थोड़ी सी भी अनिच्छा या बुदबुदाहट के संकेत पर एक नाविक को नियमित रूप से रस्सी से पीटा और धमकाया जाता था। हालांकि जो लोग अधिक गंभीर अपराध करते थे उनके लिए डच नौसैनिक कानून की भीषण रचनात्मकता ने कहीं अधिक विभत्स रूप ले लिया था। गंभीर दंडों में सबसे आम था यार्ड आर्म से गिराना। उदाहरण के लिए एन्क्विजिन पर यदि कोई व्यक्ति अनधिकृत शराब लेते पकड़ा जाता तो उसे उसके हाथ बांधकर रिंगिंग में ऊपर खींच लिया जाता और फिर 40 या 50 फीट नीचे गिरा दिया जाता था। रस्सी के अंत में लगने वाला अचानक झटका पीड़ित के कंधों को उखाड़ने या तोड़ने के लिए काफी था, जिसके बाद उसे कोड़े मारने के लिए मस्तूल से बांध दिया जाता था। चाकूबाजी या झगड़े में शामिल लोगों के लिए सजा और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। अपराधी को अपना हाथ जहाज के मस्तूल के खिलाफ रखने के लिए मजबूर किया जाता था और उसकी हथेली के केंद्र से एक तेज चाकू पार कर दिया जाता था, जिससे वह लकड़ी से चिपक जाता था। अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए नाविक को चाकू को अपने ही हाथ में खींचकर बाहर निकालना पड़ता था, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें उसे अपने ही मांस को काटना और टेंडन को अलग करना होता था। नौसैनिक अनुशासन की सबसे निचला स्तर कील हॉलिंग था। दोषी व्यक्ति को वजन से बांधकर ओवरबोर्ड फेंक दिया जाता था और एक रस्सी द्वारा जहाज के नीचे से दूसरी तरफ खींच लिया जाता था। अंधेरे पानी के नीचे खींचे जाते समय नाविक को दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, डूबने की उच्च संभावना और जहाज के तल पर जमे सत राग्र और तीखे शंख जो आरी की तरह काम करते थे। इसका परिणाम अक्सर पीड़ित के शरीर से मांस का खून से लथपथ पट्टियों के रूप में उखड़ जाना होता था। जापान में भर्ती किए गए सैनिकों और भाड़े के लड़ाकों के लिए यह तलवार की दवा ही एकमात्र ऐसा अधिकार था जिसका VOC का मानना था कि वे सम्मान करते हैं। सतर्कता में मामूली चूक का अंत भी अंतिम होता था। पेड्रो नामक एक सैनिक को केवल इसलिए फायरिंग स्क्वाड द्वारा मार दिया गया क्योंकि वह किले की दीवारों पर पहरा देते समय सोता हुआ पाया गया था। टॉर्चर और जुर्माने की इस व्यापक प्रणाली ने सुनिश्चित किया कि चाहे वह एम्स्टर्डम का कोई गरीब नाविक हो या हीरोडो का कोई साहसी व्यक्ति, वह कंपनी राज्य का एक आज्ञाकारी सेवक बना रहे जो रस्सियों ब्लेड के निरंतर प्रत्यक्ष भय से बंधा हुआ था।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। साथियों, जब हम जन्म लेते हैं तब से ही हमारा शरीर अपने आप को सक्रिय रखने में अनेक गतिविधियां करता रहता है। शैशव अवस्था से बाल अवस्था में प्रवेश करने के बाद बच्चा स्वयं से ही अनेक खेलों से जुड़ जाता है, जिसमें खो खो, दौड़ भाग, छुपन छुपाई जैसे खेल हमें शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त रखते थे। वहीं राजा, मंत्री, चोर, सिपाही या पहेली बूझना, वर्ग पहेली सुलझाना, लूडो जैसे गेम हमारे दिमाग को तेज रखते थे। वास्तव में खेलों का हमारे जीवन में बड़ा योगदान है, क्योंकि ये केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि स्वस्थ और सफल जीवन की नींव है। श्रोताओं, खेल हमारे जीवन को नीरस होने से बचाते हैं और हमें शारीरिक, मानसिक रूप से ऊर्जावान बनाए रखने में अपना विशेष महत्व रखते हैं। वर्ष 1996 से प्रतिवर्ष 7 मई का दिन हम वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के रूप में मनाते आ रहे हैं। आज के दिन को मनाने के पीछे क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या महत्व है आज के दिन का, इसी विषय पर गहनता से बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं श्री SK प्रसाद, जो मुख्य प्रशिक्षक हैं मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी भोपाल में। सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मैं SK प्रसाद, मुख्य प्रशिक्षक एथलेटिक्स अकादमी भोपाल।
1: सर, आपसे सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे क्यों मनाया जाता है और इस दिन को मनाने के पीछे क्या क्या उद्देश्य हैं?
3: विश्व एथलेटिक्स डे हर साल 7 मई को बच्चों और युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने, उन्हें खेलों विशेषकर एथलेटिक्स से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है।
1: सर, एथलीट शब्द होता है एक और एक होता है एथलेटिक्स, तो यहाँ दोनों शब्दों को हम समझना चाहेंगे कि किस तरह से इन्हें आप परिभाषित करेंगे।
3: मैं एथलीट और एथलेटिक्स दोनों ही शब्द शारीरिक खेल और क्षमता से जुड़े हैं, लेकिन इनमें से एक एक करके सूक्ष्म अंतर है।
1: जी,
3: एथलीट उस व्यक्ति को कहते हैं जो शारीरिक शक्ति, गति, सहन शक्ति की आवश्यकता वाले खेलों या प्रतियोगिता में भाग लेता है।
1: जी,
3: जैसे एथलीट, बॉक्सर, स्विमर,
1: जी,
3: कुश्ती खेलने वाला व्यक्ति। जो व्यक्ति खेल में हिस्सा ले रहा है वो एक एथलीट है।
1: जी,
3: एथलेटिक्स उन खेलों का एक समूह है जिसमें मुख्य रूप से दौड़ना, कूदना, फेंकना और चलना शामिल है।
1: जी, जी।
3: इसको हम शॉर्ट भाषा में कह सकते हैं ट्रैक एंड फील्ड।
1: जी जी,
3: ट्रैक में जैसे 100 मीटर स्प्रिंट्स हैं, मिडिल लॉन्ग डिस्टेंस, और फील्ड में थ्रोज हैं, जंप्स हैं। थ्रोज में भी शॉर्ट पुट, डिस्कस, जेवलिन, हैमर, जंप्स में लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप, पोल वॉल्ट इत्यादि वगैरह वगैरह ऐसा है।
1: सर, हमारा ध्यान अक्सर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन जैसे खेलों पर तो जाता है, तो इन खेलों से कैसे अलग होता है एथलेटिक्स का खेल, जो जिसमें आपने अभी इतने सारे हमें नाम बताए, तो कैसे इनसे हम अलग समझें इस चीज को?
3: मैम, एथलेटिक्स जो है मुख्य रूप से व्यक्तिगत प्रदर्शन पर आधारित है।
1: जी जी।
3: जबकि अन्य खेल टीम वर्क या आमने सामने मुकाबले पर। संक्षेप में, एथलेटिक मानव शरीर का मूल शारीरिक क्षमताओं का परीक्षण है, जबकि अन्य खेल रणनीतिक खेल है।
1: क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छे सरल शब्दों में आपने हमारे श्रोताओं को बताया है कि जो अन्य खेल है वो सामूहिक खेल है, समूह में खेले जाते हैं, और एथलेटिक्स जो है वो व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शन का एक तरीका है। सर, अलग अलग खेल है जैसे कुश्ती, स्प्रिंग, हॉकी, क्रिकेट, इन्हें आपस में आप कैसे समझाएंगे कि किस तरह से ये खेल अलग अलग हैं और इनका क्या महत्व है?
3: मैम, ये सभी खेल शारीरिक गतिविधि के माध्यम से प्रतिस्पर्धा और अनुशासन सिखाते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति, नियम, आवश्यक शारीरिक क्षमताएं एकदम अलग होती हैं। कुश्ती एक कॉम्बैट या द्वंद खेल है, जिसमें एक दूसरे के शारीरिक संपर्क बनते हैं और एक दूसरे को पटकना चाहते हैं।
1: जी जी।
3: स्प्रिंट यह ट्रैक एंड फील्ड का एक खेल है, जिसमें इंडिविजुअल खुद ज्यादा डिस्टेंस को कम समय में पूरा करने की कोशिश करता है। हॉकी यह आउटडोर या इंडोर खेल है, जो स्टिक और गेंद से खेला जाता है।
1: जी जी।
3: क्रिकेट यह बल्ले और गेंद से खेला जाता है, 11 खिलाड़ियों की दो टीमें पिच पर खेलती हैं। यह रणनीतिक खेल है, जो हॉकी की तुलना में अधिक समय तक चलता है। संक्षेप में कहें तो कुश्ती शरीर की ताकत, स्प्रिंट गति, हॉकी टीम वर्क और गति, क्रिकेट रणनीति और तकनीक का मिश्रण है, जो समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है।
1: सर, हम अपने बचपन में जाएं और पीछे मुड़कर अतीत के झरोखों में देखें, तो स्कूलों में अक्सर शनिवार के दिन गेम्स पीरियड होता था, और उसमें बच्चों को अलग अलग तरह की खेल गतिविधियों से जोड़ा जाता था, जैसे ऊंची कूद है, लंबी कूद है, तो ये भविष्य में बच्चे के लिए कैसे काम आ सकते हैं?
3: मैम, ये बच्चों में आत्मविश्वास, टीम वर्क, अनुशासन जैसे कौशल विकसित करती है, जो भविष्य में स्वास्थ्य जीवन शैली, तनाव प्रबंधन और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने में मदद करती है।
1: जी।
3: ये गतिविधियों बच्चों को जीवन की वास्तविक चुनौतियों के लिए तैयार करती हैं।
1: अच्छा, कौन कौन से खेलों को हम एथलेटिक्स में रखेंगे?
3: एथलेटिक्स में मुख्य रूप से दौड़, कूद, फेंकना, पैदल चाल से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगिताएं शामिल हैं, जिन्हें ट्रैक एंड फील्ड के रूप में भी जाना जाता है। स्प्रिंट इसमें 100, 200, 400 हर्डल्स आते हैं। मिडिल लॉन्ग डिस्टेंस 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस, 5000 मीटर, 10000 मीटर मैराथन, रिले 4x200, 4x400 और आजकल एक नया इवेंट जुड़ गया, मिक्स रिले 4x400, 4x400। फील्ड इवेंट में लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप, पोल वॉल्ट, कंबाइंड इवेंट में महिलाओं के लिए हेप्टाथलन और पुरुषों के लिए डेकाथलन होते हैं। थ्रोज इवेंट में शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो और हैमर थ्रो, इस तरह से इतने इवेंट इसमें कराए जाते हैं।
1: सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो हमारे भारत के जो एथलीट्स हैं उनकी क्या भूमिका है इन खेलों में?
3: मैम, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स में भारत की भूमिका तेजी से उभरती हुई महाशक्ति के रूप में अभी आई है।
1: जी जी।
3: जिसका नेतृत्व नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ियों ने किया है। 2020 ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में जब उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, 2023 में विश्व एथलेटिक्स में सफलता के साथ भारत ने ट्रैक एंड फील्ड में अपनी उपस्थिति मजबूत की है।
1: जी जी।
3: जबकि एशियन गेम्स में भारत का हमेशा से दबदबा रहा है।
1: ये तो बहुत गौरव की बात है हम सभी के लिए। अच्छा सर, ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात, अगर हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों की क्या भूमिका है अपने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में या पूरे भारत में, किस तरह से वे आगे बढ़ रहे हैं?
3: मध्य प्रदेश अभी देश के टॉप राज्यों में से एक है।
1: जी।
3: और हम आपके माध्यम से अपने सरकार को, अपने संचालनालय डायरेक्टर स्पोर्ट्स को और जो हमारी टीम है उसको हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतनी बढ़िया टीम बनाई है कि हमारे पास आज हमारे जो बच्चे हैं, पहले नेशनल मेडल नहीं आता था।
1: जी जी।
3: अब हम बच्चों में सोच इतना बदला है कि जो अब 5 नेशनल रिकॉर्ड हमारे नाम से है।
1: क्या बात है,
3: हमारे एकेडमी के बच्चों के नाम से 5 नेशनल रिकॉर्ड मध्य प्रदेश अभी स्टैंड कर रहा है।
1: जी जी।
3: पिछले इसी मंथ में पोल वॉल्ट में कुलदीप कुमार ने अपने ही एकेडमी के बच्चे का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ के अपना रिकॉर्ड बनाया। अंडर 16 वायु वर्ग में महिलाओं में बुशरा खान ने 2000 मीटर के नेशनल रिकॉर्ड है
4: जी।
3: अंडर 20 गर्ल्स में 3000 मिस स्टीपलचेज में एकता डे नेशनल रिकॉर्ड है। अभी 5000 मीटर रेस वॉक में अभी इसी मंथ में रंजना यादव ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया
4: जी।
3: इस तरह से हमारे कई नेशनल रिकॉर्ड अपने मध्य प्रदेश के नाम से हैं और अभी कई खेलों में अभी हॉकी में अभी उप विजेता बनी है
4: जी।
3: विवेक सागर प्रसाद हॉकी में ओलंपिक्स को रिप्रेजेंट करते मेडल जीत कर आए थे
4: जी जी।
3: तो अभी हमारा खेलों में बहुत टॉप में चल रहा है
4: जी जी।
3: और आने वाले दिन में मुझे लगता है कि हम भारत के शीर्ष राज्यों में से सबसे आगे रहेंगे
4: जी जी। बिल्कुल, और हम भी ऐसी कामना करते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं हमारे खिलाड़ियों को कि वे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना परचम लहराएं, अपना तिरंगे का मान बढ़ाएं। अच्छा सर, अब बात हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यदि कोई बच्चा है वो एथलीट बनना चाहता है तो उसे किस उम्र से मार्गदर्शन मिलना चाहिए कि वो इन खेल गतिविधियों में भाग ले सकता है?
3: एथलीट बनने के लिए बच्चों को 7-8 वर्ष की आयु से विभिन्न खेल के माध्यम से बेसिक मोटर क्वालिटी का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, उन्हें उसी टाइम में शुरू करना चाहिए
4: जी जी।
3: लेकिन उस पर बहुत कंट्रोल, क्योंकि ये ग्रोइंग एज है
4: जी जी।
3: थोड़ा सा भी अगर हम उनको ज्यादा ट्रेनिंग कराएंगे तो उनको ग्रोथ पे उसका असर पड़ेगा
4: जी जी।
3: 8 से 12 वर्ष को मोटर लर्निंग का स्वर्ण युग माना जाता है जहाँ कौशल विकास तेजी से होता है
4: जी।
3: प्रोफेशनल या विशिष्ट खेल प्रशिक्षण के लिए 12 से 18 वर्ष की आयु उपयुक्त है, लेकिन इसमें मोटर क्वालिटी को डेवलप करने के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है और विशेषकर हमें खाने पीने में, ट्रेनिंग में बहुत सतर्कता बरतनी पड़ती है, क्योंकि थोड़ा सा भी गलती इनके फ्यूचर को रोक सकता है
4: जी जी।
3: इन खेलों गतिविधियों में स्थानीय स्पोर्ट्स क्लब, जिले, स्कूल की टीम जैसे सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें और यह सुनिश्चित करें कि वे जीतने के बजाय खेल का आनंद लें और शारीरिक शिक्षा के कक्षाओं में भाग लेकर आत्मविश्वास को बढ़ाएं। इस तरह से हम उनको आगे ला सकते हैं।
4: बिल्कुल बिल्कुल, यानी सहभागिता जरूरी होती है, जीत हार तो बाद की बात है, सबसे महत्वपूर्ण है कि आप उस चीज का हिस्सा बने।
3: बिल्कुल,
4: तो बहुत सारी चीजें भी आप अनौपचारिक रूप से भी सीखते हैं
3: जी। हाँ
4: बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरे अन्य खेलों में बच्चों को करियर फिर भी समझ में आता है, जैसे हम जनरल बात करें क्रिकेट में समझ में आता है कि भाई लोग विराट कोहली को अपना आदर्श मानते हैं, सचिन तेंदुलकर को आदर्श मानते हैं, लेकिन एक एथलीट का करियर कैसा हो सकता है, भविष्य की संभावनाएं क्या हो सकती हैं, ये हमारे श्रोताओं को आप जरूर बताइए।
3: मैम, एक एथलीट का करियर शारीरिक क्षमता पर आधारित होता है जो आमतौर पर 30-40 वर्ष की आयु तक चलता है। करियर के बाद भी वो पूर्व खिलाड़ी, कोच, फिटनेस ट्रेनर, रेफरी, खेल पत्रकार, स्पोर्ट्स मैनेजर, पोषण विशेषज्ञ या कमेंटेटर के रूप में सुनहरे भविष्य को की संभावना तलाश कर सकते हैं
4: जी जी।
3: शिक्षा के साथ साथ खेल को जारी रखना सुरक्षित भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
4: अच्छा सर, भारत में एथलेटिक्स का लेवल पिछले 5-10 सालों में कैसा बदला है, ये भी थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब से नीरज चोपड़ा जी का नाम हमने सुना और उनके खेल के बारे में जाना और उन्होंने स्वर्ण पदक जीता तो नीरज चोपड़ा हाईलाइट हुए।
3: इसके बाद नीरज चोपड़ा के जीतने के बाद ना हमारे खिलाड़ियों में सोच का स्तर बदल गया
4: जी जी। बिल्कुल,
3: पहले जो हमारे खिलाड़ी इंटरनेशनल कंपटीशन में जाते थे तो हम पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं ये सोच था, नीरज के गोल्ड जीतने के बाद अब हमारे खिलाड़ी जीतने के लिए सोचते हैं कि हम कौन सा मेडल जीतेंगे। और नीरज के बाद देखिए गुलबीर सिंह, पारुल चौधरी
4: जी,
3: कार्तिक, अविनाश सावले, कई ऐसे खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पदक जीत के
4: जी जी
3: नाम रोशन किया, भारत का नाम रोशन किया है और अभी आने वाले एशियन गेम्स में हम लगता है कि टॉप 2 में रहेंगे
4: जी जी। क्या बात है, तो पिछले 5-10 सालों में कैसा बदलाव आप महसूस करते हैं?
3: मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव साइन है
4: जी जी।
3: और ये आगे जाएंगे मैम, आगे जाएंगे।
4: सर, स्कूली लेवल पर बच्चों को एथलेटिक्स में लाने के लिए क्या करना चाहिए?
3: स्कूली स्तर पर बच्चों को एथलेटिक्स, दौड़ कूद फेंक में लाने के लिए खेल को मजेदार, समावेशी और बुनियादी बनाना सबसे जरूरी है। इसके लिए अभी हमारे वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किड एथलेटिक्स का एक स्कीम चालू किया है
4: जी।
3: उसके माध्यम से उसके कार्यक्रम में उपयोग करें जो 4 से 14 वर्ष के बच्चों में विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं
4: जी,
3: उनके
4: जी।
3: बच्चों के लिए ये टीम आधारित गतिविधियों के माध्यम से शारीरिक शिक्षा को मनोरंजक बना के उनको सिखाते हैं।
4: बिल्कुल, और बच्चों के साथ तो एक अलग ही लेवल पर उनको सिखाना होता है क्योंकि हर चीज जब हम शुरू करते हैं तो काफी कठिन लगती है। ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि एक मनोरंजक स्तर पर बच्चों को हमें जोड़ना चाहिए और उनको सिखाना चाहिए। अच्छा सर, खिलाड़ी के लिए खान पान बेहद ज़रूरी होता है और एक अच्छा आहार बहुत ज़रूरी होता है, तो डाइट की बात अगर हम करें तो मेंटल हेल्थ एक एथलीट के प्रदर्शन में कितना रोल निभाती है और शरीर को कितना फिट होना चाहिए?
3: डाइट और पोषण का सीधा संबंध मानसिक स्वास्थ्य से है। एक एथलीट प्रदर्शन में यह 80-90% तक भूमिका निभा सकता है।
4: जी जी।
3: उच्च स्तरीय प्रदर्शन के लिए शारीरिक फिटनेस के साथ साथ मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक अस्थिरता का होना बहुत जरूरी है, जो संतुलित आहार पर ही निर्भर करता है।
4: जी।
3: शरीर के फिटनेस खेल के प्रकार पर निर्भर करती है, लेकिन ये एक एथलीट को लीन होना चाहिए, मतलब कम चर्बी अधिक मांसपेशी वाला होना चाहिए।
4: जी जी।
3: एक एथलीट के लिए बॉडी और माइंड दोनों का फिट होना बहुत एक दूसरे से जुड़ा है। सही डाइट न केवल मांसपेशियों को ऊर्जा देती है बल्कि मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, जिससे मैदान पर बेहतर प्रदर्शन करने में उसको मदद मिलती है।
4: सर, खान पान का बड़ा योगदान होता है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या क्या भोजन शामिल होना ही चाहिए और एक संपूर्ण संतुलित भोजन क्या होना चाहिए?
3: देखिए मैम, खिलाड़ी को जब मेहनत करते हैं तो हमारे डाइट बैलेंस होनी चाहिए।
4: जी जी।
3: तो हम जानना चाहेंगे बैलेंस डाइट क्या है। तो बैलेंस डाइट में जितने कंटेंट होते हैं वो कंटेंट होना चाहिए। तो अगला प्रश्न आएगा कंटेंट क्या क्या होने चाहिए।
4: जी जी।
3: तो उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा, मिनरल्स वगैरह वगैरह होते हैं।
4: जी जी।
3: अब अगला प्रश्न श्रोता जानना चाहेंगे कि कितना होना चाहिए। तो प्रोटीन जो है ये हमारे बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करता है। 1.75 ग्राम से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हमारा प्रोटीन होना चाहिए।
4: जी जी।
3: फैट 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट 6-8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होना चाहिए। अब श्रोता अपना खाने में खुद चेक कर सकते हैं कि हमारा खाना सही है अथवा इसमें कमी है।
4: जी जी।
3: दूसरा, अगर हम इसको नेचुरोपैथी के नजरिए से देखें तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
4: जी जी।
3: जैसे हमारा शरीर जो है 5 तत्वों को मिलकर बना है।
4: जी।
3: पृथ्वी तत्व, जल तत्व,
4: जी,
3: अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व।
4: जी जी।
3: इसके डाइट भी सब अलग अलग हैं।
4: जी।
3: जैसे पृथ्वी तत्व में अनाज दालें, जल तत्व में सब्जी, अग्नि तत्व में फ्रूट्स वगैरह आते हैं, फल फूल आगे।
4: जी जी।
3: और वायु तत्व में जितने पत्तियां आती है ना वो आते हैं।
4: जी।
3: और आकाश तत्व है उपवास, खाली स्थान।
4: अच्छा।
3: तो इसका बहुत बड़ा रोल है। हमें जनरली जो नेचुरोपैथी में सिखाया गया है कि इंसान को 24 घंटे के अंदर में 14 घंटा उपवास करना चाहिए।
4: जी जी।
3: तो आपका शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा। ये हमें स्पोर्ट्समैन ना भी करे तो चलेगा, लेकिन जनरल व्यक्ति को जरूर अपनाना चाहिए। और जब पहला ब्रेकफास्ट करते हैं उसका है फास्ट को ब्रेक करना।
4: जी जी।
3: तो पहला हम पत्तियों का जूस से चालू करें तो ये बहुत शरीर के लिए लाभदायक होगा। उसके बाद आप जल तत्व ले लें, सब्जियों में कच्चा आहार जैसे हम सलाद ले सकते हैं, खीरा, टमाटर, चुकंदर, गाजर, मूली, इसको काट के थोड़ा ले लें, थोड़ा देर के बाद फल लें। ये लेने से नेगेटिव चीज हमारे शरीर में नहीं आएंगे और डिटॉक्स होंगे, जितने भी विजातीय तत्व हैं वो बॉडी से निकलेंगे और ये हमारे शरीर को बहुत फायदा पहुंचाएगा। जब हम एथलीट को देखते हैं तो मिडिल लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए मैं बोलता हूँ, उसमें बीटरूट जूस है
4: जी,
3: उसमें नाइट्रेट है, नाइट्रेट लोडिंग है
4: जी,
3: वो हमारे रेड ब्लड सेल को इम्प्रूव करता है, बूस्ट करता है।
4: जी जी।
3: उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारा बढ़ेगा, तो जो सांस लेने की क्षमता है ना वो बढ़ जाएगा, तो नेचुरली जब हम यहाँ थक रहे हैं तो थोड़ा और आगे जाके थकेंगे
4: जी।
3: तो ये हमारा प्रदर्शन में सुधार होगा। इस प्रकार हम अगर ऐसे करें तो हमें प्रदर्शन में और अच्छा सुधार कर सकते हैं।
4: सर, किसी भी खेल का हिस्सा बनने के लिए बच्चे की खुद की तैयारी कितनी जरूरी होती है, जैसे एक्सरसाइज है, ट्रेनिंग है या डेली रूटीन, किस तरह से उसे अपनी तैयारी रखना चाहिए या बदलाव करने चाहिए, आप किस तरह से मार्गदर्शन देते हैं?
3: किसी भी खेल का हिस्सा बनने के लिए खुद की तैयारी, शारीरिक एक्सरसाइज, ट्रेनिंग और मानसिक दोनों बेहद जरूरी है, जिसे 100% महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए।
4: जी।
3: यह केवल खेलने के बारे में ही नहीं बल्कि प्रदर्शन, सुरक्षा और दीर्घकालिक विकास के बारे में भी है। तैयारी सिर्फ खेल के दिन ही नहीं बल्कि हर रोज की प्रतिभा है। अच्छी तैयारी आपको एक साधारण खिलाड़ी से उत्कृष्ट खिलाड़ी बना सकती है और लंबे समय तक खेलों में बनाए रखती है।
4: सर, किस तरह की ट्रेनिंग आप लोग देते हैं बच्चों को?
3: प्लान होता है उसका
4: कि
3: हम इसको किस स्तर का, किस कंपटीशन के लिए हम तैयार कर रहे हैं, उसके लिए हम प्लान करते हैं। हमारे साथ पूरा टीम है उसका जब प्लान कर लेते हैं तो इसका कितना रिकवरी चाहिए, हमारे रिकवरी एक्सपर्ट हैं, इस रिकवरी के साथ इसको कैसा डाइट चाहिए, हमारे साथ डाइटिशियन है वो पूरा प्लान करती हैं, कहाँ पे इसको क्या जरूरत है, प्लान के हिसाब से करते हैं और हमारे लड़के करीब करीब अपने टारगेट को अचीव करते हैं।
4: जी जी। अच्छा सर, जैसे उम्र की बात करें तो किस उम्र से बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं अकेडमी में?
3: अकेडमी में मैम 12 से 18 साल के बीच के बच्चे हम लोग, और जो बच्चे अच्छा करते हैं
4: जी जी।
3: उनको हम लोग डायरेक्ट भी अकेडमी में लेते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है हमारे यहाँ और पूरा पारदर्शिता है कि किसी कोई नहीं कह सकता है, किसी और गेम में हो सकता है लेकिन एथलेटिक्स में इट्स नॉट पॉसिबल। जो अच्छा है वो अच्छा है।
4: जी जी। यानी उम्र भी महत्व रखती है।
3: बिल्कुल।
4: आपकी यहाँ पर जब बच्चा जुड़ता है खेलों से, तो सर युवाओं को फिटनेस और खेल के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: मैं श्रोताओं को कहना चाहूंगा, याद रखिए सफलता केवल एक दिन में नहीं मिलती, यह निरंतर प्रयास, धैर्य और लगन से हासिल होती है। असफलताएं से घबराएं नहीं बल्कि उससे प्रेरित होकर और दुगने उत्साह से आगे बढ़ें। देश को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं की भूमिका सबसे अहम होती है। याद रखिए अवसर नहीं होते, आप उन्हें बनाते हैं। धन्यवाद।
4: क्या बात है, अवसर होते नहीं आप उन्हें बनाते हैं। बिल्कुल। और श्रोताओं, आज हम बात कर रहे थे वर्ल्ड एथलेटिक्स डे पर, और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित थे श्री एस के प्रसाद। आप मुख्य प्रशिक्षक हैं मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी भोपाल में। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे श्रोताओं को, और विशेष रूप से हम कहना चाहेंगे कि हमारे युवा वर्ग को, इतनी अच्छी जानकारी दी आज के दिन के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश से, हमारे भोपाल शहर से भी बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे निकलेंगे खेलों को पूरे विश्व में बहुत आगे लेकर जाएंगे और अपना नाम रोशन करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी के लिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच।
4: तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम जिसमें आज हम बात कर रहे थे वर्ल्ड एथलेटिक्स डे पर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, और मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना। इसी के साथ अब कार्यक्रम के समापन की हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: यूरोपीय सिक्कों के आगमन से बहुत पहले इस क्षेत्र के मूल निवासी जैसे मुंशी समूह क्वाहोग क्लैम के खोल से मोती बनाते थे। इन मोतियों को वॉम्पम कहा जाता था। ये केवल सजावट की चीजें नहीं थीं, ये संधियों को दर्ज करने, कहानियां सुनाने और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोग की जाने वाली पवित्र वस्तुएं थीं। सबसे कीमती गहरे बैंगनी रंग के मोती होते थे, जिन्हें शंख के गहरे हिस्सों से तराशा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि इन बैंगनी मोतियों का उत्पादन इंटरैक्टिव डोमेन्स यानी पारस्परिक प्रभुत्व का परिणाम था। पत्थर जैसे सख्त क्वाहोग हॉल को नाजुक बेलनाकार मोतियों में तराशने के लिए स्वदेशी कारीगरों को यूरोप से आपूर्ति किए गए धातु के ड्रिल की आवश्यकता थी, जो 1630 के दशक तक हडसन घाटी में आम नहीं हुए थे। इस तकनीकी संलयन ने लॉन्ग आइलैंड के तटीय क्षेत्रों को एक वास्तविक टकसाल में बदल दिया। 1640 के दशक तक डच और अंग्रेजी बसने वालों के लिए एक अजीब आर्थिक वास्तविकता बन गई थी। उपनिवेशों में सोने चांदी की कमी थी और फिर फर, जो कि पशुओं की खाल होती थी, का व्यापार धन का प्राथमिक इंजन था। बसने वालों और स्वदेशी समूहों के बीच व्यापार को सुगम बनाने के लिए वॉम्पम पसंद की मुद्रा बन गया। ये वो पैसा था जिसने सीमावर्ती क्षेत्रों के व्यापार को गति दी, जिसका उपयोग वीवर की खाल से लेकर मक्के और यहाँ तक कि जमीन के विशाल टुकड़ों को खरीदने के लिए किया जाता था। हालांकि डच वेस्ट इंडिया कंपनी और स्वदेशी उत्पादक इस पैसे को दो पूरी तरह से अलग नजरियों से देखते थे। उनके लिए वामपम सामाजिक पारस्परिकता का हिस्सा था, एक उपहार जिसके बदले में दुनिया को संतुलन में रखने के लिए दूसरा उपहार दिया जाना चाहिए। उनके लिए ये वस्तु थी जिसे कर यानी टैक्स के दायरे में लाया और नियंत्रित किया जाना था। सितंबर 1639 में डच डायरेक्टर विलेम कीफ्ट ने नीति में एक कट्टरपंथी बदलाव का प्रयास किया। उन्होंने स्थानीय मुंशी समूहों पर सुरक्षा शुल्क लगा दिया और डच किलों की लागत वहन करने के लिए वामपम और वीवर की खाल के रूप में ट्रिब्यूट की मांग की। मुंशी इस बात से आक्रोशित थे। उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने डचों का स्वागत किया था, उनके संकट के समय उनकी देखभाल की थी और उन्हें अपनी जमीन पर मुफ्त में बसने की अनुमति दी थी। वामपम, जो संतुलन का प्रतीक था, उसे अनचाही सुरक्षा के लिए टैक्स के रूप में मांगना सामाजिक पारस्परिकता की विफलता थी। वामपम के आध्यात्मिक और राजनीतिक मूल्य की यही मौलिक गलतफहमी 1640 में प्रथम डच मुंशी युद्ध का प्राथमिक कारण बनी। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ा, लॉन्ग आइलैंड के वामपम उत्पादक एक दुखद बंधन में फंस गए। यूरोपीय बाजार अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से एकीकृत होने के कारण उन्हें केवल अपनी जमीन और मोती बनाने के लिए आवश्यक धातु के औजारों तक पहुंच बनाए रखने के लिए डचों को शांति और सैन्य सहायता का वचन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। 17वीं शताब्दी के मध्य तक जंगल के वे आध्यात्मिक मोतीशाही अधीनता के हथियार बन चुके थे, जो उन लोगों की बेदखली का रास्ता तय कर रहे थे जिन्होंने उन्हें बनाया था। वामपम उस समय के एक डरावने अवशेष के रूप में आज भी मौजूद हैं, जब पवित्र प्रतीकों को साम्राज्य की ठंडी मुद्रा के रूप में पुनर्गठित किया गया था।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारे देश की सरहदों की अटूट ढाल यानी हमारी भारतीय थल

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: शिवरात्रि को देखते हुए देश भर में सुरक्षा के
2: दादू, दादू।
3: हाँ बेटा।
2: दादू इधर आइए ना बालकनी में।
3: अरे बेटा मैं आराम कर रहा हूँ।
2: दादू प्लीज आइए ना।
3: ओफो, चलो चलो आता हूँ।
2: इधर आइए ना दादू।
4: बताओ बताओ बेटा।
2: ये देखिए ना दादू।
4: हाँ।
2: रोज सुबह सुबह मैदान में जो ये लोग दौड़ते हैं, एक जैसे कपड़े पहनते, इतनी मेहनत करते, दादू ये सब सेना के लोग हैं।
4: हमारी प्यारी बिटिया ये देख रही थी मतलब। हाँ बेटा, ये वही लोग हैं जिनकी वजह से हम चैन की नींद सो पाते हैं। भारतीय सेना के जवान।
2: दादू ये भारतीय थल सेना क्या? क्या ये सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए हजारों लोगों का एक समूह है?
4: नहीं बिटिया, भारतीय थल सेना सिर्फ एक फोर्स नहीं है, इसे हजारों लोगों का समूह भी नहीं कहेंगे। ये तो हमारे देश की आन बान और शान है। ये हर खतरे के सामने खड़ी वो दीवार है जो देश को सुरक्षित रखती है। ये वो भरोसा है जिसकी वजह से हर भारतीय निडर होकर जीता है बिटिया।
2: मतलब दादाजी, भारतीय थल सेना हमें सुरक्षित रखने के लिए तैयार किया गया एक योद्धाओं का समूह है।
4: बिल्कुल बिटिया, और सेना सिर्फ सीमाओं को ही नहीं बचाती, वो तो पूरे देश का विश्वास भी बचाती है। ये विश्वास कि देश सुरक्षित हाथों में है।
2: दादू ये सेना क्यों बनी? पहले लोग खुद की रक्षा नहीं कर सकते थे क्या?
4: देखो बिटिया, एक समय था जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर जगह अलग अलग राजा, अलग अलग सेना और लगातार संघर्ष हुआ करते थे। ऐसे में छोटे बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, यहाँ तक कि देश की आम जन की रक्षा का उत्तरदायित्व इन सैनिकों के पास था। तब विदेशी आक्रांता देश की संपत्ति को लूटने, जमीन हड़पने के लिए भारत पर हमला किया करते थे।
2: अरे बाप रे। यानी बाहरी ताकतें भी हमला करती थी और देश के अंदर भी अस्थिरता थी दादाजी।
4: हाँ बेटा, और तभी देश के कुछ दूरदर्शी और ताकतवर बुद्धिमान मार्गदर्शकों ने एक संगठित सेना बनाने का विचार किया। एक ऐसा बल जो पूरे देश की रक्षा कर सके। 1 अप्रैल 1895 को एक संगठित सैन्य ढांचे की शुरुआत हुई और 1947 में आजादी के बाद इस नए भारत के अनुसार फिर से बनाया गया।
2: मतलब ये सेना इतिहास से लेकर आज तक देश के साथ खड़ी है दादाजी। पर दादू, सेना का काम सिर्फ युद्ध लड़ना ही है क्या?
4: नहीं बिटिया, सेना का काम तो इससे भी और ज्यादा है, बहुत बड़ा है।
2: वो भला कैसे?
4: देखो बेटा, जैसे सीमाओं की रक्षा करना, दुश्मनों से मुकाबला करना, आतंकवाद से लड़ना, आपदा में लोगों की मदद, ये सब सेना ही करती है।
2: अच्छा?
4: हाँ, जब बाढ़ आती है, देश में कहीं भी भूकंप आता है या इसके अलावा भी कोई संकट होता है, तो सबसे पहले दुर्घटना स्थल पर जो पहुंचता है वो है हमारी थल सेना।
2: मतलब ये सैनिक असल में हमारे रक्षक है दादू।
4: हाँ।
2: अब एक सवाल है मेरे मन में।
4: पूछो बिटिया।
2: वो ये कि जब असली युद्ध होता है तब क्या परिस्थिति होती होगी?
4: बेटा युद्ध कोई फिल्म नहीं है, ये तो पूरी योजना और अनुशासन से चलता है। जैसे सबसे पहले दुश्मन की जानकारी जुटाई जाती है, फिर हमले की रणनीति बनाई जाती है, तब जाकर फिर ऑपरेशन शुरू होता है और युद्ध लड़ा जाता है।
2: मतलब युद्ध में हर कोई मिलकर लड़ता है?
4: हाँ बेटा, युद्ध अकेले नहीं लड़ा जाता, ना ही जीता जाता, ये तो टीम वर्क है बिटिया।
2: दादू क्या आज की सेना पहले जमाने की सेना जैसी ही है?
4: नहीं बिटिया, आज की सेना बहुत आधुनिक है। नया कलेवर, नई तकनीक, नया युद्ध कौशल।
2: वो भला कैसे?
4: देखो बेटा, राइफल, मशीन गन, टैंक, मिसाइल, ड्रोन, सैटेलाइट, बेहतरीन परमाणु हथियार, आज क्या कुछ नहीं है हमारे पास। हम हर लिहाज से दुनिया के किसी भी अन्य विकसित देश की सेना की तरह ताकतवर हैं।
2: दादू
4: हाँ?
2: तो इसका मतलब अब युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि तकनीक से भी जीता जाता है।
4: हाँ बिटिया बिल्कुल शाबाश।
2: दादू
4: हाँ बेटा,
2: ताकतवर बनने के लिए ट्रेनिंग भी तो करनी होती होगी ना।
4: बहुत ही कठिन ट्रेनिंग होती है, जैसे सुबह 4 बजे उठना, लंबी दौड़, पहाड़ चढ़ना, हथियार चलाना, मानसिक मजबूती, कठिन परिस्थितियों में जीना, डर पर काबू पाना।
2: दादू
4: हाँ बेटा,
2: ये जवान देश की रक्षा कैसे करते हैं? पहाड़ों में, बर्फ में, रेगिस्तान में, जंगलों में, चाहे कितनी भी कड़ाके की ठंड क्यों ना हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, आखिर ये हर मौसम और विपरीत स्थिति में डटे कैसे रहते हैं दादाजी?
4: क्योंकि बिटिया इनके लिए ये सिर्फ नौकरी नहीं है, इनके लिए तो ये देश की रक्षा का प्रण है, प्रण। तभी तो इतनी सम्मानित है हमारी गौरवशाली थल सेना।
2: दादू
4: हाँ बेटा,
2: भारतीय थल सेना का उद्देश्य क्या है?
4: बिटिया भारतीय थल सेना सिर्फ युद्ध लड़ने वाली ताकत नहीं है, ये देश की संप्रभुता, अखंडता और सीमाओं की सुरक्षा की सबसे मजबूत ढाल है। भारतीय थल सेना भारत की तीनों शस्त्र सेनाओं में सबसे बड़ी है, जो जमीन पर रहकर देश की सीमाओं की रक्षा करती है।
2: दादू
4: हाँ बेटा,
2: आपने भी ना भारतीय थल सेना के बारे में इतना कुछ बताया है मुझे, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी।
4: हर बड़ी ताकत की तरह भारतीय थल सेना की भी एक लंबी कहानी है। आज जिस सेना को हम भारतीय थल सेना कहते हैं, उसकी नींव बहुत पहले यानी 1 अप्रैल 1895 को रखी गई थी। ये तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ।
2: हाँ?
4: लेकिन बेटा क्या तुम एक दिलचस्प बात जानती हो?
2: वो क्या भला दादाजी?
4: जब हमारा भारत आजाद नहीं था तब इस सेना को ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहा जाता था।
2: सच में दादू? फिर तो उस समय ये सेना अंग्रेजों के अधीन रही होगी, क्योंकि तब हमारा देश आजाद नहीं था।
4: हाँ बिटिया, उस समय भारतीय सैनिक अंग्रेजी हुकूमत के तहत काम करते थे, लेकिन बहादुरी और साहस तब भी उनमें आज जितना ही रहा होगा, मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ।
2: अच्छा?
4: हाँ बेटा।
2: दादू तो फिर ब्रिटिश इंडियन आर्मी हमारी भारतीय थल सेना कब बनी?
4: 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, तब उसी सेना को नए भारत के अनुसार फिर से संगठित किया गया और तब बनी हमारी अपनी भारतीय थल सेना।
2: मतलब दादू आज की सेना सिर्फ एक फोर्स नहीं बल्कि आजादी के बाद नए भारत की ताकतवर तस्वीर भी है।
4: हाँ बिल्कुल बिटिया, इस सेना ने सिर्फ सीमाओं की रक्षा ही नहीं की बल्कि आजाद भारत को मजबूत बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और अब भी अपनी जिम्मेदारी को ये बखूबी अंजाम दे रहे हैं।
2: दादू तो इसका मतलब हमारा हर सैनिक अपने साथ एक इतिहास भी लेकर चलता है।
4: हाँ बिटिया, हर वर्दी के पीछे सदियों का इतिहास, बलिदान और गौरव छुपा हुआ है। इसकी जड़ें भले ही बहुत पुरानी हैं, लेकिन आधुनिक भारतीय सेना का स्वरूप आजादी के बाद बहुत ज्यादा मजबूत हुआ और लगातार और ताकतवर होता जा रहा है।
2: तो क्या दादू ये सेना हमेशा से सीमा पर ही रहती है?
4: नहीं बिटिया, सीमा पर दुश्मन से मुकाबला करना इनका मुख्य काम तो है, लेकिन इसके अलावा भी ये देश के हर संकट में सबसे पहले खड़ी होती है। जब कहीं बाढ़ आती है, भूकंप आता है या कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा होती है, तब सबसे पहले भारतीय सेना ही राहत और बचाव के लिए पहुंचती है बेटा।
2: मतलब ये सिर्फ लड़ाई ही नहीं लड़ती बल्कि जीवन रक्षक भी है दादाजी।
4: बिल्कुल, युद्ध में दुश्मन से लड़ना और संकट से अपने लोगों को बचाना, यही है भारतीय सेना की असली पहचान।
2: इतनी कठिन जिंदगी होती है इन देशभक्तों की, घर से दूर रहकर दादाजी अपने परिवार के लिए इन्हें डर नहीं लगता?
4: डर तो हर इंसान को लगता है बिटिया, लेकिन एक सैनिक अपने डर से बड़ा होता है, क्योंकि उसके दिल में देश के लिए प्यार और जिम्मेदारी होती है। जब पूरा देश चैन की नींद ले रहा होता है, तब हमारी भारतीय सेना का भारतीय जवान बर्फीली पहाड़ियों पर, रेगिस्तान की तपती रेत में और घने जंगलों में जाग कर पहरा देता है बेटा।
2: दादू, तभी तो हम सुरक्षित हैं ना, बिना किसी खौफ के हम अपने देश में कहीं भी आ जा सकते हैं।
4: हाँ बिटिया, भारतीय थल सेना सिर्फ एक बल नहीं है, ये हर भारतीय की सुरक्षा की 100% विश्वास की गारंटी है।
2: दादू,
4: हाँ,
2: जब युद्ध होता है तो क्या सच में सैनिक आमने सामने लड़ते हैं?
4: हाँ बिटिया, लेकिन जब भी युद्ध होता है तो वो सिर्फ हथियारों का नहीं होता, बल्कि हौसले और बलिदान का भी होता है।
2: ये तो आपने सही कहा दादाजी। हाँ, मैंने भी पढ़ा था कि 1965 का युद्ध हो, 1971 का ऐतिहासिक युद्ध हो या फिर कारगिल की बर्फीली चोटियाँ, हर बार भारतीय थल सेना ने असाधारण साहस दिखाया है।
4: हाँ बिटिया, ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों पर जहाँ सांस लेना भी मुश्किल होता है, वहाँ हमारे जवानों ने दुश्मनों को कई बार पीछे खदेड़ा है। यही नहीं, कई वीर सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश के ध्वज, हमारे तिरंगे को सबसे ऊंचा रखा है।
2: अच्छा दादू।
4: हाँ बेटा।
2: क्या सैनिक अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर रहते हैं?
4: हाँ बेटा, कई कई महीनों तक वे अपने घर, अपने बच्चों, अपनों से दूर रहते हैं। कोई त्योहार हो या कोई खुशी का मौका, उनकी ड्यूटी उनके लिए सबसे पहले आती है बेटा।
2: तो इसका मतलब हम जो त्योहार मनाते हैं उसके पीछे भी उन वीर जवानों का ही त्याग होता है दादाजी?
4: बिल्कुल होता है बेटा। जब हम दिवाली पर दीप जलाते हैं, तब कोई जवान सीमा पर अंधेरे में कहीं दूर दराज के निर्जन बीहड़ में पहरा दे रहा होता है।
2: अच्छा दादाजी।
4: हाँ बेटा।
2: अगर कोई देश की सेवा करना चाहे तो क्या वो भारतीय थल सेना में जा सकता है?
4: क्यों नहीं बिटिया, भारतीय थल सेना देश के युवाओं के लिए सबसे सम्मानजनक करियर में से एक है। यहाँ कई रास्ते हैं, NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, और अब अग्निवीर योजना के माध्यम से भी युवा सेना में शामिल हो सकते हैं। रुचि बेटा, अब तुम क्या सोच रही हो?
2: दादू, अब मेरा पुराना वही सवाल, क्या लड़कियां भी इसमें जा सकती हैं?
4: तो बेटा, मेरा भी वही पुराना जवाब। बिल्कुल, आज भारतीय सेना में महिलाएं भी अधिकारी बनकर देश की सेवा कर रही हैं। चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या कॉम्बैट सपोर्ट रोल हो, सेना में सिर्फ नौकरी नहीं मिलती बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास, सम्मान और देश सेवा का अवसर मिलता है बेटा।
2: दादाजी, तो भारतीय सेना में जाना सिर्फ करियर नहीं, हर देशभक्त भारतीय का एक सपना है।
4: हाँ बिटिया, एक ऐसा सपना जो हर भारतीय के दिल में बसता है और जो जय हिंद कहते वक्त शरीर के हर रोम को देशभक्ति के जोश से भर देता है।
2: दादू।
4: हाँ बेटा।
2: आपने अभी CDS का नाम लिया था, ये क्या है? क्या इससे सेना में जाया जा सकता है?
4: हाँ बिटिया, CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जिसके माध्यम से युवा भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अधिकारी बन सकते हैं। ये परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा साल में 2 बार कराई जाती है।
2: दादाजी।
4: हाँ बेटा।
2: ये किस तरह का एग्जाम होता है, इसमें किस तरह की तैयारी करनी होती है, जरा ये भी तो बताइए।
4: हाँ हाँ बेटा, इसमें लिखित परीक्षा होती है जिसमें अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और गणित जैसे विषय आते हैं। इसके बाद होता है SSB इंटरव्यू, जहां उम्मीदवार की सोच, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को परखा जाता है।
2: सच दादू, यानी यहाँ सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, पर्सनैलिटी भी मजबूत होनी चाहिए।
4: बिल्कुल, एक सैनिक सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि अपने साहस और चरित्र से बनता है बिटिया।
2: तो फिर बता ही दीजिए कि इसकी तैयारी कब और कैसे शुरू करनी चाहिए?
4: देखो बेटा, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के दौरान CDS की तैयारी शुरू कर सकते हैं।
2: अच्छा।
4: रोजाना समाचार और सामान्य ज्ञान पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी, साथ ही गणित और अंग्रेजी की पकड़ भी मजबूत होनी चाहिए। शारीरिक फिटनेस, दौड़, पुशअप, अनुशासन और सबसे जरूरी है कैडेट में आत्मविश्वास और नेतृत्व भावना का होना।
2: दादू।
4: हाँ बेटा।
2: सेना में कौन कौन सी पोस्ट होती है?
4: ये कोई आम पोस्ट नहीं है बेटा, सेना में इसे रैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
2: रैंक कहा जाता है।
4: हाँ, जो एक जिम्मेदारी और नेतृत्व की पहचान होती है। लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल, और इन सबसे ऊपर जनरल का पद होता है। हर रैंक के साथ जिम्मेदारी और सम्मान दोनों बढ़ते जाते हैं।
2: दादू।
4: हाँ।
2: यानी भारतीय थल सेना हमारे वो रक्षक है जिनके लिए कर्तव्य सबसे ऊपर है और देश सबसे पहले।
4: हाँ।
2: आपने भारतीय थल सेना के बारे में इतना कुछ बताया, लेकिन ये इतनी बड़ी फोर्स आखिर काम कैसे करती है? इतने सारे सैनिक, उन्हें कौन संभालता है भला? क्या इसमें भी कोई सिस्टम होता है दादाजी?
4: देखो बेटा, इतनी बड़ी सेना को संभालने के लिए बहुत मजबूत और व्यवस्थित कमांड सिस्टम होता है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना बेटा, सबसे ऊपर होते हैं थल सेना अध्यक्ष, जिन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कहा जाता है, जो पूरी भारतीय थल सेना का नेतृत्व करते हैं। उनके नीचे कई वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जो अलग अलग विभागों और क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभालते हैं। यानी हर स्तर पर एक साफ जिम्मेदारी तय होती है।
2: अच्छा, हर रैंक के अधिकारी की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? जरा विस्तार से ये भी तो बताइए ना दादाजी।
4: बताता हूँ बेटा, जरा पानी दो पहले।
2: ये लीजिए आपका पानी।
4: लाओ बेटा। तो सुनो बेटा, लेफ्टिनेंट एक छोटी टुकड़ी का नेतृत्व करता है। शुरुआत यहीं से होती है।
2: अच्छा।
4: कैप्टन को अपने सैनिकों का मार्गदर्शन और छोटे ऑपरेशन को संभालना होता है। मेजर ऑपरेशन की योजना और क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल पूरी बटालियन की जिम्मेदारी उठाता है और ब्रिगेडियर एक ब्रिगेड का नेतृत्व करता है।
2: और लेफ्टिनेंट जनरल?
4: हाँ बेटा, लेफ्टिनेंट जनरल जैसे उच्च पद के अधिकारी बड़े स्तर की रणनीति बनाते हैं और कई यूनिट्स का नेतृत्व करते हैं बेटा। और इन सबसे ऊपर की रैंक होती है जनरल, यानी थल सेना अध्यक्ष।
2: वाओ दादू, ये तो कमाल है। अच्छा बताइए कि सेना में सैनिकों को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है?
4: बहुत कठिन और अनुशासित ट्रेनिंग होती है बेटा इनकी। शारीरिक ट्रेनिंग जिसमें दौड़, चढ़ाई, बाधाएं पार कराई जाती हैं, हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है, युद्ध रणनीति, कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने की कला, ये सब सिखाई जाती है। उन्हें आधुनिक हथियार चलाना और अत्याधुनिक तकनीक से लैस उपकरण चलाना भी सिखाया जाता है।
2: अच्छा दादाजी।
4: हाँ,
2: इनकी ट्रेनिंग किन संस्थानों में होती है?
4: इसकी ट्रेनिंग देश के प्रमुख संस्थानों इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में होती है। यहीं से तैयार होकर देश के युवा एक काबिल अधिकारी बनते हैं बेटा।
2: आपने बताया था कि सैनिकों को हर तरह की कठिन ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन क्या उनकी ये ट्रेनिंग सच में इतनी मुश्किल होती है कि वो हर तरह के मौसम और जगह पर काम कर सके?
4: सेना की ट्रेनिंग का मकसद ही यही होता है कि एक सैनिक हर मौसम, हर जगह खुद को ढाल सके। उन्हें ऐसी परिस्थितियों में भी काम करना सिखाया जाता है जहां आम इंसान कुछ घंटों में ही हार मान लेते हैं।
2: मतलब दादू, हमारे सैनिक दुनिया की सबसे कठिन जगहों पर भी ड्यूटी करते हैं।
4: बिल्कुल बिटिया, और ऐसी ही एक जगह है जहां जाना ही अपने आप में एक परीक्षा है।
2: कौन सी जगह दादू?
4: वहां सिर्फ दुश्मन ही नहीं होता बेटा, बर्फीले तूफान, ग्लेशियर की दरारें, ऑक्सीजन की कमी और हर पल मौत का खतरा। फिर भी हमारे जवान 24 घंटे हर मौसम में उस बर्फ की दीवार पर खड़े रहते हैं।
2: दादू, इतनी कठिन जगह पर रहना, वो भी लगातार, ये तो बहुत ही जोखिम भरा होगा दादाजी।
4: इसलिए तो उन्हें कहा जाता है हिमवीर, क्योंकि वो सिर्फ दुश्मन से नहीं प्रकृति से भी लड़ते हैं बेटा। और हर हाल में तिरंगे की रक्षा करते हैं।
2: अच्छा दादू, भारतीय थल सेना में सबसे बड़ा सम्मान कौन सा होता है?
4: परमवीर चक्र। ये भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है बेटा, जो युद्ध के दौरान असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए दिया जाता है।
2: जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा को मिला था, जिन्होंने कारगिल युद्ध में ये तिल मांगे मोर कहते हुए दुश्मन के ठिकानों पर कब्जा किया था और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया था। ये तो सच में हीरो होते हैं दादाजी।
4: बिटिया, ये सिर्फ हीरो नहीं होते, ये इस देश की सांसें हैं। सांसें, ये वो ताकत है जिसकी वजह से हम सुरक्षित हैं। हम जिन खतरों से बेखबर हैं, ये जवान रोज उनका सामना करते हैं बेटा।
2: पर दादाजी, सेना में इतने सारे अधिकारी और सैनिक होते हैं, तो हर किसी को कैसे पता होता होगा कि उसे क्या करना है? कोई गलती नहीं होती क्या उनसे?
4: यही तो सेना की असली ताकत है बिटिया। स्पष्ट आदेश, क्लियर ऑर्डर्स और कड़ा अनुशासन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। सेना में हर काम एक तय व्यवस्था के तहत होता है बेटा। इसे कहते हैं कमांड सिस्टम।
2: कमांड सिस्टम? ये क्या होता है दादू, और ये कैसे काम करता है?
4: देखो बेटा, सेना में आदेश ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। सबसे ऊपर होते हैं थल सेना अध्यक्ष, उनके नीचे अलग अलग वरिष्ठ अधिकारी, फिर यूनिट कमांडर और फिर सैनिक। इस पूरी व्यवस्था को ऐसे बनाया गया है कि हर सैनिक को साफ पता हो उसे कब, कहां और कैसे काम करना है। समझी?
2: मतलब सब कुछ पहले से ही तय होता है।
4: इसी वजह से युद्ध जैसी कठिन स्थिति में भी कोई भ्रम नहीं होता।
2: अच्छा दादू, ये कमांड स्ट्रक्चर या जिसे तकनीकी विस्तार भी कहते हैं, ये क्या होता है?
4: दरअसल पूरे देश को सेना ने अलग अलग कमांड्स में बांटा है, ताकि हर क्षेत्र की सुरक्षा बेहतर तरीके से हो सके। जैसे कि उत्तरी कमांड जम्मू कश्मीर और पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी कमांड पश्चिमी सीमा क्षेत्र, पूर्वी कमांड पूर्वोत्तर भारत, दक्षिणी कमांड दक्षिण भारत, मध्य कमांड मध्य क्षेत्र। बेटा
2: अब समझ में आया, हर कमांड अपने अपने क्षेत्र की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी संभालती है।
4: बिल्कुल सही बेटा, और हर कमांड के अंदर भी कोर डिवीजन, ब्रिगेड, बटालियन जैसी इकाइयां होती हैं। इसी मजबूत व्यवस्था की वजह से सेना हर परिस्थिति में तेज और सटीक निर्णय ले पाती है।
2: यानी सेना एक मजबूत सिस्टम में बंधकर हमारे देश की रक्षा करती है दादाजी।
4: हाँ बेटा, एकदम सही समझा तुमने। तुम जानती हो, एक बटालियन में लगभग 600 से 900 सैनिक होते हैं। कितने होते हैं?
2: 600 से 900 सैनिक?
4: हाँ, और कई बटालियन मिलकर एक बड़ी ताकत बनाती है।
2: ओ, मतलब जैसे स्कूल में सेक्शन, क्लास और फिर पूरा स्कूल?
4: हाँ बिल्कुल वैसा ही बेटा।
2: अच्छा दादाजी, इनके काम करने का तरीका कितना सिस्टमैटिक है ना?
4: हाँ बेटा, हर सैनिक को उसकी ड्यूटी और जिम्मेदारी दी जाती है। आदेश ऊपर से नीचे तक पहुँचते हैं और हर कोई अनुशासन से काम करता है। इसी वजह से इतनी बड़ी सेना भी एकजुट होकर काम कर पाती है।
2: अच्छा दादू, क्या ये सेना आधुनिक तकनीकों का उपयोग करती है?
4: बिल्कुल बेटा, आज की भारतीय सेना में सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीकों का भरपूर उपयोग किया जाता है। जैसे संचार प्रणाली, जिन्हें तुम आजकल जेंजीज क्या बोलते हो?
2: नहीं दादाजी।
4: सोचो बेटा, कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार, सैटेलाइट, डिजिटल मैपिंग वगैरह वगैरह।
2: मतलब सब कुछ बहुत प्लानिंग से होता है दादाजी।
4: तो सेना का हर कदम सोच समझकर और एक सुनियोजित योजना के साथ उठाया जाता है बेटा।
2: दादू, अब समझ में आया कि इतनी बड़ी सेना कैसे एक साथ मिलकर हमारे देश की रक्षा करती है।
4: क्योंकि बिटिया, ये सिर्फ सैनिकों का समूह नहीं है, बल्कि अनुशासन, विश्वास और देशभक्ति का संगम है। भारतीय थल सेना वो शक्ति है जो हर खतरे के सामने दीवार बनकर खड़ी रहती है। ये वो विश्वास है जिसके कारण हर भारतीय निडरता से जी पाता है बेटा।
2: दादू, आपने भारतीय थल सेना के बारे में इतना कुछ बताया, लेकिन एक बात और बताइए, इतनी बड़ी फोर्स की कमांड भला कौन संभालता है?
4: देखो बेटा, भारतीय थल सेना सिर्फ बहादुरी से नहीं, बल्कि एक मजबूत संगठन और अनुशासन से चलती है। इसका नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के पास होता है और इसका नेतृत्व करते हैं थल सेना अध्यक्ष।
2: वाह, कितना बड़ा नेटवर्क है ये तो। अच्छा दादू, ये बताइए कि सैनिकों को कौन कौन से हथियार चलाने सिखाए जाते हैं?
4: बेटा, उन्हें आधुनिक हथियारों की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे राइफल, मशीन गन, ग्रेनेड, टैंक जैसे T-90 और अर्जुन, इसके अलावा मिसाइल सिस्टम जैसे ब्रह्मोस वगैरह।
2: मतलब यहाँ भी टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस होती है दादाजी।
4: हाँ बेटा, आज की सेना सिर्फ ताकत नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का भी मजबूत संगम है। ये सेना सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि आधुनिक टेक्नोलॉजी से चलती है। वॉकी टॉकी और वायरलेस सेट ड्रोन और सर्विलांस कैमरे, ये सब अब रूटीन में इस्तेमाल होने वाले उपकरण हैं।
2: मतलब वो दूर छुपकर बैठे दुश्मन को भी आसानी से देख सकते हैं।
4: हाँ बिटिया, रडार और ड्रोन की मदद से दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। सबसे जरूरी, हर संदेश कोड भाषा में भेजा जाता है बेटा, ताकि दुश्मन उसे समझ ना सके।
2: वाह, मतलब सेना बहुत स्मार्ट भी होती है दादाजी।
4: तो यही टेक्नोलॉजी सेना को और भी ताकतवर बनाती है बेटा।
2: दादू, युद्ध में ऑपरेशन के दौरान कैसा मंजर होता होगा ना, मैं तो ये सोचकर भी कांप रही हूँ। जब सच में युद्ध होता होगा तो सेना कैसे काम करती है दादाजी?
4: युद्ध में हर कदम योजना के अनुसार होता है बिटिया। सबसे पहले दुश्मन की जानकारी जुटाई जाती है, फिर रणनीति बनाई जाती है और उसके बाद सैनिक अलग अलग टीम में अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। इन्फेंट्री आगे बढ़ती है, टैंक सपोर्ट देते हैं, तोपखाना दूर से हमला करता है और कमांडर पूरे ऑपरेशन को नियंत्रित करता है।
2: सुनकर ही कितना रोमांचक लग रहा है दादाजी। इसका मतलब सब एक साथ मिलकर काम करते हैं।
4: हाँ बिटिया, युद्ध में जीत एकता, अनुशासन और रणनीति से मिलती है।
2: सैनिक रैंक का क्या काम होता है दादाजी?
4: देखो बेटा, सिपाही सेना का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो जमीन पर लड़ने का काम करता है।
2: अच्छा।
4: उसके बाद हवलदार अपनी टीम को दिशा देने का काम करता है, सूबेदार अनुभवी होता है, वो नेतृत्व का काम संभालता है।
2: मतलब हर किसी की अपनी अहम भूमिका होती है।
4: हाँ बिटिया, यहाँ भले ही सबकी रैंक अलग हो पर यहाँ कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। हर सैनिक देश की रक्षा में बराबर का भागीदार होता है। हर रैंक के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है और देश के प्रति कर्तव्य भी।
2: दादू, मतलब ये सिर्फ पद नहीं बल्कि भरोसा है।
4: बिल्कुल बिटिया।
2: दादाजी, सैनिकों को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है?
4: बहुत कठिन और बहुत अनुशासित ट्रेनिंग होती है बेटा, और इसके कई चरण होते हैं।
2: कैसे?
4: सबसे पहले आता है शारीरिक प्रशिक्षण, जिसमें लंबी दौड़ 5 से 10 किलोमीटर करीब, बाधा दौड़, रस्सी चढ़ाई, दीवार पार करना, सहन शक्ति और स्टेमिना बढ़ाने का अभ्यास कराया जाता है।
2: अच्छा।
4: फिर आता है बेटा हथियार प्रशिक्षण, जिसमें राइफल, मशीन गन, पिस्तौल, ग्रेनेड फेंकना, लक्ष्य भेदन, फायर कंट्रोल और सुरक्षा नियम सिखाए जाते हैं। उसके बाद युद्ध कौशल या युद्ध रणनीति, जिसमें टीम मूवमेंट, नक्शा और कंपास या दिशा सूचक पढ़ना, रात में ऑपरेशन का अभ्यास कराया जाता है।
2: अच्छा दादाजी, मैंने सुना था कि इन जवानों को सर्वाइवल ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, वो भला किस तरह का अभ्यास होता है?
4: हाँ बेटा, सर्वाइवल ट्रेनिंग में जंगल में जीवित रहना सिखाया जाता है। वहाँ कम संसाधनों में कैसे काम करेंगे, ठंड, गर्मी, बारिश, हर मौसम में टिके रहने की परीक्षा होती है बेटा। फिर आता है मानसिक प्रशिक्षण, ये सबसे कठिन अभ्यास है। इसमें तनाव में निर्णय लेना, डर पर नियंत्रण, अनुशासन और नेतृत्व करना सिखाया जाता है।
2: इतना कठिन अभ्यास। अच्छा दादू।
4: हाँ।
2: क्या उन्हें आधुनिक तकनीकें भी सिखाई जाती हैं?
4: बिल्कुल बेटा, उन्हें ड्रोन संचालन, कम्युनिकेशन सिस्टम, नाइट विजन उपकरण आदि तकनीकों का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है।
2: दादू, ये तो बहुत ही मुश्किल होता होगा ना, इतनी ताकत पाने के लिए ट्रेनिंग भी कितनी जी जान लगाकर करनी होती होगी ना?
4: हाँ बेटा, बहुत कठिन। सुबह से लेकर रात तक दौड़, पहाड़ चढ़ना, बाधाएं पार करना, हथियार चलाना और कठिन हालात में जीना, इन सबको गर्म लोहे सा तपाकर सब कुछ सिखाया जाता है बेटा।
2: सेना में आगे कैसे बढ़ते हैं दादाजी?
4: सेना में पद धीरे धीरे बढ़ते हैं बेटा, जैसे सबसे पहले लेफ्टिनेंट के पद से शुरू होकर कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर और फिर जनरल तक पहुंचा जाता है।
2: मतलब हर कदम पर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, सही कहा ना मैंने दादू?
4: हाँ बेटा बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसके अलावा उन्हें अपने देशवासियों से सम्मान भी तो मिलता है।
2: दादू क्या हमारे सैनिक देश के बाहर जाकर भी देश का गौरव बढ़ाते हैं?
4: बिल्कुल बिटिया, संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में भारतीय सेना दुनिया में शांति स्थापित करने का काम करती है।
2: तो सेना का असली काम क्या होता है?
4: तीन बड़े काम होते हैं, देश की सीमा की रक्षा करना, युद्ध में दुश्मन से लड़ना, देश के अंदर संकट में मदद करना, यही सेना का असली काम है।
2: और अगर कोई प्राकृतिक आपदा आए जैसे बाढ़, भूकंप, तब भी सेना आती है?
4: हाँ बिटिया, जब कोई मुसीबत आती है तो सेना ही सबसे पहले मदद के लिए खड़ी होती है बेटा।
2: और मैं सेना में जाना चाहूँ तो?
4: हाँ बेटा बिल्कुल, 12वीं के बाद NDA और ग्रेजुएशन के बाद CDS, बाकी की तैयारी के लिए पढ़ाई जिसमें मैथ्स, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी का अभ्यास और रोज व्यायाम, अनुशासन, आत्मविश्वास, ये ही चाहिए बस। बाकी सेना सिर्फ नौकरी नहीं है बेटा, ये एक अनुशासन से भरा हुआ जीवन है।
2: अच्छा दादाजी, सियाचिन के बारे में बताइए ना।
4: सियाचिन जहाँ तापमान 50 तक जाता है बेटा,
2: वहाँ कोई भी रह सकता है क्या?
4: सिर्फ हमारे शेर दिल सैनिक, इसीलिए उन्हें हिमवीर कहते हैं बेटा।
2: दादू।
4: हाँ बेटा।
2: अब समझ में आया कि हमारी सेना क्या है।
4: भारतीय थल सेना सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं करती, ये देश की आत्मा की रक्षा करती है बेटा।
2: समझ गई दादाजी, आज आपने थल सेना के बारे में जो भी बताया मैं उसे हमेशा याद रखूंगी, और मेरे देश के हर जांबाज का मैं हमेशा सम्मान करूंगी। जय हिंद दादाजी।
4: जय हिंद बेटा, जय हिंद। अच्छा चलो अब मैं आराम करूंगा बेटा।
5: अभी आप सुन रहे थे रेडियो नाटक देश के संस्थान, सरहदों की अटूट ढाल, भारतीय थल सेना। श्रोताओं आपके साथ मैं भगवती सक्सेना,
4: मैं दीपक नेमा।
5: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन किया अमित गुंदानी ने, समन्वय सहयोग था सतीश बाथम का, लेखन किया स्वाति गिरी ने, प्रस्तुति थी रेडियो आजाद हिंद की। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: नमस्कार श्रोताओं, हम हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम आजाद हिंद की एक और कड़ी जिसमें हम बात करेंगे।
2: श्रोताओं मेरा भी नमस्कार स्वीकार कीजिए। क्या बात है तारीख, आज कुछ जल्दी में लग रही हो।
1: अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल आज आजाद हिंद में हम जिन महान देशभक्तों की बात करेंगे ना उनके कार्य ही ऐसे हैं कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही।
2: अच्छा ऐसा है क्या, तो जल्दी से बताना शुरू करो, हमारे श्रोतागण और मैं सब लोग बहुत उत्सुक हैं सुनने के लिए।
1: तो श्रोताओं आइए आज इस कड़ी में हम बात करते हैं अल्लूरी सीताराम राजू की।

0: इनका जन्म विशाखापट्टनम के एक गांव में 4 जुलाई 1897 को हुआ था और लालन पालन एक कलेक्टर के घर में।
1: बचपन से ही राजू पढ़ाई लिखाई में बहुत कुशाग्र थे और उन्होंने स्वयं के प्रयासों से संस्कृत और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया और यहीं से इनके मन में क्रांति के बीज अंकुरित हुए।
0: वैसे तो राजू गांधी जी के सिद्धांतों के हिमायती थे और मंदिरों में धार्मिक उपदेश और भजन कीर्तन किया करते थे, मगर जब उन्हें लगा कि अहिंसक आंदोलन इतना प्रभावी सिद्ध नहीं हो पा रहा तो उन्होंने अपना बैरागी बाना छोड़ दिया और आदिवासी जनता को इकट्ठा करके सेना के रूप में ढालना शुरू किया
1: और इस तरह आरंभ हुआ एक नया क्रांति युग।
2: दुम तक दुम दुम दा, तक दुम दुम दा, दुम तक दुम दुम दा।

0: लोग राजू की सेना में भर्ती होने लगे और उनकी सेना का आकार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। लोगों को राजू पे बहुत विश्वास था। वो उसे देवता की तरह पूजते थे।
1: अब राजू के लिए सबसे बड़ी समस्या थी हथियार। उनके पास तीर कमान तो थे मगर बंदूकें और आग्नेय हथियार नहीं थे, और उसका हल ये निकाला गया कि पुलिस के हथियारों को लूटा जाए और डकैती डाली जाए। बस राजू और उसके साथी जान हथेली पे लेके अपनी मंजिल की ओर चल पड़े।
0: और श्रोताओं, राजू ने एक के बाद एक थानों को लूटना शुरू कर दिया। वे लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि राजू के नाम से पुलिस वाले थाने छोड़ छोड़ कर भाग जाते थे।
1: इसी क्रम में राजू ने रंपा क्षेत्र के चिंतापल्ली और क्रभड़ा देवी पैठ में लूटपाट के द्वारा बहुत से हथियार जमा किए। इधर अंग्रेजों को भी अब लगने लगा था कि यदि राजू को रोका नहीं गया तो ये अंग्रेजी राज्य के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकता है।
0: बस फिर क्या था, तुरंत दो अंग्रेज अफसरों स्कॉट और आयर की नियुक्ति कर दी गई और उन्होंने 24 सितंबर 1922 को राजू पर हमला कर दिया। मगर वे राजू की सेना के आगे टिक नहीं पाए और दोनों अफसरों की मौत हो गई।
1: इसके बाद राजू का नाम अंग्रेजों के लिए आतंक का पर्याय बन गया। दरअसल राजू सारी योजनाएं इतनी चतुराई से बनाते थे कि अंग्रेज उसका छोर भी नहीं पा पाते थे और राजू काम करके निकल जाते थे।
0: एक बार की बात है, उन दिनों के एक बहुत प्रसिद्ध क्रांतिकारी बाबा पृथ्वी सिंह को अंडमान जेल से आंध्र प्रदेश की जेल में ले जाया जा रहा था और बाबा चलती ट्रेन से कूदकर भाग निकले, मगर पकड़ लिए गए और फिर से जेल में डाल दिए गए। तभी राजू ने ऐलान कर दिया कि फला तारीख को इतने बजे मैं बाबा पृथ्वी सिंह जी को जेल से आजाद करवाऊंगा।
1: अंग्रेजों को पता था कि राजू जो कहता है वो करता भी है। बस फिर क्या था, आसपास के सारे थानों से पुलिस बुलाकर जेल को छावनी बना दिया गया। और इधर राजू ने अपनी सेना को छोटे छोटे बहुत से दलों में बांटकर उन थानों को लूटने भेज दिया जिनका पुलिस बल जेल की सुरक्षा में लगाया गया था।
0: इस तरह अपनी सूझबूझ से राजू ने एक ही प्रयास में हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा प्राप्त कर लिया। और अब राजू और उसके सैनिक हथियारों से लैस होकर जोश से भरकर चल पड़े अपनी धरती की गुलामी मिटाने के लिए।

0: अंग्रेजों ने असम राइफल्स नाम की एक पूरी सेना राजू के पीछे लगा दी। 6 मई 1924 को दोनों सेनाओं का मुकाबला हुआ। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध हुआ। बहुत से सैनिक मारे गए, मगर राजू की सेना का नुकसान कुछ ज्यादा हुआ। उसके बहुत खास 12 सैनिक मारे गए और बहुत से घायल हो गए। राजू भी बुरी तरह जख्मी हुआ,
1: मगर उसके साथ ही उसको बचाकर वहां से ले गए। उनकी योजना थी कि फिर से सैनिकों को इकट्ठा कर अंग्रेजों को इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। अगले दिन 7 मई को जब घायल राजू गोदावरी नदी में स्नान कर रहा था, तभी किसी मुखबिर की सूचना पे अंग्रेज सेना वहां आ धमकी।
0: वहां राजू और उसके साथियों ने उनका मुकाबला किया, मगर अंग्रेजों की विशाल सेना के आगे भला मुट्ठी भर लोग कहां टिकते। राजू को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर अंग्रेजों को लगा कि यदि राजू को लेकर कोतवाली गए या जेल में राजू को रखा तो इसके साथी जो कि जेलों पे हमले करने के आदी हैं, इसको जरूर छुड़ा के ले जाएंगे।
1: बस इसी डर से उन्होंने राजू को एक पेड़ से बांधा और गोलियों से छलनी कर दिया और एक और महान देशभक्त शहीदों की फहरिस्त में शामिल हो गया और हमेशा हमेशा के लिए भारतवासियों के दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ गया।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: वीर जी वोरा, वो व्यापारी राजकुमार जिसने यूरोपीय कंपनियों को अपने इशारों पर नचाया। 17वीं शताब्दी के व्यस्त सूरत बंदरगाह में अंग्रेजी और डच ईस्ट इंडिया कंपनियां समुद्री प्रभुत्व के सपने लेकर आईं, लेकिन उनका सामना एक ऐसे स्थानीय व्यापारी से हुआ जो वैश्विक बाजार को अपनी इच्छा शक्ति से मोड़ने की ताकत रखता था। उसका नाम था वीरजी वोरा, एक बनिया व्यापारी जिसका प्रभाव इतना व्यापक था कि तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में उसे सभी यूरोपीय वस्तुओं का एकमात्र एकाधिकार बताया गया है। हालांकि वोरा के पास कभी भी कंपनी ब्रोकर का औपचारिक पद नहीं था, फिर भी वो दोनों यूरोपीय शक्तियों के लिए अपरिहार्य बैंकर और मुख्य खरीदार था। सूरत में उसका मोनोपसोनी यानी एकमात्र खरीदार का अधिकार था, जिससे वो छोटे व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा करने से रोकता था और ये सुनिश्चित करता था कि हर बड़े सौदे का समय और कीमत उसके अपने निर्णय के अनुसार रहे। उसकी वित्तीय पहुंच चौंका देने वाली थी। 1622 में डच कंपनी वीओसी ने उससे 36,000 महमूदी उधार लिए थे। 1628 तक वो आगरा जैसे दूर दराज के क्षेत्रों के लिए भी EIC को भारी ऋण पत्र यानी लेटर्स ऑफ क्रेडिट जारी कर रहा था। वोरा की शक्ति अपनी शर्तें मनवाने की उसकी क्षमता में सबसे अच्छी तरह दिखाई देती थी। 1625 में जब अंग्रेजों ने काली मिर्च खरीदने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि वोरा ने पूरी आपूर्ति पर कब्जा कर रखा है। उसने तब तक बेचने से इनकार कर दिया जब तक कि कंपनी ने उसे अपने सबसे अच्छे मूंगे के 25 बक्से उस कीमत पर नहीं सौंप दिए, जिससे अंग्रेजों का मुनाफा काफी कम हो गया। चूंकि कंपनियों के पास अक्सर कपड़ा खरीदने के लिए नगदी सोना चांदी की कमी होती थी, इसलिए वे टिके रहने के लिए वोरा की विशाल तरल पूंजी पर निर्भर थे। उसने इस कमजोरी का बेरहमी से फायदा उठाया। कभी कभी कंपनियों को लंदन या बटाविया की अपनी यात्राओं में देरी करने के लिए मजबूर किया, ताकि उनके जहाज सूरत के स्थानीय व्यापारियों के लिए माल ढोने का काम कर सकें। EIC अधिकारी एडवर्ड नाइप ने 1643 में कंपनी की हताशा को दर्ज किया। उन्होंने शिकायत की कि वोरा कालीकट में कोड़ियों के दाम पर काली मिर्च खरीदता और अंग्रेजों को उसे दोगुनी कीमत पर बेचता। नाइप ने अपने मालिकों को चेतावनी दी थी कि जब तक कंपनी वोरा के कर्ज में इतनी डूबी रहेगी, और व्यापारिक समुदाय का शिखर बना रहा। हालांकि साल 1664 में तब एक विनाशकारी बदलाव आया जब मराठों ने सूरत पर आक्रमण किया। बताया जाता है कि इस हमले में वोरा को लगभग 5,00,000 रुपए का नुकसान हुआ, एक ऐसा झटका जो छोटे व्यापारियों को नष्ट कर देता। फिर भी वो एक सक्रिय व्यक्ति बना रहा जो पारस्परिक निर्भरता के रिश्ते को दर्शाता है। जहां शक्तिशाली दिखने वाली यूरोपीय कंपनियां अक्सर भारतीय पूंजी की दया पर थीं, वीरजी वोरा की विरासत एक ऐसे मर्चेंट प्रिंस की है जिसने अंग्रेजों के भारत को जीतने से बहुत पहले उन पर महारत हासिल कर ली थी। उनकी कहानी याद दिलाती है कि कंपनियों का शुरुआती इतिहास तत्काल जीत का नहीं था, बल्कि स्थानीय दिग्गजों के साथ एक नाजुक रणनीतिक गठबंधन का था, जिनका अक्सर बाजार पर अपर हैंड रहता था।
2: नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रजा मुराद और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं रविंद्र भवन में, जहां सोमवार को कला की अनंत यात्रा नृत्य उत्सव के तहत कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी।

0: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए रविंद्र भवन सभागार में।
1: Yeah.

Tak dengar dam.

आदरणीय दिव्य सज्जनों, अब बारी है पदम की। और पदम में अलय वायु थे करना। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को देखिए तो प्रेम और भक्ति के अलौकिक संयोग के अनेक प्रसंग हमारी स्मृति में दौड़ते हैं। रसिक प्रिय राधा से लेकर अनेक गोपियों के हृदय पटल पर मुरली माधव की अमिट छवियां अंकित हैं। कृष्ण का मिलना जीवन की बेशकीमती संपदा की प्राप्ति है, लेकिन उनका वियोग जैसे तपती धरती पर छांव को ढूंढना है। कृष्ण को पाने की यह भटकन बेचैनी कसरत और व्यथा ही इस प्रस्तुति का मूल है। रचना राग कन्नड़ा आदि ताल निबद्ध है और इसे प्रस्तुत करने जा रही है वृंदा जोशी, मोक्ष कडुकोज्वाला, हर्षिता नायर, आराध्या साहू, स्वाति पिल्लई, अश्वती पिल्लई, परल वालेचा, दीक्षा द्वेदी और याशिका लक्ष्मणी। प्रस्तुत है अलय पाई थे कन्ना।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी सुने आपने रेडियो रिपोर्ट और वक्त है कार्यक्रम परिक्रमा का। ये सुनते हैं परिक्रमा। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सुनते हैं परिक्रमा। जो कोर्स में पढ़ा उसे प्रयोग कर समझना बच्चों को उत्साहित कर रहा था। अवसर था आंचलिक विज्ञान केंद्र में आयोजित रसायन विज्ञान कार्यशाला का। इस कार्यशाला ने सीखने के पारंपरिक तरीकों को एक नए और रोचक आयाम में बदल दिया। ये केवल एक कार्यशाला नहीं बल्कि जिज्ञासा, प्रयोग और खोज का जीवंत अनुभव था, जहाँ किताबों में पढ़े गए सिद्धांत प्रयोगशाला में साकार होते नजर आए। 4 से 6 मई तक आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य रसायन विज्ञान को केवल एक विषय के रूप में नहीं बल्कि दैनिक जीवन से जुड़े एक महत्वपूर्ण विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करना था। विद्यार्थियों ने इसमें विभिन्न प्रयोग किए और समझा कि सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में विटामिन डी कैसे बनता है, अम्ल और क्षार की पहचान कैसे की जाती है तथा फॉरेंसिक रसायन विज्ञान के माध्यम से साक्ष्यों का विश्लेषण कैसे होता है। तहजीब और अदब के शहर भोपाल में आयोजित महफिल याराना ने दोस्ती और ममता के खूबसूरत संगम को जीवंत कर दिया। मातृ दिवस के माहौल के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में शहर की करीब 30 महिलाओं ने भाग लेकर गंगा जमुनी संस्कृति की मिसाल पेश की। कार्यक्रम में मातृ दिवस के उपलक्ष्य में सभी माताओं का विशेष सम्मान किया गया। कार्यक्रम का सबसे भावुक पल तब आया जब प्रतिभागियों ने माँ और दोस्ती पर लिखी अपनी कविताएं और नज्में प्रस्तुत की। कुछ प्रतिभागियों ने अपने माता पिता की पुरानी रचनाएं भी साझा की। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर प्रणति पर्व का आयोजन टैगोर विश्व कला एवं संस्कृति केंद्र द्वारा 7 मई को किया जा रहा है। इस अवसर पर गुरुदेव की सांस्कृतिक विरासत पर संवाद और उनकी चयनित कविताओं का पाठ आज होगा। टैगोर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के विद्यार्थी आशुतोष लवकुश और अन्य कविताओं का वाचन करेंगे। टैगोर कला केंद्र के निदेशक ने बताया कि प्रणति पर्व में गुरुदेव के गीतों पर आधारित दृश्य श्रव्य रूपक गीतांजलि पर केंद्रित बहुरंगी पुस्तिका का लोकार्पण भी किया जाएगा। मौके पर मुक्तधारा सभागार में सांस्कृतिक सभा होगी।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल में आयोजित वर्किंग विद कम्युनिटी कार्यक्रम के तहत छात्र समूह ने विभिन्न गांवों में पहुंचकर सामाजिक मुद्दों पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए। बीएड एवं 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड पाठ्यक्रम के छात्र रिलखेड़ा, मेंडोरी और भानपुर केकरिया गांव में पहुंचे। यहां उन्होंने समावेशी शिक्षा, भ्रष्टाचार व जवाबदेही, पर्यावरण प्रदूषण, घरेलू हिंसा, महिला सशक्तिकरण, सोशल मीडिया की लत, नशा मुक्ति, मानवाधिकार, बाल अधिकार, जेंडर पहचान और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर ग्रामीणों को जागरूक किया। छात्रों ने ग्रामीणों के साथ संवाद स्थापित करते हुए उनके अनुभवों को भी समझा। शहर के संगीत प्रेमियों के लिए 9 मई की शाम खास होने जा रही है, जब सुकून म्यूजिकल इवनिंग के जरिए मधुर सुरों की महफिल सजेगी। इस संगीतमय आयोजन में लाइव सिंगिंग के साथ ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा जहां संगीत सचमुच एक एहसास बनकर उभरेगा। कार्यक्रम में गायिका निधि सारुलकर पारखी और श्रेया धनुरकर अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को सुरों के सफर पर ले जाएंगी।

शहर के संगीत प्रेमियों के लिए 10 मई की शाम यादगार होने वाली है। अरे क्लब भोपाल द्वारा सुरमई शाम 1990-2000 एडिशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पुराने दौर के लोकप्रिय गीतों की मधुर प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इस संगीतमय शाम में अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे कई सारे गायक। ब्रीथ एंड बैलेंस एवं हिंदुस्तान प्रकाशन के संयुक्त तत्वावधान में 9 मई को रचना पाठ एवं किताब चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर कवियत्री वैशाली थापा की पुस्तक मेरे घर में पृथ्वी पर विस्तृत चर्चा के साथ रचना पाठ भी होगा। कार्यक्रम में वक्ता के रूप में गीत चतुर्वेदी और रक्षा दुबे चौबे अपने विचार साझा करेंगे। ये आयोजन 9 मई को शाम ब्रीथ एंड बैलेंस में आयोजित होगा।

नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD जिसे एक्टिंग का मंदिर माना जाता है, इस बार अपनी चिल्ड्रंस थिएटर वर्कशॉप लेकर भोपाल आ रहा है। 30 दिनों की प्रोडक्शन ओरिएंटेड चिल्ड्रंस वर्कशॉप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित की जाएगी। खास बात यह कि इसमें 8 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। वर्कशॉप के डायरेक्टर MPSD के डायरेक्टर संजय श्रीवास्तव रहेंगे, वह खुद NSD एलमनी है।

मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय की में एक महीने की सालसा डांस वर्कशॉप इन दिनों चल रही है। वर्कशॉप का उद्देश्य स्टूडेंट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लैटिन डांस फॉर्म से परिचित कराना और उनकी तकनीकी दक्षता को विकसित करना है। डांस विशेषज्ञों ने बताया कि कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को क्यूबन LAON 1 और न्यूयॉर्क NYON 2 स्टाइल सालसा की बारीकियों के साथ लैटिन डांस की दूसरी विधाओं जैसे जाइव, चाचा और सांभा की टेक्निक भी सिखाई जा रही है। वहीं रीजनल साइंस सेंटर में चल रही क्रिएटिव समर वर्कशॉप के तहत स्टूडेंट्स के लिए विशेष केमिस्ट्री वर्कशॉप आयोजित की गई। इसका उद्देश्य कठिन सिद्धांतों को आसान और एक्सपेरिमेंटल तरीके से समझाना था। लर्निंग बॉय डूइंग पर आधारित इस सत्र में बच्चों को समूहों में बांटकर अलग अलग प्रयोग कराए गए। तो ये थी आज की परिक्रमा। सुनते रहिए FM 90.8 MHz रेडियो आधा दिन, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: पीटर न्यूट्स कमीशन 1627 एक कूटनीतिक विफलता जिसने डच व्यापारियों को झुका दिया। 1627 में 290 लोगों और 78 घोड़ों का एक भव्य जुलूस टोकुगावा शोगुनेट की सत्ता के केंद्र ईदो की ओर बढ़ा। इसके नेतृत्व में पीटर न्यूट्स थे, जिन्हें बटाविया के डच गवर्नर जनरल ने ताइवान का नया गवर्नर नियुक्त कर एक उच्च स्तरीय कूटनीतिक मिशन पर भेजा था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी तरह शोगुनेट को ताइवान जाने वाले जापानी जहाजों को वर्मिलियन सील यानी लाल मुहर वाले व्यापारिक पास जारी करने से रोकना चाहती थी। शुरुआत में स्वागत उत्साहजनक लगा। न्यूट्स का सत्कार उन भव्य समारोह के साथ किया गया जो आमतौर पर कोरिया के शाही दूतों के लिए आरक्षित थे। हालांकि न्यूट्स के अहंकारी स्वभाव और टोकुगावा राज्य के कठोर नियमों के बीच टकराव के कारण मिशन जल्दी ही पटरी से उतर गया। विवाद का मुख्य बिंदु न्यूट्स द्वारा लाए गए पत्र थे। ये पत्र बटाविया के गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षरित थे। जापानी अधिकारियों के लिए ये शिष्टाचार का एक असहनीय उल्लंघन था। उनका तर्क था कि गवर्नर जनरल केवल जावा का एक जागीरदार है। उनके दृष्टिकोण से एक अधीनस्थ का अधीनस्थ सीधे जापान के राजा को संबोधित करने का दुस्साहस कर रहा था। इस कृत्य को अभद्र और अवैध माना गया। न्यूट्स ने खुद को एक आधिकारिक राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में पेश किया जो ताइवान में डच संप्रभुता पर बातचीत करने आया था, लेकिन शोगुनेट की विश्व दृष्टि अलग थी। वे केवल राज्यों के बीच होने वाले शाही कार्यों को मान्यता देते थे। उनके लिए न्यूट्स केवल एक व्यापारी था जो व्यापार के लिए एक याचिका लेकर आया था, जिसे राजदूत का दर्जा नहीं दिया जा सकता था। जब 2 सप्ताह के इंतजार के बाद भी शोगुन ने मिलने का समय नहीं दिया तो न्यूट्स का धैर्य जवाब दे गया। कूटनीतिक अवज्ञा के अंतिम कृत्य के रूप में वे बिना आधिकारिक अनुमति के ईदो छोड़कर चले गए। टोकुगावा शासन की प्रतिक्रिया त्वरित और विनाशकारी थी। न्यूट्स के आचरण और मिशन की अभद्रता से अपमानित होकर शोगुनेट ने डच व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। कई वर्षों तक जापान में डच वाणिज्य पूरी तरह ठप रहा। 1632 में व्यापार तभी फिर से शुरू हो सका जब डच कंपनी ने अपनी रणनीति में मौलिक बदलाव किया। उन्होंने शोगुन के साथ एक समान राज्य भागीदार के रूप में व्यवहार करना बंद कर दिया। डच लोगों ने अपने कूटनीतिक विशेषाधिकारों को त्याग दिया और टोकुगावा राज्य की विनम्र प्रजा के रूप में रहना स्वीकार किया। यह समझौता उन्हें अगले 2 शताब्दियों तक डेशिमा के छोटे से द्वीप पर टिके रहने की अनुमति देता रहा, बशर्ते वे विनम्र व्यापारियों के रूप में कार्य करें और अपने जापानी मालिकों को बाहरी दुनिया की खुफिया जानकारी प्रदान करते रहें।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: ख्वाजा अहमद का मिशन 1665, जब मुगल दूत डच राजधानी पहुंचा। 3 मार्च 1665 को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के समुद्री साम्राज्य के तांत्रिक केंद्र बटाविया कैसल के डक पर कदम रखा। उसका नाम ख्वाजा अहमद था और वो कोई व्यापारी नहीं था, बल्कि वो बंगाल के शक्तिशाली सूबेदार गवर्नर और मुगल शासक औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान का कूटनीतिक दूत था। जहां इतिहास एशियाई दरबारों में यात्रा करने वाले यूरोपीय राजदूतों के वृत्तांतों से भरा है, वहीं अहमद का मिशन इसके विपरीत था। ये एक मुगल दूत द्वारा यूरोपीय कंपनी राज्य की राजधानी की यात्रा का एक दुर्लभ उदाहरण था। ये मिशन प्रांतीय कूटनीति का एक सटीक उदाहरण था, जहां स्थानीय मुगल गवर्नर राजाओं की स्वायत्तता और वजन के साथ काम करते थे। ख्वाजा अहमद एक उच्च तनाव के क्षण में पहुंचा था। शाइस्ता खान चटगांव बंदरगाह को जीतने और अरकान खत्म करने के लिए एक बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा था। डच एक अनिश्चित स्थिति में थे। वे बंगाल में अपने व्यापार से भारी लाभ कमा रहे थे, लेकिन साथ ही वे शाइस्ता खान के दुश्मनों के क्षेत्रों में भी व्यापार कर रहे थे। अहमद ने डच सरकार के सामने एक पत्र और उपहार प्रस्तुत किए, जिसमें एक कड़ा अल्टीमेटम छिपा हुआ था। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, वीओसी को तुरंत अपनी अरकान फैक्ट्री बंद करनी होगी। चटगांव अभियान में जहाजों और तोपों के साथ मुगल सेना का समर्थन करना होगा। यदि डच इनकार करते तो शाइस्ता खान ने उन्हें न केवल बंगाल से निकालने की धमकी दी, बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य में उनके संचालन को रोकने की चेतावनी दी। बटाविया में डच प्रशासक एक रणनीतिक दुविधा में फंस गए। हालांकि उन्होंने शुरुआत में व्यवहारिक कारणों की कमी का बहाना बनाकर देरी करने की कोशिश की, लेकिन वो समझ गए थे कि वो दिल्ली में मुगल शासक से अपील करके शाइस्ता खान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कंपनी के अधिकारियों का मानना था कि सूबेदार केंद्रीय दरबार से बहुत दूर रहता है और वो दिल्ली के किसी भी हस्तक्षेप से बहुत पहले ही प्रांतों में डचों को परिणाम भुगतने पर मजबूर कर सकता है। ख्वाजा अहमद की मिशन बंगाल के लिए एक बड़ी सफलता थी। पूर्ण व्यावसायिक विनाश के खतरे का सामना करते हुए वीओसी ने अंततः अरकान में अपना लॉज यानी व्यापारिक केंद्र बंद कर दिया। ये दुर्लभ मिशन दिखाता है कि शक्तिशाली दिखने वाले यूरोपीय कंपनियों को मौजूदा एशियाई सत्ता संरचनाओं के साथ आर्थिक और सैन्य रूप से तालमेल बिठाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। बटाविया में ख्वाजा अहमद के आगमन ने साबित कर दिया था कि 17वीं शताब्दी में ओरिएंट की रानी यानी बटाविया को अभी भी भारतीय उपमहाद्वीप के मालिकों को जवाब देना पड़ता था।
2: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
3: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: धर्म महासभा के पश्चात उनका अमेरिका के विभिन्न स्थानों पर जाकर के व्याख्यान देने का दौर शुरू हुआ। एक कंपनी के साथ उनका 3 महीने का अनुबंध भी हुआ। वे व्याख्यान के बदले प्राप्त सम्मान राशि जमा करके भारत में आकर के विकास मूलक कार्य करना चाहते थे।
1: उन दिनों अमेरिकन समाज 2 भागों में बटा हुआ था। विज्ञान की प्रगति के साथ नवीन विचारधाराओं का जन्म हुआ, जो उदारपंथी था, और उग्रपंथी प्राचीन लोग बाइबल को सीने से चिपकाए हुए उसमें कही गई सारी बातों का पालन करने को ही धर्म मानते थे। उन दिनों आध्यात्मिक उन्नति को वास्तविक सामाजिक उन्नति का आधार ना मानकर बल्कि सामाजिक और आर्थिक समृद्धि को ही आध्यात्मिक उन्नति का कारण या लक्षण कहा जाता था। अटलांटिक महासागर के तटीय भाग या पूर्वांचल में उदार पंथियों का प्रभाव अधिक था और मध्य पश्चिम तथा दक्षिण में प्राचीन पंथी प्रबल थे। पूर्वांचल में उदार पंथियों का जोर था। सामाजिक तथा आर्थिक सुधार पर और दूसरे अंचल के निवासी पाप एवं मादकता निवारण पर बल देते थे।
0: मध्य पश्चिम तथा दक्षिण में चर्च तथा समाज में स्त्रियों का अधिपत्य था, जो तर्क के स्थान पर भावुकता को अधिक महत्व देती थी और समाज को पाप मुक्त करने में ही जुटी रहती थी। समाज इनसे त्रस्त था। ये स्त्रियां प्रगतिशील स्त्रियों को बुरी नजर से देख करके अवज्ञा करती थीं। सभी सामाजिक कार्यों में इनका ही वर्चस्व था और पुरुष चुपचाप इनका नेतृत्व स्वीकार कर लेते थे।
1: ऐसे माहौल में स्वामी जी व्याख्यान देने पहुंचे। वहां का समाज उन्हें बड़ा ही अजीब लगा। वहां के धर्माचार्य, जिन्हें भारत के बारे में कोई भी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं था, भारतीय धर्म और समाज को हीन बताने पर तुले थे। वहां चित्र बनाकर कविता के माध्यम से भारतीय समाज की निंदा की जाती थी। वे कहते थे,
2: पवित्र गंगा की धारा जहां प्रवाहित हो रही है, देखो वो अधार्मिक हिंदू नारी किस प्रकार अपने हाथों से अपने बच्चे को जल में विसर्जित कर रही है, और उस शिशु को जब घड़ियाल आदि हिंसक जंतु ले जाते हैं, तब बच्चे की मर्मांतक रुदन की ध्वनि उठती है। वो क्रंदन की आवाज क्रमशः दूर दूरांतर में विलीन हो जाती है, पर उसकी माता बिना विचलित हुए अपने वज्र कठोर हृदय के साथ उसे सुनती है। उस देश में बाइबल भेजो, शीघ्र भेजो, ईसा का संदेश इन माताओं के अंतर में प्रविष्ट होगा तो उनका चित्त माँ के समान कोमल होगा और वो राक्षसी के समान संतान का जीवन नाश नहीं करेंगी।
0: इन प्रचारकों के मतानुसार भारतीय पति अपने हाथ से चिताग्नि जला करके उसमें अपनी पत्नियों को जला देते हैं। माताएं नवजात शिशुओं को मांसाहारी पक्षियों के भक्षणार्थ वृक्ष की शाखाओं से लटका देती हैं। लोग स्वेच्छा से जगन्नाथ के रथ के नीचे कूद करके आत्महत्या कर लेते हैं। इस तरह के और भी न जाने कितने ख्याली पुलाव पकाए जाते थे। इसी प्रकार के मिथ्या आरोप से दुखी होकर के जब स्वामी जी ने कहा था कि पाश्चात्य देश भारत के विरुद्ध जिस प्रकार के मिथ्या प्रचार तथा निंदावाद में लगे हुए हैं, उसके प्रतिकार के रूप में यदि भारत हिंद महासागर के तल का सारा कीचड़ पाश्चात्य देशों पर फेंके तो भी वह पूरा नहीं होगा, ये कहने में उन्होंने थोड़ी भी अतिशोक्ति नहीं की थी।
1: ऐसे माहौल से यानी कि मध्य पश्चिम से स्वामी जी अपेक्षाकृत नवालोक से आलोकित मेम्फिस नगर में पहुंचे। वहां वे 19th सेंचुरी क्लब के आमंत्रण पर आए थे। उन दिनों व्याख्यान कंपनी से अनुबंधित होने के कारण स्वामी जी के व्याख्यानों से होने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा कंपनी हजम कर जाती थी। मेम्फिस में 13 जनवरी से 21 जनवरी तक विभिन्न प्रतिष्ठानों में उनके व्याख्यान हुए। व्याख्यानों की रिपोर्ट अखबारों में रोज छपती और कानंद स्वामी यानी विवेकानंद की ख्याति चारों ओर फैलती गई। मेम्फिस कमर्शियल अखबार में विस्तृत रिपोर्ट छपी थी।
3: उनका व्यक्तित्व था परमत सहिष्णुता, जिस पर वह सार्वभौमिक दृष्टिकोण से ही बोले और दृष्टांत के रूप में उन्होंने हिंदू धर्म का उल्लेख किया। अन्य मतों के प्रति प्रेम और सहानुभूति की सभी धर्मों का सार होना चाहिए। हिंदू धर्म के आचारों, अनुष्ठानों आदि को छोड़कर उन्होंने अपने मौलिक तत्वों का ही विशाल विवेचन किया। जिन कुछ अनुष्ठानों की बात उन्होंने उठाई उसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या भी की। हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वासी है और बाइबिल के उस पापवाद को नहीं मानता जिसके अनुसार मानव जीवन के साथ मूलभूत पाप मिश्रित है। मनुष्य पवित्रता और पवित्रता में लोट जाता है। इतिहास से उदाहरण देकर उन्होंने दिखा दिया कि हिंदू केवल बातों में ही नहीं अपितु व्यवहारिक जीवन में भी परधर्म सहिष्णु है। किंतु लोगों की उदारता का प्रमाण देते हुए उन्होंने बताया कि एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों में इष्ट अलग अलग हो सकते हैं, परंतु सभी भगवान के मूल गुण हैं। प्रेम के उपासक होने के कारण वस्तुतः एक ही भगवान के भक्त हैं। हिंदुओं की मूर्तियां भगवान के दिव्य गुणों के प्रतीक हैं और ध्यान में सहायता के लिए हैं।
4: उनके समूचे भाषण को प्रस्तुत करना कठिन है, परंतु ये विश्व बंधुत्व की स्थापना के लिए एक उत्कृष्ट आवेदन था और एक मनोरम धर्म मत का एक सुयोग्य समर्थन था। इसका उपसंहार भी विशेष सुंदर बन पड़ा था, जबकि उन्होंने घोषणा की कि वे ईसा को स्वीकार करने को तैयार होकर भी कृष्ण और बुद्ध के समक्ष सिर अवश्य झुकाएंगे। तदुपरांत उन्होंने सभ्यता की निष्ठुरता का एक चित्र खींचते हुए कहा कि प्रगति के नाम पर होने वाले इन अपराधों के लिए वे ईसा मसीह को उत्तरदायी नहीं मानते।
0: मेम्फिस में स्वामी जी के अनुरागियों की संख्या बढ़ती गई और लोगों के अनुरोध पर उन्हें कुछ और अतिरिक्त व्याख्यान देने पड़े। उनका एक व्याख्यान था पुनर्जन्म पर। उसमें स्वामी जी बोले,
5: सभी प्राचीन धर्मों में पुनर्जन्म का सिद्धांत स्वीकृत था, पर अब हिंदू और बौद्ध ही इसे मानते हैं। पाश्चात्य लोग सोचते हैं कि पुनर्जन्म मानने से अनैतिकता को प्रश्रय मिलेगा, न्याय होने से अन्याय भी रहेगा। जगत में व्याप्त अन्याय के लिए यदि ईश्वर उत्तरदायी न हो तो कौन होगा? पुनर्जन्म के सिद्धांत से इसकी मीमांसा हो जाती है। कारण के बिना कार्य नहीं होता। शून्य से जगत की सृष्टि नहीं हुई। कारण परंपरा ही कार्य परंपरा को जन्म देती है। अतः मनुष्य का वर्तमान जन्म उसके पूर्व जन्म के कर्मों के फल से बना है।
0: उन्होंने एक घटना का जिक्र और किया और कहा,
5: मैं जब मिनियापोलिस से ट्रेन में आ रहा था तो उसी में एक गोपालक मिला जो जड्ड स्वभाव का और शुद्ध आचारवादी था। उसने पूछा कि मैं कहां से आया हूं। मैंने कहा, भारत से। उसने पूछा, आपका धर्म क्या है? मैंने कहा, हिंदू। उसने कहा, तब तो आपको नरक में जाना होगा। तब मैंने उसे पुनर्जन्म का सिद्धांत बताया। उसने कहा कि वो सदा से ही इस सिद्धांत में विश्वास करता आया है, क्योंकि एक दिन जब वो लकड़ी चीर रहा था तो उसकी छोटी बहन उसके कपड़े पहनकर आकर बोली कि वो पहले पुरुष थी। पुनर्जन्मवाद की एक और अच्छी बात यह है कि जो कुछ हो गया है उसके लिए पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं, बल्कि प्रति क्षण पुनः भले कर्म करने के जो नए नए अवसर आ रहे हैं उनका लाभ उठाना चाहिए।
1: भाषण के बाद ज्यादातर महिलाएं उनसे प्रश्न पूछती और स्वामी जी हंसते हुए उन सबको उत्तर देते, परंतु ये भी सच है कि सभी ने उनको प्रेम पूर्वक ग्रहण नहीं किया। विशेषकर कुछ पादरी उनका विरोध करते रहे। व्याख्यान के बाद वे भी कटाक्षपूर्ण प्रश्न पूछते थे,
6: हिंदू लोग अगर इतने ही धार्मिक और नीति परायण हैं, तो वो दूसरे राष्ट्रों की तुलना में इतने पिछड़े क्यों हैं?
5: इसलिए कि सांसारिक उन्नति धर्म का कार्य क्षेत्र नहीं है, और धर्म ने तो ईसाई जगत की उन्नति नहीं की, बल्कि ईसाई धर्म ने तो पश्चिमी जगत में विज्ञान के नवालोक के पथ में पग पग पर बाधा खड़ी की है। पाश्चात्य चिंतन एवं कार्य प्रणाली के साथ भारतीय चिंतन एवं कार्य प्रणाली का मिलन ही दोनों अंचलों के लिए हितकर एक नवीन पथ का निर्माण कर सकेगा।
0: पादरी महाशय निरुत्तर हो गए। तब स्वामी जी ने समझा करके कहा,
5: किसी न किसी रूप में धर्म सर्वत्र, यहां तक कि असभ्य लोगों में भी विद्यमान है। मानव आत्मा मानो हवा के बुलबुले के समान पृथ्वी के तल में जाकर स्वभाव से ही सर्वदा ऊपर उठने का प्रयास कर रही है, और यही प्रयास धर्म का रूप धारण कर लेता है।
1: 22 जनवरी को स्वामी जी मेम्फिस छोड़कर वापस शिकागो आ गए। इन 6 सप्ताहों के दौरान उन्होंने 12 नगरों में व्याख्यान दिए। श्रोतागण हमेशा एक जैसे नहीं होते, श्रोताओं के अनुसार ही स्वामी जी अपना विषय चुनते। जैसे अगर किसी खदान नगर में बोलते तो किसी बौद्धिक विषय के बदले सामाजिक विषय चुनते।
0: व्याख्यान कंपनी के साथ स्वामी जी भी लगातार घूमते रहे। श्रीमती बर्क ने भी लिखा है,
7: उनका एक चित्र मानस पलट पर उभरता है जिसमें वे सप्ताह पर सप्ताह भीषण ठंड के दिनों में रेल यात्रा करते, अपना सामान संभालते, श्रोताओं के सम्मुख व्याख्यान देते, पैसों का हिसाब करते, परिश्रम साध्य दीर्घ भाषण देने के पश्चात उल जलूल प्रश्नों के उत्तर देते। सच कहें तो उनके शक्ति सामर्थ्य को निर्ममता पूर्वक अपने सामर्थ्य साधन में उपयोग करने के लिए मानो तो उस कंपनी ने कमर कस ली थी। स्वामी जी भी कार्य के उत्साह तथा धर्म एवं भारत की बातें सुनाने की उत्सुकता में अपनी सुख सुविधा तथा स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल ही भूल गए थे।
0: मेम्फिस से वापस शिकागो आने के बाद स्वामी जी हेल परिवार के साथ ही ठहरे। शिकागो में वही उनका स्थायी ठिकाना हो गया। हेल दंपति उन्हें पुत्र की तरह स्नेह करते थे और उनकी 2 बेटियां और भांजियां स्वामी जी की दुलारी बहनें थीं। विशेषकर मैरी हेल और इशाबेल मैकिडनी के साथ उनका संबंध बड़ा ही आंतरिक था। उन लोगों के बीच कई पत्राचार हुए जिसमें स्वाभाविक विचार विनिमय, व्यंग विनोद, रोना गाना और सहानुभूति आदि दिख पड़ती थी।
1: हेल परिवार का परिचय देते हुए उन्होंने 25 सितंबर 1894 में स्वामी रामकृष्णानंद को लिखा था,
5: हेल और उनकी पत्नी दोनों ही वृद्ध हैं, साथ में 2 पुत्रियां, 2 भांजियां तथा एक लड़का है जो रोजगार के लिए दूसरी जगह रहता है। लड़कियां घर पर रहती हैं। इस देश में लड़की का रिश्ता ही सही रिश्ता है। चारों कन्याएं युवती और अविवाहित हैं। दोनों पुत्रियों के बाल सुनहरे हैं और भांजियों के काले। ये जूते की सिलाई से पूजा पाठ तक हर काम में माहिर हैं। भांजियों के पास उतना धन नहीं है, वे किंडरगार्टन स्कूल चलाती हैं, लेकिन पुत्रियां कुछ नहीं कमाती। लड़कियां मुझे भैया कहती हैं, मैं उनकी माँ को माँ कहता हूं। मेरा सामान सब उन्हीं के घर में है। मैं कहीं भी जाऊं वे उसकी देखभाल करती हैं। यहां निर्धनों के लिए किंडरगार्टन स्कूल अपरिचित नहीं है, पर धनिकों की संतानों के लिए ऐसे किंडरगार्टन अति विरल हैं। अतः संभ्रांत वंश की मैकिंडली बहनों द्वारा स्थापित विद्यालय में कुछ नयापन और वैशिष्ट्य है जिसके लिए समाज में उन्हें विशेष प्रशंसा भी मिली है। एक समाचार पत्र में इसाबेल के बारे में लिखा गया है कि मिस मैकिंडली की अपने कार्य पर अच्छी पकड़ है और बच्चों के साथ उनका संबंध स्नेह तथा विवेकवान है। वे मन की बड़ी अच्छी हैं और वार्तालाप के समय उनकी प्रतिभा देखते ही बनती है।
1: हेल परिवार के साथ स्वामी जी की ये आत्मीयता आजीवन बनी रही। लंदन से भारत लौटने के पूर्व हेल बहनों से विदा लेते हुए 28 नवंबर 1896 को लिखे उनके एक पत्र में है,
5: मुझे लगता है इस पृथ्वी पर मैं तुम चारों से ही सर्वाधिक स्नेह करता हूँ और मेरा विश्वास है कि तुम लोग भी मेरे प्रति वैसा ही स्नेह भाव रखती हो। तुम लोग और तुम्हारा सारा परिवार मेरे प्रति इतना प्रेम रखता है कि जिसे हम भारतीय कहते हैं, लगता है मैं पिछले जन्म में तुम्हारे ही परिवार का रहा होऊंगा।
0: स्वामी जी के व्याख्यानों की जो भी रिपोर्ट अमेरिकी अखबारों में छपती थी वे बंबई, कलकत्ता और मद्रास के भारतीय अखबारों में पुनर्मुद्रित होती थी, जिससे उनके भक्तों को और देशवासियों को पता चलता था कि अमेरिका में स्वामी जी कितने जनप्रिय हो गए हैं। उनकी विजय वार्ता पाकर समग्र भारतीय समाज उल्लासित हो उठा था। इंडियन मिरर, अमृत बाजार आदि अखबारों ने अमेरिकी अखबारों के लेखों को इस प्रकार प्रकाशित किया।
3: प्रतीक्षा गृह में सबसे आकर्षक व्यक्ति सन्यासी स्वामी विवेकानंद से सबकी भेंट होती है। वे सुगठित शरीर के हैं और हिंदुस्तानियों का उन्नत व्यवहार उनमें है। दाढ़ी मूछ विहीन चेहरा, समुचित ढला हुआ सामान्य आकार, सफेद दंत पंथियां और सुगठित होठ, जो वार्तालाप के समय प्राय मुदु मुस्कान के रूप में खुले रहते हैं। उनके संतुलित आकार के सिर पर नारंगी अथवा लाल रंग की पगड़ी शोभायान रहती है और उनका चोगा कमरबंद से बंधा घुटनों के नीचे तक लटकता रहता है। वो कभी चमकीले नारंगी रंग का और कभी गहरे लाल रंग का होता है। वे उत्तम अंग्रेजी बोलते हैं और गंभीरता पूर्वक पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर देने को सर्वदा प्रस्तुत रहते हैं।
8: महासभा में वो अपने भावों तथा आकृति की भव्यता के कारण बड़े लोकप्रिय हैं। मंच पर उनके आने मात्र से ही हर्ष ध्वनि होने लगती है और हजारों व्यक्तियों द्वारा यह विशेष सम्मान वे विनय पूर्वक और बाल सुलभ संतोष के साथ स्वीकार करते हैं। निर्धनता तथा आत्म संयम के जीवन से सहसा इस वैभव और उत्कर्ष में आ पड़ना अवश्य ही इस विनम्र सन्यासी के लिए अपूर्व अनुभव होगा।
1: अक्सर इसी तरह स्वामी जी की विजय वार्ता प्रकाशित होते रहने से ब्राह्मण समाज तथा अनेक ईसाई मिशनरी उनके प्रति विद्वेष से भर उठे। विशेषकर प्रताप चंद्र मजूमदार की व्यवस्था में चलने वाली यूनिटी एंड द मिनिस्टर पत्रिका में लिखा गया,
9: नव हिंदू बाबू नरेंद्रनाथ दत्त उर्फ विवेकानंद की प्रशंसा में इंडियन मिरर में अनेक लंबे संपादकीय लेख निकल चुके हैं। इस सन्यासी के विषय में ऐसी प्रशंसावली के प्रकाशन में हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब वे नव वृंदावन थिएटर में अभिनय करने हेतु हमारे पास आए थे अथवा जब वे इस महानगरी के किसी ब्रह्म समाज में भजन गाते थे, तभी से हम उन्हें इतनी भली भांति जानते हैं कि उनके बारे में आज के समाचार पत्रों में चाहे जितना भी कुछ लिखा जाए, इससे उनके चरित्र के बारे में हमारी धारणा पर कोई प्रकाश नहीं पड़ने वाला है। हमारे इन पुराने मित्र ने संप्रति अपने आख्यानों के द्वारा अमेरिका में जो भाव तरंग उठाया है, उससे हम आनंदित हैं। परंतु हम ये भी जानते हैं कि हमारे मित्र जिस नवीन हिंदू मत का प्रचार कर रहे हैं, वो सनातन हिंदू धर्म नहीं है। उन्होंने जो पूर्ण रूप से अनुचित किया है, वो है समुद्र पार जाना, मलिच्छों का अन्न ग्रहण करना, लगातार सिगरेट पीना अथवा इसी प्रकार का और कुछ करना। शुद्ध सनातनी हिंदू जितने हमारी श्रद्धा के पात्र हो सकते हैं, आधुनिक हिंदू मत के अनुयायी वैसी श्रद्धा पाने का दावा नहीं करते, परंतु विवेकानंद की प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए हमारे सहयोगी पत्रकारों के यथासाध्य प्रयास करने के बावजूद जब वे बिल्कुल बेकार की बातें बकते हैं तो हमारा धैर्य छूट जाता है।
1: इसके बाद भी अमेरिका के संवाद पत्रों में जो सुंदर संवाद प्रकाशित होते थे, उन्हें टिप्पणी के साथ इंडियन मिरर, पायनियर आदि संवाद पत्रों में प्रकाशित किया जाता था। ये बात और है कि कुछ व्यक्तियों की तरह कुछ संवाद पत्र भी इन खबरों को प्रेम पूर्वक ग्रहण नहीं करते थे, तथापि भारतवासी जान गए थे कि स्वामी जी का विजय गौरव सचमुच ही आश्चर्यजनक है।
0: इसी बीच श्री बैरोज द्वारा प्रकाशित ग्रंथ द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस में स्वामी जी को अति उच्च स्थान मिला। और उस ग्रंथ की एक अच्छी समीक्षा अमेरिका के रिव्यू ऑफ रिव्यूज में जनवरी अंक में छपने के बाद 21 फरवरी 1894 के इंडियन मिरर के संपादकीय लेख द्वारा

0: कि स्वामी विवेकानंद का उदय एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है।
1: धर्म महासभा की विज्ञान शाखा के अध्यक्ष श्रीयुत मार्विन मैरी स्नेल ने 30 जनवरी 1894 को पायोनियर पत्र के संपादक को विस्तार पूर्वक पत्र में लिखा था। उसमें भी बैरोज के मत ही दृढ़ता पूर्वक लोगों के हृदय में अंकित हो गए। स्वामी जी ने महासभा में 19 सितंबर 1893 को हिंदू धर्म विषय के जिस निबंध का पाठ किया था, वे मद्रास तथा कलकत्ता के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ और दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण की जन्म तिथि के उत्सव में 11 मार्च 1894 को पुस्तिका के रूप में वितरित हुआ। इससे स्वामी जी के वक्तव्य का एक प्रामाणिक विवरण मिला। 21 मार्च के इंडियन मिरर में इसकी खूब प्रशंसा की गई।
0: स्वामी जी की विजय वार्ता सिर्फ साधारण जनता तक ही सीमित नहीं रही। यह संवाद उनके गुणमुग्ध राजा और महाराजाओं तक भी पहुंची। रामनद के राजा भास्कर वर्मा सेतुपति तथा खेतड़ी के राजा अजय सिंह बहादुर, इन दोनों स्वामी जी के शिष्यों ने आम दरबार में ठाट बाट के साथ अपनी प्रजा को बुला करके भारत के मुख उज्जवल करने वाले स्वामी जी के कार्यों की प्रशंसा की और महासभा में वे जो सनातन धर्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादन करने में समर्थ हुए हैं, इसलिए उन्हें धन्यवाद देकर के पत्र भी लिखा गया।
1: मद्रास में राजा रामास्वामी मुदलियार तथा दीवान बहादुर सुब्रमण्यम अय्यर महोदय के नेतृत्व में एक विराट सभा बुलाई गई। वहां उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने स्वामी जी के प्रचार कार्य का समर्थन किया और सभा की रिपोर्ट के साथ उन्हें उत्साहवर्धक पत्र भी लिखा। उधर स्वामी जी की जन्म नगरी कलकत्ता भी उत्साह और आनंद से भर उठी। वहां राजा प्यारे मोहन मुखर्जी के सभापतित्व में कलकत्ता टाउन हॉल में एक विराट सभा बुलाई गई, जिसमें नगर के सभी प्रतिष्ठित व विद्वान सज्जन साधारण जनता के साथ उपस्थित हुए थे। माननीय सभापति महोदय ने सर्वसम्मति से सभा की तरफ से शिकागो धर्म सभा के सभापति डॉक्टर बैरोज साहब के पास धन्यवाद सूचक पत्र भेजा।
0: इस तरह भारत में स्वामी जी के विजय का चारों ओर जश्न मनाया गया। इससे यह फल हुआ कि उनकी निंदा और आलोचना करने वालों की ही आलोचना हुई और अंततः वे हार मान करके चुप हो गए। उधर अमेरिका में स्वामी जी के व्याख्यानों का दौर चल रहा था और वे एक के बाद एक अमेरिका के नगर की जनता को अपने ज्ञान और वाग्मिता से वशीभूत करते जा रहे थे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: तो ये था कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आपने ट्यून किया अपने रेडियो सेट पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रॉक्सी डिप्लोमेसी जब डचों ने सुल्तान को अपनी ढाल बनाया। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडोनेशियाई द्वीप समूह में अपने विस्तार के लिए एक मौलिक बाधा का सामना करना पड़ा। वो एक यूरोपीय गणराज्य की एक कॉरपोरेट संस्था थी जो एक ऐसी दुनिया में पैर जमाने की कोशिश कर रही थी जहां कूटनीति पूरी तरह से राजाओं का व्यवसाय था। इस बाधा को दूर करने के लिए कंपनी ने 1607 में टेरनेट के सुल्तान के साथ एक गेम चेंजिंग गठबंधन किया। सुल्तान नाम मात्र के लिए पूर्वी द्वीप समूह के एक विशाल नेटवर्क के प्रमुख थे। इस साझेदारी ने वीओसी को केवल घुसपैठिए से बदलकर प्रॉक्सी कूटनीति करने वाली एक शक्ति बना दिया। कंपनी को यह एहसास हो गया था कि शक्तिशाली एशियाई शासकों की नजर में एक व्यापारी संस्था का दर्जा राज्य के अस्तित्व से बहुत छोटा था। परिणाम स्वरूप वीओसी ने टेरनेट के सुल्तान को एक कूटनीतिक ढाल और मुखपत्र के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। व्यापारी के नाम से नहीं भेजा, इसके बजाय उन्होंने गवर्नर जनरल द्वारा तैयार किया गया पत्र टेरनेट के सुल्तान के नाम और अधिकार के तहत जारी किया। डच अधिकारी जानते थे कि एक साथी सुल्तान का कूटनीतिक दर्जा किसी भी कंपनी प्रतिनिधि की तुलना में कहीं अधिक ऊंचा था। ये प्रॉक्सी सिस्टम केवल पत्रों तक सीमित नहीं था, इसने डचों को मोलुकास के जटिल पहले से मौजूद भू राजनीतिक खेल में खींच लिया। चूंकि वीओसी अब टेरनेट का आधिकारिक रक्षक था, इसलिए उसे सुल्तान की ऐतिहासिक जागीरदारी, संघर्षों और गठबंधनों में सीधा हिस्सा मिल गया। जब वीओसी ने सोलोर में एक पुर्तगाली किले पर कब्जा किया तो स्थानीय आबादी ने टेरनेट के प्रति निष्ठा की घोषणा की। डचों ने इसका फायदा उठाया और क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए उन्हें वापस टेरनेट के शासन में ले आए, जिससे उनके पुर्तगाली प्रतिद्वंद्वी बाहर हो गए। कंपनी ने पश्चिमी सीराम और बांदा द्वीपों जैसे विद्रोही क्षेत्रों को शांत करने के लिए भी टेरनेट के अधिकार का उपयोग किया। अक्सर डच तोपों की आग से अधिक वहां के स्थानीय लोग टेरनेट के सुल्तान के अधिकार का सम्मान करते थे। जब बांदा के ए द्वीप के लोगों ने शांति की अपील की तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि सीधे डच कमांडरों के पास नहीं भेजे, बल्कि टेरनेट के सुल्तान के पास भेजे। स्थानीय प्रॉक्सी पर ये रणनीतिक निर्भरता कंपनी के लिए एक स्थायी मॉडल बन गई। जहां वीओसी ने सैन्य शक्ति प्रदान की, वहीं टेरनेट के सुल्तान ने आवश्यक राजनीतिक वैधता प्रदान की। अंततः एक स्थायी सम्राट के माध्यम से कार्य करके वीओसी ने मौजूदा एशियाई सत्ता संरचनाओं को सफलतापूर्वक अपने पक्ष में कर लिया। इसने साबित कर दिया कि प्रारंभिक आधुनिक दुनिया में किसी राजा से बात करने का सबसे प्रभावी तरीका दूसरे राजा को बोलने देना था।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित नयन घोष का सितार वादन, और उसके बाद अपने गायन की प्रस्तुति देंगे वासु गंधर्व। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं सितार वादन पंडित नयन घोष का।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सितार वादन पंडित नयन घोष का, और ये है गायन वासु गंधर्व का।

अभी आप सुन रहे थे गायन वासु गंधर्व का। आज का कार्यक्रम भारत भारती बस यहीं तक। अब दीजिए इजाजत अपने दोस्त दानिश को। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: श्रोताओं, रिटायरमेंट नौकरी की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार सरकारी गीता के अनुसार जो नौकरी में भर्ती हुआ है तो उसका रिटायरमेंट भी निश्चित है। अब अगर मुलाजिम रिटायर होगा तो दो बातें होंगी, या तो उसे पेंशन की पात्रता होगी या नहीं होगी। अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हुई तो इसे पाने के लिए उसे कितने पापड़ बेलने होंगे यह तो वे रिटायर होने के बाद ही जान पाएगा। यहां तक कि पेंशन चालू रहने के दौरान भी उसे बार बार अपने जिंदा होने का सबूत पेश करना पड़ेगा। जीते जागते आदमी से पूछा जाएगा कि साबित करो कि तुम जिंदा हो। और यह बात अलग है कि परलोकवासी का भी अगर लाइफ सर्टिफिकेट हो तो उसकी पेंशन नहीं रुकेगी। आज का हमारा नाटक इसी थीम पर आधारित है, पेंशन की टेंशन।

0: भाई साहब, ये पेंशन तो आपको नहीं मिल सकती।
1: नहीं मिल सकती? क्यों?
0: आपको अपने जिंदा होने का सबूत देना होगा।
1: जिंदा होने का सबूत? अरे आपके सामने वन पीस में खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, अपनी पेंशन मांग रहा हूँ, क्या इतना काफी नहीं है?
0: जी नहीं, वन पीस में तो क्या, अगर आप थ्री पीस में भी होते ना तो भी चलता, बशर्ते कोई सबूत होता आपके पास अपने जिंदा होने का।
1: तो आप ही बता दीजिए ना कि कैसे साबित करूं कि मैं जिंदा हूं।
0: कोई लेटेस्ट डॉक्यूमेंट दे दीजिए जो इस बात को साबित करे कि आप जिंदा।
1: जैसे?
0: जैसे जैसे हाँ, किसी अस्पताल का कोई पर्चा जिसमें आपका नाम लिखा हो।
1: अस्पताल का पर्चा होगा तो जरूर, मगर घर पर ढूंढना पड़ेगा उसे।
0: तो ढूंढिए ना, जाइए, जाकर ले आइए। अगर पेंशन चाहिए तो ये तुच्छ पीड़ा तो आपको सहन करनी ही होगी।
1: मगर है वो 1.5 साल पुराना, चलेगा?
0: अजीब इंसान है आप। अरे 1.5 साल पुराना दस्तावेज चलता तो 3 महीने पहले के आपके सिग्नेचर ना चल जाते। जाने कैसे भर्ती हो गए थे सरकारी नौकरी में, इतना भी नहीं समझते।
1: अजीब आदमी है जी आप, एक सीनियर सिटीजन से बात करने की भी तमीज नहीं है आपको? सीट पर क्या बैठ गए, खुद को खुदा समझने लगे आप?
0: ओ भाई साहब, पेंशन लेने आए हैं तो पेंशन की टेंशन लीजिए, मुझे तमीज की कमीज ना पहनाइए। अब सीनियर सिटीजन हैं आप तो इसमें मेरा क्या कसूर? क्या साष्टांग दंडवत करूं आपको?
1: साष्टांग दंडवत करेंगे ये? अरे दो शब्द सभ्यता से तो बोल नहीं सकते? ये नहीं सोचते कि 4 दिन बाद इन्हें भी रिटायर होना है?
0: ओ बड़ो बाबा, भुनर भुनर मत करो, जो कहना है साफ साफ कहो, समझे?
1: नहीं नहीं श्रीमान जी, मेरा तो आपसे विनम्र निवेदन है कि कोई ऐसा उपाय हो जिससे मुझ गरीब का कुछ काम चल जाए तो कृपा करके हमें बताएं।
0: ये हुई ना सही बात। अरे उपाय एक तो क्या हजार है, एक 4 अंगुल का कागज ही तो चाहिए जिसमें आपका नाम लिखा हो और कोई ताजी तारीख पड़ी हो। अच्छा आप ये बताइए कि राशन कार्ड पर राशन लिया है आपने हाल में?
1: नहीं भैया, मैं तो कंट्रोल का राशन लेता ही नहीं हूँ।
0: अस्पताल में भर्ती नहीं हुए, राशन लेते नहीं? अरे कोई तो ऐसी हरकत हो आपकी जो जिंदा लोग करते हैं, आखिर कैसे साबित हो कि आप जिंदा हैं? अच्छा छोड़िए, ये बताइए कि बैंक से कोई विड्रॉल किया है आपने हाल में?
1: अरे कैसी बात करते हैं भाई आप, अरे बैंक से विड्रॉल करना होता तो पेंशन ये ना निकाल लेता।
0: बात तो सही है आपकी भाई साहब, फिर तो आप मुझे माफी कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। रूल यानी रूल, मैं उस आदमी को पेंशन नहीं दे सकता जिसके जिंदा होने की कोई गारंटी नहीं।
1: फिर वही बात, अरे कागज कहिए जनाब, कागज। आपको जिंदा होने का कागज चाहिए? मेरे जिंदा होने की गारंटी तो मैं खुद हूं। अरे मेडिकल साइंस भी इस बात को मानता है कि जो आदमी सांस ले रहा है, जिसके दिल की धड़कन चल रही है, जिसका दिमाग काम कर रहा है, वो जिंदा है।
0: तो जाकर ले आइए इस बात का सबूत उससे।
1: किससे?
0: मेडिकल साइंस से। जाइए किसी अस्पताल से एक सर्टिफिकेट ले आइए कि आपकी सांस चल रही है, आपका दिल धड़क रहा है, आपका दिमाग काम कर रहा है। मेडिकल ऑफिसर के सील सिग्नेचर करवा लीजिए। गॉड प्रॉमिस, 5 मिनट के अंदर आपकी पेंशन दे दूंगा।
1: हंसी खेल है क्या? क्या है? अरे वो डॉक्टर मुझे पागल समझेगा जिससे मैं कहूंगा कि ये सब बातें मुझे सर्टिफाई करके दो।
0: तो ठीक है, फिर पागल खाने से ही लिखवा लाइए आप। अरे कुछ तो खिलाकर कागज का पेट भरिए।
1: क्या भाई साहब, अरे यार मेरी पेंशन अटकी हुई है और आपको दिल की सूझ रही है।
0: अच्छा छोड़िए, ये बताइए कि हाल ही में ट्रैफिक पुलिस ने आपका चालान वगैरह तो बनाया होगा?
1: नहीं बनाया है। अब मैं क्या आपको रेस ड्राइविंग करने वाला दिखता हूँ? अरे मैं एक सभ्य नागरिक हूँ देश का, गाड़ी ऐसे नहीं चलाता कि ट्रैफिक पुलिस मेरा चालान बनाए। हे भगवान, 2-4 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर क्या चला गया, सरकार ने मुझे मरा हुआ ही मान लिया।
0: ओहो हाँ, अच्छा याद दिलाया आपने, एक काम करिए आप,
1: हाँ हाँ,
0: रेलवे रिजर्वेशन का एक टिकट लगा दीजिए, आपके लिए हम इसी से काम चला लेंगे।
1: मगर वो तो नहीं है।
0: वो क्यों?
1: क्योंकि मैं जनरल डिब्बे में गया था।
0: कैसे आदमी हैं आप भाई साहब, है ची, ची, ची, ची, ची। जनरल डिब्बे में ही तीर्थ यात्रा कर आए।
1: अरे तो इसमें क्या गलत किया मैंने? अरे गांधी जी भी तो थर्ड क्लास में ही चला करते थे। आम आदमी हूँ, आम जनता के साथ सफर करता हूँ, ये कोई गुनाह तो नहीं है?
0: हाँ गुनाह तो नहीं, मगर पेंशन भी नहीं मिल सकती इसके बिना आपको।
1: काय सता रहे पेंशन बाबू इस बुड्ढे को? अरे पेंशन नहीं मिलेगी तो मैं खाऊंगा क्या?
0: खाना जिंदा आदमी खाता है बाबा, मरा आदमी नहीं।
1: यही बात तो आपको समझ नहीं है भैया, जब मैं खाना खाने की चिंता कर रहा हूँ तो मैं जिंदा ही होऊंगा, मरा आदमी थोड़े ही खाने की फिक्र करता है।
0: मेरे समझने से तो काम नहीं चलेगा ना बाबा, मुझे तो कागज चाहिए रिकॉर्ड में लगाने के लिए। अच्छा चलिए, ये तो बताइए कि अभी म्युनिसिपल इलेक्शन में आपने वोट तो डाला ही होगा ना?
1: कैसे डालता भैया, बताया तो कि मैं यहाँ नहीं था यार, तीरथ पर गया हुआ था।
0: तीरथ पर गया था तो जाइए भगवान से ही लिखवा लाइए कि आप तीरथ पर गए थे, मान लूंगा मैं।
1: काहे मजबूर की हंसी उड़ा रहे हो भैया, कहीं भगवान भी लिखा पढ़ी करते?
0: जानता हूँ भगवान लिखा पढ़ी नहीं करते, मगर उनके एजेंट तो करते हैं। अरे पंडे पुरोहित की यहाँ हाजिरी लगाई होगी आपने तीर्थ यात्रा के दौरान, उनके बही खाते में नाम लिखवाया होगा, उनकी बही की ही सर्टिफाइड कॉपी ले आइए, हम उसी से मान लेंगे कि आप जिंदा हैं अभी।
1: अरे यार लेकिन मैंने तो सारा काम डायरेक्ट किया है, भगवान के एजेंटों से तो दूर ही रहा हूँ मैं।
0: एक काम कीजिए फिर, पेंशन भी डायरेक्ट सरकार से ही ले लीजिए।
1: अरे यार
0: काहे बीच में मुझ कर्मचारी की जान ले रहे हैं आप, है? पता चला आपको पेंशन देने के चक्कर में मेरी पेंशन बंद हो गई है? अरे ये नहीं वो नहीं, धरती पर कोई जिंदा इंसान ऐसा होता है कि एक आध महीने में कहीं किसी कागज पर उसका नाम ही ना लिखा जाए?
1: अरे भाई क्यों भरमा रहे हो यार मुझे, पेंशन के बिना मेरा गुजारा कैसे चलेगा यार?
0: देखिए सीनियर सिटीजन जी, देखिए मैं ठहरा सरकारी आदमी, कायदे कानून के हिसाब से चलता हूँ। माना कि मुझे आपसे हमदर्दी है, मगर मुझे भी तो अपनी नौकरी प्यारी है। अरे इतने दिनों में आपने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो जिंदा लोग करते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अरे कुछ नहीं तो किसी से मारपीट ही कर लिए होते, एक आध रात हवालात में काटे होते, कम से कम थाने से ही कोई रिकॉर्ड मिल जाता।
1: अरे काय मेरी भद्द बना रहे हो भैया, 65 साल का ये आदमी आपको मारपीट करने वाला दिखता है? अरे जवानी में भी कभी नहीं की ऐसी हरकत हमने, और आप कहते हो कि इस बुढ़ापे में
0: फिर तो भाई साहब आप मेरा पीछा छोड़ दो, अकेले आपका ही काम नहीं करना है मुझे। चलिए हटिए हटिए, मुझे दूसरों का काम करना है, चलिए हटिए।
1: मगर मैं अपनी पेंशन लिए बगैर नहीं जाऊंगा आज, कह देता हूँ आपसे, चाहे इसके लिए मुझे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह वाह, बुढ़ापे में ये जोश, क्या करेंगे आप? चलिए चलिए, नहीं देता आपकी पेंशन, जो करते बने कर लीजिए।
1: ओ साहब इस बुड्ढे के सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, कहीं ऐसा ना हो जाए।
0: अरे जाइए जाइए जनाब जाइए, किसी और को आंखें दिखलाइए, अपन नहीं डरने वाले इन लाल लाल आंखों से। हाथ पांव में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं, च्यवनप्राश खाया करो, ठीक से खड़ा तो हुआ नहीं जाता और डरा रहे ऐसे। चल चल फुट, बात सुन ली तेरी बड़बड़, चल फट फट फट।
1: फूटने को बोलता है पेंशन नहीं देता तो ले।
0: अरे अरे मार डाला, अरे मार डाला, अरे अरे बुड्ढे ने मार डाला, अरे अरे लाठी से कमर तोड़ दी मेरी। अरे राम कोई है, अरे पुलिस को बुलाओ पुलिस।
2: भगवान ना करे किसी को डॉक्टर वकील या पुलिस के पास जाना पड़े। इन तीनों जगहों पर इंसान अपनी मर्जी से नहीं जाता, लेकिन एक बार अगर पहुंच गया तो पीछा छुड़ाना जरूर मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे इन दोनों पात्रों के साथ भी।
0: दरोगा जी, दरोगा जी, दरोगा जी, देखिए इस बुड्ढे ने जबरदस्ती मुझसे पेंशन लेने की कोशिश की। मैंने कहा कि लाइफ सर्टिफिकेट ले आओ, तो बोला नहीं लाऊंगा, जो करते बने कर लो। मैंने रोका तो गालियां देने लगा, देखिए देखिए डंडा खींच कर मारा मुझे। अरे गिरफ्तार कर लीजिए, बहुत खतरनाक बुड्ढा है।
1: अरे कोई गाली वाली नहीं दी है दरोगा साहब। हाँ छड़ी जरूर उठाई है इस पर, वो भी इसलिए कि इसने पेंशन देने से मना कर दिया था। कहने लगा जिंदा होने का सबूत लेके आओ। हाँ, मैंने कहा तुम्हारे सामने अच्छा भला खड़ा हूँ, क्या इतना सबूत काफी नहीं है? तो बोला मैं नहीं मानता इस सबूत को। तो ठीक है, जब मैं जिंदा ही नहीं हूँ तो मैंने कोई जुर्म भी कैसे किया है? किस कानून में लिखा है कि मुर्दे को गिरफ्तार करो? जाइए पहले ये साबित कीजिए कि मैं जिंदा हूँ, फिर गिरफ्तार करिएगा मुझे।
0: सुन रहे हैं दरोगा जी, आप आपके सामने खड़ा होकर बकर बकर कर रहा है, आपसे बहस कर रहा है दरोगा जी, आपको कानून सिखा रहा है और कह रहा है कि पहले ये साबित कीजिए कि ये जिंदा है।
3: चुप, एकदम चुप। तुम दोनों ने मेरा दिमाग गर्म कर दिया। अरे ऐसा टिपिकल केस मैंने जिंदगी में नहीं देखा, और तुम है सीनियर सिटीजन, ये सरकारी आदमी के काम में बाधा पहुंचाते हो, गाली बकते हो, मारपीट करते हो। आईपीसी की धारा 294, 332, 33, 34, 353 की धाराएं जब लगाऊंगा ना तुम्हारे ऊपर, तो सारी जवानी ठंडी हो जाएगी तुम्हारी।
1: अरे ऐसे कैसे लगाएंगे जी, पहले साबित तो कीजिए कि मैं जिंदा हूँ, हैं? कि कोर्ट में बताएंगे कि दयाराम नाम के भूत ने ये सब किया है जी।
3: ये तुम साबित करना है कि तुम जिंदा नहीं हो। अरे भूत प्रेत पिशाच हो क्या हो, मैं तो तुम्हें जिंदा मानकर तुम्हारी चार्जशीट भर दूंगा, दैट्स इट।
1: अच्छा ऐसे कैसे दैट्स इट? थोड़ा बहुत कानून मैं भी जानता हूँ, जुर्म साबित करना पुलिस का काम है, ना कि मुलजिम का, कि वो खुद को बेगुनाह साबित करे। आप साबित कीजिए कि मैं गुनाहगार हूँ, मगर इसके पहले आपको मुझे जिंदा तो साबित करना पड़ेगा।
0: इस बुड्ढे की बातचीत में मत आइए दरोगा जी, मैं कंप्लेंट लिखवा रहा हूँ कि इसने मुझे गाली दी और मारा। अरे गाली गलौच और मारपीट कोई जिंदा इंसान ही कर सकता है, ना कि कोई मुर्दा। मैं गवाह हूं कि ये जिंदा है, आप पकड़ लीजिए इसको।
1: वाह वाह वाह वाह, सुना आपने दरोगा जी, ये पेंशन बाबू मुझे जिंदा मान रहा है, मगर इसके बाद भी पेंशन देने को तैयार नहीं है। कहता है कि साबित करो कि मैं जिंदा हूँ। अरे गिरफ्तार तो इसे कीजिए, एक सीनियर सिटीजन को प्रताड़ित करने के जुर्म में, दुर्व्यवहार करने के जुर्म में, गाली गलौज करने के जुर्म में, धक्का देकर पब्लिक प्लेस से बाहर निकालने के जुर्म में, इसे तो जिंदा भी साबित करने की जरूरत नहीं है। ऑफिस में हाजिरी लगाई होगी इसने, है ना? इतना ही काफी है।
3: हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं? मुर्दा जिंदा है, लेकिन जो जिंदा है वो जिंदा नहीं।
1: वो ही तो, जो जिंदा है उसे जिंदा होने का सबूत पेश करने को कहा जा रहा है, ये देखिए आप। लेकिन लॉकअप में डालने के लिए जिंदा होना जरूरी नहीं है, अंधेर गर्दी मचा रखी है, हैं?
3: बस बस, अब मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, और अब किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। दोनों पार्टियों के खिलाफ केस बनाऊंगा, और ज्यादा बड़बड़ की तो पुलिस ऑफिसर को ऑन ड्यूटी मेंटल टॉर्चर देने का एक कस और बनाऊंगा। सब लड़ाई झगड़ा भूल जाओगे, चलो थाने तुम दोनों, चलो।
0: अरे मुझे छोड़ दीजिए दरोगा जी, छोड़ दीजिए। अरे मेरी नौकरी चली जाएगी, इस बुड्ढे का क्या, मजे से सरकारी ने मेहमानी करेगा, मगर मैं तो बाल बच्चे वाला आदमी हूँ।
1: हरगिज नहीं, अब तो मैं भी अंदर और तू भी अंदर, ना मुझे पेंशन की जरूरत और ना तुझे तनख्वाह की जरूरत। सरकारी खाना, सरकारी रहना, सरकारी इलाज, चारों ओर कमांडो। अब तो ऐसी ऐसे।
0: क्या बक रहा है बुड्ढे तू, हैं? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे जेल जा रहे हैं हम दोनों, जेल का मतलब जानता भी है तू?
1: नहीं जानता तो जान जाऊंगा। अरे ये तो अपनी जेल है, अपनी, भारत सरकार की। गांधी जी तो अंग्रेजों की जेल में रहे थे, हैं? वो भी सत्य के लिए गए थे, और मैं भी सत्य के लिए ही जा रहा हूँ। बढ़िया है।
0: अरे ये बात बात में तू गांधी जी को क्यों बीच में ले आता है भाई? आपस का मामला है, मिलकर निपटा लेते हैं। चल भाई मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले लेता हूँ, अब तो खुश।
3: ओए क्या फालतू समझ रखा है पुलिस को, जब मर्जी हुई तो कंप्लेंट कर दी और जब मर्जी हुई तो कंप्लेंट वापस। पुलिस तो जैसे तुम्हारे बाप की नौकर है, जैसे चाहो वैसे नचाओ, कोई कंप्लेंट वम्प्लेंट वापस नहीं होगी। 24 घंटे हवालात में रहोगे। इसके बाद तुम दोनों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और जो कुछ बोलना है वहीं जाके बोलना।
0: अरे आप भी तो कुछ बोलिए अंकल जी, अपनी तो वाट लग जाएगी।
1: अंकल जी, अरे वाह वाह। अरे वक्त ये बुड्ढा अब अंकल जी हो गया। अरे बात तो तेरी लगेगी पेंशन बाबू। नहीं अपने राम को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे घर में रहे चाहे जेल में, दो वक्त की रोटी कपड़े से मतलब है। ना आगे कोई रोने वाला है ना पीछे।
0: हे राम कहाँ फंस गया रे, हमें छोड़ दीजिए दरोगा जी, दरोगा जी हमें छोड़ दीजिए, हम अपना मामला आपस में ही सुलटा लेंगे। देखिए देखिए मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे आप भी तो नौकरी वाले हैं, कुछ तो ख्याल कीजिए।
1: बहुत खूब बहुत खूब। अरे मैं भी तो कभी नौकरी वाला था, कल मेरी तरह तुम भी पेंशनर बनोगे, ये सब नहीं सोचा। पेंशन देने से मना कर दिया, बोला बाहर निकलो, ये नहीं सोचा कि पेंशन के बिना ये बुड्ढा खाएगा क्या।
0: अरे अब जाने भी दो भाई साहब, भाई साहब गुस्सा गुस्सा जो है ना, थूक दो एकदम, थूक दो आप तो। अरे दरोगा जी, दरोगा जी, दरोगा जी, अरे सुनिए तो, दयाराम जी जो है ना मान गए, अब तो हमें छोड़ दीजिए।
3: देखो भाई थाने का मामला है, कोई ना कोई कार्रवाई तो करनी ही होगी, अब नहीं तो कल तुम ही लोग शिकायत करोगे मेरे खिलाफ कि पुलिस बेकसूर को पकड़ ले गई थी।
0: अरे नहीं दरोगा जी, हम वादा करते हैं हम कोई शिकायत विकायत नहीं करेंगे। अरे मैं तो याद भी नहीं रखूंगा कि मैं कभी थाने गया था, मेरा भरोसा कीजिए।
3: थाने में आने के बाद सब ऐसे ही बोलते हैं, और मगर छूटने के बाद SP DSP से लेकर DGP तक को शिकायत करते हैं। ना भाई ना, देखो तुम्हारी नौकरी की मैं उतनी ही हिफाजत कर सकता हूँ जितने में हमारी नौकरी खतरे में ना आए, तो 107-16 तो मुझे लगानी पड़ेगी दादा।
0: 107-16 ये तो बहुत ज्यादा है। अरे जरा इकाई दहाई में सही कोई धारा लगा दिए ना, आप तो पूरे सैकड़े में पहुंच गए डायरेक्ट।
3: अबे तो धारा क्या, तुम्हारे बाप की डायरी में लिखी है, जो जैसे चाहे काट छांट कर लो, और ज्यादा बड़बड़ की तो 151 और लगा दूंगा, प्रयास DM कोर्ट से जमानत करवाना।
0: देखिए मुझे ये पुलिसिया भाषा समझ में नहीं आती साहब, आप तो किसी तरह मेरी नौकरी बचा लीजिए।
3: इसीलिए तो कह रहा हूँ पेंशन बाबू के ज्यादा पकाओ मत मुझे, सबसे नरम वाली धारा है 107-16, इसमें कोई जेलवेल भी नहीं होती है, ये तो एक बांड भर है कि इसमें आगे तुम दोनों कोई झगड़ा नहीं करोगे, और अगर किया तो बांड कैंसिल और तुम दोनों जेल।
1: अच्छा तो है मेरे लिए, फिर तो हमें इसकी नकल भी मिल जाएगी और ये साबित हो जाएगा कि मैं जिंदा हूँ, थाने का पक्का कागज, फिर तो पेंशन देने में कोई एतराज नहीं होगा ना बाबू साहब।
0: अरे माफ करो अंकल, मैं तो ऐसे ही मान रहा हूँ कि आप जिंदा हो। अरे काहे कि 107 और 207 करवा रहे हो मेरा। अरे माफ कर दो।
2: तो श्रोताओं ये था आज का नाटक पेंशन की टेंशन, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गायन रागनी देवले का, और उसके बाद प्रस्तुति होगी तबला वादन की, जिसे पेश करेंगे योगेश शमसी। तो सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गायन रागनी देवले का।

धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन

धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन धिन

0: तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो।
1: जिसे तप तपाती गर्मी में कोई ठंडी हवा का झोंका आया और मन को सुकून दे गया। और हमारा भी यही प्रयास रहता है कि हम अपने कार्यक्रमों के द्वारा आपको वो सुकून दे सकें कि आप मन ही मन गुदगुदाएं और मुस्कुराए बिना ना रह सकें। तो प्रस्तुत है हमारा हास्य नाटक LPG का 7वां सिलेंडर। श्रोताओं, दुनिया में 7 अजूबे हैं, धरती पर 7 समंदर हैं। शादी के समय 7 फेरे लिए जाते हैं, पति और पत्नी एक दूसरे को 7 वचन देते हैं, सरगम के सुर भी 7 होते हैं, यहां तक कि इंद्रधनुष के रोशनी के रंग भी 7 हैं। और तो और, हमारा भोपाल भी 7 पहाड़ियों पर बसा है। पर हमें समझ में नहीं आता कि सब्सिडी वाले रसोई गैस के सिलेंडरों की संख्या 6 क्यों है। सरकार को न जाने क्या सूझी कि उसने किचन के सिलेंडरों का कोटा साल भर में 6 फिक्स कर दिया। अरे ज्यादा नहीं, कम से कम 7 के आंकड़े का तो ख्याल रखा होता। तो लीजिए, हाजिर है सिलेंडरों की इसी कश्मकश से गुजरते हुए एक परिवार की राम कहानी।
2: ओफ यार, ये जूते कहां रख दिए? ये जूते मिल जाए तो फिर चश्मे। अरे सुनती हो का? क्या यार, ये लोग फोन मोबाइल कहां रखा है मेरा यार?
3: सुनिए जी, अरे सुन रहे हैं?
2: हाँ?
3: आज ऑफिस के टिफिन में आपको ब्रेड बटर दे रही हूँ, कहिए तो थोड़ा सा सॉस भी रख दूँ।
2: क्या कह रही हो, ब्रेड बटर?
3: हाँ।
2: अरे यार, तुम तो जानती हो कि ब्रेड मेरे पेट में चिपकती है, गोंद की बाप है ये चिपकूपन में। सुबह फ्रेश होना मुश्किल हो जाता है, चाय पर चाय पीते जाओ पर जोड़ है कि टूटते ही नहीं।
4: अरे मम्मी, पापा को भुने चने दे दीजिए, लहसुन मिर्ची की चटनी के साथ। पापा कहते हैं भुना चना पेट साफ रखता है।
2: क्या बकवास किए जा रहे हो तुम लोग, कुछ ढंग का टिफिन नहीं दे सकते तुम मुझे? ब्रेड बटर भुना चना, मानो अग्निदेव हड़ताल पर चले गए हो।
3: चले गए नहीं है, पर जाने की धमकी जरूर दे रहे हैं।
2: क्या मतलब
3: भाई? 5 महीने बाकी है अभी साल पूरा होने में,
2: और नोटिस दे दिए है कि अब काम पे नहीं आएंगे वो, यही कहना है ना तुम्हें?
3: हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए बस। पिछले 7 महीनों में हमने 4 सिलेंडर चट कर दिए हैं, अब बचे हैं कोटे के खाली 2 सिलेंडर।
2: क्या?
3: और महीने बचे हैं 5, यानी 1 सिलेंडर अब हमें 2.5 महीने चलाना है, जबकि जिस हिसाब से चल रहे हैं ना हम, हमारा 1 सिलेंडर 2 महीने भी तो चलता नहीं, और कुकिंग में कटौती भी करनी पड़ेगी।
2: कटौती माई फट, अब क्या पेट पर पट्टी बांध कर नौकरी करूंगा मैं? हार तोड़ खटो ऑफिस में और इसके बाद खाना भी नहीं मांगो? कमाल है भाई, कमाल है। एक सुबह गरम पराठा ना दो तो तुम्हारी बाई भी भाग जाए काम छोड़कर, और मैं?
3: ए, देखो देखो जी, बाई से अपनी बराबरी मत करो, कह देती हूँ मैं। हाँ भाई, तुम मुंह फुला लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा मेरा, मगर बाई, बाप रे बाप, दूसरा पति तो मिल जाएगा।
2: क्या?
3: पर दूसरी बाई नहीं मिलने वाली भाई, उसके नाश्ते में कटौती का तो सवाल ही नहीं उठता, बाकी चाहे जो हो। अरे देख तो मंजू, लगता है कांता बाई आ गई। क्यों रे कांता, ये कोई टाइम है आने का? पहले तो तू कभी कभार ऐसा करती थी, पर अब तो तेरा रोज रोज।
5: अरे क्या करूं भाई साहब, सरकार ने सिलेंडरों में आग लगा के रखी है ना, अब जलते सिलेंडर से आग तो लग सकती है पर खाना बनने से रहा। सुबह सवेरे सवेरे लकड़ी बीन ना जाऊ ना तो लकड़ी भी ना मिले। एक अनार 100 बीमार वाला हाल है। एक टाइम लकड़ी के टुकड़ों पर खाना पकता है और एक टाइम गैस सिलेंडर पर। अब देर तो होगी ना भाई, आखिर नौकरी भी तो पापी पेट की खातिर ही कर रही हूँ ना।
2: हाँ, हाँ, तू ही कर रही है अपने पापी पेट की खातिर, और हम तो ऐसे ही कर रहे हैं।
3: अरे सुनिए साहब, अरे सुनिए तो टिफिन तो ले जाइए, अरे कुछ एकदम खाली पेट रहेंगे क्या?
5: उफ़ साहब, नाराज हो गए क्या भाई साहब?
3: अब छोड़ ना, तू नाश्ता कर ले।
5: भाई साहब नाश्ता तो कर लूंगी, पर आज है ना वो ना पराठे के साथ है ना चाय भी मिल जाती तो थोड़ा सा क्या है ठंड है ना।
3: अच्छा बनाती हूँ।
5: हाँ हाँ, तो कई दिन भी हो गए सुबह की चाय नहीं मिली ना भाई साहब। पहले तो ठेले पर वो 2 रुपए कट मिल जाती थी, पर अब अरे अब तो उनके भी रेट सिलेंडर की तरह भबक रहे ना।
3: ये ले चाय। अब मेरा माथा खराब ना कर कांता, देखा ना तूने कैसे लड़कर गए हैं अभी। तू चाय पी, तुझे तो गरम पराठे दे रही हूँ और वे तूने चने लेकर चले गए। तुझे क्या मालूम कि वो कैसे कैसे
5: मालूम है भाई साहब। रो मत, रो नको, मालूम है मेरे को, सब मालूम है। अरे आग की जरूरत तो मेरी रसोई में भी पड़ती है ना। वो चाय वाले भी बोलते कि सरकारी रेट 2 गुना होता है ना, तो ब्लैक वालों का रेट 4 गुना हो जाता है। हाँ
3: मैं क्या कर लूं, सरकार तो कुछ भी बोल देती है बस। अब मैं कैसे घर चलाती हूँ ना, मैं ही जाती हूँ।
5: रो,
3: हो गई ना तेरी चाय। हाँ, अब जा बाकी काम कर।
5: हाँ,
3: झाड़ू पोछा पड़ा है सुबह से।
5: हाँ, कर।

0: मंजू।
1: हाँ मम्मी।
0: जरा टीवी की आवाज कम कर दे बेटा।
1: हाँ मम्मी करती हूँ।
0: सुनो ना, सॉरी सुबह मेरी वजह से आपका मूड ऑफ हो गया, पर मैं क्या करूं बताओ। मेरे हाथ में तनख्वाह देखकर तो तुम निश्चिंत हो जाते हो, घर तो मुझे चलाना पड़ता है ना।
2: नहीं रचना, गलती मेरी भी है। अरे यार, मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, बॉस तक की बीवी ने राशनिंग का हुक्म सुना दिया।
0: क्या?

0: सूरज भगवान की सब्सिडी और सरकारी सब्सिडी, इन दोनों को मिलाकर हमारा काम किसी तरह चल ही जाएगा।
1: क्या बात है भाई। क्या बात है, हमारी मेहम साहब तो बहुत समझदार हो गई है। अब अब जाके हमें समझ में आया कि वैदिक काल में लोग अग्नि की इतनी पूजा क्यों करते थे। सच सच, ज्ञान पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान आता है भोगने से।
0: अब देखिए जी, 5 महीने हमें 2 सिलेंडरों के सहारे निकालने हैं।
1: बिल्कुल।
0: ओके, तो अब सोलर कुकर ने 1/3 लोड भी ले लिया।
1: हाँ।
0: तो गाड़ी धक ही जाएगी किसी तरह। फिर हाँ। आपको भी टिफिन में ब्रेड चने नहीं खाने होंगे। हाँ। हॉट केस में रखे गरम गरम दाल चावल की खुशबू से आप ऑफिस में अपना करवा चौथ खोलिएगा।
2: और मम्मी, फिर मैं भी गर्मा गर्म पोहे खाऊंगी रोज सुबह।
0: हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं भाई, अब तो सोलर कुकर देव का ही सहारा है, वे ही इस संकट से छुटकारा दिला सकते हैं। अब
1: वाह वाह, संकट
0: सोलर
1: मोचक।
0: कुकर देव की जय।
1: अरे यार रचना, ऑफिस के लिए देर हो रही है, मुझे कहाँ है मेरा लंच बॉक्स, है ला।
0: माफ करना जी,
1: क्या
0: लगता है दोपहर के पहले नहीं पकने वाला है ये दाल चावल, ये सोलर कुकर में डाला है ना। और आज सूर्यदेव भी नरम पड़े हुए, लगता है उन्होंने भी सब्सिडी घटाने का मन बना लिया है।
1: ये भगवान, दुबले को दो आषाढ़। यार एक काम करो, अटपका ये भर दो तुम टिफिन में यार, है? पेट की आग से ही पक जाएगा आप तो खाना। आखिर आदि मानव भी तो कच्चा मांस ही खाता था, और कितना आटा कट्टा होता था।
0: ओहो, मुझे क्यों सुना रहे हो, अब सूरज देव ठंडे पड़ते जा रहे, तो मैं क्या कर लूं?
1: क्या करूं?
0: उनके आगे मोर्चा तो लेकर नहीं जा सकती ना। सारी मुसीबत मेरी, जैसी सरकार वैसे ही भगवान, आम आदमी के तो सबके सब दुश्मन है।
1: यार, अरे हर रचना, एक आइडिया आया है दिमाग।
0: हटो जी,
1: एकदम सुपर हिट है। एक काम करो, एक काम करो, जिस हाल में भी है दाल चावल तो उठा लाओ उसे, जल्दी लाओ, लाओ तो।
0: अरे अरे अरे अरे, क्या हो गया जी आपको, क्या आप सचमुच ही आदि मानव तो नहीं है? हे भगवान, सिलेंडरों की समस्या ने अब आपके दिमाग पर कोई असर तो नहीं डाल दिया?
1: अरे चुप रहे भाई, चुप रहे, मैं तुझे पागल दिखता हूँ? अरे लेके आओ यार सही अपना कच्चा पक्का खाना, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या करना है। लाओ लाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ।
0: ये लीजिए।
1: हाँ
0: ये बताइए, अब क्या करूँ इस कच्चे पक्के खाने का?
1: अरे करना क्या है यार, ये सोलर कुकर के डब्बों को अब असली कुकर में डाल दो और उसको फिर गैस पर चढ़ा दो।
0: हाँ, अब फिर क्या फायदा हुआ?
1: ओफो, यही तो फर्क है तुम्हारी और हमारी अकल में। अरे अब खाना पकाने में आधा गैस खर्च होगा कि नहीं होगा, हैं? आधा गैस।
0: वाओ, मान गए आपको, वो क्या कहते हैं ना जी, दिनेश, मतलब दिनेश।
1: हाँ, मतलब हम दिनेश।
3: रचना और दिनेश ने न जाने क्या क्या तरीके अपनाए, पर सिलेंडर देव की आयु 2.25 महीने के ऊपर न जा सकी। एक बार फिर घर की दीवारों पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। 7वें सिलेंडर की कल्पना ही डरावनी है। भारत में आम आदमी का कलेजा अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वह 1000 रुपए का सिलेंडर खरीद करके अपना रसोई का चूल्हा जला सके। पति पत्नी की 2 सदस्यीय कमेटी इस कठिन समस्या का हल तलाशने के लिए बैठ गई।
0: सुनो जी।
1: हाँ?
0: एक काम करते हैं, घर में आलू आज से पूरी तरह बंद।
1: उससे क्या होगा, क्या बाकी सब्जियां कच्ची खाई जाएंगी?
0: अरे नहीं जी, सब्जियों का बिहेवियर आप क्या जानोगे दिनेश बाबू, ये तो हम गृह स्वामिनियां ही समझ सकती है।
1: क्या मतलब?
0: मतलब ये देखो, अब हमें पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए, हाफ फ्राइड, पोषक तत्व भी भरपूर और गैस की बचत भी। वो डॉक्टर्स कहते हैं ना कि सब्जियों को ज्यादा पकाने से उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, नष्ट नष्ट नष्ट,
1: और मेरा वेट भी कंट्रोल में रहेगा। है ना?
0: वाओ, क्या बात कही है आपने, तो मेरे मुंह की बात छीन ली। वेट कंट्रोल, तो समझिए सब बीमारियां कंट्रोल।
1: अरे भाड़ में जाए तुम्हारे पोषक तत्व और वेट कंट्रोल, जान ही दे देते हैं ना बाबा अपनी। न रहेगा वेट और न रहेगा कंट्रोल, और न करना होगा ऐसे कंट्रोल में, गैस सिलेंडर की जरूरत भी खत्म।
0: अरे क्यों नाराज होते हैं जी मेरे भोले पतिदेव? भाई आपकी तनख्वाह से तो काम चल नहीं रहा है, आपकी पेंशन से कैसे काम चलेगा?
1: क्या,
0: हमारा गोलू अभी छोटा है, अभी उसे बाप की जरूरत है जी।
1: जरूरत है तो नहीं होगा आलू बंद।
0: हा?
1: मेरा पेट ही नहीं भरता आलू के बिना। अरे आने दो सातवां सिलेंडर 1000 रुपए में, पर आलू पर कैंची कभी नहीं चलेगी।
0: ये भी आ गए सातवें सिलेंडर के दूध बनकर, गरीबी में आटा गिला, गैस का 6 दिन का कोटा अब 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। पहले का जमाना ही अच्छा था, जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ, मजे से चूल्हा जलाओ, कम से कम मेहमानों से डर तो नहीं लगता था।
1: क्या भुनर भुनर कर रही हो जी तुम है? तुम औरतों की यही आदत मुझे बुरी लगती है, खुलकर नहीं बोलती, ऐसा लगता है जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। क्या हुआ?
0: घर में मेहमान है, गैस का हिसाब किताब तो पहले ही गड़बड़ाया हुआ था, पर अब तो पूरा गड़बड़ छाला हो चुका है। कोई प्रधानमंत्री राहत कोष भी तो नहीं होता ऐसे मामलों के लिए?
1: अरे ठीक कहती हो तुम, एक प्रधानमंत्री गैस कोष जरूर होना चाहिए, जिससे उन लोगों की मदद हो सके जिनके यहाँ मेहमान वगैरह आ जाएं। इन लोगों ने सिलेंडर का कोटा फिक्स करते हुए ये नहीं सोचा कि मेहमान भी आएंगे घर में। अरे कभी ठंडे खाने को गर्म भी करना पड़ेगा, कभी त्योहार भी पड़ेंगे। बस फ्लैट ऑर्डर पास कर दिया कि साल भर में 6 सिलेंडर। त्योहारों को गुड बाई बोल दो, मेहमानों को पहचानने से इनकार कर दो, खाना ठंडा हो जाए तो उसे वैसे ही निगल लो। पता चला बाहर की गैस बचाने के चक्कर में पेट के भीतर गैस भंडार बन गया।
0: सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो, क्या खूब बात कही है।
1: क्या
0: बातों ही बातों में समस्या का अच्छा समाधान बता दिया।
1: अच्छा,
0: अगर कोई टेक्नोलॉजी इजाद हो सके कि इस गैस भंडार को सिलेंडरों में पैक कर ली जाए,
1: क्या
0: तो सारी समस्या ही खत्म। तब तो गैस कंपनियां कहेंगी जो साल में 6 से ज्यादा सिलेंडर इस्तेमाल करेगा उसे 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा।
1: और फिर भी कोई खरीदार नहीं मिलेगा, आखिर मुफ्त की चीज कोई डिस्काउंट में भी क्यों खरीदे?

0: वाह वाह वाह वाह
1: यार, खाने में कुछ मजा नहीं आ रहा आजकल।
0: हाँ, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हो यार आलोक भाई?
1: क्या बताएं यार,
0: क्या हुआ
1: यार दिनेश? हाँ? सरकार इतनी बेरहम कैसे हो सकती भैये?
0: क्या हो गया? क्या
1: अरे मतलब? यही सिलेंडरों का कोटा।
0: हाँ,
1: कहते हैं साल में 6 से ज्यादा नहीं देंगे।
0: हाँ,
1: अरे भैया जब हम छोटे थे 60 रुपए का आने वाला सिलेंडर अब 500 रुपए का हो चुका है। कोटा करण अलग से, ऊपर से तुर्रा ये कि देश की आर्थिक तरक्की हो रही है। वाह,
0: सही कह रहा है यार तू आलोक। आर्थिक तरक्की तो तभी होगी ना जब हम लोग आधा पेट खाएंगे।
1: सही कहते हो, सही
0: पेट भर खाना खा लेंगे तो देश की तरक्की के लिए पैसा ही नहीं बचेगा।
1: हाँ, ये भी तुमने ठीक कहा। और करनी और करमगत ऐसे भैया के घर में जो हमारे कुकिंग मिनिस्टर बैठी है ना, अब वो खाने का कोटा फिक्स कर रही है। कहती है सुबह 1 से ज्यादा चाय नहीं मिल सकती।
0: जी, जी, जी,
1: टिफिन भी खाना है तो कच्चा माल खाओ, शाम की चाय बाजार में जाकर पियाओ। और कभी कभी तो ये कहती है कि कच्चा खाना खा करके जलते तवे पर बैठ जाओ।
0: अरे भाई क्या क्या बात कही है आपने, मेरे घर में भी यही सब चल रहा है। 6ठा सिलेंडर खुल चुका है। हाँ, और मेहमानों को भी इसी वक्त आना था। बड़े मुश्किल से विदा हुए हैं, लगता है उनके घर में भी सिलेंडरों का कोटा खत्म हो रहा था। सोचा कुछ दिन दिनेश भाई के यहाँ चलो।
1: भैया दिनेश, मुझे तो अब मेहमानों से डर लगने लगा है। सोचता हूँ घर में आए मेहमान तो उन्हें होटल अलाउंस दे दूं बिल्कुल कैश, और कहूँ भैया ये लो पकड़ो और होटल में जाकर खाना खा पी लो बस।
0: हाँ बॉस, हमारी संस्कृति में कहते हैं अतिथि देवो भवा।

0: हाँ
1: तुम्हें सिलेंडर दान नहीं करना है क्या?
0: है?
1: अरे दान त्याग मांगता है त्याग। भोग के बूते पर भी कभी कोई दान होता है?
0: जी अरे भाई, हमारी गिनती तो दान लेने वालों में ही रखो यार। तुम्हें देने वालों में तो तुम अपना नाम भले लिखवा लो।
1: देखो भैया दिनेश, सिलेंडर दान महादान।
2: दिनेश और रचना की सारी हिकमतें मिलकर भी छठे सिलेंडर की आयु को दीर्घायु न कर सकी। अभी साल पूरा होने में एक महीना बाकी था, पर अचानक एक रात गैस का बर्नर भभक कर बुझ गया। समझ गए वे दोनों कि पंछी उड़ चुका है। सिलेंडर के भीतर रहने वाली गैस रूपी आत्मा महाप्रायण कर चुकी है। अब यह जो लाल रंग का लोहा बचा है, यह तो नश्वर शरीर है।
3: ओफो, अब क्या करूं? सब्जी अभी कच्ची है, गोलू का दूध भी गर्म नहीं हुआ, सुबह की ओ, क्या मुसीबत है। अजी सुन रहे हो? सुनना जरा।
0: हाँ, हाँ,
3: देखो ना, गैस खत्म हो गई, पूरा काम पड़ा हुआ है, अब मैं क्या करूं बताओ। इसी बात का डर।
0: एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। सुनो, लुढ़का कर देखते हैं सिलेंडर को, शायद थोड़ी सांसें बची हो अभी, 5-10 मिनट और जी जाए किसी तरह।
3: संभल के
0: अब जलाओ।
3: चल गया, जल जल चल गया। ये देखो लौ निकल रही है बर्नर से। हे भगवान, तू सचमुच कितना दयालु है भगवान, भक्तों का संकट दूर करने वाला। काम चला दो किसी तरह शारदा माता, हम सब परिवार मैहर दर्शन को आएंगे माता।
0: अरे क्या पागल हुई हो, कितने घाटे की डीलिंग है ये तुम्हारी, तुम्हें होश भी है? दर्शन करने का खर्चा कितना बैठेगा तुमने सोचा है कभी? अरे ये तो गज बचाने के चक्कर में थान हारने वाली बात है।
3: चुप रहो जी, कहीं माता रानी नाराज हो गई ना तो थान तो क्या, दुकान ही हार जाओगे तुम। एक एक सिलेंडर को तरसोगे, साल भर गाय की तरह कच्चा सानी खाते रहना, होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे।
2: लड़ाई के मैदान में जिस तरह कोई बहादुर सैनिक मरते मरते भी 2-4 दुश्मनों को लुड़का देता है, वैसे ही दम तोड़ते सिलेंडर ने भी रात का खाना पका दिया है। पर सुबह क्या होगा, यह चिंता पति पत्नी को इस खाने का आनंद नहीं लेने दे रही। हर कौर के साथ चिंता की दो फांके निगल रहे थे वे दोनों। सुबह चाय कैसे बनेगी, दूध कैसे गर्म होगा, नाश्ता कैसे बनेगा, अनगिनत सवाल पति पत्नी के बीच राहु की तरह पंख फड़फड़ा रहे थे।
0: ये क्या कर रही हो रचना, आज रद्दी वाले को बुलाया क्या तुमने?
3: रद्दी वाले को नहीं बुलाया है, ये तो चाय बनाने का इंतजाम चल रहा है पति देव जी।
0: यानी अब रद्दी के कागजों से रसोई पकेगी?
3: नहीं, ये केवल सुबह का इंतजाम है।
0: तो
3: इसके बाद अगर कोई रसोई जलानी है तो जाकर कबाड़ी के यहाँ से 1-2 क्विंटल रद्दी कागज खरीद कर ले आओ।
0: 1 क्विंटल रद्दी कागज?
3: हाँ,
0: यानी 1,000 रुपए का बिल। लग रहा है गैस खत्म नहीं हुई है रचना, बल्कि तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है। इतने में तो बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर ही आ जाएगा।
3: वही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ।
0: क्या?
3: अब सब्सिडी का मोह छोड़िए, क्या पता कल को इन 6 सिलेंडरों पर भी सब्सिडी खत्म हो जाए। तो अभी से हमें आदत डालते रहना चाहिए, वही अच्छा है।
0: पर रचना, हमारे बजट का क्या होगा तब? ये एक्स्ट्रा खर्च कहाँ से आएगा भाई, किसकी जेब काट कर हम अपना घर चलाएंगे है? अब तो कर्मचारी संगठनों को सरकार से कुकिंग अलाउंस भी मांगना चाहिए भाई, खाना खाए बगैर तो कर्मचारी काम कर ही नहीं सकता। तनख्वाह से अनाज तो खरीद सकते हैं पर पका नहीं सकते, उसे पकाने के लिए अलाउंस का हक तो बनता है
3: यार। चिंता न करिए पति देव जी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ तो आपकी चिंताएं भी साझा करूंगी। अब सोच लिया है मैंने कि बजट को कैसे बैलेंस करना है।
0: कैसे बैलेंस करना है?
3: तो लीजिए, पेश है। कल से दूध का एक पैकेट कम आएगा घर में
0: जी?
3: साल भर
0: है?
3: भविष्य के लिए अपने आप को तैयार रखना है। आज नहीं तो कल सब्सिडी वाले सिलेंडर बंद होने ही है। पूरा दूध कच्चा पीने से अच्छा है कि आधा दूध उबाल कर पियो। पका खाना बोनस होगा।
0: पर काम कैसे चलेगा? दो पैकेट में तो पूरा पड़ता नहीं है, एक पैकेट में क्या होगा?
3: अरे पढ़ने का क्या है, चार में भी ना पड़े और छोटी थैली में भी काम चल जाए। आखिर हमें उतने ही पांव पसारने चाहिए जी जितनी हमारी चादर है। कर्ज लेकर घी पीने की फिलॉसफी तो सही नहीं है ना। चाय में दूध थोड़ा कम पड़ेगा, फुल के बजाय कच्चा चाय पी जाएगी। गोलू के दूध में भी थोड़ी राशनिंग हो जाएगी, इससे चीनी भी बचेगा और डायबिटीज का खतरा भी खत्म। बीमार होने का रिस्क कम, यानी दवा दारू का खर्च भी बचा।
0: बहुत खूब,
3: बस हो गया बजट बैलेंस। बजट क्या, सरप्लस कहिए साहब, सरप्लस।
0: क्या बात है।
2: अब घर में सातवां सिलेंडर आ चुका है। पैसे जरूर दुगने से ज्यादा लग गए, पर रसोई तो गर्म हो गई। कुकर की सीटी बज उठी है, चाय उबल रही है, जीवन की ऊष्मा सोंधी सोंधी महक रही है।
3: ये क्या है जी आपके हाथ में?
0: बूझो तो जानू।
3: अब बूझना क्या है, ये तो गैस का चूल्हा है, साफ समझ में आ रहा है। अब ये क्या फितूर सूझी आपको, एक नया खर्च बेवजह। भाई हमारा चूल्हा अच्छा भला तो काम कर रहा है अभी।
0: अच्छा भला नहीं काम कर रहा है धर्म पत्नी जी, अपना चूल्हा कभी ध्यान से देखा है आपने? पुरानी टेक्नोलॉजी का है, तुम्हारी तरह ये चूल्हा।
3: तो क्या हुआ, मेरी तरह जलता भी तो है ये चूल्हा।
0: मगर गैस जरूरत से ज्यादा खाता है, पुरानी फिएट कार की तरह ये जो चलती कम और धुआं ज्यादा देती है। तुमने ध्यान से देखा है कभी इसे? देखा है कभी इसे?
3: क्या
0: बर्तन की पेंदी कितनी काली हो जाती है इससे है?
3: और इस नए चूल्हे में
0: तुम खुद ही खोल कर देखो इसे, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें।
3: अरे इसमें तो लिखा है हाई थर्मल एफिशिएंसी अप टू 75%।
0: और तुम्हारे पुराने चूल्हे में क्या लिखा है ये भी देख लो लगे हाथ।
3: अब इसमें इसमें तो कुछ भी लिखा नजर नहीं आ रहा जी।
0: नहीं आ रहा ना?
3: नहीं
0: आएगा भी नहीं।
3: क्यों?
0: क्योंकि कुछ लिखने लायक होगा तब ना लिखा जाएगा।
3: अरे
0: मुझे भी नहीं मालूम था, वो तो जब से सिलेंडरों की राशनिंग हुई है चारों ओर रिसर्च शुरू हो गई है कि गैस कैसे बचाई जाए। कंपनियां भी अब स्टार रेटेड चूल्हे बाजार में ला रही हैं जो कम गैस खाते हैं। कई बुकलेट पब्लिश हुए हैं जिनमें बताया जा रहा है कि खाना कैसे पकाया जाए जिससे गैस की बचत हो। एक फ्री बुकलेट इस चूल्हे के साथ भी है, देख लो।
3: यही है ना बुकलेट?
0: हाँ यही है। क्या लिखा है बड़ा?
3: लिखा है हाउ टू सेव कुकिंग गैस इन किचन।
0: हाँ अब इसे जरा पूरा खोल कर पढ़ो तो।
3: देखो ना, गैस बचाने के टिप्स
0: जी।
3: नंबर एक, गैस का चूल्हा ऑन करने के पहले पकाने की सामग्री अपने पास रख लें
0: जी।
3: इससे चीजें ढूंढने के दौरान आपकी गैस फालतू बर्बाद नहीं होगी
0: जी।
3: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया।
0: हाँ।
3: अच्छा नंबर दो, सेपरेटर की मदद से एक ही प्रेशर कुकर में अनेक चीजें एक बार में ही पकाएं।
0: आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
3: नंबर तीन, चीजें कम पानी में पकाएं, ज्यादा पानी को भाप में बदलने के लिए ज्यादा गैस की गैस। अरे बाप रे। नंबर चार, बर्तन में रखा पदार्थ जैसे ही उबलना शुरू करें आंच धीमी कर दो।
0: जी जी,
3: सिंपल। ओके एक और है, एक और। दाल चावल को पकाने के पहले थोड़ी देर भिगो कर रखें।
0: हाँ, अब मुझे तो, मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे तो।
3: अच्छा अच्छा, चलो पढ़ो पढ़ो। सिक्स्थ वाला।
0: जहाँ तक हो सके छोटा बर्नर इस्तेमाल करें।
3: अच्छा।
0: और बर्नर की समय समय पर यानी वक्त वक्त पर सफाई करें, खास करके तब जब बर्नर की लौ पीली नारंगी व एक जैसी ना हो।
3: अच्छा।
0: समझी?
3: हाँ, हाँ।
0: अच्छी लौ की एक पहचान ये है कि इसे नीली चमकदार व एक जैसी होना चाहिए।
3: अच्छा,
0: एक जैसी
3: है? अच्छा, अच्छा।
0: वो नीली। और फ्रिज से निकाली गई चीजों को गैस पर चढ़ाने के पहले कमरे के ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ जाने दें।
3: हाँ, हाँ, हाँ।
0: इससे गैस की बचत होगी। और अगर इन सभी नियमों का पालन करोगे तो आपका गैस सिलेंडर दीर्घायु होगा। दीर्घायु?
3: नहीं, मजाक नहीं। अरे इनमें से आधी बातें तो हम पहले से ही जानते हैं।
0: हाँ।
3: पर हम इन्हें करते क्यों नहीं हैं?
0: हाँ, लेकिन अब करना है धर्म पत्नी।
3: हाँ,
0: जी
3: जरूर, जरूर।
0: नहीं तो पता चला अभी दूध आधा हुआ है।
3: हाँ।
0: और चाय आधी हुई है, आगे चलकर कौन भरोसा है कि रोटी भी आधी हो जाए?
3: नहीं नहीं।
0: हाँ, आगे चलकर कौन भरोसा है कि रोटी भी आधी हो जाए?
3: नहीं नहीं।
0: मेहमानों को आने से पहले सैंक्शन लेनी पड़े, संख्या बतानी पड़े कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने दिन के लिए आ रहे हैं, कितने दिन बाद जाएंगे, पहले वीजा लें फिर टेक ऑफ करें, नहीं तो घर में लैंड करने की
3: इजाजत नहीं मिलेगी।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एलपीजी का सातवां सिलेंडर। इस हास्य नाटिका में भाग लेने वाले कलाकार थे राकेश जमनी, स्वास्तिका चक्रवर्ती, रंजना तिवारी और इरफान सौरभ। लेखक श्रीमती पूनम जायसवाल। ध्वनांकन एवं संपादन अमित कुंदानी और अंकित सक्सेना का। परिकल्पना और सूत्रधार प्रमोद शर्मा। निर्देशन जवाहरलाल शाह। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, शाम के 5 बजे हैं और हमारी सायंकालीन सभा में आप सभी का स्वागत है।

0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 104 से वाचन। ऋषि हैं कुत्स आंगिरस, देवता हैं इंद्र और छंद है त्रिष्टुप।
3: यो निष्ट इंद्र निषदे अकारि तमा निषीद स्वानो नार्वा विमुच्या वयो वसाया श्वान्दोषा वस्तोर वहीयसः प्रपित्वे। हे इंद्रदेव, हमने आपके लिए श्रेष्ठ स्थान निर्धारित किया है। रथवाहक अश्वों को उनके बंधनों से मुक्त करके हिनहिनाते हुए घोड़ों के साथ रात दिन चलकर यज्ञ स्थल में निर्धारित आसन पर विराजमान हों। ओ त्ये नर इंद्रमूतये गुर्नु चित्तान सद्यो अध्वनो जगम्यात देवासो मन्युम दासस्य श्चम्नन्ते न आ वक्षन्तु सुविताय वर्णम। सुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर अपने समीप आए हुए मनुष्यों को इंद्रदेव ने शीघ्र ही श्रेष्ठ मार्गदर्शन दिया। देव शक्तियां दुष्कर्मियों की क्रोध भावना को समाप्त करें। वे यज्ञीय कार्य के निमित्त वर्ण करने योग्य इंद्रदेव को हमारे यज्ञ स्थल में आने की प्रेरणा दें। अवत्मना भरते केतवेदा अवत्मना भरते फेनमुदन क्षीरेण स्नातः कुयवस्य योषे हते ते स्याताम प्रवणे शिफायाः। कुयव राक्षस कुधान्य हीन संस्कार युक्त अन्न खाने से उत्पन्न बल धन का मर्म समझकर आपके लिए ही उसका अपहरण करता है। फेन युक्त जल प्रवाहमान रसों को भी अपने हीन उद्देश्यों के लिए रोकता है। ऐसे कुयव राक्षस की दोनों पत्नियां विचार शक्ति और कार्य शक्ति शिफा नाम की नदी की धार अथवा कोड़ों की मार से मर जाएं। तात्पर्य यह है कि जो खराब अन्न है वह दो पत्नियों से युक्त है। खराब अन्न का फल उनकी ये दो पत्नियां हैं जो विचार शक्ति और कार्य शक्ति के रूप में जानी जाती हैं। युयोप नाभि रूपरस्यायोः पर पूर्वाभिस्तिरते राष्ट्रशूरः अञ्जसी कुलिशी वीरपत्नी पयो हिन्वाना उदभिर् भरन्ते। इस कुयव राक्षस अर्थात कुधान्य से उत्पन्न प्रवृत्ति की शक्ति जल की नाभि अर्थात रसानुभूति में छिपी है। अपहरित जल माने शोषण से मिलने वाला सुख से यह वीर तेजस्वी बनता है। अज्जसी गुणवती तथा कुलसी शस्त्र संपन्न इसकी दोनों वीर पत्नियां विचार और कार्यशक्ति जलों सुखकर प्रवाहों से भरती तृप्त करती रहती हैं। प्रति यत्स्या नीथा दर्शी दस्यो रोको नाच्छा सदनम जानती गात अधस्मा नो मघवंचर्क कृतादिन्मा नो मघेव निष्पी परादाह। हे इंद्रदेव, जैसे गायें अपने मार्ग से परिचित रहती हुई अपने गोष्ठ जहां उन्हें बांधा जाता है वे वहां स्वयमेव पहुंच जाती हैं, वैसे ही दुष्ट लोगों ने और दुष्ट प्रवृत्तियों वालों ने हमारे आवास को जान लिया है।

0: अभज जीव शंसे मांतराम भुजमा रीरिशो नह श्रद्धितम ते महत इंद्रियाय। हे इंद्रदेव, आप हमारे लिए सूर्य प्रकाश और जल उपलब्ध कराएं। हम इन दोनों पदार्थों से कभी पृथक न रहें। संपूर्ण प्राणियों के लिए कल्याणकारी पाप रहित मार्ग का हम सदैव अनुसरण करें। आप हमारी गर्भस्थ संतान को पीड़ित न करें। हमें आपकी सामर्थ्य शक्ति पर पूर्ण विश्वास है। अधा मन्ये श्रत्ते अस्मा आधाई वृषा चोदस्व महते धनाय मा नो अकृते पुरुहूत योनाविंद्र क्षुध्यद्भ्यो वय आसुतिम दाह। हे शक्ति संपन्न अति स्तुत्य इंद्रदेव, हम आपके प्रति सम्मानास्पद भावना रखते हैं। आपके इस बल के प्रति हम श्रद्धावान हैं। हमें आप वैभव प्राप्ति हेतु प्रेरणा प्रदान करें। हमें कभी ऐसे स्थानों पर न रखें जो धनों से रहित हों। अतः ऐश्वर्य संपन्न होकर भूख प्यास से पीड़ित लोगों को खाद्य और पेय प्रदान करें। मानो वधीरिंद्र मा परा दा मानह प्रिया भोजनानि प्रमोशी ही आंडा मानो मघवच्छक्र निर्भेन्मानह पात्रा भेद सहजानुषाणी। हे ऐश्वर्य संपन्न सर्व समर्थ इंद्रदेव, आप हमारी हिंसा न करें और न हमारा त्याग करें। हमारे आहार के लिए उपयुक्त एवं प्रिय पदार्थों को विनष्ट न करें। हमारी गर्भस्थ संततियों को विनष्ट न करें तथा छोटे शिशुओं को भी अकाल मृत्यु से बचाएं। अर्वांगे ही सोमकामं त्वाहुरयं सुतस्तस्य पिबा मदाय उरुव्यचा जठर आ वृषस्व पितेव नह श्रुणुहि हूयमानः। हे सोमाभिलाषी इंद्रदेव, आप हमारे सम्मुख प्रस्तुत हों। यह निष्पादित सोम आपके निमित्त है। इसे आनंद पूर्वक सेवन करके स्वयं को तृप्त करें तथा आवाहन किए जाने पर हमारी प्रार्थनाओं को पिता के समान ही सुनने की कृपा करें।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 104 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम पुत्रपाठी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भक्ति संगीत। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम भक्ति संगीत की इस मधुर बेला में। भक्ति वो साधना है जो जीवन की हर उलझन को सरलता में बदल देती है। तो आइए इस शुभ संध्या का शुभारंभ करते हैं इस भक्ति रचना के।

पूर्णता का अर्थ परिपूर्ण होना नहीं, बल्कि जो है उसे संतुलन और संतोष के साथ स्वीकार करना है। यही भाव मन को स्थिर और जीवन को शांत बनाता है।

हर तरफ उसी का नूर है, कण कण में बस वही उपस्थित है। नजर जहां ठहर जाए तो हर दिशा में वही दिखाई देता है, कभी प्रकाश बनकर, कभी शांति बनकर और कभी हमारा विश्वास बनकर।

प्रभु का नाम वो दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। सच ही कहा है, जहाँ भक्ति है वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहाँ हर कठिनाई का समाधान है।

हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम भक्ति संगीत अब यहीं समाप्त होता है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर।

वतनकरा के श्रोताओं को नमस्कार। मनुष्यता के इतिहास में शायद ही कभी इतने सशक्त प्रभावशाली तथा संगीतमय शब्द लिखे गए हों जो कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे। इनकी तुलना चिरस्थायी गंगा से की जा सकती है, जो कभी सौम्य तो कभी सफेद छींटे उड़ाती हुई और कभी किनारों को तोड़ती हुई समूचे देश तथा संस्कृति का पोषण करती है। चाहे सरल चतुष्पदी हो या प्रेम की दिव्य भावना का गुणगान करती हुई कविता, अथवा इस विश्व के लिए जोशीली दलील हो, कवि की कल्पना और विचारधारा सुनहरे तार की तरह झिलमिलाती है। कवि भीतरी और बाह्य जीवन को मूर्त रूप देता है। टैगोर के अतिरिक्त और किसी ने इस पहचान का वर्णन इतनी बारीकी से नहीं किया। फल चुनने के लिए वे कहते हैं कि यद्यपि समय की धूल मेरे पथ को गड़बड़ा देती है, लेकिन एक न एक दिन मैं अपने प्राणों का, मेरे जीवन में जो आनंद छिपा है, उसका साक्षात्कार अवश्य करूंगा। मैंने इसकी झलक से ही इसे पहचान लिया है और इसके मनमौजी झोंकों ने मुझसे टकराकर क्षण भर के लिए मेरे विचारों को सुरभित कर दिया है। एक दिन मैं अपने भीतर के आनंद से, जो प्रकाश के पर्दे के पीछे है, अवश्य साक्षात्कार करूंगा और उस व्यापक एकाकीपन में खड़ा हो जाऊंगा जहां वो सृष्टिकर्ता अपनी हर चीज को देखता है।

टैगोर को विश्व कवि ठीक ही कहा गया है। टैगोर की विभिन्न रचनाओं को पढ़ने से व्यक्ति रचना के भाव के अनुसार प्रभावित होता है, या सम्मोहित होता है, या गंभीर चिंतन में डूब जाता है। ये प्रतिक्रियाएं जीवन भर अपनी छाप लगाए रखती हैं। टैगोर बेहतर विश्व और बेहतरीन मानवीय स्थिति के लिए लालायित थे और उन्होंने मार्मिक ढंग से अपने भाव व्यक्त किए। गीतांजलि की बहुप्रशंसित कविता में कवि का सपना है, जहां मन इन चिरव्यापी विचारों और कार्यों से स्वतंत्रता के स्वर्ग की ओर बढ़ता है, मेरे पिता मेरे देश को जगा। भारत के सपने के बारे में एक लेख में गुरुदेव कहते हैं कि मैं भारत से प्रेम करता हूं, इसलिए नहीं कि मैं इस देश की पूजा करता हूं, इसलिए भी नहीं कि मुझे यहां पैदा होने का अवसर मिला, बल्कि इसलिए कि इसने अशांतिपूर्ण समय में भी उन जीवंत शब्दों को सुरक्षित रखा है जो इसके सपूतों की प्रबुद्ध चेतना से निकले हैं। हम सब जानते हैं कि उन्होंने सपने को साकार करने के लिए ही विश्व भारती की स्थापना की थी। इसका श्री गणेश एक छोटे से स्कूल के रूप में हुआ, जहां वे बच्चों को अपने विचारों और विश्वासों के अनुसार शिक्षा देना चाहते थे। उनकी सतत देखभाल और साज सवार से यह स्कूल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। आज ये शिक्षा का अद्वितीय केंद्र है और संसार में अपनी तरह का अकेला केंद्र है।

चिंतक टैगोर के साथ कलाकार टैगोर के काव्य संगीत और चित्रकारी का संदर्भ दिए बिना उनके विचारों का उचित मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। हम सब जानते हैं कि टैगोर पांडित्य प्रदर्शन और नीरस बुद्धिवाद को पसंद नहीं करते थे। गीतांजलि में टैगोर कहते हैं कि आत्मत्याग में उसकी मुक्ति नहीं है। वे आनंद के हजारों बंधनों में स्वतंत्रता के आलिंगन का अनुभव करते हैं। उनकी मान्यता है कि कवि अपने आप को संसार से और मनुष्यों से अलग नहीं रख सकता। कवि के लिए मनुष्य का संतरास, कुरूपता और पीड़ा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की अन्य चीजें होती हैं। उन्होंने चित्रा की भूमिका में 1915 में कहा था कि लोग उन्हें आदर्शवादी समझते हैं जो केवल लोगों की आशाओं आकांक्षाओं की चर्चा करता है और जीवन का गुलाबी आशावादी चित्र खींचता है। वे आगे कहते हैं कि ये गलत है। ये एक सतत विचारधारा है जिसने उन्हें एक भयानक, अनोखा और विकृत संसार रचने के लिए उकसाया। पश्चिम द्वारा अफ्रीका की लूट खसोट के बारे में उन्होंने अपनी कविता में लिखा है कि मनुष्यों को फंसाने के फंदे के लिए वे चुपचाप तुम्हारे पास चले आए। ये शिकारी जिनका खूंखारपन तुम्हारे सघन जंगलों से भी गहन था, जिनका घमंड तुम्हारे अंधेरे जंगलों से भी अंधा था। सभ्य लोगों के बर्बर लालच ने अपनी निर्लज्ज मानवता को निर्वसन कर दिया। तुम्हारे जंगल की पगडंडी आंसुओं और रक्त से कीचड़ भरी हो गई। वे पीड़ा और मृत्यु की अवश्यम भाविता का वर्णन करते हैं, लेकिन साथ साथ उन्हें सहन करने की शक्ति की बात भी करते हैं, जो मनुष्य को नए गौरव के साथ प्रस्तुत करती है। टैगोर एक तरह से सत्य के अन्वेषक सिद्ध होते हैं, ऐसा व्यक्ति जो एक स्थान पर टिक नहीं सकता क्योंकि इससे वो निष्क्रिय हो जाता है। पथिक बनने के लिए उसे प्रशांत मार्ग का यात्री होना चाहिए। यदि व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता तो वो सत्य को नहीं पा सकता। लेकिन सत्य है कहाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। यदि हमें उत्तर ना भी मिले तो इसका ये मतलब नहीं कि हमें प्रयत्न नहीं करना चाहिए। टैगोर का सपना इस संघर्षपूर्ण संसार में रहने वाले कोटि कोटि लोगों को नई आशाएं और आकांक्षाएं प्रदान करता है। आइए विश्व कवि टैगोर को शत शत नमन करें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। तुलकर्ष

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल सभा। इसके अंतर्गत आज सुनिए मन की गुल्लक, और इस विषय पर आपको बता रही हैं मनीषा चतुर्वेदी, और साथ में है बाल कलाकार परीजा।
2: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। आज बाल सभा का विषय है मन की गुल्लक।
3: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: बच्चों नमस्ते।
4: नमस्ते दीदी।
2: ओहो, स्वागत है। आज स्टूडियो में तो एक बहुत प्यारी सी बच्ची भी है और इसका नाम है परीजा। और बच्चों, मैं हूँ आपकी मनीषा दीदी। आज का ये समय मैं चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करें, क्योंकि बच्चों आज हम जिस विषय पर आपसे बात करने जा रहे हैं ना, वो सिर्फ एक आदत नहीं है बल्कि एक सोच है, एक तरीका है जीवन को देखने का। और आज की बाल सभा में मैं बचत की बातें करने वाली हूँ। अरे अरे अरे अरे, ठहरिए ठहरिए, जैसे ही मैंने बचत कहा आपके मन में क्या आया? एक गुल्लक आई ना, जिसमें आप पैसे डालते हैं धीरे धीरे, और अंदर जाकर सिक्का बोलता है टन, है ना। हर दिन आपको आदत पड़ जाती है थोड़े थोड़े से पैसे सिक्के मम्मी पापा से लेकर गुल्लक में डालने की। हम सब ने भी बचपन में कभी ना कभी गुल्लक रखी ही है, और उसकी आवाज़ें भी सुनी हैं, और उसमें सिक्के डालने का आनंद भी महसूस किया है, और मिट्टी की गुल्लक को फोड़ने का भी अपना एक अलग ही मज़ा था। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी गुल्लक के बारे में बताने जा रही हूँ जो टूटती नहीं है, जो खोती नहीं है, जो दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा कीमती है, और वो है मन की गुल्लक। इस गुल्लक में आप पैसे नहीं रख सकते हैं, लेकिन आप उसमें वो सब कुछ रख सकते हैं जो आपके जीवन को सुंदर बनाता है। आप उसमें रख सकते हैं अपने रिश्ते, अपनी यादें, अपनी आदतें, अपनी अच्छाइयाँ। और आज हम इसी मन की गुल्लक को भरने की बातचीत करेंगे, और इस बातचीत में मेरा साथ देने के लिए, पता है, बता ही दिया मैंने आपको कि परीजा आई है। परीजा, एक बार फिर से नमस्ते।
4: नमस्ते दीदी।
2: परीजा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे पास एक मन की गुल्लक है और तुम्हें उसमें कुछ कीमती चीजें संभाल कर रखनी है, तो उसमें तुम सबसे पहले क्या रखना चाहोगी?
4: दीदी, मैं उसमें अपने दोस्त रखना चाहूंगी।
2: दोस्त? ये शब्द छोटा तो है, लेकिन इसके पीछे कितनी सारी यादें छुपी होती हैं। स्कूल के दिन, एक साथ बैठना, एक ही टिफिन बांटना, बिना वजह हंसना। परीजा, वैसे तुमने दोस्तों को ही क्यों चुना?
4: दीदी, क्योंकि जब मैंने स्कूल बदला तो मेरे कुछ दोस्त मुझसे दूर हो गए। हम पहले रोज मिलते थे, अब कभी कभी ही बात होती है। अगर मेरे पास मन की गुल्लक होती तो मैं उन्हें उसमें संभाल कर रखती।
2: ओ, कितनी अच्छी और सच्ची बात है। हम सबके जीवन में ऐसा होता है परीजा, कभी हम आगे बढ़ जाते हैं और पीछे कुछ लोग छूट जाते हैं। लेकिन क्या सच में वो लोग जो छूट जाते हैं या हम उन्हें संभाल कर नहीं रख पाते, रिश्ते की गुल्लक की तरह ही होते हैं ना ऐसे लोग? अगर हम उसमें से रोज़ थोड़ा थोड़ा समय, थोड़ा थोड़ा प्यार, थोड़ी थोड़ी समझदारी डालते रहें तो वो हमेशा भरे रहते हैं, है ना। रिश्तों की गुल्लक ऐसी ही होती है, और अगर हम उन्हें नज़रअंदाज कर देंगे तो वो रिश्तों की गुल्लक खाली होने लगेगी।
4: दीदी, मैं अब अपने दोस्तों को फ़ोन करूँगी।
2: हाँ परीजा, यही तो रिश्तों की बचत है बेटा। चीज़ों की बचत के बारे में अब हम बात करेंगे, लेकिन तुमने इतनी अच्छी बात कही है ना कि जब दोस्त दूर हो जाए, जैसे तुमने स्कूल बदला, तुम्हारे दोस्त दूर हो गए, लेकिन अब तुम्हें समझ में आया ना कि उन्हें रोज़ रोज नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक दो बार फोन करना चाहिए, तो बस रिश्ते बचे रहेंगे। यही है रिश्तों की सेविंग। अब हम जरा चीजों की बचत के बारे में बात करेंगे, क्यों परीजा?
4: जी दीदी।
2: अब परीजा, अगर हम आसपास देखें तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, है ना? किताबें, कॉपियां, पेंसिल, रंग, लेकिन क्या हम सच में उनका पूरा उपयोग करते हैं?
4: नहीं दीदी, कभी कभी नहीं।
2: जैसे हमारी कॉपी, अगर हम देखें तो एक कॉपी खत्म होने के बाद भी उसमें कई पन्ने खाली रह जाते हैं, हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम उन पेजेस को इकट्ठा करें तो क्या हो सकता है परीजा?
4: एक नई छोटी कॉपी बन सकती है।
2: जी बिल्कुल। और ये छोटी छोटी बातें हमारे अंदर बड़ी समझ पैदा करती हैं।
4: दीदी, मैं अब कोई पन्ना बेकार नहीं जाने दूंगी।
2: और यही सोच धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। और अब पता है क्या बात बताने वाली हूँ मैं परीजा आपको?
4: क्या दीदी?
2: वो ये कि तुम आज मुझे कौन सी कहानी सुनाओगी?
4: दीदी, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है गोल।
2: अच्छा, ये गोल कहानी मेजर ध्यानचंद जी की कहानी है ना?
4: जी दीदी।
2: तो चलिए शुरू कीजिए। आज तो दो दो लोगों की कहानी आएगी, पहले मेजर ध्यानचंद की, और फिर जो बच्चे बाल सभा सुन रहे हैं उन्हें पता है कि मैं भी उन्हें बहुत अच्छी कहानी पिछले कई दिनों से सुना रही हूँ, वो भी सुनाऊंगी। लेकिन पहले परीजा से सुनते हैं। शुरू कीजिए परीजा।
4: जी दीदी। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों में हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। सन 1933 की बात है, उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और माइनस टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनस टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में ही एक खिलाड़ी ने गुस्से से आकर हॉकी स्टिक से मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान के बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी के पीठ पर रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरे इतने कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता था कि मैं कब उसे सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी के पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरे बदला लेने का ढंग। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। मैं हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता का सबसे बड़े मंत्र हैं।
2: परीजा, तुम्हारी ये गोल कहानी तो मुझे बड़ी ही जबरदस्त लगी। और एक बात और है जो इस कहानी से निकल कर आया, हम बात कर रहे थे बचत की। आपको समझ में आया कि यहाँ मेजर ध्यानचंद जी ने भी एक चीज की बचत की?
4: जी दीदी।
2: किस चीज की बचत की? सोचो सोचो, मैं बताऊं?
4: जी दीदी।
2: उन्होंने बचत की अपने गुस्से की। चाहते तो वो भी हॉकी स्टिक से दूसरे खिलाड़ी को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को बचाया, व्यर्थ नहीं किया, और उस गुस्से को कहाँ निकाला? गोल करके। क्या लिखा उन्होंने कि चाहता तो मैं इसे सिर्फ 2 गोल से हराता, लेकिन एक के बाद एक उन्होंने कितने गोल किए?
4: छह गोल दीदी।
2: तो छह गोल में उनका वो गुस्सा भी हो सकता है जो उन्होंने बचा कर रखा था। तो सिर्फ पैसे नहीं बचाए जाते बच्चों, बचाया जाता है दूसरों पर व्यर्थ किया जाने वाला समय भी। और यही चीजें जो छोटे छोटे से गुरु मंत्र बन जाते हैं वो क्या होते हैं, लगन, मेहनत, साधना, ये सब आपके लिए गुरु मंत्र बनते हैं। और आप हमेशा याद रखिए कि बदला हमेशा वो नहीं होता जो आप किसी के कर्म का तुरंत रिप्लाई करते हैं। जैसे मैंने सचिन तेंदुलकर जी के लिए भी हमेशा सुना है कि उनके लिए अगर कोई कुछ कहता था तो वो अपने बल्ले से जवाब देते थे, मैदान पर वो अपने बल्ले से ताकत दिखाते थे, है ना
4: जी दीदी।
2: तो अब अपनी चीजों को भी बचाना है, वापस अपनी बात पर लौटना है
4: जी दीदी।
2: तो हमारी सोच को बदलने के लिए तुमने ये जो कहानी सुनाई है ये छोटी सी बात थी, लेकिन सच तो ये है कि जीवन की इसमें बहुत बड़ी बड़ी सीख छुपी हुई थी। अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ, हम अपनी आदतों की भी बचत कर सकते हैं, अपने समय की भी बचत कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा की भी बचत कर सकते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, हम अपने शब्दों की भी बचत कर सकते हैं। परीजा
4: दीदी, शब्द कैसे बचते हैं?
2: जब हम बिना सोचे बोल देते हैं तो शब्द वापस नहीं आते। कहते हैं ना कि तीर कम घाव करता है, शब्दों के तीर ज्यादा घाव करते हैं। इसलिए हमें शब्दों को बहुत बचा कर रखना चाहिए, है ना। जब हम कुछ भी बोल रहे हैं तो थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा सोच लें, एक एक बार और सोच लें कि कहीं गलती से भी हम किसी को गलत तो नहीं बोल रहे हैं। और ये एक छोटी सी आदत कोई भी रिश्ता टूटने से बचा सकती है ना परीजा।
4: तो गुस्सा कम करना चाहिए?
2: हाँ बिल्कुल, गुस्सा बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि परीजा गुस्सा आना गलत नहीं है लेकिन उसे संभालना बहुत जरूरी है। जैसे मेजर ध्यानचंद ने अपना गुस्सा व्यर्थ नहीं जाने दिया, उसे संभाल कर रखा, और जब वक्त आया तो क्या जवाब दिया उन्होंने, है ना। अब चलो हम आगे बढ़ें।
4: जी दीदी।
2: आज मैं बच्चों आपको फिर से ले चलती हूँ उसी किताब की तरफ। छोटी सी ये मेरे हाथ में किताब है, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, और आज हम आपको इसका जो अंश सुना रहे हैं वो है मैंने पर्वतारोहण सीखा। मैं नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में प्रवेश पाकर एक अच्छी पर्वतारोही बनने की इच्छुक थी। हालांकि मेरी माँ का विचार था कि ये काम लड़कियों के लिए बहुत ही जोखिम से भरा हुआ है, लेकिन मुझे अच्छी शिक्षा देने के लिए मेरे पिता द्वारा किए गए त्यागों को मैं कभी नहीं भूली थी। अब परिवार के लिए कुछ करने की बारी मेरी थी। मैंने अनेक कॉलेज में अध्यापिका की नौकरी के लिए आवेदन पत्र भेजे, लेकिन मुझे केवल कम वेतन वाले अस्थाई पदों के लिए ही उत्तर मिले, और वो भी केवल प्राइमरी स्तर के। मैं इतने परिश्रम से प्राप्त की गई अपनी शैक्षणिक योग्यता का अवमूल्यन करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए इन सब नौकरियों को मैंने स्वीकार नहीं किया। घर में खाली बैठने की बजाय मैंने नेहरू संस्थान के प्रारंभिक पर्वतारोही कोर्स में प्रवेश पाने के लिए आवेदन किया, लेकिन वहां पर उस वर्ष के सभी स्थान भरे जा चुके थे। मुझे अगले वर्ष प्रवेश मिल गया और मैंने वहां पर बर्फ और चट्टानों पर चढ़ने के तरीकों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। रैपलिंग के रोमांच का अनुभव किया। रैपलिंग का अर्थ है ऊंची खड़ी चट्टान अथवा हिमखंड से एक नायलॉन की रस्सी के सहारे कुछ ही क्षणों में नीचे आना। हमें शिविर लगाने के तरीके भी सिखाए गए और पर्वतीय शिखरों को सुरक्षित ढंग से पार करने के तरीके भी सिखाए गए। नेहरू संस्थान के उप प्रधानाचार्य मेजर प्रेम चंद प्रशिक्षण अधिकारी थे। वो बड़े कठोर प्रशिक्षक थे जो बहुत उच्च स्तर के प्रदर्शन की अपेक्षा करते थे। मैंने सोचा था कि शायद मैंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है कि मुझे रजत हिम पदक और एक प्रमाण पत्र तो मिलेगा ही, परंतु वास्तव में मुझे एक ग्रेड मिला था और मुझे उस कोर्स की सर्वोत्तम छात्रा घोषित किया गया था। उप प्रधानाचार्य ने अपनी रिपोर्ट में मुझे एवरेस्ट सामग्री के रूप में लिखा था। समय के उस दौर में मैंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब मैंने सुना कि इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन IMF 1984 में एवरेस्ट पर जाने के लिए एक मिले जुले अभियान की योजना बना रहा है, और उनको पर्वतारोहण में प्रतिभावान और अनुभवी महिलाओं की तलाश है, तो मैंने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि इस स्तर में मैं दोनों में से कुछ भी होने का दावा नहीं कर सकती थी। इसलिए मैं IMF का पत्र पाकर आश्चर्यचकित रह गई। इसमें सूचित किया गया कि मुझे एवरेस्ट अभियान के लिए आयोजित जांच शिविर के लिए चुना गया है। मुझे इस बात की पुष्टि करने के लिए कहा गया था कि मैं शिविर में उपस्थित हूँ। उन्होंने किस तरह से एवरेस्ट पर मेरे जाने का विचार किया, क्योंकि मैंने तो बहुत कम पर्वतारोहण किया था। एवरेस्ट वास्तव में एक पहुंच से बाहर की चीज थी। इतने अधिक महत्वपूर्ण साहसिक कार्य के लिए अपनी योग्यता पर संदेह होने के कारण मैंने IMF के पत्र का उत्तर ही नहीं दिया। मैंने केवल आगामी प्रशिक्षण कोर्स के बारे में ही सोचा। अक्टूबर 1982 में मुझे एडवांस कोर्स के लिए खाली हुए एक स्थान में प्रवेश मिल गया। उस कोर्स में हमने चट्टान, बर्फ और हिम पर चढ़ने की और अधिक उच्च तकनीकें सीखी। हमें अभियान को आयोजित करने का भी प्रशिक्षण दिया गया। अधिक ऊंचाई के अनुभव के रूप में मैंने ब्लैक पीक अथवा काला नाग की चढ़ाई की। बच्चों, काला नाग 6,387 मीटर की ऊंचाई पर है। इस कोर्स में भी मुझे ए ग्रेड मिला और अभियानों में भाग लेने के लिए मेरी संस्तुति की गई। लगभग इसी समय मुझे एवरेस्ट के जांच कैंप में भाग लेने के लिए IMF की तरफ से दूसरा पत्र प्राप्त हुआ। जब मेरे प्रशिक्षकों को इस बात का पता चला कि मैंने IMF के पहले पत्र की उपेक्षा की और अब दूसरा पत्र मिला है, उन्होंने कहा, बच्छेंद्री, क्या तुम नहीं समझती कि ये एक सुनहरा अवसर खो रही हो? उनके कहने पर मैंने अपनी सहमति प्रदान कर दी। इसके बाद मैं एक बदली हुई इंसान थी। यदि IMF ने मुझे एवरेस्ट दल के लिए संभावित प्रत्याशी समझा था, मैं उसकी बात कैसे गिरा सकती थी? उत्साहपूर्वक मैंने आरोहण के लिए आवश्यक घरेलू अभ्यासों के लिए अपना नाम लिखवा कर दिया। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए मैं घास, चारे और सूखी लकड़ी के भारी से भारी गट्ठर उठाने लगी। मैं रोज आने जाने का रास्ता भी बदल देती थी। मैं और अधिक दुर्गम रास्ते और घाटियों से होकर निकलने लगी। जानबूझकर पत्थरों के ऊपर चलती अथवा सीधी खड़ी ढलाऊ चट्टानों से उतरती, जिससे कि मैं बेहतर संतुलन प्राप्त कर सकूं, ऊंचाई से डर निकाल सकूं और चक्कर आने से निजात पा सकूं। मेरी सभी क्रियाकलापों का उद्देश्य एक सच्चा दक्ष पर्वतारोही बनना था। 1982 के उत्तरार्ध में मैंने गंगोत्री के जांच कैंप में भाग लिया। मेरे प्रशिक्षक मेरे प्रदर्शन से बहुत प्रसन्न थे और इस प्रशिक्षण के दौरान मैंने गंगोत्री और रूड़गेरा की चढ़ाई की। मुझे अपनी आरोहण योग्यता में आत्मविश्वास मिला। इसके तुरंत बाद मुझे सूचना मिली कि सितंबर अक्टूबर 1983 में होने वाली अंतिम चयन शिविर के लिए मेरा नाम चयनित हुआ है। अगली बार बच्चों, जब मैं आपको मिलूंगी तो इसका अगला भाग सुनाऊंगी। लेकिन इस भाग में जो खास बात थी ना बच्चों, वो ये थी कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उन्हें अपने ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था। अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने कितने कठिन कठिन रास्ते चुने, उन्होंने कितनी मेहनत की कि कैसे भी करके वो जहाँ भी जाएं उन्हें हर बार ए ग्रेड मिले, भले ही उन्हें उम्मीद हो या ना। आप देखिए, पहले कैंप से लेकर लास्ट कैंप तक जिसकी वो बात लिख रही हैं, उसमें हर जगह उन्हें ए ग्रेड मिला और एक बेहतर पर्वतारोही के लिए उन्हें चयनित किया गया। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत को बचा कर रखा, है ना, अपने गोल पर फोकस किया और उसमें जुट गई। मतलब वही बात है, मेहनत, लगन और अपने काम से सच्ची ईमानदारी। क्यों परीजा
4: जी? दीदी,
2: अच्छा लगा ना ये सुन के?
4: जी दीदी, बहुत अच्छा लगा।
2: तो चलिए फिर अब वापस लौटते हैं। हमने इस अंश में ये सुन लिया परीजा कि कैसे धैर्य, साहस और निरंतर प्रयास हमें ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, और यही बात हमारी फिर उसी बात पर लागू होती है, बचत पर। बचत हर दिन छोटे छोटे प्रयासों से बनती है ना। तो बच्चों, आज जब हम अपने दिन की शुरुआत करें तो एक बार अपने मन में जरूर झांक कर देखिएगा, क्या आपके मन की गुल्लक खाली है या उसमें कुछ रखा हुआ है। अगर खाली है तो आज से उसे भरना शुरू कीजिए। थोड़ा सा प्यार रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ी समझदारी रखिए और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके मन की गुल्लक हर कीमती चीज से भरती जा रही है।
4: दीदी, मेरी गुल्लक अब अच्छी चीजों से भर रही है।
2: ओ, तो तुम्हें बधाई हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है परीजा। तो परीजा की गुल्लक तो अब अच्छी चीजों से भर गई है। अब जरा आपको याद ही है कि जब मनीषा दीदी पूरी बाल सभा कर लेती है तो आखिर में आपके साथ कुछ संकल्प लेती है, थोड़ा सा ध्यान, ठीक है? और ध्यान करने से क्या होता है, हमारा फोकस बहुत अच्छा होता है। तो चलिए आंखें बंद कर लीजिए एक धीमे से संगीत के साथ। अब हम आज की बाल सभा में हमने जो किया उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले इस धीमे से संगीत में धीरे से अपने मन की गुल्लक को खोलिए और चेक कीजिए कि क्या उसमें आपने थोड़ी सी ईमानदारी रखी है। अब धीरे से अपने मन की गुल्लक में ये भी देखिए कि आप अपने दोस्तों को उसमें संभाल कर रख पा रहे हैं, कहीं आपके दोस्त आपसे बात बात पर नाराज तो नहीं हो रहे हैं। अब जरा अपने मन की गुल्लक में धीमे से ये देखिए कि बड़ों के प्रति आदर आपने उसमें संजो के रखा है या नहीं। हाँ, एक चीज और ध्यान से देखिए उस गुल्लक में, आपने वो जो नानी और दादी को चिट्ठी लिखी थी वो संभाली है कि नहीं, जो पिछली बार बाल सभा में मैंने लिखने को कहा था। अब ये भी देख लीजिए कि आप किसी चीज को व्यर्थ तो नहीं कर रहे हैं, भले ही वो एक छोटा सा कागज ही क्यों ना हो। अब थोड़ा सा उस गुल्लक में ये भी ध्यान दीजिए कि आप समय का भी सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं। अगर आपकी मन की गुल्लक अच्छी चीजों से भरी रहेगी तो आप एक बहुत अच्छे, प्यारे से, आत्मविश्वासी, बेहतरीन नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो बस आज संकल्प भी पूरे हो चुके हैं और अब चलने का वक्त आ गया है। तो आज से आपको बचत का अर्थ सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि अपनी छोटी छोटी चीजों से, अपनी छोटी छोटी आदतों का भी ध्यान रखना है, है ना? क्यों परीजा?
4: जी दीदी।
2: तो अब चलें परीजा?
4: जी दीदी।
2: तो बच्चों, अगले सप्ताह कुछ नई बातें, नए विषयों के साथ लौटेंगे, लेकिन अभी अनुमति दीजिए मनीषा को और मेरे साथ
4: परीजा को।
2: बच्चों नमस्ते।
4: नमस्ते दीदी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय था मन की गुल्लक। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम और मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
3: बाल सभा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इसके अंतर्गत आज सुनिए भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और आपसे बातचीत की है पूर्वा खले ने।
2: 8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। और जैसा कि कार्यक्रम के नाम से ही जाहिर है कि हम आपसे इस कार्यक्रम में भारतीय सशस्त्र सेनाओं से जुड़े हर उस पहलू को छूकर देखना चाहते हैं, जिससे कि हम हमारी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को, उसकी कार्यशैली को, उसकी क्षमताओं को और उसके इतिहास को जानकर उस पर गर्व कर सकें और उससे प्रेरित हो सकें। और जैसा कि आप ये जानते हैं कि कार्यक्रम में सिलसिला चल रहा है भारतीय सेना के इतिहास को जानने का और उसे समझने का, तो आज इसी सिलसिले में हम बात करेंगे सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की। श्रोताओ, ये युद्ध भारतीय सेना ही नहीं वरन आजादी के बाद भारत के इतिहास में भी स्वर्णिम महत्व रखता है। पूरी दुनिया के समक्ष भारत को एक मजबूत और सशक्त राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करने में इस युद्ध ने अपनी महती भूमिका निभाई और इसका श्रेय जाता है भारतीय सेना के तीनों अंगों यानी हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स और हमारी नेवी, तीनों के बेहतरीन समन्वय को, जिसने सन 1971 के इस युद्ध में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और देश को गर्व और अद्भुत आत्मविश्वास से भर दिया। श्रोताओं, ज्यादा समय न लेते हुए आइए जानते हैं 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की कहानी लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा की जुबानी, जिन्होंने लगभग 2 दशकों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व में।
4: जय हिंद पूर्वा जी, जय हिंद श्रोताओं। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से जो है इसका इंट्रोडक्शन दिया है।
3: धन्यवाद सर।
4: एंड इन अ वे यू हैड एक्चुअली समराइज द होल थिंग।
3: अच्छा,
4: वेरी नाइसली
3: जी, धन्यवाद।
4: यू आर वेरी करेक्ट जब आपने बोला कि ये जो युद्ध था
3: जी,
4: ये एक निर्णायक युद्ध था जिसमें कि भारतीय सेना बिना संदेह के मतलब विजयी रही थी। और इसका कारण जैसे कि आपने अभी बोला, इट वाज अ यूनिक एग्जांपल ऑफ कॉमरेडशिप, जॉइंट मैनशिप, लीडरशिप एंड करेज ऑफ ऑल द 3 आर्म्स, दैट इज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड द लीडरशिप ऑफ कोर्स, जिसके कारण कि हमें इसमें विजय प्राप्त हुई थी। और इस वॉर ने जो है एक नए नेशन को जन्म दिया, क्योंकि हम सब जानते हैं जिसका नाम बांग्लादेश है। ये है तो ये जो वॉर था, एक्चुअली इट कंटिन्यूड फॉर 14 डेज, 14 दिन का वॉर था ये। 3 दिसंबर को शुरू हुआ था और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान ने हमारे वेस्टर्न सेक्टर के एयरफील्ड्स के ऊपर। और 14 दिन के बाद यानी कि 17 दिसंबर को जो है 71 को विद द डिफीट ऑफ पाकिस्तान, सीज़फ़ायर डिक्लेयर होने के बाद ये युद्ध खत्म हुआ था।
3: तो सर, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि सन 1971 में ये भारत पाकिस्तान युद्ध की ऐसी क्या परिस्थितियाँ बनी कि मतलब 2 बार हम पहले भी भिड़ चुके थे, उसके बाद ये तीसरी बार ऐसा क्या रहा कि हम फिर से आमने सामने आ गए?
4: बिल्कुल, इसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं
3: जी।
4: जैसे कि मैं बता रहा था कि इट वाज अ डेफिनेट विक्ट्री और इसमें पाकिस्तान के मतलब जो है ऑलमोस्ट 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था एंड उनको प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया गया था ईस्टर्न पाकिस्तान में. वेस्ट पाकिस्तान मतलब ये जो वेस्टर्न सेक्टर है हमारा, वेस्ट पाकिस्तान का एरिया है, इसमें भी एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की टेरिटरी जो है जिसके ऊपर इंडियन आर्मी ने कब्जा किया था. एंड इस युद्ध में देखिए था तो 14 दिन का, लेकिन कितना इंटेंस था वो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें ऑलमोस्ट 3,000 सोल्जर्स आर्मी नेवी एयरफोर्स में ऑफिसर जेसीएस वार ने अपने प्राणों का बलिदान दिया.
3: मतलब इतने कम दिनों में,
4: इतने कम दिनों
3: में इतना ज्यादा हमने जो हानि है उसको देखा युद्ध
4: दे. और इवन 12,000 के करीब जो है जो सोल्जर्स थे सेम अगेन ऑफिसर जेसीओस वार जो थे वो वोंडेड हुए, जो है घायल हुए इसमें. और इट अगेन आई विल एम्फसाइज ऑन द सेम थिंग कि इतना इंटेंस था कि 600 से ज्यादा ऑफिसर्स जेसीओस वार को जो है गैलेंट्री अवार्ड्स मिले थे इसमें, जिसमें कि 4 परमवीर चक्र थे, 76 महावीर चक्र थे और 513 जो है वीर चक्र थे. इसके अलावा और भी काफी जो है अवार्ड्स मिले थे. तो ये दर्शाता है कि कितना इंटेंस वॉर था. और ये पहला वॉर था जिसको कि हमने दोनों फ्रंट पे लड़ा, वेस्टर्न फ्रंट पे भी लड़ा, ईस्टर्न फ्रंट पे भी लड़ा. और अगेन इट वाज द फर्स्ट वॉर जिसमें कि तीनों जो हमारी सेनाओं की अंग हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और एक साथ मिलकर जो है इसको युद्ध को लड़ा था. तो वॉर तो 17 दिसंबर को जैसे मैंने बोला सीज फायर के बाद खत्म हो गया था, लेकिन फाइनली मतलब वी कैन से कि द चैप्टर क्लोज्ड आफ्टर द साइनिंग ऑफ शिमला एग्रीमेंट ऑन 2 जुलाई इन 1972. ठीक है. इसके लिए जैसे आपने अभी खुद ही पूछा कि ऐसा क्या कारण था कि हमें तीसरी बार जो हमारी लड़ाई हुई तो इसके लिए हमको थोड़े से ना हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखने पड़ेंगे. हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में विचरना पड़ेगा कि जो पीछे जाना पड़ेगा.

0: को वो मिला के जो है वेस्ट पाकिस्तान बना, और ईस्ट पाकिस्तान है जो बंगाल प्रोविंस था
1: जी, उसके भी उसको, दो टुकड़े,
0: उसको दो टुकड़े करे हुए थे, और सिलेट डिस्ट्रिक्ट जो था असम का उसको मिला के जो है ये ईस्ट बंगाल बना
1: जी।
0: अब ये दो विंग तो इन्होंने बना दिए, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो थे तकरीबन 1600 किलोमीटर थी।
1: अच्छा।
0: और लैंड कम्युनिकेशन तो था नहीं क्योंकि बीच में भारत था, तो इनके पास जो जाने का रास्ता या तो बाय एयर था या बाय सी होता था, ठीक है। तो अब इतनी दूरी जो ये दूरी थी फिजिकल जो ये दूरी थी ये इसने इनके कारण इनके दिलों में भी दूरी थी
1: जी, बिल्कुल।
0: और उसका एक और कारण, और भी कई कारण तो कई थे लेकिन एक मेजर था, देखें अगर हम तो सिर्फ एक रिलीजन था जो उनके बीच में कॉमन लिंक था, यानी कि दोनों जो हिस्से थे वो दोनों मुस्लिम थे,
1: धर्म के आधार
0: पे जुड़े हुए थे। अदरवाइज अगर आप देखें तो उनका कल्चर, उनकी हिस्ट्री, उनके लैंग्वेज, लिटरेचर, इकोनॉमिकल कंडीशंस, हर एक कुछ अलग था। वे भी देखते हैं हम जैसे बांग्लादेश जो है उसका इंक्लिनेशन अगर कल्चर वाइज देखे तो हमारे वेस्ट बंगाल से मिलता है पूरा का पूरा। और वैसे ही अगर आप वेस्ट पाकिस्तान देखे तो उनका कल्चर जो है पंजाब और इवन मिडिल ईस्ट उस तरफ से मिलता है, ठीक है। तो इट वॉज ए वास्ट डिफरेंस, बहुत ही मेजर डिफरेंस था दोनों के बीच में। अगर आप ज्योग्राफिकली भी अगर आप देखते हैं तो वेस्ट पाकिस्तान यानी कि जिसको अभी हम पाकिस्तान बोलते हैं, पाकिस्तान है वो, अगर देखे तो आप इट इज मोर अकिन टू लाइक मिडिल ईस्ट कंट्रीज, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, उस तरह है। और अगर हम ईस्ट मतलब बांग्लादेश को देखेंगे जिसको कि उस समय ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, उसका इंक्लिनेशन देखे ज्यादा साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज की तरफ ज्यादा है। तो किसी उस समय मतलब इसको डिस्क्राइब किया जाता था, किसी ने कहा था कि वेयर वेस्ट पाकिस्तान एंड्स मिडिल ईस्ट बिगिंस एंड वेयर ईस्ट पाकिस्तान एंड्स साउथ ईस्ट एशिया बिगिंस, दैट्स वेरी करेक्ट ज्योग्राफिकली इफ यू सी, बिल्कुल सही बोला गया है। तो ये जैसे मैंने अभी बताया कि इन दोनों हिस्सों में कंट्री के काफी डिस्पैरिटीज थी, और ये सिर्फ लिटरेचर और अदर फील्ड में नहीं थी, इवन इकोनॉमिकल कंडीशंस इनकी दोनों के अलग अलग थी। वेस्ट पाकिस्तान जो है यानी कि पाकिस्तान वो काफी समृद्ध था, एंड मैक्सिमम जो उनकी इकोनॉमिकल जो कंडीशन थी काफी अच्छी थी एज कम्पेयर टू ईस्ट पाकिस्तान। एजुकेशन वाइज ऑल्सो दे वर मच बेटर, एंड वेस्ट पाकिस्तान इनफैक्ट डोमिनेटेड इन एवरीथिंग, वो हर तरह से ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेट करता था
1: जी।
0: और उन्होंने एक तरह से एक्चुअली इस पाकिस्तान को कभी अपना हिस्सा नहीं माना, और ना ही उन्होंने कभी इस बात पे ध्यान दिया कि इनके इनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा करना चाहिए,
1: इनका विकास होना चाहिए,
0: ठीक है। और ऐसा नहीं था, जबकि अगर आप देखें बांग्लादेश और उस समय का ईस्ट पाकिस्तान, इट वाज अ वेरी फर्टाइल लैंड, आज भी है इंडस्ट्रियल वाइज ऑल्सो, पोर्ट्स थे उसके पास, तो व्यापार के लिए मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन इंप्रूव करने के लिए काफी अच्छा वो था, बट समहाउ दे नेवर पेड अटेंशन। तो है इनफैक्ट इसमें जो वेस्ट पाकिस्तान की एंटायर ब्यूरोक्रेसी थी, उनके टॉप मिलिट्री ब्रास थे, पॉलिटिकल लीडरशिप थी, यहाँ तक कि जो एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी भी थी वो भी एक तरह से मतलब सब मिलके यूनानिमस थे कि भी इनको जो है ईस्ट पाकिस्तान को हम कोई रीजनल ऑटोनॉमी नहीं दे सकते हैं, ना ही हम देंगे।
1: अच्छा।
0: मतलब उनका एक्सेप्टेंस नहीं था पार्लियामेंट में भी, यहाँ तक कि आप ये देखिए कि ईस्ट पाकिस्तान को भी जो ब्यूरोक्रेट्स जो आर्मी अफसर्स कमांड कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, वो भी मतलब वेस्ट पाकिस्तान के थे, उन्होंने वहां के लोकल्स को कभी भी अपने इन्वॉल्व नहीं किया। तो इसके कारण क्या था कि काफी बिटरनेस थी,
1: एक असंतोष तो पैदा होगा,
0: एक असंतोष तो पैदा होता ही है ना, जैसे कि और ये कहीं पे भी हो सकता है
1: जी, बिल्कुल।
0: तो अगर एक और चीज जो थी जो हमने देखी है हिस्ट्री में, देखा है कि जब से पाकिस्तान अस्तित्व में आया है ज्यादातर टाइम वो मिलिट्री रूल में रहा है
1: जी, बिल्कुल।
0: तो इन 69 में जो जनरल याहिया खान थे मिलिट्री रूलर थे
1: जी,
0: उन्होंने कहा कि डिक्लेयर किया कि इलेक्शंस कराएंगे कंट्री में और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है मतलब बनाएंगे, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को बनाएंगे। तो ये इलेक्शन जो थे दिसंबर में करने थे। अब इसमें जो दिसंबर में जब इलेक्शंस हुए तो वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो साहब की जो पार्टी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो विजयी हुई, और ईस्ट पाकिस्तान में जो है अवामी लीग कि मुजब्बिर रहमान साहब की जो पार्टी थी वो बिल्कुल क्लीन स्वीप के साथ आई थी। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि नंबर वाइज जो सीट वाइज देखा जाए तो जो अवामी

0: थी, उनके पास पीपीपी से ज्यादा सीट्स थी,
1: ज्यादा थी।
0: तो अच्छा। हक उनका बना कि वो गवर्नमेंट बनाए।
1: ओके, अच्छा अच्छा।
0: अब ये बात जो है बस पाकिस्तान को स्वीकार ही नहीं थी
1: जी, जी,
0: कि भाई ईस्ट पाकिस्तान वालों को हमारे ऊपर रूल करने के लिए या गवर्नमेंट बनाने का हक दिया जाए। तो अब एक डलाइमा आ गया। अब जब जैसे मैंने अभी अभी जिक्र किया, ना तो मिलिट्री ब्रास, ना वहाँ की इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी, ना जो है पॉलिटिकल लीडर्स, कोई भी तैयार नहीं हो रहा था,
1: स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे।
0: तो अब वो क्या किया, उन्होंने टालना शुरू कर दिया।
1: अच्छा।
0: कि जो है उसको पोस्टपोन करना शुरू किया, गवर्नमेंट नहीं बनाई। तो ये जब होने लगा तो नेचुरल है कि मुजब्बिर रहमान साहब जो थे अवामी लीग जो थी, उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने कहा जब हमें एक पूर्ण बहुमत मिला है तो हमें गवर्नमेंट बनाने का हक दिया जाए। इसके लिए फिर जो है उन्होंने क्या किया, एक मिलिट्री क्रैकडाउन किया, मतलब इन द सेंस इनको विद्रोह बोल के इनको दबाना शुरू कर दिया। एंड 25 मार्च 1971 में उस समय जनरल टिक्का खान जो थे तो ही वाज इन बांग्लादेश कंट्रोल कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो उन्होंने जो है पूरी तरह से मिलिट्री जो है क्रैकडाउन लॉन्च किया, जिसमें कि जितनी पॉपुलेटेड सिटीज थी, ढाका हो गया, चित्तगांव हो गया और इम्पोर्टेंट टाउन थे, उसमें उन्होंने ब्रूटली जो है लोगों को मारा।
1: अच्छा।
0: तो ये अवामी लीग के जितने सपोर्टर्स वगैरह थे सबको उन्होंने जो है मतलब शॉट डाउन किया, मतलब दे किल्ड देम, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय करी आर्मी ने। फिर उसके बाद जो है जैसा कि होता है, इवन उसके बाद मतलब जो ये किलिंग्स थी, इट फॉलोड बाय लूट, ठीक है, रेप, आर्सन, मतलब काफी उन्होंने जो है इनको नुकसान पहुंचाया। इवन पाकिस्तान एयरफोर्स से जो उनके ठिकाने थे इनके अवामी लीग के रेजिस्टेंस के, तो इनके ऊपर बम्बार्डिंग भी कराई है। तो आप समझ सकते हैं कि एक अपना ही देश है,
1: अपने
0: देश के ऊपर जो है हाँ इस तरह से जो है करना शुरू किया। और ये चलता रहा, तो अप्रैल तक जो है पाकिस्तान रूलर्स ने बोला कि भाई अभी जो है हमने सिचुएशन कंट्रोल कर ली है इस पाकिस्तान में, और जो अपराइजिंग थी जिसको अपराइजिंग बोल रहे थे और रिवोल्ट था, उसको हमने खत्म कर दिया है। बट एक तरह से देखा जाए तो तब जो ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे वो ये मन बना चुके थे कि हम अब वेस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे। और ये जो है एक तरह से उनके रिवोल्ट की जो अपराइजिंग थी एक तरह से शुरुआत कहलाई वहां से, क्योंकि जब आपने उनको इतना दबा दिया, इतनी एट्रोसिटीज कर दी हैं, तो वो जो है किसी भी तरह से अब पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तो ये जो इलेक्टेड मेंबर्स थे अवामी लीग के, इन्होंने शरण ली इंडिया में।
1: अच्छा।
0: जी, ये सारे के सारे जो है इंडिया में आए, और अप्रैल में इन्होंने क्या किया, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट डिक्लेयर करी।
1: अच्छा।
0: जिसमें कि बांग्लादेश, उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश डिक्लेयर किया,
1: यहाँ भारत से,
0: भारत से। अच्छा। जो है डिक्लेयर किया। इस बीच में जो था कि जनरल टिक्का खान से जनरल लेफ्टिनेंट जनरल ए के न्यायजी थे
1: जी,
0: उन्होंने टेक ओवर कर लिया था। अब उनको ये टास्क दिया गया कि आप कुछ भी हो जाए इसको खत्म करना है, ये रेबल्स जो है ये खत्म करना है, किसी भी हालत में जो है इस पाकिस्तान को नहीं अलग होने
1: दिया, विद्रोह को दबा दिया,
0: विद्रोह को दबाया जाए। तो मेजर क्रैकडाउन बिगिन अगेन, जिसमें कि बहुत ज्यादा उन्होंने कैजुअल्टीज करने शुरू करी सिविलियंस पे। अब ऐसे में क्या होता है, सिविलियंस सारे के सारे जो है भागने शुरू हुए। अब इन्होंने सबने क्या किया, उनके लिए ठिकाना क्या था, कहाँ आना, शरण लेने के लिए इंडिया में। एक वक्त ऐसा आ गया कि इंडिया में ऑलमोस्ट 1 करोड़ बांग्लादेशी हो गए। अब उस समय हमारी भी इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम 1 करोड़ लोगों को या 93 लाख लोगों को खिला सके, तो इट क्रिएटेड अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर इवन इंडिया ऑल्सो। तो फिर इंडिया ने जो है, कंट्री ने जो है पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन पास किया, जिसमें कि उन्होंने ये पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, पाकिस्तान आर्मी ने जो बांग्लादेशी पे एट्रोसिटीज करी हैं उसके अगेंस्ट जो है आवाज उठाई, ठीक है। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम जो है इस पाकिस्तान को पॉलिटिकली, मिलिट्रीली, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स में सपोर्ट करेंगे।
1: अच्छा।
0: जो है एक तरह से मतलब जो है ये डिसाइड किया गया। तो अब इस बीच में क्या हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान में कंडीशंस और भी ज्यादा खराब होनी शुरू हो गई। एंड जब इतना ज्यादा मतलब होने लगा, तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी जिसको कि अप्रैल में एस्टैब्लिश हुई, जिसको मुक्ति वाहिनी बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: आप लोगों ने भी काफी उसका नाम सुना होगा, मुक्ति वाहिनी। तो इसका जन्म जो हुआ वो ये क्रैकडाउन के बाद हुआ।
1: जो सशस्त्र जो उनका विंग था
0: जी,
1: वो मुक्ति वाहिनी कहलाए शायद, मेरे ख्याल से सर,
0: अवामी लीग का
1: जी,
0: एक तरह से, although it was an independent organization, लेकिन ये पूरी तरह से आप जैसे आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, एक तरह से वो इनका सशस्त्र विंग ही था
1: जी।
0: अब इसमें क्या है, काफी ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया क्योंकि इसमें जितने भी आर्म फोर्सेस के लोग थे जो आए थे, इससे पुलिस के लोग थे, तो वो सारे के सारे ट्रेन जो लोग थे वो इसमें शामिल थे,
1: ईस्ट बंगाल के जो थे,
0: ईस्ट बंगाल के जो थे वो इसमें शामिल थे। आप ये समझ सकते हैं कि जब नवंबर के टाइम पे जब लड़ाई का वक्त आ रहा था, दिसंबर जो शुरू हुई थी, उस समय इनके पास तकरीबन जो है 83,000 to 85,000 मतलब सोल्जर्स थे मुक्ति वाहिनी में। तो इसको ट्रेनिंग दी थी, इंडियन आर्मी ने ट्रेनिंग दी थी, इनको हथियार दिए थे।
1: अच्छा।
0: और इन्होंने काफी अच्छा रोल प्ले किया जब हमने जो है इस मतलब पाकिस्तान में बांग्लादेश के लिए जब हमने वॉर लड़ा है।
1: अच्छा।
0: उस समय इनका काफी सपोर्ट रहा जी, क्योंकि इनको डेफिनेटली इनको टेरेन के बारे में मालूम था, इनको जो है बाकी पाकिस्तान आर्मी के बारे में मालूम था, इन्फॉर्मेशन जो है काफी मतलब जो है गाइड के लिए कहाँ से जाना है, किधर से जाना है। यू नो बांग्लादेश इज अ वेरी यूनिक कंट्री इन द सेंस वहाँ पे बहुत मेजर रिवर्स जाती हैं, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, तो अगर आप देखें सब उधर जाती हैं, तो ये एक मेजर लैंडमार्क्स होते हैं इन द सेंस कि नदी को कैसे पार करना है, कहाँ पार करना है, और बहुत सारे वो बहुत बड़े ऑब्स्टिकल्स बनते थे, इसमें उनका गाइडेंस बहुत काम आया। तो ये जो चल रहा था, अब मुक्ति वाहिनी जो थी वो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक करती थी, उनको वो एक तरह से जो है जहाँ उनकी पोस्ट होती थी उस पे मतलब जो है हिट एंड रन रहता था, अटैक्स करते थे
1: जी।
0: और उसके बाद वो क्या करते थे जो गरिलास और फिर कितना था।
1: अच्छा।
0: तो वो इंडिया में आते थे तो उसका पीछा करते हुए कई बार जो है पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडियन टेरिटरी में आने लग गए। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर के ऊपर काफी ज्यादा स्कर्मिशेस तनाव होना शुरू हो गया, क्योंकि तो भाई वो आ रहे हैं तो हम जा रहे हैं। उसके बाद जब ऐसा हुआ कि उन्होंने हमारी पोस्ट पे फायर करना शुरू कर दिया, जब पोस्ट पे फायरिंग शुरू हुई तो फिर इंडियन आर्मी भी जो है जाके जो है अंदर जाके उनसे लड़ने जवाब देने लगी। अच्छा, इस बीच में अगर आप देखें पॉलिटिकल लेवल पे भी, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी काफी ज्यादा एक्टिविटीज चल रही थी, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान वाज नॉट एबल टू कंट्रोल ईस्ट पाकिस्तान एट ऑल, वो तो मतलब एक तरह से बिल्कुल साफ दिख रहा था। लेकिन जो पाकिस्तान को ये था कि जब ऐसा कुछ अगर इंडिया अटैक करता है तो एक तो चाइना उसको सपोर्ट करेगा और अमेरिका सपोर्ट करेगा। समाउ इन बिटवीन लाइक वी हैड वेरी गुड रिलेशनशिप विद रशिया, तो ये जो एस्पेक्ट था अमेरिका वाला ये तो मतलब नहीं आया
1: जी।
0: और चाइना ऑल्सो नेवर प्लेड एनी एक्टिव रोल, चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया लेकिन उसने अपना फ्रंट नहीं खोला था, जो हमारे लिए अच्छी बात रही थी क्योंकि हम दोनों फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय हम देखिए ऑलमोस्ट पूरी कंट्री में अभी तक जितने हमने वॉर देखे वो एक मतलब एक लिमिटेड जगह पे हमको लगता था कि जैसे पंजाब में हो रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है ऊपर कश्मीर में हो रहा है, ये थोड़ा यहाँ तो मतलब नेवी भी फाइट में कर रही है, और पूरा का पूरा राजस्थान, पंजाब, ऊपर जो है नजेंड के बॉर्डर जो है ऐसे, मतलब एवरीथिंग वाज एक्टिव। तो उस समय कम से कम अगर अरुणाचल और ये नहीं थे तो बाकी अदरवाइज इंडिया वाज फाइटिंग वॉर ऑन बोथ द
1: पूरी सीमा पर ही लड़ाई चल रही थी,
0: सीमा पर लड़ाई चल रही थी। तो ये जो है छोटे छोटे जो रिटेलिएटरी एक्शंस हो रहे थे और बॉर्डर्स के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो उसमें फिर जो मई मंथ में जो है आर्मी टुक ओवर द बॉर्डर इन ईस्ट पाकिस्तान, बीएसएफ के पास होता है, तो उसे उन्होंने टेक ओवर कर लिया था ताकि उनको, क्योंकि लग रहा था कि हालात काफी बिगड़ चुके हैं। एंड फाइनली मतलब जो है ये जो लड़ाई थी आपस में, इट लेड टू वॉर ऑफ 1971। तो पूरी तरह से अगर हम देखें तो ये एक डिसकंटेंटमेंट था ईस्ट पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है, जिसके कारण जो है ये लड़ाई हुई।
1: एक तरह से दोनों ही देशों के बीच में भारत आ गया,
0: भारत की
1: है,
0: भारत था ज्योग्राफिकली भी था, ठीक है, पॉलिटिकली भी आ गया, एंड जो है फिर लड़ाई में भी आया। तो ये एक मतलब दीज आर द सम ऑफ द रीजंस जिसके कारण ये युद्ध हुआ था जो है। अब इस युद्ध में जो है क्या हो रहा, किस तरह से चला हुआ, इसमें हम आर्मी का कैसे रोल रहा, नेवी का कैसे किया, एयरफोर्स का क्या रोल रहा, एंड आई सजेस्ट हम इसको हम आगे एपिसोड में कवर करेंगे, और हमारे जो बहादुर जवान हैं उन्होंने किस तरह से वो लड़े देश के लिए, और हाउ दे रियली मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस, ठीक है, तो हम उनके बारे में जानेंगे जो है।
1: बिल्कुल सर। तो श्रोताओं, आज हमने बात की कि क्या थी वो पृष्ठभूमि जिसके कारण सन 1971 में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान दोनों देश युद्ध के लिए आमने सामने थे। जानेंगे इस युद्ध के बारे में हर बात तफसील से, और ये भी जानेंगे कि भारतीय सेना के तीनों अंगों ने इस महत्वपूर्ण युद्ध में क्या भूमिका अदा की, हमारे कार्यक्रम के अगले कुछ एपिसोड्स में, जिसका नाम है हमारी सेना हमारा गर्व। जुड़े रहिए रेडियो आजाद के साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस आशा के साथ कि हम हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम को आपसे यूं ही जानते रहेंगे।
0: या श्योर पूर्वाजी, डेफिनेटली वी विल डिस्कस एंड थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद श्रोताओं एंड जय हिंद पूर्वाजी।
1: जय हिंद सर। तो ये था कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और मैं थी आपके साथ आपके अपनी पूर्वा खले। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद को, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। श्रोताओं, आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। साथियों, जब हम जन्म लेते हैं तब से ही हमारा शरीर अपने आप को सक्रिय रखने में अनेक गतिविधियां करता रहता है। शैशव अवस्था से बाल अवस्था में प्रवेश करने के बाद बच्चा स्वयं से ही अनेक खेलों से जुड़ जाता है, जिसमें खो खो, दौड़ भाग, छुपन छुपाई जैसे खेल हमें शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त रखते थे। वहीं राजा, मंत्री, चोर, सिपाही या पहेली बूझना, वर्ग पहेली सुलझाना, लूडो जैसे गेम हमारे दिमाग को तेज रखते थे। वास्तव में खेलों का हमारे जीवन में बड़ा योगदान है, क्योंकि ये केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि स्वस्थ और सफल जीवन की नींव है। श्रोताओं, खेल हमारे जीवन को नीरस होने से बचाते हैं और हमें शारीरिक, मानसिक रूप से ऊर्जावान बनाए रखने में अपना विशेष महत्व रखते हैं। वर्ष 1996 से प्रतिवर्ष 7 मई का दिन हम वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के रूप में मनाते आ रहे हैं। आज के दिन को मनाने के पीछे क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या महत्व है आज के दिन का, इसी विषय पर गहनता से बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं श्री एस के प्रसाद, जो मुख्य प्रशिक्षक हैं मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी भोपाल में। सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: नमस्कार, मैं एस के प्रसाद, मुख्य प्रशिक्षक एथलेटिक्स अकादमी भोपाल।
1: सर, आपसे सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे क्यों मनाया जाता है और इस दिन को मनाने के पीछे क्या क्या उद्देश्य हैं?
2: विश्व एथलेटिक्स डे हर साल 7 मई को बच्चों और युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने, उन्हें खेलों विशेषकर एथलेटिक्स से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है।
1: सर, एथलीट शब्द होता है एक और एक होता है एथलेटिक्स, तो यहाँ दोनों शब्दों को हम समझना चाहेंगे कि किस तरह से इन्हें आप परिभाषित करेंगे।
2: मैं एथलीट और एथलेटिक्स दोनों ही शब्द शारीरिक खेल और क्षमता से जुड़े हैं, लेकिन इनमें से एक एक करके सूक्ष्म अंतर है
1: जी।
2: एथलीट उस व्यक्ति को कहते हैं जो शारीरिक शक्ति, गति, सहन शक्ति की आवश्यकता वाले खेलों या प्रतियोगिता में भाग लेता है
1: जी।
2: जैसे एथलीट, बॉक्सर, स्विमर, कुश्ती खेलने वाला व्यक्ति। जो व्यक्ति खेल में हिस्सा ले रहा है वो एक एथलीट है
1: जी।
2: एथलेटिक्स उन खेलों का एक समूह है जिसमें मुख्य रूप से दौड़ना, कूदना, फेंकना और चलना शामिल है
1: जी, जी।
2: इसको हम शॉर्ट भाषा में कह सकते हैं ट्रैक एंड फील्ड
1: जी, जी।
2: ट्रैक में जैसे 100 मीटर स्प्रिंट्स हैं, मिडिल लॉन्ग डिस्टेंस, और फील्ड में थ्रोज हैं, जंप्स हैं। थ्रोज में भी शॉर्ट पुट, डिस्कस, जैवलिन, हैमर, जंप्स में लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप, पोल वॉल्ट इत्यादि वगैरह वगैरह ऐसा है।
1: सर, हमारा ध्यान अक्सर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन जैसे खेलों पर तो जाता है, तो इन खेलों से कैसे अलग होता है एथलेटिक्स का खेल, जो जिसमें आपने अभी इतने सारे हमें नाम बताए, तो कैसे इनसे हम अलग समझें इस चीज़ को?
2: मैम, एथलेटिक्स जो है मुख्य रूप से व्यक्तिगत प्रदर्शन पर आधारित है
1: जी, जी।
2: जबकि अन्य खेल टीम वर्क या आमने सामने मुकाबले पर। संक्षेप में, एथलेटिक मानव शरीर का मूल शारीरिक क्षमताओं का परीक्षण है, जबकि अन्य खेल रणनीतिक खेल है।
1: क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छे सरल शब्दों में आपने हमारे श्रोताओं को बताया है कि जो अन्य खेल है वो सामूहिक खेल है, समूह में खेले जाते हैं, और एथलेटिक्स जो है वो व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शन का एक तरीका है। सर, अलग अलग खेल है जैसे कुश्ती, स्प्रिंग, हॉकी, क्रिकेट, इन्हें आपस में आप कैसे समझाएंगे कि किस तरह से ये खेल अलग अलग हैं और इनका क्या महत्व है?
2: मैम, ये सभी खेल शारीरिक गतिविधि के माध्यम से प्रतिस्पर्धा और अनुशासन सिखाते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति, नियम, आवश्यक शारीरिक क्षमताएं एकदम अलग होती हैं। कुश्ती एक कॉम्बैट या द्वंद खेल है जिसमें एक दूसरे के शारीरिक संपर्क बनते हैं और एक दूसरे को पटकना चाहते हैं
1: जी, जी।
2: स्प्रिंट यह ट्रैक एंड फील्ड का एक खेल है जिसमें इंडिविजुअल खुद ज्यादा डिस्टेंस को कम समय में पूरा करने की कोशिश करता है। हॉकी यह आउटडोर या इंडोर खेल है जो स्टिक और गेंद से खेला जाता है
1: जी, जी।
2: क्रिकेट यह बल्ले और गेंद से खेला जाता है, 11 खिलाड़ियों की दो टीमें पिच पर खेलती हैं। यह रणनीतिक खेल है जो हॉकी की तुलना में अधिक समय तक चलता है। संक्षेप में कहें तो कुश्ती शरीर की ताकत, स्प्रिंट गति, हॉकी टीम वर्क और गति, क्रिकेट रणनीति और तकनीक का मिश्रण है जो समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है।
1: सर, हम अपने बचपन में जाएं और पीछे मुड़कर अतीत के झरोखों में देखें तो स्कूलों में अक्सर शनिवार के दिन गेम्स पीरियड होता था और उसमें बच्चों को अलग अलग तरह की खेल गतिविधियों से जोड़ा जाता था, जैसे ऊंची कूद है, लंबी कूद है, तो ये भविष्य में बच्चे के लिए कैसे काम आ सकते हैं?
2: मैम, ये बच्चों में आत्मविश्वास, टीम वर्क, अनुशासन जैसे कौशल विकसित करती है जो भविष्य में स्वास्थ्य जीवन शैली, तनाव प्रबंधन और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने में मदद करती है।
1: जी।
2: ये गतिविधियों बच्चों को जीवन की वास्तविक चुनौतियों के लिए तैयार करती हैं।
1: अच्छा, कौन कौन से खेलों को हम एथलेटिक्स में रखेंगे?
2: एथलेटिक्स में मुख्य रूप से दौड़, कूद, फेंकना, पैदल चाल से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगिताएं शामिल हैं जिन्हें ट्रैक एंड फील्ड के रूप में भी जाना जाता है। स्प्रिंट, इसमें 100, 200, 400 हर्डल्स आते हैं। मिडिल लॉन्ग डिस्टेंस 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, लॉन्ग डिस्टेंस 5000 मीटर, 10000 मीटर, मैराथन, रिले 4x200, 4x400 और आजकल एक नया इवेंट जुड़ गया मिक्स रिले 4x400, 4x400। फील्ड इवेंट में लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप, पोल वोल्ट, कंबाइंड इवेंट में महिलाओं के लिए हेप्टाथलन और पुरुषों के लिए डेकाथलन होते हैं। थ्रोज इवेंट में शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो और हैमर थ्रो, इस तरह से इतने इवेंट इसमें कराए जाते हैं।
1: सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो हमारे भारत के जो एथलीट्स हैं उनकी क्या भूमिका है इन खेलों में?
2: मैम, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स में भारत की भूमिका तेजी से उभरती हुई महाशक्ति के रूप में अभी आई है।
1: जी जी।
2: जिसका नेतृत्व नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ियों ने किया है। 2020 ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में जब उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, 2023 में विश्व एथलेटिक्स में सफलता के साथ भारत ने ट्रैक एंड फील्ड में अपनी उपस्थिति मजबूत की है।
1: जी जी।
2: जबकि एशियन गेम्स में भारत का हमेशा से दबदबा रहा है।
1: ये तो बहुत गौरव की बात है हम सभी के लिए। अच्छा सर, ये तो हो गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात, अगर हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों की क्या भूमिका है अपने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में या पूरे भारत में किस तरह से वे आगे बढ़ रहे हैं?
2: मध्य प्रदेश अभी देश के टॉप राज्यों में से एक है।
1: जी।
2: और हम आपके माध्यम से अपने सरकार को, अपने संचालनालय डायरेक्टर स्पोर्ट्स को और जो हमारी टीम है उसको हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतनी बढ़िया टीम बनाई है कि हमारे पास आज हमारे जो बच्चे हैं, पहले नेशनल मेडल नहीं आता था।
1: जी जी।
2: अब हम बच्चों में सोच इतना बदला है कि जो अब 5 नेशनल रिकॉर्ड हमारे नाम से है।
1: क्या बात है।
2: हमारे एकेडमी के बच्चों के नाम से 5 नेशनल रिकॉर्ड मध्य प्रदेश अभी स्टैंड कर रहा है।
1: जी जी।
2: पिछले इसी मंथ में पोल वॉल्ट में कुलदीप कुमार ने अपने ही एकेडमी के बच्चे का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ के अपना रिकॉर्ड बनाया। अंडर 16 वायु वर्ग में महिलाओं में बुशरा खान ने 2000 मीटर के नेशनल रिकॉर्ड है।
1: जी।
2: अंडर 20 गर्ल्स में 3000 में स्टिपल चेज में एकता डे नेशनल रिकॉर्ड है। अभी 5000 मीटर रेस वॉक में अभी इसी मंथ में रंजना यादव ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया।
1: जी।
2: इस तरह से हमारे कई नेशनल रिकॉर्ड अपने मध्य प्रदेश के नाम से हैं और अभी कई खेलों में अभी हॉकी में अभी उपविजेता बनी है।
1: जी।
2: विवेक सागर प्रसाद हॉकी में ओलंपिक्स को रिप्रेजेंट करते मेडल जीत कर आए थे।
1: जी जी।
2: तो अभी हमारा खेलों में बहुत टॉप में चल रहा है।
1: जी जी।
2: और आने वाले दिन में मुझे लगता है कि हम भारत के शीर्ष राज्यों में से सबसे आगे रहेंगे।
1: जी जी, बिल्कुल। और हम भी ऐसी कामना करते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं हमारे खिलाड़ियों को कि वे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना परचम लहराएं, अपना तिरंगे का मान बढ़ाएं। अच्छा सर, अब बात हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यदि कोई बच्चा है वो एथलीट बनना चाहता है तो उसे किस उम्र से मार्गदर्शन मिलना चाहिए कि वो इन खेल गतिविधियों में भाग ले सकता है?
2: एथलीट बनने के लिए बच्चों को 7-8 वर्ष की आयु से विभिन्न खेल के माध्यम से बेसिक मोटर क्वालिटी का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हें उसी टाइम में शुरू करना चाहिए।
1: जी जी।
2: लेकिन उस पर बहुत कंट्रोल, क्योंकि ये ग्रोइंग एज है।
1: जी
2: थोड़ा
1: जी।
2: सा भी अगर हम उनको ज्यादा ट्रेनिंग कराएंगे तो उनको ग्रोथ पे उसका असर पड़ेगा। 8 से 12 वर्ष को मोटर लर्निंग का स्वर्ण युग माना जाता है जहाँ कौशल विकास तेजी से होता है।
1: जी।
2: प्रोफेशनल या विशिष्ट खेल प्रशिक्षण के लिए 12 से 18 वर्ष की आयु उपयुक्त है, लेकिन इसमें मोटर क्वालिटी को डेवलप करने के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है और विशेषकर हमें खाने पीने में, ट्रेनिंग में बहुत सतर्कता बरतनी पड़ती है क्योंकि थोड़ा सा भी गलती इनके फ्यूचर को रोक सकता है।
1: जी जी।
2: इन खेलों गतिविधियों में स्थानीय स्पोर्ट्स क्लब, जिले, स्कूल की टीम जैसे सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें और ये सुनिश्चित करें कि वे जीतने के बजाय खेल का आनंद लें और शारीरिक शिक्षा के कक्षाओं में भाग लेकर आत्मविश्वास को बढ़ाएं। इस तरह से हम उनको आगे ला सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, यानी सहभागिता जरूरी होती है। जीत हार तो बाद की बात है, सबसे महत्वपूर्ण है कि आप उस चीज का हिस्सा बने।
2: बिल्कुल,
1: तो बहुत सारी चीजें भी आप अनौपचारिक रूप से भी सीखते हैं।
2: जी हाँ
1: बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरे अन्य खेलों में बच्चों को करियर फिर भी समझ में आता है, जैसे हम जनरल बात करें क्रिकेट में समझ में आता है कि भाई लोग विराट कोहली को अपना आदर्श मानते हैं, सचिन तेंदुलकर को आदर्श मानते हैं, लेकिन एक एथलीट का करियर कैसा हो सकता है, भविष्य की संभावनाएं क्या हो सकती हैं, ये हमारे श्रोताओं को आप ज़रूर बताइए।
2: मैम, एक एथलीट का करियर शारीरिक क्षमता पर आधारित होता है जो आमतौर पर 30-40 वर्ष की आयु तक चलता है। करियर के बाद भी वो पूर्व खिलाड़ी, कोच, फिटनेस ट्रेनर, रेफरी, खेल पत्रकार, स्पोर्ट्स मैनेजर, पोषण विशेषज्ञ या कमेंटेटर के रूप में सुनहरे भविष्य को की संभावना तलाश कर सकते हैं।
1: जी जी।
2: शिक्षा के साथ साथ खेल को जारी रखना सुरक्षित भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
1: अच्छा सर, भारत में एथलेटिक्स का लेवल पिछले 5-10 सालों में कैसा बदला है, ये भी थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब से नीरज चोपड़ा जी का नाम हमने सुना और उनके खेल के बारे में जाना और उन्होंने स्वर्ण पदक जीता तो नीरज चोपड़ा हाईलाइट हुए।
2: इसके बाद नीरज चोपड़ा के जीतने के बाद ना हमारे खिलाड़ियों में सोच का स्तर बदल गया।
1: जी जी बिल्कुल।
2: पहले जो हमारे खिलाड़ी इंटरनेशनल कंपटीशन में जाते थे तो हम पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं ये सोच था। नीरज के गोल्ड जीतने के बाद अब हमारे खिलाड़ी जीतने के लिए सोचते हैं कि हम कौन सा मेडल जीतेंगे। और नीरज के बाद देखिए गुलबीर सिंह, पारुल चौधरी, कार्तिक, अविनाश शावले, कई ऐसे खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत के नाम रोशन किया, भारत का नाम रोशन किया है। और अभी आने वाले एशियन गेम्स में हम लगता है कि टॉप 2 में रहेंगे।
1: जी जी, क्या बात है। तो पिछले 5-10 सालों में कैसा बदलाव आप महसूस करते हैं?
2: मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव साइन है।
1: जी जी।
2: और ये आगे जाएंगे मैम, आगे जाएंगे।
1: सर, स्कूली लेवल पर बच्चों को एथलेटिक्स में लाने के लिए क्या करना चाहिए?
2: स्कूली स्तर पर बच्चों को एथलेटिक्स, दौड़, कूद, फेंक में लाने के लिए खेल को मजेदार, समावेशी और बुनियादी बनाना सबसे जरूरी है। इसके लिए अभी हमारे वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किड एथलेटिक्स का एक स्कीम चालू किया है
1: जी।
2: उसके माध्यम से उसके कार्यक्रम में उपयोग करें जो 4 से 14 वर्ष के बच्चों में विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं उनके बच्चों के लिए। ये टीम आधारित गतिविधियों के माध्यम से शारीरिक शिक्षा को मनोरंजक बना के उनको सिखाते हैं।
1: बिल्कुल, और बच्चों के साथ तो एक अलग ही लेवल पर उनको सिखाना होता है क्योंकि हर चीज जब हम शुरू करते हैं तो काफी कठिन लगती है। ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि एक मनोरंजक स्तर पर बच्चों को हमें जोड़ना चाहिए और उनको सिखाना चाहिए। अच्छा सर, खिलाड़ी के लिए खानपान बेहद ज़रूरी होता है और एक अच्छा आहार बहुत ज़रूरी होता है, तो डाइट की बात अगर हम करें तो मेंटल हेल्थ एक एथलीट के प्रदर्शन में कितना रोल निभाती है और शरीर को कितना फिट होना चाहिए?
2: डाइट और पोषण का सीधा संबंध मानसिक स्वास्थ्य से है। एक एथलीट प्रदर्शन में यह 80-90% तक भूमिका निभा सकता है।
1: जी जी।
2: उच्च स्तरीय प्रदर्शन के लिए शारीरिक फिटनेस के साथ साथ मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक अस्थिरता का होना बहुत जरूरी है जो संतुलित आहार पर ही निर्भर करता है।
1: जी।
2: शरीर के फिटनेस खेल के प्रकार पर निर्भर करती है, लेकिन ये एक एथलीट को लीन होना चाहिए, मतलब कम चर्बी अधिक मांसपेशी वाला होना चाहिए।
1: जी जी।
2: एक एथलीट के लिए बॉडी और माइंड दोनों का फिट होना बहुत एक दूसरे से जुड़ा है। सही डाइट न केवल मांसपेशियों को ऊर्जा देती है बल्कि मानसिक रूप से मजबूत बनाती है जिससे मैदान पर बेहतर प्रदर्शन करने में उसको मदद मिलती है।
1: सर, खानपान का बड़ा योगदान होता है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या क्या भोजन शामिल होना ही चाहिए और एक संपूर्ण संतुलित भोजन क्या होना चाहिए?
2: देखिए मैम, खिलाड़ी को जब मेहनत करते हैं तो हमें हमारे डाइट बैलेंस होनी चाहिए।
1: जी जी।
2: तो हम जानना चाहेंगे बैलेंस डाइट क्या है। तो बैलेंस डाइट में जितने कंटेंट होते हैं वो कंटेंट होना चाहिए। तो अगला प्रश्न आएगा कंटेंट क्या क्या होने चाहिए।
1: जी जी।
2: तो उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट,
1: जी,
2: फैट, वसा, मिनरल्स वगैरह वगैरह होते हैं।
1: जी जी।
2: अब अगला प्रश्न श्रोता जानना चाहेंगे कि कितना होना चाहिए। तो प्रोटीन जो है ये हमारे बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करता है। 1.75 ग्राम से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हमारा प्रोटीन होना चाहिए।
1: जी जी।
2: फैट 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट 6-8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होना चाहिए। अब श्रोता अपना खाने में खुद चेक कर सकते हैं कि हमारा खाना सही है अथवा इसमें कमी है।
1: जी जी।
2: दूसरा, अगर हम इसको नेचुरोपैथी के नजरिए से देखें तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
1: जी जी।
2: जैसे हमारा शरीर जो है 5 तत्वों को मिलकर बना है।
1: जी।
2: पृथ्वी तत्व, जल तत्व,
1: जी,
2: अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व।
1: जी जी।
2: इसके डाइट भी सब अलग अलग है। जैसे पृथ्वी तत्व में अनाज दालें, जल तत्व में सब्जी, अग्नि तत्व में फ्रूट्स वगैरह आते हैं, फल फूल आगे, और वायु तत्व में जितने पत्तियां आती है ना वो आते हैं, और आकाश तत्व है उपवास, खाली स्थान।
1: अच्छा।
2: तो इसका बहुत बड़ा रोल है। हमें जनरली जो नेचुरोपैथी में सिखाया गया है कि इंसान को 24 घंटे के अंदर में 14 घंटा उपवास करना चाहिए।
1: जी जी।
2: तो आपका शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा। ये हमें स्पोर्ट्समैन ना भी करे तो चलेगा, लेकिन जनरल व्यक्ति को जरूर अपनाना चाहिए। और जब पहला ब्रेकफास्ट करते हैं उसका है फास्ट को ब्रेक करना।
1: जी जी।
2: तो पहला हम पत्तियों का जूस से चालू करें तो ये बहुत शरीर के लिए लाभदायक होगा। उसके बाद आप जल तत्व ले लें, सब्जियों में कच्चा आहार जैसे हम सलाद ले सकते हैं, खीरा, टमाटर, चुकंदर, गाजर, मूली, इसको काट के थोड़ा ले लें, थोड़ा देर बाद फल लें। ये लेने से नेगेटिव चीज हमारे शरीर में नहीं आएंगे और डिटॉक्स होंगे, जितने भी विजातीय तत्व हैं वो बॉडी से निकलेंगे।
1: जी जी।
2: और ये हमारे शरीर को बहुत फायदा पहुंचाएगा। जब हम एथलीट को देखते हैं तो मिडिल लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए मैं बोलता हूँ, उसमें बीटरूट जूस है
1: जी,
2: उसमें नाइट्रेट है, नाइट्रेट लोडिंग है
1: जी,
2: वो हमारे रेड ब्लड सेल को इम्प्रूव करता है, बूस्ट करता है।
1: जी जी।
2: उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारा बढ़ेगा, तो जो सांस लेने की क्षमता है ना वो बढ़ जाएगा। तो नेचुरली जब हम यहाँ थक रहे हैं तो थोड़ा और आगे जाके थकेंगे
1: जी।
2: तो ये हमारा प्रदर्शन में सुधार होगा। इस प्रकार हम अगर ऐसे करें तो हमें प्रदर्शन में और अच्छा सुधार कर सकते हैं।
1: सर, किसी भी खेल का हिस्सा बनने के लिए बच्चे की खुद की तैयारी कितनी जरूरी होती है, जैसे एक्सरसाइज है, ट्रेनिंग है या डेली रूटीन, किस तरह से उसे अपनी तैयारी रखना चाहिए या बदलाव करने चाहिए, आप किस तरह से मार्गदर्शन देते हैं?
2: किसी भी खेल का हिस्सा बनने के लिए खुद की तैयारी, शारीरिक एक्सरसाइज, ट्रेनिंग और मानसिक दोनों बेहद जरूरी है, जिसे 100% महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए
1: जी।
2: यह केवल खेलने के बारे में ही नहीं बल्कि प्रदर्शन, सुरक्षा और दीर्घकालिक विकास के बारे में भी है। तैयारी सिर्फ खेल के दिन ही नहीं बल्कि हर रोज की प्रतिभा है। अच्छी तैयारी आपको एक साधारण खिलाड़ी से उत्कृष्ट खिलाड़ी बना सकती है और लंबे समय तक खेलों में बनाए रखती है।
1: सर, किस तरह की ट्रेनिंग आप लोग देते हैं बच्चों को?
2: प्लान होता है उसका कि हम इसको किस स्तर का, किस कंपटीशन के लिए हम तैयार कर रहे हैं, उसके लिए हम प्लान करते हैं। हमारे साथ पूरा टीम है, उसका जब प्लान कर लेते हैं तो इसका कितना रिकवरी चाहिए, हमारे रिकवरी एक्सपर्ट हैं, इस रिकवरी के साथ इसको कैसा डाइट चाहिए, हमारे साथ डाइटिशियन है, वो पूरा प्लान करती हैं, कहाँ पे इसको क्या जरूरत है, प्लान के हिसाब से करते हैं और हमारे लड़के करीब करीब अपने टारगेट को अचीव करते हैं।
1: जी जी। अच्छा सर, जैसे उम्र की बात करें तो किस उम्र से बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं अकेडमी में?
2: अकेडमी में मैम 12 से 18 साल के बीच के बच्चे हम लोग, और जो बच्चे अच्छा करते हैं
1: जी जी।
2: उनको हम लोग डायरेक्ट भी एकेडमी लेते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है हमारे यहाँ और पूरा पारदर्शिता है कि किसी कोई नहीं कह सकता है, किसी और गेम में हो सकता है लेकिन एथलेटिक्स में इट्स नॉट पॉसिबल। जो अच्छा है वो अच्छा है।
1: जी जी। यानी उम्र भी महत्व रखती है।
2: बिल्कुल।
1: आपकी यहाँ पर जब बच्चा जुड़ता है खेलों से तो। सर, युवाओं को फिटनेस और खेल के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मैं श्रोताओं को कहना चाहूंगा, याद रखिए, सफलता केवल एक दिन में नहीं मिलती, यह निरंतर प्रयास, धैर्य और लगन से हासिल होती है। असफलताएं से घबराएं नहीं बल्कि उससे प्रेरित होकर और दुगने उत्साह से आगे बढ़ें। देश को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं की भूमिका सबसे अहम होती है। याद रखिए, अवसर नहीं होते, आप उन्हें बनाते हैं। धन्यवाद।
1: क्या बात है, अवसर होते नहीं, आप उन्हें बनाते हैं। बिल्कुल। और श्रोताओं, आज हम बात कर रहे थे वर्ल्ड एथलेटिक्स डे पर और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित थे श्री एस के प्रसाद। आप मुख्य प्रशिक्षक हैं मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी भोपाल में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे श्रोताओं को, और विशेष रूप से हम कहना चाहेंगे कि हमारे युवा वर्ग को, इतनी अच्छी जानकारी दी आज के दिन के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश से, हमारे भोपाल शहर से भी बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे निकलेंगे, खेलों को पूरे विश्व में बहुत आगे लेकर जाएंगे और अपना नाम रोशन करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू वेरी मच।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम जिसमें आज हम बात कर रहे थे वर्ल्ड एथलेटिक्स डे पर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, और मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना। इसी के साथ अब कार्यक्रम के समापन की हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
3: रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल, रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल 90.8।
4: देशभक्ति को समर्पित पहला रेडियो स्टेशन
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज़।
5: अभी आप सुन रहे थे वर्ल्ड एथलेटिक्स डे पर विशेष कार्यक्रम। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारे देश की सरहदों की अटूट ढाल यानी हमारी भारतीय थल सेना के बारे में।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: शिवरात्रि को देखते हुए देश भर में सुरक्षा के
2: दादू, दादू।
3: हाँ बेटा।
2: दादू इधर आइए ना बालकनी में।
3: अरे बेटा मैं आराम कर रहा हूँ।
2: दादू प्लीज आइए ना।
3: ओफो, चलो चलो आता हूँ।
4: हाँ।
2: इधर आइए ना दादू।
4: बताओ बताओ बेटा।
2: ये देखिए ना दादू।
4: हाँ।
2: रोज सुबह सुबह मैदान में जो ये लोग दौड़ते हैं, एक जैसे कपड़े पहनते, इतनी मेहनत करते, दादू ये सब सेना के लोग हैं।
4: हमारी प्यारी बिटिया ये देख रही थी मतलब। हाँ बेटा, ये वही लोग हैं जिनकी वजह से हम चैन की नींद सो पाते हैं। भारतीय सेना के जवान
2: दादू। ये भारतीय थल सेना क्या? क्या ये सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए हजारों लोगों का एक समूह है?
4: नहीं बिटिया, भारतीय थल सेना सिर्फ एक फोर्स नहीं है, इसे हजारों लोगों का समूह भी नहीं कहेंगे। ये तो हमारे देश की आन बान और शान है। ये हर खतरे के सामने खड़ी वो दीवार है जो देश को सुरक्षित रखती है। ये वो भरोसा है जिसकी वजह से हर भारतीय निडर होकर जीता है बिटिया।
2: मतलब दादाजी, भारतीय थल सेना हमें सुरक्षित रखने के लिए तैयार किया गया एक योद्धाओं का समूह है।
4: बिल्कुल बिटिया, और सेना सिर्फ सीमाओं को ही नहीं बचाती, वो तो पूरे देश का विश्वास भी बचाती है। ये विश्वास कि देश सुरक्षित हाथों में है।
2: दादू, ये सेना क्यों बनी? पहले लोग खुद की रक्षा नहीं कर सकते थे क्या?
4: देखो बिटिया, एक समय था जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर जगह अलग अलग राजा, अलग अलग सेना और लगातार संघर्ष हुआ करते थे। ऐसे में छोटे बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, यहाँ तक कि देश की आम जन की रक्षा का उत्तरदायित्व इन सैनिकों के पास था। तब विदेशी आक्रांता देश की संपत्ति को लूटने, जमीन हड़पने के लिए भारत पर हमला किया करते थे।
2: अरे बाप रे। यानी बाहरी ताकतें भी हमला करती थी और देश के अंदर भी अस्थिरता थी दादाजी।
4: हाँ बेटा, और तभी देश के कुछ दूरदर्शी और ताकतवर बुद्धिमान मार्गदर्शकों ने एक संगठित सेना बनाने का विचार किया। एक ऐसा बल जो पूरे देश की रक्षा कर सके। 1 अप्रैल 1895 को एक संगठित सैन्य ढांचे की शुरुआत हुई और 1947 में आजादी के बाद इस नए भारत के अनुसार फिर से बनाया गया।
2: मतलब ये सेना इतिहास से लेकर आज तक देश के साथ खड़ी है दादाजी। पर दादू, सेना का काम सिर्फ युद्ध लड़ना ही है क्या?
4: नहीं बिटिया, सेना का काम तो इससे भी और ज्यादा है, बहुत बड़ा है।
2: वो भला कैसे?
4: देखो बेटा, जैसे सीमाओं की रक्षा करना, दुश्मनों से मुकाबला करना, आतंकवाद से लड़ना, आपदा में लोगों की मदद, ये सब सेना ही करती है।
2: अच्छा।
4: हाँ, जब बाढ़ आती है, देश में कहीं भी भूकंप आता है या इसके अलावा भी कोई संकट होता है, तो सबसे पहले दुर्घटना स्थल पर जो पहुंचता है वो है हमारी थल सेना।
2: मतलब ये सैनिक असल में हमारे रक्षक है दादू।
4: हाँ।
2: अब एक सवाल है मेरे मन में।
4: पूछो बिटिया।
2: वो ये कि जब असली युद्ध होता है तब क्या परिस्थिति होती होगी?
4: बेटा, युद्ध कोई फिल्म नहीं है, ये तो पूरी योजना और अनुशासन से चलता है। जैसे सबसे पहले दुश्मन की जानकारी जुटाई जाती है, फिर हमले की रणनीति बनाई जाती है, तब जाकर फिर ऑपरेशन शुरू होता है और युद्ध लड़ा जाता है।
2: मतलब युद्ध में हर कोई मिलकर लड़ता है।
4: हाँ बेटा, युद्ध अकेले नहीं लड़ा जाता, ना ही जीता जाता, ये तो टीम वर्क है बिटिया।
2: दादू, क्या आज की सेना पहले जमाने की सेना जैसी ही है?
4: नहीं बिटिया, आज की सेना बहुत आधुनिक है। नया कलेवर, नई तकनीक, नया युद्ध कौशल।
2: वो भला कैसे?
4: देखो बेटा, राइफल, मशीन गन, टैंक, मिसाइल, ड्रोन, सैटेलाइट, बेहतरीन परमाणु हथियार आज क्या कुछ नहीं है हमारे पास। हम हर लिहाज से दुनिया के किसी भी अन्य विकसित देश की सेना की तरह ताकतवर हैं।
2: दादू
4: हाँ?
2: तो इसका मतलब अब युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि तकनीक से भी जीता जाता है।
4: हाँ बिटिया बिल्कुल शाबाश।
2: दादू
4: हाँ बेटा,
2: ताकतवर बनने के लिए ट्रेनिंग भी तो करनी होती होगी ना?
4: बहुत ही कठिन ट्रेनिंग होती है, जैसे सुबह 4 बजे उठना, लंबी दौड़, पहाड़ चढ़ना, हथियार चलाना, मानसिक मजबूती, कठिन परिस्थितियों में जीना, डर पर काबू पाना।
2: दादू
4: हाँ बेटा,
2: ये जवान देश की रक्षा कैसे करते हैं? पहाड़ों में, बर्फ में, रेगिस्तान में, जंगलों में, चाहे कितनी भी कड़ाके की ठंड क्यों ना हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, आखिर ये हर मौसम और विपरीत स्थिति में डटे कैसे रहते हैं दादाजी?
4: क्योंकि बिटिया इनके लिए ये सिर्फ नौकरी नहीं है, इनके लिए तो ये देश की रक्षा का प्रण है, प्रण। तभी तो इतनी सम्मानित है हमारी गौरवशाली थल सेना।
2: दादू
4: हाँ बेटा,
2: भारतीय थल सेना का उद्देश्य क्या है?
4: बिटिया भारतीय थल सेना सिर्फ युद्ध लड़ने वाली ताकत नहीं है, ये देश की संप्रभुता, अखंडता और सीमाओं की सुरक्षा की सबसे मजबूत ढाल है। भारतीय थल सेना भारत की तीनों शस्त्र सेनाओं में सबसे बड़ी है, जो जमीन पर रहकर देश की सीमाओं की रक्षा करती है।
2: दादू
4: हाँ बेटा,
2: आपने भी ना भारतीय थल सेना के बारे में इतना कुछ बताया है मुझे, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी।
4: हर बड़ी ताकत की तरह भारतीय थल सेना की भी एक लंबी कहानी है। आज जिस सेना को हम भारतीय थल सेना कहते हैं, उसकी नींव बहुत पहले यानी 1 अप्रैल 1895 को रखी गई थी, ये तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ।
2: हाँ?
4: लेकिन बेटा क्या तुम एक दिलचस्प बात जानती हो?
2: वो क्या भला दादाजी?
4: जब हमारा भारत आजाद नहीं था, तब इस सेना को ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहा जाता था।
2: सच में दादू? फिर तो उस समय ये सेना अंग्रेजों के अधीन रही होगी, क्योंकि तब हमारा देश आजाद नहीं था।
4: हाँ बिटिया, उस समय भारतीय सैनिक अंग्रेजी हुकूमत के तहत काम करते थे, लेकिन बहादुरी और साहस तब भी उनमें आज जितना ही रहा होगा, मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ।
2: अच्छा?
4: हाँ बेटा।
2: दादू तो फिर ब्रिटिश इंडियन आर्मी हमारी भारतीय थल सेना कब बनी?
4: 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, तब उसी सेना को नए भारत के अनुसार फिर से संगठित किया गया।

0: बखूबी अंजाम दे रहे हैं।
1: दादू, तो इसका मतलब हमारा हर सैनिक अपने साथ एक इतिहास भी लेकर चलता है।
0: हाँ बिटिया, हर वर्दी के पीछे सदियों का इतिहास, बलिदान और गौरव छुपा हुआ है। इसकी जड़ें भले ही बहुत पुरानी हैं, लेकिन आधुनिक भारतीय सेना का स्वरूप आजादी के बाद बहुत ज्यादा मजबूत हुआ और लगातार और ताकतवर होता जा रहा है।
1: तो क्या दादू, ये सेना हमेशा से सीमा पर ही रहती है?
0: नहीं बिटिया, सीमा पर दुश्मन से मुकाबला करना इनका मुख्य काम तो है, लेकिन इसके अलावा भी ये देश के हर संकट में सबसे पहले खड़ी होती है। जब कहीं बाढ़ आती है, भूकंप आता है या कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा होती है, तब सबसे पहले भारतीय सेना ही राहत और बचाव के लिए पहुंचती है बेटा।
1: मतलब ये सिर्फ लड़ाई ही नहीं लड़ती बल्कि जीवन रक्षक भी है दादाजी।
0: बिल्कुल, युद्ध में दुश्मन से लड़ना और संकट से अपने लोगों को बचाना, यही है भारतीय सेना की असली पहचान।
1: इतनी कठिन जिंदगी होती है इन देशभक्तों की, घर से दूर रहकर दादाजी अपने परिवार के लिए इन्हें डर नहीं लगता?
0: डर तो हर इंसान को लगता है बिटिया, लेकिन एक सैनिक अपने डर से बड़ा होता है, क्योंकि उसके दिल में देश के लिए प्यार और जिम्मेदारी होती है। जब पूरा देश चैन की नींद ले रहा होता है, तब हमारी भारतीय सेना का भारतीय जवान बर्फीली पहाड़ियों पर, रेगिस्तान की तपती रेत में और घने जंगलों में जाग कर पहरा देता है बेटा।
1: दादू, तभी तो हम सुरक्षित है ना, बिना किसी खौफ के हम अपने देश में कहीं भी आ जा सकते हैं।
0: हाँ बिटिया, भारतीय थल सेना सिर्फ एक बल नहीं है, ये हर भारतीय की सुरक्षा की 100% विश्वास की गारंटी है।
1: दादू,
0: हाँ,
1: जब युद्ध होता है तो क्या सच में सैनिक आमने सामने लड़ते हैं?
0: हाँ बिटिया, लेकिन जब भी युद्ध होता है तो वो सिर्फ हथियारों का नहीं होता बल्कि हौसले और बलिदान का भी होता है।
1: ये तो आपने सही कहा दादाजी। हाँ, मैंने भी पढ़ा था कि 1965 का युद्ध हो, 1971 का ऐतिहासिक युद्ध हो या फिर कारगिल की बर्फीली चोटियाँ, हर बार भारतीय थल सेना ने असाधारण साहस दिखाया है।
0: हाँ बिटिया, ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों पर जहाँ सांस लेना भी मुश्किल होता है, वहाँ हमारे जवानों ने दुश्मनों को कई बार पीछे खदेड़ा है। यही नहीं, कई वीर सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश के ध्वज, हमारे तिरंगे को सबसे ऊंचा रखा है।
1: अच्छा दादू।
0: हाँ बेटा।
1: क्या सैनिक अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर रहते हैं?
0: हाँ बेटा, कई कई महीनों तक वे अपने घर, अपने बच्चों, अपनों से दूर रहते हैं। कोई त्योहार हो या कोई खुशी का मौका, उनकी ड्यूटी उनके लिए सबसे पहले आती है बेटा।
1: तो इसका मतलब हम जो त्योहार मनाते हैं उसके पीछे भी उन वीर जवानों का ही त्याग होता है दादाजी?
0: बिल्कुल होता है बेटा। जब हम दिवाली पर दीप जलाते हैं, तब कोई जवान सीमा पर अंधेरे में कहीं दूर दराज के निर्जन बीहड़ में पहरा दे रहा होता है।
1: अच्छा दादाजी।
0: हाँ बेटा।
1: अगर कोई देश की सेवा करना चाहे तो क्या वो भारतीय थल सेना में जा सकता है?
0: क्यों नहीं बिटिया, भारतीय थल सेना देश के युवाओं के लिए सबसे सम्मानजनक करियर में से एक है। यहाँ कई रास्ते हैं, NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, और अब अग्निवीर योजना के माध्यम से भी युवा सेना में शामिल हो सकते हैं। रुचि बेटा, अब तुम क्या सोच रही हो?
1: दादू, अब मेरा पुराना वही सवाल, क्या लड़कियां भी इसमें जा सकती हैं?
0: तो बेटा, मेरा भी वही पुराना जवाब। बिल्कुल, आज भारतीय सेना में महिलाएं भी अधिकारी बनकर देश की सेवा कर रही हैं। चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या कॉम्बैट सपोर्ट रोल हो, सेना में सिर्फ नौकरी नहीं मिलती बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास, सम्मान और देश सेवा का अवसर मिलता है बेटा।
1: दादाजी, तो भारतीय सेना में जाना सिर्फ करियर नहीं, हर देशभक्त भारतीय का एक सपना है।
0: हाँ बिटिया, एक ऐसा सपना जो हर भारतीय के दिल में बसता है और जो जय हिंद कहते वक्त शरीर के हर रोम को देशभक्ति के जोश से भर देता है।
1: दादू।
0: हाँ बेटा।
1: आपने अभी CDS का नाम लिया था, ये क्या है? क्या इससे सेना में जाया जा सकता है?
0: हाँ बिटिया, CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जिसके माध्यम से युवा भारतीय थल सेना, नौसेना और वायु सेना में अधिकारी बन सकते हैं। ये परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा साल में 2 बार कराई जाती है।
1: दादाजी।
0: हाँ बेटा।
1: ये किस तरह का एग्जाम होता है, इसमें किस तरह की तैयारी करनी होती है, जरा ये भी तो बताइए।
0: हाँ हाँ बेटा, इसमें लिखित परीक्षा होती है, जिसमें अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और गणित जैसे विषय आते हैं। इसके बाद होता है SSB इंटरव्यू, जहाँ उम्मीदवार की सोच, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को परखा जाता है।
1: सच दादू, यानी यहाँ सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, पर्सनैलिटी भी मजबूत होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, एक सैनिक सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि अपने साहस और चरित्र से बनता है बिटिया।
1: तो फिर बता ही दीजिए कि इसकी तैयारी कब और कैसे शुरू करनी चाहिए।
0: देखो बेटा, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के दौरान CDS की तैयारी शुरू कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: रोजाना समाचार और सामान्य ज्ञान पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी, साथ ही गणित और अंग्रेजी की पकड़ भी मजबूत होनी चाहिए। शारीरिक फिटनेस, दौड़, पुशअप, अनुशासन और सबसे जरूरी है कैडेट में आत्मविश्वास और नेतृत्व भावना का होना।
1: दादू।
0: हाँ बेटा।
1: सेना में कौन कौन सी पोस्ट होती है?
0: ये कोई आम पोस्ट नहीं है बेटा, सेना में इसे रैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
1: रैंक कहा जाता है।
0: हाँ, जो एक जिम्मेदारी और नेतृत्व की पहचान होती है। लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल, और इन सबसे ऊपर जनरल का पद होता है। हर रैंक के साथ जिम्मेदारी और सम्मान दोनों बढ़ते जाते हैं।
1: दादू।
0: हाँ।
1: यानी भारतीय थल सेना हमारे वो रक्षक हैं जिनके लिए कर्तव्य सबसे ऊपर है और देश सबसे पहले।
0: हाँ।
1: आपने भारतीय थल सेना के बारे में इतना कुछ बताया, लेकिन ये इतनी बड़ी फोर्स आखिर काम कैसे करती है? इतने सारे सैनिक, उन्हें कौन संभालता है भला? क्या इसमें भी कोई सिस्टम होता है दादाजी?
0: देखो बेटा, इतनी बड़ी सेना को संभालने के लिए बहुत मजबूत और व्यवस्थित कमांड सिस्टम होता है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना बेटा, सबसे ऊपर होते हैं थल सेना अध्यक्ष, जिन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कहा जाता है, जो पूरी भारतीय थल सेना का नेतृत्व करते हैं। उनके नीचे कई वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जो अलग अलग विभागों और क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभालते हैं, यानी हर स्तर पर एक साफ जिम्मेदारी तय होती है।
1: अच्छा, हर रैंक के अधिकारी की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? जरा विस्तार से ये भी तो बताइए ना दादाजी।
0: बताता हूँ बेटा, जरा पानी दो पहले।
1: ये लीजिए आपका पानी।
0: लाओ बेटा। तो सुनो बेटा, लेफ्टिनेंट एक छोटी टुकड़ी का नेतृत्व करता है, शुरुआत यहीं से होती है।
1: अच्छा।
0: कैप्टन को अपने सैनिकों का मार्गदर्शन और छोटे ऑपरेशन को संभालना होता है। मेजर ऑपरेशन की योजना और क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल पूरी बटालियन की जिम्मेदारी उठाता है और ब्रिगेडियर एक ब्रिगेड का नेतृत्व करता है।
1: और लेफ्टिनेंट जनरल?
0: हाँ बेटा, लेफ्टिनेंट जनरल जैसे उच्च पद के अधिकारी बड़े स्तर की रणनीति बनाते हैं और कई यूनिट्स का नेतृत्व करते हैं बेटा। और इन सबसे ऊपर की रैंक होती है जनरल, यानी थल सेना अध्यक्ष।
1: वाओ दादू, ये तो कमाल है। अच्छा बताइए कि सेना में सैनिकों को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है?
0: बहुत कठिन और अनुशासित ट्रेनिंग होती है बेटा इनकी। शारीरिक ट्रेनिंग जिसमें दौड़, चढ़ाई, बाधाएं पार कराई जाती हैं, हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है, युद्ध रणनीति, कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने की कला, ये सब सिखाई जाती है। उन्हें आधुनिक हथियार चलाना और अत्याधुनिक तकनीक से लैस उपकरण चलाना भी सिखाया जाता है।
1: अच्छा दादाजी।
0: हाँ,
1: इनकी ट्रेनिंग किन संस्थानों में होती है?
0: इसकी ट्रेनिंग देश के प्रमुख संस्थानों इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में होती है। यहीं से तैयार होकर देश के युवा एक काबिल अधिकारी बनते हैं बेटा।
1: आपने बताया था कि सैनिकों को हर तरह की कठिन ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन क्या उनकी ये ट्रेनिंग सच में इतनी मुश्किल होती है कि वो हर तरह के मौसम और जगह पर काम कर सके?
0: सेना की ट्रेनिंग का मकसद ही यही होता है कि एक सैनिक हर मौसम हर जगह खुद को ढाल सके। उन्हें ऐसी परिस्थितियों में भी काम करना सिखाया जाता है जहां आम इंसान कुछ घंटों में ही हार मान लेते हैं।
1: मतलब दादू, हमारे सैनिक दुनिया की सबसे कठिन जगहों पर भी ड्यूटी करते हैं?
0: बिल्कुल बिटिया, और ऐसी ही एक जगह है जहां जाना ही अपने आप में एक परीक्षा है।
1: कौन सी जगह दादू?
0: वहां सिर्फ दुश्मन ही नहीं होता बेटा, बर्फीले तूफान, ग्लेशियर की दरारें, ऑक्सीजन की कमी और हर पल मौत का खतरा। फिर भी हमारे जवान 24 घंटे हर मौसम में उस बर्फ की दीवार पर खड़े रहते हैं।
1: दादू, इतनी कठिन जगह पर रहना, वो भी लगातार, ये तो बहुत ही जोखिम भरा होगा दादाजी।
0: इसलिए तो उन्हें कहा जाता है हिमवीर, क्योंकि वो सिर्फ दुश्मन से नहीं प्रकृति से भी लड़ते हैं बेटा, और हर हाल में तिरंगे की रक्षा करते हैं।
1: अच्छा दादू, भारतीय थल सेना में सबसे बड़ा सम्मान कौन सा होता है?
0: परमवीर चक्र। ये भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है बेटा, जो युद्ध के दौरान असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए दिया जाता है।
1: जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा को मिला था, जिन्होंने कारगिल युद्ध में ये तिल मांगे मोर कहते हुए दुश्मन के ठिकानों पर कब्जा किया था और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया था, ये तो सच में हीरो होते हैं दादाजी।
0: बिटिया, ये सिर्फ हीरो नहीं होते, ये इस देश की सांसें हैं, सांसें। ये वो ताकत है जिसकी वजह से हम सुरक्षित हैं। हम जिन खतरों से बेखबर हैं, ये जवान रोज उनका सामना करते हैं बेटा।
1: पर दादाजी, सेना में इतने सारे अधिकारी और सैनिक होते हैं, तो हर किसी को कैसे पता होता होगा कि उसे क्या करना है? कोई गलती नहीं होती क्या उनसे?
0: यही तो सेना की असली ताकत है बिटिया। स्पष्ट आदेश, क्लियर ऑर्डर्स और कड़ा अनुशासन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। सेना में हर काम एक तय व्यवस्था के तहत होता है बेटा। इसे कहते हैं कमांड सिस्टम।
1: कमांड सिस्टम? ये क्या होता है दादू, और ये कैसे काम करता है?
0: देखो बेटा, सेना में आदेश ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। सबसे ऊपर होते हैं थल सेना अध्यक्ष, उनके नीचे अलग अलग वरिष्ठ अधिकारी, फिर यूनिट कमांडर और फिर सैनिक। इस पूरी व्यवस्था को ऐसे बनाया गया है कि हर सैनिक को साफ पता हो उसे कब, कहां और कैसे काम करना है, समझी?
1: मतलब सब कुछ पहले से ही तय होता है।
0: इसी वजह से युद्ध जैसी कठिन स्थिति में भी कोई भ्रम नहीं होता।
1: अच्छा दादू, ये कमांड स्ट्रक्चर या जिसे तकनीकी विस्तार भी कहते हैं, ये क्या होता है?
0: दरअसल पूरे देश को सेना ने अलग अलग कमांड्स में बांटा है ताकि हर क्षेत्र की सुरक्षा बेहतर तरीके से हो सके। जैसे कि उत्तरी कमांड जम्मू कश्मीर और पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी कमांड पश्चिमी सीमा क्षेत्र, पूर्वी कमांड पूर्वोत्तर भारत, दक्षिणी कमांड दक्षिण भारत, मध्य कमांड मध्य क्षेत्र बेटा।
1: ओ, अब समझ में आया। हर कमांड अपने अपने क्षेत्र की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी संभालती है।
0: बिल्कुल सही बेटा, और हर कमांड के अंदर भी कोर डिवीजन, ब्रिगेड, बटालियन जैसी इकाइयां होती हैं। इसी मजबूत व्यवस्था की वजह से सेना हर परिस्थिति में तेज और सटीक निर्णय ले पाती है।
1: यानी सेना एक मजबूत सिस्टम में बंद कर हमारे देश की रक्षा करती है दादाजी।
0: हाँ बेटा, एकदम सही समझा तुमने। तुम जानती हो, एक बटालियन में लगभग 600 से 900 सैनिक होते हैं। कितने होते हैं?
1: 600 से 900 सैनिक?
0: हाँ, और कई बटालियन मिलकर एक बड़ी ताकत बनाती है।
1: ओ, मतलब जैसे स्कूल में सेक्शन, क्लास और फिर पूरा स्कूल।
0: हाँ बिल्कुल वैसा ही बेटा।
1: अच्छा दादाजी, इनके काम करने का तरीका कितना सिस्टमैटिक है ना?
0: हाँ बेटा, हर सैनिक को उसकी ड्यूटी और जिम्मेदारी दी जाती है। आदेश ऊपर से नीचे तक पहुँचते हैं और हर कोई अनुशासन से काम करता है। इसी वजह से इतनी बड़ी सेना भी एकजुट होकर काम कर पाती है।
1: अच्छा दादू, क्या ये सेना आधुनिक तकनीकों का उपयोग करती है?
0: बिल्कुल बेटा, आज की भारतीय सेना में सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि आधुनिक तकनीकों का भरपूर उपयोग किया जाता है। जैसे संचार प्रणाली, जिन्हें तुम आजकल जेंजीज क्या बोलते हो?
1: नहीं दादाजी।
0: सोचो बेटा, कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार, सैटेलाइट, डिजिटल मैपिंग वगैरह वगैरह।
1: मतलब सब कुछ बहुत प्लानिंग से होता है दादाजी।
0: तो सेना का हर कदम सोच समझकर और एक सुनियोजित योजना के साथ उठाया जाता है बेटा।
1: दादू, अब समझ में आया कि इतनी बड़ी सेना कैसे एक साथ मिलकर हमारे देश की रक्षा करती है।
0: क्योंकि बिटिया, ये सिर्फ सैनिकों का समूह नहीं है बल्कि अनुशासन, विश्वास और देशभक्ति का संगम है। भारतीय थल सेना वो शक्ति है जो हर खतरे के सामने दीवार बनकर खड़ी रहती है। ये वो विश्वास है जिसके कारण हर भारतीय निडरता से जी पाता है बेटा।
1: दादू, आपने भारतीय थल सेना के बारे में इतना कुछ बताया, लेकिन एक बात और बताइए, इतनी बड़ी फोर्स की कमांड भला कौन संभालता है?
0: देखो बेटा, भारतीय थल सेना सिर्फ बहादुरी से नहीं बल्कि एक मजबूत संगठन और अनुशासन से चलती है। इसका नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के पास होता है और इसका नेतृत्व करते हैं थल सेना अध्यक्ष।
1: वाह, कितना बड़ा नेटवर्क है ये तो। अच्छा दादू, ये बताइए कि सैनिकों को कौन कौन से हथियार चलाने सिखाए जाते हैं?
0: बेटा, उन्हें आधुनिक हथियारों की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे राइफल, मशीन गन, ग्रेनेड, टैंक जैसे T-90 और अर्जुन, इसके अलावा मिसाइल सिस्टम जैसे ब्रह्मोस वगैरह।
1: मतलब यहाँ भी टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस होती है दादाजी।
0: हाँ बेटा, आज की सेना सिर्फ ताकत नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का भी मजबूत संगम है। ये सेना सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि आधुनिक टेक्नोलॉजी से चलती है। वॉकी टॉकी और वायरलेस सेट ड्रोन और सर्विलांस कैमरे, ये सब अब रूटीन में इस्तेमाल होने वाले उपकरण हैं।
1: मतलब वो दूर छुपकर बैठे दुश्मन को भी आसानी से देख सकते हैं।
0: हाँ बिटिया, रडार और ड्रोन की मदद से दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। सबसे जरूरी, हर संदेश कोड भाषा में भेजा जाता है बेटा, ताकि दुश्मन उसे समझ ना सके।
1: वाह, मतलब सेना बहुत स्मार्ट भी होती है दादाजी।
0: तो यही टेक्नोलॉजी सेना को और भी ताकतवर बनाती है बेटा।
1: दादू, युद्ध में ऑपरेशन के दौरान कैसा मंजर होता होगा ना? मैं तो ये सोचकर भी कांप रही हूँ। जब सच में युद्ध होता होगा तो सेना कैसे काम करती है दादाजी?
0: युद्ध में हर कदम योजना के अनुसार होता है बिटिया। सबसे पहले दुश्मन की जानकारी जुटाई जाती है, फिर रणनीति बनाई जाती है और उसके बाद सैनिक अलग अलग टीम में अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। इन्फेंट्री आगे बढ़ती है, टैंक सपोर्ट देते हैं, तोपखाना दूर से हमला करता है और कमांडर पूरे ऑपरेशन को नियंत्रित करता है।
1: सुनकर ही कितना रोमांचक लग रहा है दादाजी। इसका मतलब सब एक साथ मिलकर काम करते हैं।
0: हाँ बिटिया, युद्ध में जीत एकता, अनुशासन और रणनीति से मिलती है।
1: सैनिक रैंक का क्या काम होता है दादाजी?
0: देखो बेटा, सिपाही सेना का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो जमीन पर लड़ने का काम करता है।
1: अच्छा।
0: उसके बाद हवलदार अपनी टीम को दिशा देने का काम करता है। सूबेदार अनुभवी होता है, वो नेतृत्व का काम संभालता है।
1: मतलब हर किसी की अपनी अहम भूमिका होती है।
0: हाँ बिटिया, यहाँ भले ही सबकी रैंक अलग हो पर यहाँ कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। हर सैनिक देश की रक्षा में बराबर का भागीदार होता है। हर रैंक के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है और देश के प्रति कर्तव्य भी।
1: दादू, मतलब ये सिर्फ पद नहीं बल्कि भरोसा है।
0: बिल्कुल बिटिया।
1: दादाजी, सैनिकों को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है?
0: बहुत कठिन और बहुत अनुशासित ट्रेनिंग होती है बेटा, और इसके कई चरण होते हैं।
1: कैसे?
0: सबसे पहले आता है शारीरिक प्रशिक्षण, जिसमें लंबी दौड़ 5 से 10 किलोमीटर करीब, बाधा दौड़, रस्सी चढ़ाई, दीवार पार करना, सहन शक्ति और स्टेमिना बढ़ाने का अभ्यास कराया जाता है।
1: अच्छा।
0: फिर आता है बेटा हथियार प्रशिक्षण, जिसमें राइफल, मशीन गन, पिस्तौल, ग्रेनेड फेंकना, लक्ष्य भेदन, फायर कंट्रोल और सुरक्षा नियम सिखाए जाते हैं। उसके बाद युद्ध कौशल या युद्ध रणनीति, जिसमें टीम मूवमेंट, नक्शा और कंपास या दिशा सूचक पढ़ना, रात में ऑपरेशन का अभ्यास कराया जाता है।
1: अच्छा दादाजी, मैंने सुना था कि इन जवानों को सर्वाइवल ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, वो भला किस तरह का अभ्यास होता है?
0: हाँ बेटा, सर्वाइवल ट्रेनिंग में जंगल में जीवित रहना सिखाया जाता है। वहाँ कम संसाधनों में कैसे काम करेंगे, ठंड, गर्मी, बारिश, हर मौसम में टिके रहने की परीक्षा होती है बेटा। फिर आता है मानसिक प्रशिक्षण, ये सबसे कठिन अभ्यास है। इसमें तनाव में निर्णय लेना, डर पर नियंत्रण, अनुशासन और नेतृत्व करना सिखाया जाता है।
1: इतना कठिन अभ्यास? अच्छा दादू, क्या उन्हें आधुनिक तकनीकें भी सिखाई जाती हैं?
0: बिल्कुल बेटा, उन्हें ड्रोन संचालन, कम्युनिकेशन सिस्टम, नाइट विजन उपकरण आदि तकनीकों का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है।
1: दादू, ये तो बहुत ही मुश्किल होता होगा ना? इतनी ताकत पाने के लिए ट्रेनिंग भी कितनी जी जान लगा कर करनी होती होगी ना?
0: हाँ बेटा, बहुत कठिन। सुबह से लेकर रात तक दौड़, पहाड़ चढ़ना, बाधाएं पार करना, हथियार चलाना और कठिन हालात में जीना, इन सबको गर्म लोहे सा तपाकर सब कुछ सिखाया जाता है बेटा।
1: सेना में आगे कैसे बढ़ते हैं दादाजी?
0: सेना में पद धीरे धीरे बढ़ते हैं बेटा। जैसे सबसे पहले लेफ्टिनेंट के पद से शुरू होकर कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर और फिर जनरल तक पहुंचा जाता है।
1: मतलब हर कदम पर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, सही कहा ना मैंने दादू?
0: हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा। लेकिन इसके अलावा उन्हें अपने देशवासियों से सम्मान भी तो मिलता है।
1: दादू, क्या हमारे सैनिक देश के बाहर जाकर भी देश का गौरव बढ़ाते हैं?
0: बिल्कुल बिटिया, संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में भारतीय सेना दुनिया में शांति स्थापित करने का काम करती है।
1: तो सेना का असली काम क्या होता है?
0: तीन बड़े काम होते हैं, देश की सीमा की रक्षा करना, युद्ध में दुश्मन से लड़ना, देश के अंदर संकट में मदद करना, यही सेना का असली काम है।
1: और अगर कोई प्राकृतिक आपदा आए, जैसे बाढ़, भूकंप, तब भी सेना आती है?
0: हाँ बिटिया, जब कोई मुसीबत आती है तो सेना ही सबसे पहले मदद के लिए खड़ी होती है बेटा।
1: और मैं सेना में जाना चाहूँ तो?
0: हाँ बेटा बिल्कुल, 12वीं के बाद NDA और ग्रेजुएशन के बाद CDS। बाकी की तैयारी के लिए पढ़ाई, जिसमें मैथ्स, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी का अभ्यास और रोज व्यायाम, अनुशासन, आत्मविश्वास, ये ही चाहिए बस। बाकी सेना सिर्फ नौकरी नहीं है बेटा, ये एक अनुशासन से भरा हुआ जीवन है।
1: अच्छा दादाजी, सियाचिन के बारे में बताइए ना।
0: सियाचिन जहाँ तापमान 50 तक जाता है बेटा,
1: वहाँ कोई भी रह सकता है क्या?
0: सिर्फ हमारे शेर दिल सैनिक, इसीलिए उन्हें हिमवीर कहते हैं बेटा।
1: दादू।
0: हाँ बेटा।
1: अब समझ में आया कि हमारी सेना क्या है।
0: भारतीय थल सेना सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं करती, ये देश की आत्मा की रक्षा करती है बेटा।
1: समझ गई दादाजी, आज आपने थल सेना के बारे में जो भी बताया, मैं उसे हमेशा याद रखूंगी और मेरे देश के हर जांबाज का मैं हमेशा सम्मान करूंगी। जय हिंद दादाजी।
0: जय हिंद बेटा, जय हिंद। अच्छा चलो, अब मैं आराम करूंगा बेटा।
2: अभी आप सुन रहे थे रेडियो नाटक देश के संस्थान, सरहदों की अटूट ढाल, भारतीय थल सेना। श्रोताओं, आपके साथ मैं भगवती सक्सेना,
0: मैं दीपक नेमा।
2: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन किया अमित गुंदानी ने, समन्वय सहयोग था सतीश बाथम का, लेखन किया स्वाति गिरी ने, प्रस्तुति थी रेडियो आजाद हिंद की। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश के संस्थान। इसके अंतर्गत आपने सुना सरहदों की अटूट ढाल थल सेना के बारे में। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आजाद हिंद। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अल्लूरी सीताराम राजू की जयंती पर।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: नमस्कार श्रोताओं, हम हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम आजाद हिंद की एक और कड़ी, जिसमें हम बात करेंगे।
2: श्रोताओं, मेरा भी नमस्कार स्वीकार कीजिए। क्या बात है तारीख, आज कुछ जल्दी में लग रही हो।
1: अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल आज आजाद हिंद में हम जिन महान देशभक्तों की बात करेंगे ना, उनके कार्य ही ऐसे हैं कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही।
2: अच्छा, ऐसा है क्या? तो जल्दी से बताना शुरू करो, हमारे श्रोतागण और मैं सब लोग बहुत उत्सुक हैं सुनने के लिए।
1: तो श्रोताओं आइए, आज इस कड़ी में हम बात करते हैं अल्लूरी सीताराम राजू की।

0: इनका जन्म विशाखापट्टनम के एक गांव में 4 जुलाई 1897 को हुआ था और लालन पालन एक कलेक्टर के घर में।
1: बचपन से ही राजू पढ़ाई लिखाई में बहुत कुशाग्र थे और उन्होंने स्वयं के प्रयासों से संस्कृत और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया और यहीं से इनके मन में क्रांति के बीज अंकुरित हुए।
0: वैसे तो राजू गांधी जी के सिद्धांतों के हिमायती थे और मंदिरों में धार्मिक उपदेश और भजन कीर्तन किया करते थे, मगर जब उन्हें लगा कि अहिंसक आंदोलन इतना प्रभावी सिद्ध नहीं हो पा रहा तो उन्होंने अपना बैरागी बाना छोड़ दिया और आदिवासी जनता को इकट्ठा करके सेना के रूप में ढालना शुरू किया
1: और इस तरह आरंभ हुआ एक नया क्रांति युग।

0: लोग राजू की सेना में भर्ती होने लगे और उनकी सेना का आकार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। लोगों को राजू पे बहुत विश्वास था। वो उसे देवता की तरह पूजते थे।
1: अब राजू के लिए सबसे बड़ी समस्या थी हथियार। उनके पास तीर कमान तो थे मगर बंदूकें और आग्नेय हथियार नहीं थे और उसका हल ये निकाला गया कि पुलिस के हथियारों को लूटा जाए और डकैती डाली जाए। बस राजू और उसके साथी जान हथेली पे लेके अपनी मंजिल की ओर चल पड़े।
0: और श्रोताओं, राजू ने एक के बाद एक थानों को लूटना शुरू कर दिया। वे लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि राजू के नाम से पुलिस वाले थाने छोड़ छोड़ कर भाग जाते थे।
1: इसी क्रम में राजू ने रंपा क्षेत्र के चिंतापल्ली और क्रभड़ा देवी पैठ में लूटपाट के द्वारा बहुत से हथियार जमा किए। इधर अंग्रेजों को भी अब लगने लगा था कि यदि राजू को रोका नहीं गया तो ये अंग्रेजी राज्य के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकता है।
0: बस फिर क्या था, तुरंत दो अंग्रेज अफसरों स्कॉट और आयर की नियुक्ति कर दी गई और उन्होंने 24 सितंबर 1922 को राजू पर हमला कर दिया। मगर वे राजू की सेना के आगे टिक नहीं पाए और दोनों अफसरों की मौत हो गई।
1: इसके बाद राजू का नाम अंग्रेजों के लिए आतंक का पर्याय बन गया। दरअसल राजू सारी योजनाएं इतनी चतुराई से बनाते थे कि अंग्रेज उसका छोर भी नहीं पा पाते थे और राजू काम करके निकल जाते थे।
0: एक बार की बात है, उन दिनों के एक बहुत प्रसिद्ध क्रांतिकारी बाबा पृथ्वी सिंह को अंडमान जेल से आंध्र प्रदेश की जेल में ले जाया जा रहा था और बाबा चलती ट्रेन से कूद कर भाग निकले, मगर पकड़ लिए गए और फिर से जेल में डाल दिए गए। तभी राजू ने ऐलान कर दिया कि फला तारीख को इतने बजे मैं बाबा पृथ्वी सिंह जी को जेल से आजाद करवाऊंगा।
1: अंग्रेजों को पता था कि राजू जो कहता है वो करता भी है। बस फिर क्या था, आसपास के सारे थानों से पुलिस बुलाकर जेल को छावनी बना दिया गया और इधर राजू ने अपनी सेना को छोटे छोटे बहुत से दलों में बांटकर उन थानों को लूटने भेज दिया जिनका पुलिस बल जेल की सुरक्षा में लगाया गया था।
0: इस तरह अपनी सूझबूझ से राजू ने एक ही प्रयास में हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा प्राप्त कर लिया और अब राजू और उसके सैनिक हथियारों से लैस होकर जोश से भरकर चल पड़े अपनी धरती की गुलामी मिटाने के लिए।

0: अंग्रेजों ने असम राइफल्स नाम की एक पूरी सेना राजू के पीछे लगा दी। 6 मई 1924 को दोनों सेनाओं का मुकाबला हुआ। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध हुआ। बहुत से सैनिक मारे गए, मगर राजू की सेना का नुकसान कुछ ज्यादा हुआ। उसके बहुत खास 12 सैनिक मारे गए और बहुत से घायल हो गए। राजू भी बुरी तरह जख्मी हुआ,
1: मगर उसके साथ ही उसको बचा कर वहां से ले गए। उनकी योजना थी कि फिर से सैनिकों को इकट्ठा कर अंग्रेजों को इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। अगले दिन 7 मई को जब घायल राजू गोदावरी नदी में स्नान कर रहा था, तभी किसी मुखबिर की सूचना पे अंग्रेज सेना वहां आ धमकी।
0: वहां राजू और उसके साथियों ने उनका मुकाबला किया, मगर अंग्रेजों की विशाल सेना के आगे भला मुट्ठी भर लोग कहां टिकते। राजू को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर अंग्रेजों को लगा कि यदि राजू को लेकर कोतवाली गए या जेल में राजू को रखा तो इसके साथी जो कि जेलों पे हमले करने के आदि हैं, इसको जरूर छुड़ा के ले जाएंगे।
1: बस इसी डर से उन्होंने राजू को एक पेड़ से बांधा और गोलियों से छलनी कर दिया और एक और महान देशभक्त शहीदों की फहरिस्त में शामिल हो गया और हमेशा हमेशा के लिए भारतवासियों के दिल में अमिट छाप छोड़ गया।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूँ कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल।

0: देशभक्ति को समर्पित पहला रेडियो स्टेशन।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आइए अब सुनते हैं नृत्य उत्सव पर रेडियो रिपोर्ट।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं रविंद्र भवन में, जहां सोमवार को कला की अनंत यात्रा नृत्य उत्सव के तहत कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी।

0: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए रविंद्र भवन सभागार में।
1: Yeah.

Tak dengar dong.

தத்தம் தரிகிடுச்சம்

बेशकीमती संपदा की प्राप्ति है, लेकिन उनका वियोग जैसे तपती धरती पर छांव को ढूंढना है। कृष्ण को पाने की यह भटकन बेचैनी कसरत और व्यथा ही इस प्रस्तुति का मूल है। रचना राग कन्नड़ा अभिताल निबद्ध है और इसे प्रस्तुत करने जा रही है वृंदा जोशी, मोक्ष कटुकोज्वाला, हर्षिता नायर, आराध्या साहू, स्वाति पिल्लई, अश्वती पिल्लई, परल वाले चरण, दीक्षा द्वेदी और याशिका लक्ष्मणी। प्रस्तुत है अलय पाइंथे कन्ना।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: धर्म महासभा के पश्चात उनका अमेरिका के विभिन्न स्थानों पर जाकर के व्याख्यान देने का दौर शुरू हुआ। एक कंपनी के साथ उनका 3 महीने का अनुबंध भी हुआ। वे व्याख्यान के बदले प्राप्त सम्मान राशि जमा करके भारत में आकर के विकास मूलक कार्य करना चाहते थे।
1: उन दिनों अमेरिकन समाज 2 भागों में बटा हुआ था। विज्ञान की प्रगति के साथ नवीन विचारधाराओं का जन्म हुआ जो उदारपंथी था, और उग्रपंथी प्राचीन लोग बाइबल को सीने से चिपकाए हुए उसमें कही गई सारी बातों का पालन करने को ही धर्म मानते थे। उन दिनों आध्यात्मिक उन्नति को वास्तविक सामाजिक उन्नति का आधार ना मानकर बल्कि सामाजिक और आर्थिक समृद्धि को ही आध्यात्मिक उन्नति का कारण या लक्षण कहा जाता था। अटलांटिक महासागर के तटीय भाग या पूर्वांचल में उदार पंथियों का प्रभाव अधिक था और मध्य पश्चिम तथा दक्षिण में प्राचीन पंथी प्रबल थे। पूर्वांचल में उदार पंथियों का जोर था। सामाजिक तथा आर्थिक सुधार पर और दूसरे अंचल के निवासी पाप एवं मादकता निवारण पर बल देते थे।
0: मध्य पश्चिम तथा दक्षिण में चर्च तथा समाज में स्त्रियों का अधिपत्य था, जो तर्क के स्थान पर भावुकता को अधिक महत्व देती थी और समाज को पाप मुक्त करने में ही जुटी रहती थी। समाज इनसे त्रस्त था। ये स्त्रियां प्रगतिशील स्त्रियों को बुरी नजर से देख करके अवज्ञा करती थीं। सभी सामाजिक कार्यों में इनका ही वर्चस्व था और पुरुष चुपचाप इनका नेतृत्व स्वीकार कर लेते थे।
1: ऐसे माहौल में स्वामी जी व्याख्यान देने पहुंचे। वहाँ का समाज उन्हें बड़ा ही अजीब लगा। वहाँ के धर्माचार्य, जिन्हें भारत के बारे में कोई भी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं था, भारतीय धर्म और समाज को हीन बताने पर तुले थे। वहाँ चित्र बनाकर कविता के माध्यम से भारतीय समाज की निंदा की जाती थी। वे कहते थे,
2: पवित्र गंगा की धारा जहाँ प्रवाहित हो रही है, देखो वो अधार्मिक हिंदू नारी किस प्रकार अपने हाथों से अपने बच्चे को जल में विसर्जित कर रही है, और उस शिशु को जब घड़ियाल आदि हिंसक जंतु ले जाते हैं, तब बच्चे की मर्मांतक रुदन की ध्वनि उठती है। वो क्रंदन की आवाज क्रमशः दूर दूरांतर में विलीन हो जाती है, पर उसकी माता बिना विचलित हुए अपने वज्र कठोर हृदय के साथ उसे सुनती है। उस देश में बाइबल भेजो, शीघ्र भेजो, ईसा का संदेश इन माताओं के अंतर में प्रविष्ट होगा तो उनका चित्त माँ के समान कोमल होगा और वो राक्षसी के समान संतान का जीवन नाश नहीं करेंगी।
0: इन प्रचारकों के मतानुसार भारतीय पति अपने हाथ से चिताग्नि जला करके उसमें अपनी पत्नियों को जला देते हैं। माताएं नवजात शिशुओं को मांसाहारी पक्षियों के भक्षणार्थ वृक्ष की शाखाओं से लटका देती हैं। लोग स्वेच्छा से जगन्नाथ के रथ के नीचे कूद करके आत्महत्या कर लेते हैं। इस तरह के और भी न जाने कितने ख्याली पुलाव पकाए जाते थे। इसी प्रकार के मिथ्या आरोप से दुखी होकर के जब स्वामी जी ने कहा था कि पाश्चात्य देश भारत के विरुद्ध जिस प्रकार के मिथ्या प्रचार तथा निंदावाद में लगे हुए हैं, उसके प्रतिकार के रूप में यदि भारत हिंद महासागर के तल का सारा कीचड़ पाश्चात्य देशों पर फेंके तो भी वह पूरा नहीं होगा, ये कहने में उन्होंने थोड़ी भी अतिशोक्ति नहीं की थी।
1: ऐसे माहौल से यानी कि मध्य पश्चिम से स्वामी जी अपेक्षाकृत नवालोक से आलोकित मेम्फिस नगर में पहुंचे। वहां वे 19th सेंचुरी क्लब के आमंत्रण पर आए थे। उन दिनों व्याख्यान कंपनी से अनुबंधित होने के कारण स्वामी जी के व्याख्यानों से होने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा कंपनी हजम कर जाती थी। मेम्फिस में 13 जनवरी से 21 जनवरी तक विभिन्न प्रतिष्ठानों में उनके व्याख्यान हुए। व्याख्यानों की रिपोर्ट अखबारों में रोज छपती और कानंद स्वामी यानी विवेकानंद की ख्याति चारों ओर फैलती गई। मेम्फिस कमर्शियल अखबार में विस्तृत रिपोर्ट छपी थी।
3: उनका व्यक्तित्व था परमत सहिष्णुता, जिस पर वह सार्वभौमिक दृष्टिकोण से ही बोले और दुष्टांत के रूप में उन्होंने हिंदू धर्म का उल्लेख किया। अन्य मठों के प्रति प्रेम और सहानुभूति की सभी धर्मों का सार होना चाहिए। हिंदू धर्म के आचारों, अनुष्ठानों आदि को छोड़कर उन्होंने अपने मौलिक तत्वों का ही विशाल विवेचन किया। जिन कुछ अनुष्ठानों की बात उन्होंने उठाई उसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या भी की। हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वासी है और बाइबिल के उस पापवाद को नहीं मानता जिसके अनुसार मानव जीवन के साथ मूलभूत पाप मिश्रित है। मनुष्य पवित्र था और पवित्रता में लोट जाता है। इतिहास से उदाहरण देकर उन्होंने दिखा दिया कि हिंदू केवल बातों में ही नहीं अपितु व्यवहारिक जीवन में भी परधर्म सहिष्णु है। किंतु लोगों की उद्धारता का प्रमाण देते हुए उन्होंने बताया कि एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों में इष्ट अलग अलग हो सकते हैं, परंतु सभी भगवान के मूल गुण हैं। प्रेम के उपासक होने के कारण वस्तुतः एक ही भगवान के भक्त हैं। हिंदुओं की मूर्तियां भगवान के दिव्य गुणों के प्रतीक हैं और ध्यान में सहायता के लिए हैं।
4: उनके समूचे भाषण को प्रस्तुत करना कठिन है, परंतु यह विश्व बंधुत्व की स्थापना के लिए एक उत्कृष्ट आवेदन था और एक मनोरम धर्म मत का एक सुयोग्य समर्थन था। इसका उपसंहार भी विशेष सुंदर बन पड़ा था, जबकि उन्होंने घोषणा की कि वे ईसा को स्वीकार करने को तैयार होकर भी कृष्ण और बुद्ध के समक्ष सिर अवश्य झुकाएंगे। तदुपरांत उन्होंने सभ्यता की निष्ठुरता का एक चित्र खींचते हुए कहा कि प्रगति के नाम पर होने वाले इन अपराधों के लिए वे ईसा मसीह को उत्तरदायी नहीं मानते।
0: मेम्फिस में स्वामी जी के अनुरागियों की संख्या बढ़ती गई और लोगों के अनुरोध पर उन्हें कुछ और अतिरिक्त व्याख्यान देने पड़े। उनका एक व्याख्यान था पुनर्जन्म पर। उसमें स्वामी जी बोले,
5: सभी प्राचीन धर्मों में पुनर्जन्म का सिद्धांत स्वीकृत था, पर अब हिंदू और बौद्ध ही इसे मानते हैं। पाश्चात्य लोग सोचते हैं कि पुनर्जन्म मानने से अनैतिकता को प्रश्रय मिलेगा, न्याय होने से अन्याय भी रहेगा। जगत में व्याप्त अन्याय के लिए यदि ईश्वर उत्तरदायी न हो तो कौन होगा? पुनर्जन्म के सिद्धांत से इसकी मीमांसा हो जाती है। कारण के बिना कार्य नहीं होता। शून्य से जगत की सृष्टि नहीं हुई। कारण परंपरा ही कार्य परंपरा को जन्म देती है। अतः मनुष्य का वर्तमान जन्म उसके पूर्व जन्म के कर्मों के फल से बना है।
0: उन्होंने एक घटना का जिक्र और किया और कहा,
5: मैं जब मिनियापोलिस से ट्रेन में आ रहा था तो उसी में एक गोपालक मिला जो जड्ड स्वभाव का और शुद्ध आचारवादी था। उसने पूछा कि मैं कहां से आया हूं। मैंने कहा, भारत से। उसने पूछा, आपका धर्म क्या है? मैंने कहा, हिंदू। उसने कहा, तब तो आपको नरक में जाना होगा। तब मैंने उसे पुनर्जन्म का सिद्धांत बताया। उसने कहा कि वो सदा से ही इस सिद्धांत में विश्वास करता आया है, क्योंकि एक दिन जब वो लकड़ी चीर रहा था तो उसकी छोटी बहन उसके कपड़े पहनकर आकर बोली कि वो पहले पुरुष थी। पुनर्जन्मवाद की एक और अच्छी बात यह है कि जो कुछ हो गया है उसके लिए पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं, बल्कि प्रति क्षण पुनः भले कर्म करने के जो नए नए अवसर आ रहे हैं उनका लाभ उठाना चाहिए।
1: भाषण के बाद ज्यादातर महिलाएं उनसे प्रश्न पूछती और स्वामी जी हंसते हुए उन सब को उत्तर देते, परंतु ये भी सच है कि सभी ने उनको प्रेम पूर्वक ग्रहण नहीं किया। विशेषकर कुछ पादरी उनका विरोध करते रहे। व्याख्यान के बाद वे भी कटाक्ष पूर्ण प्रश्न पूछते थे,
6: हिंदू लोग अगर इतने ही धार्मिक और नीति परायण है तो वो दूसरे राष्ट्रों की तुलना में इतने पिछड़े क्यों हैं?
5: इसलिए कि सांसारिक उन्नति धर्म का कार्य क्षेत्र नहीं है, और धर्म ने तो ईसाई जगत की उन्नति नहीं की, बल्कि ईसाई धर्म ने तो पश्चिमी जगत में विज्ञान के नवालोक के पथ में पग पग पर बाधा खड़ी की है। पाश्चात्य चिंतन एवं कार्य प्रणाली के साथ भारतीय चिंतन एवं कार्य प्रणाली का मिलन ही दोनों अंचलों के लिए हितकर एक नवीन पथ का निर्माण कर सकेगा।
0: पादरी महाशय निरुत्तर हो गए। तब स्वामी जी ने समझा करके कहा,
5: किसी न किसी रूप में धर्म सर्वत्र, यहां तक कि असभ्य लोगों में भी विद्यमान है। मानव आत्मा मानो हवा के बुलबुले के समान पृथ्वी के तल में जाकर स्वभाव से ही सर्वदा ऊपर उठने का प्रयास कर रही है, और यही प्रयास धर्म का रूप धारण कर लेता है।
1: 22 जनवरी को स्वामी जी मेम्फिस छोड़कर वापस शिकागो आ गए। इन 6 सप्ताहों के दौरान उन्होंने 12 नगरों में व्याख्यान दिए। श्रोतागण हमेशा एक जैसे नहीं होते, श्रोताओं के अनुसार ही स्वामी जी अपना विषय चुनते। जैसे अगर किसी खदान नगर में बोलते तो किसी बौद्धिक विषय के बदले सामाजिक विषय चुनते।
0: व्याख्यान कंपनी के साथ स्वामी जी भी लगातार घूमते रहे। श्रीमती बर्क ने भी लिखा है,
7: उनका एक चित्र मानस पलट पर उभरता है जिसमें वे सप्ताह पर सप्ताह भीषण ठंड के दिनों में रेल यात्रा करते, अपना सामान संभालते, श्रोताओं के सम्मुख व्याख्यान देते, पैसों का हिसाब करते, परिश्रम साध्य दीर्घ भाषण देने के पश्चात उलझुल प्रश्नों के उत्तर देते। सच कहें तो उनके शक्ति सामर्थ्य को निर्ममता पूर्वक अपने सामर्थ्य साधन में उपयोग करने के लिए मानो तो उस कंपनी ने कमर कस ली थी। स्वामी जी भी कार्य के उत्साह तथा धर्म एवं भारत की बातें सुनाने की उत्सुकता में अपनी सुख सुविधा तथा स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल ही भूल गए थे।
0: मेम्फिस से वापस शिकागो आने के बाद स्वामी जी हेल परिवार के साथ ही ठहरे। शिकागो में वही उनका स्थायी ठिकाना हो गया। हेल दंपति उन्हें पुत्र की तरह स्नेह करते थे और उनकी 2 बेटियां और भांजियां स्वामी जी की दुलारी बहनें थी। विशेषकर मैरी हेल और इशाबेल मैकिडनी के साथ उनका संबंध बड़ा ही आंतरिक था। उन लोगों के बीच कई पत्राचार हुए जिसमें स्वाभाविक विचार विनिमय, व्यंग विनोद, रोना गाना और सहानुभूति आदि दिख पड़ती थी।
1: हेल परिवार का परिचय देते हुए उन्होंने 25 सितंबर 1894 में स्वामी रामकृष्णानंद को लिखा था,
5: हेल और उनकी पत्नी दोनों ही वृद्ध हैं, साथ में 2 पुत्रियां, 2 भांजियां तथा एक लड़का है जो रोजगार के लिए दूसरी जगह रहता है। लड़कियां घर पर रहती हैं। इस देश में लड़की का रिश्ता ही सही रिश्ता है। चारों कन्या युवती और अविवाहित हैं। दोनों पुत्रियों के बाल सुनहरे हैं और भांजियों के काले। ये जूते की सिलाई से पूजा पाठ तक हर काम में माहिर हैं। भांजियों के पास उतना धन नहीं है, वे किंडरगार्टन स्कूल चलाती हैं, लेकिन पुत्रियां कुछ नहीं कमाती। लड़कियां मुझे भैया कहती हैं, मैं उनकी माँ को माँ कहता हूं। मेरा सामान सब उन्हीं के घर में है। मैं कहीं भी जाऊं वे उसकी देखभाल करती हैं। यहां निर्धनों के लिए किंडरगार्टन स्कूल अपरिचित नहीं है, पर धनिकों की संतानों के लिए ऐसे किंडरगार्टन अति विरल हैं। अतः संभ्रांत वंश की मैकिंडली बहनों द्वारा स्थापित विद्यालय में कुछ नयापन और वैशिष्ट्य है जिसके लिए समाज में उन्हें विशेष प्रशंसा भी मिली है। एक समाचार पत्र में इसाबेल के बारे में लिखा गया है कि मिस मैकिंडली की अपने कार्य पर अच्छी पकड़ है और बच्चों के साथ उनका संबंध स्नेह तथा विवेकवान है। वे मन की बड़ी अच्छी हैं और वार्तालाप के समय उनकी प्रतिभा देखते ही बनती है।
1: हेल परिवार के साथ स्वामी जी की ये आत्मीयता आजीवन बनी रही। लंदन से भारत लौटने के पूर्व हेल बहनों से विदा लेते हुए 28 नवंबर 1896 को लिखे उनके एक पत्र में है,
5: मुझे लगता है इस पृथ्वी पर मैं तुम चारों से ही सर्वाधिक स्नेह करता हूँ और मेरा विश्वास है कि तुम लोग भी मेरे प्रति वैसा ही स्नेह भाव रखती हो। तुम लोग और तुम्हारा सारा परिवार मेरे प्रति इतना प्रेम रखता है कि जिसे हम भारतीय कहते हैं, लगता है मैं पिछले जन्म में तुम्हारे ही परिवार का रहा होऊंगा।
0: स्वामी जी के व्याख्यानों की जो भी रिपोर्ट अमेरिकी अखबारों में छपती थी वे बंबई, कलकत्ता और मद्रास के भारतीय अखबारों में पुनर्मुद्रित होती थी, जिससे उनके भक्तों को और देशवासियों को पता चलता था कि अमेरिका में स्वामी जी कितने जनप्रिय हो गए हैं। उनकी विजय वार्ता पाकर समग्र भारतीय समाज उल्लासित हो उठा था। इंडियन मिरर, अमृत बाजार आदि अखबारों ने अमेरिकी अखबारों के लेखों को इस प्रकार प्रकाशित किया।
3: प्रतीक्षा गृह में सबसे आकर्षक व्यक्ति सन्यासी स्वामी विवेकानंद से सबकी भेंट होती है। वे सुगठित शरीर के हैं और हिंदुस्तानियों का उन्नत व्यवहार उनमें है। दाढ़ी मूछ विहीन चेहरा, समुचित ढला हुआ सामान्य आकार, सफेद दंत पंथियां और सुगठित होठ, जो वार्तालाप के समय प्रायः मुदु मुस्कान के रूप में खुले रहते हैं। उनके संतुलित आकार के सिर पर नारंगी अथवा लाल रंग की पगड़ी शोभायान रहती है और उनका चोगा कमरबंद से बंधा घुटनों के नीचे तक लटकता रहता है। वो कभी चमकीले नारंगी रंग का और कभी गहरे लाल रंग का होता है। वे उत्तम अंग्रेजी बोलते हैं और गंभीरता पूर्वक पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर देने को सर्वदा प्रस्तुत रहते हैं।
8: महासभा में वो अपने भावों तथा आकृति की भव्यता के कारण बड़े लोकप्रिय हैं। मंच पर उनके आने मात्र से ही हर्ष ध्वनि होने लगती है और हजारों व्यक्तियों द्वारा यह विशेष सम्मान वे विनय पूर्वक और बाल सुलभ संतोष के साथ स्वीकार करते हैं। निर्धनता तथा आत्म संयम के जीवन से सहसा इस वैभव और उत्कर्ष में आ पड़ना अवश्य ही इस विनम्र सन्यासी के लिए अपूर्व अनुभव होगा।
1: अक्सर इसी तरह स्वामी जी की विजय वार्ता प्रकाशित होते रहने से ब्राह्म समाज तथा अनेक ईसाई मिशनरी उनके प्रति विद्वेष से भर उठे। विशेषकर प्रताप चंद्र मजूमदार की व्यवस्था में चलने वाली यूनिटी एंड द मिनिस्टर पत्रिका में लिखा गया,
9: नव हिंदू बाबू नरेंद्रनाथ दत्त उर्फ विवेकानंद की प्रशंसा में इंडियन मिरर में अनेक लंबे संपादकीय लेख निकल चुके हैं। इस सन्यासी के विषय में ऐसी प्रशंसावली के प्रकाशन में हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब वे नव वृंदावन थिएटर में अभिनय करने हेतु हमारे पास आए थे अथवा जब वे इस महानगरी के किसी ब्रह्म समाज में भजन गाते थे, तभी से हम उन्हें इतनी भली भांति जानते हैं कि उनके बारे में आज के समाचार पत्रों में चाहे जितना भी कुछ लिखा जाए, इससे उनके चरित्र के बारे में हमारी धारणा पर कोई प्रकाश नहीं पड़ने वाला है। हमारे इन पुराने मित्र ने संप्रति अपने आख्यानों के द्वारा अमेरिका में जो भाव तरंग उठाया है, उससे हम आनंदित हैं। परंतु हम ये भी जानते हैं कि हमारे मित्र जिस नवीन हिंदू मत का प्रचार कर रहे हैं, वो सनातन हिंदू धर्म नहीं है। उन्होंने जो पूर्ण रूप से अनुचित किया है वो है समुद्र पार जाना, मलिच्छों का अनुग्रहण करना, लगातार सिगरेट पीना अथवा इसी प्रकार का और कुछ करना। शुद्ध सनातनी हिंदू जितने हमारी श्रद्धा के पात्र हो सकते हैं, आधुनिक हिंदू मत के अनुयायी वैसी श्रद्धा पाने का दावा नहीं करते, परंतु विवेकानंद की प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए हमारे सहयोगी पत्रकारों के यथासाध्य प्रयास करने के बावजूद जब वे बिल्कुल बेकार की बातें बकते हैं तो हमारा धैर्य छूट जाता है।
1: इसके बाद भी अमेरिका के संवाद पत्रों में जो सुंदर संवाद प्रकाशित होते थे, उन्हें टिप्पणी के साथ इंडियन मिरर, पायनियर आदि संवाद पत्रों में प्रकाशित किया जाता था। ये बात और है कि कुछ व्यक्तियों की तरह कुछ संवाद पत्र भी इन खबरों को प्रेम पूर्वक ग्रहण नहीं करते थे, तथापि भारतवासी जान गए थे कि स्वामी जी का विजय गौरव सचमुच ही आश्चर्यजनक है।
0: इसी बीच श्री बैरोज द्वारा प्रकाशित ग्रंथ द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस में स्वामी जी को अति उच्च स्थान मिला और उस ग्रंथ की एक अच्छी समीक्षा अमेरिका के रिव्यू ऑफ रिव्यूज में जनवरी अंक में छपने के बाद 21 फरवरी 1894 के इंडियन मिरर के संपादकीय लेख द्वारा उस ग्रंथ का विस्तृत रूप से प्रचार हुआ। तब भारतवासियों को समझने में देर न लगी कि स्वामी जी का विजय संवाद प्रमाणिक है और उन्होंने सनातन धर्म को समुचित ढंग से पाश्चात्य जगत के सामने प्रस्तुत किया है और ये भी समझ गए कि उनके विरुद्ध जो बातें भारत में प्रचारित की जा रही हैं, वे सब झूठ हैं, ईर्ष्या जनित हैं। वस्तुतः सबने यह स्वीकार कर लिया कि स्वामी विवेकानंद का उदय एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है।
1: धर्म महासभा की विज्ञान शाखा के अध्यक्ष श्रीयुत मार्विन मैरी स्नेल ने 30 जनवरी 1894 को पायोनियर पत्र के संपादक को विस्तार पूर्वक पत्र में लिखा था। उसमें भी बैरोज के मत ही दृढ़ता पूर्वक लोगों के हृदय में अंकित हो गए। स्वामी जी ने महासभा में 19 सितंबर 1893 को हिंदू धर्म विषय के जिस निबंध का पाठ किया था, वे मद्रास तथा कलकत्ता के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ और दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण की जन्म तिथि के उत्सव में 11 मार्च 1894 को पुस्तिका के रूप में वितरित हुआ। इससे स्वामी जी के वक्तव्य का एक प्रामाणिक विवरण मिला। 21 मार्च के इंडियन मिरर में इसकी खूब प्रशंसा की गई।
0: स्वामी जी की विजय वार्ता सिर्फ साधारण जनता तक ही सीमित नहीं रही। यह संवाद उनके गुणमुग्ध राजा और महाराजाओं तक भी पहुंची। रामनद के राजा भास्कर वर्मा सेतुपति तथा खेतड़ी के राजा अजय सिंह बहादुर, इन दोनों स्वामी जी के शिष्यों ने आम दरबार में ठाट बाट के साथ अपनी प्रजा को बुला करके भारत के मुख उज्जवल करने वाले स्वामी जी के कार्यों की प्रशंसा की और महासभा में वे जो सनातन धर्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादन करने में समर्थ हुए हैं, इसलिए उन्हें धन्यवाद देकर के पत्र भी लिखा गया।
1: मद्रास में राजा रामास्वामी मुदलियार तथा दीवान बहादुर सुब्रमण्यम अय्यर महोदय के नेतृत्व में एक विराट सभा बुलाई गई। वहां उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने स्वामी जी के प्रचार कार्य का समर्थन किया और सभा की रिपोर्ट के साथ उन्हें उत्साहवर्धक पत्र भी लिखा। उधर स्वामी जी की जन्म नगरी कलकत्ता भी उत्साह और आनंद से भर उठी। वहां राजा प्यारे मोहन मुखर्जी के सभापतित्व में कलकत्ता टाउन हॉल में एक विराट सभा बुलाई गई, जिसमें नगर के सभी प्रतिष्ठित व विद्वान सज्जन साधारण जनता के साथ उपस्थित हुए थे। माननीय सभापति महोदय ने सर्वसम्मति से सभा की तरफ से शिकागो धर्म सभा के सभापति डॉक्टर बैरोज साहब के पास धन्यवाद सूचक पत्र भेजा।
0: इस तरह भारत में स्वामी जी के विजय का चारों ओर जश्न मनाया गया। इससे यह फल हुआ कि उनकी निंदा और आलोचना करने वालों की ही आलोचना हुई और अंततः वे हार मान करके चुप हो गए। उधर अमेरिका में स्वामी जी के व्याख्यानों का दौर चल रहा था और वे एक के बाद एक अमेरिका के नगर की जनता को अपने ज्ञान और वाग्मिता से वशीभूत करते जा रहे थे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। सुनते रहे 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको बता देते हैं कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। सुबह 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम जीवन सौरभ, अक्षय निधि ये कार्यक्रम आपको सुनाएंगे 7:10 से। भक्ति गीतों का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम भक्ति संगीत में 7:20 से। वतन का राग ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 8 बजे से। 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम आमने सामने, इसके अंतर्गत सुनिएगा एलपीजी की बचत और इसका संरक्षण कैसे करें। विषय विशेषज्ञ होंगे और आशा पाठक, और आपसे बातचीत की है दानिश खान ने। वागर्थ ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 9:00 से। नौ बजकर 30 पर सुनिएगा नर्मदा एक सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में, इस पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम परिक्रमा और रेडियो रिपोर्ट सुनिएगा 10:00 से। मास्टर अमीर चंद्र की शहादत पर केंद्रित कार्यक्रम याद करो कुर्बानी सुनिएगा 10:30 से। उस्ताद अली अकबर खां पर केंद्रित कार्यक्रम कला कल्लोलिनी सुनिएगा 11:00 से। वाचक स्वर होगा स्वाति गिरी और दीपक नेमा का। स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद सुनिएगा 11:30 से। ये थी जानकारी हमारी कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

रात्रि के 10 बजे हैं। इसी के साथ हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।